FM 103.1 MHz पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। आज शनिवार है। शक संवत 1948 की आश्विन माह की चौथी तिथि तदनुसार 26 सितंबर 2026 सुबह के 5:57 हुए हैं। हमारी आज की सभा अब आरंभ होती है।

विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र में सार्थक सुधार के लिए लिखित प्रस्ताव पर आधारित वार्ता आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बिना किसी लिखित प्रस्ताव के बातचीत केवल सुधार प्रक्रिया को टालने के समान होगी। सुधार का विरोध करने वाले देश संस्था को मजबूत करने के बजाय केवल उसका शोषण कर रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र से अलग रप्चर्स एंड रैम्पार्ट्स, बदलती दुनिया के लिए सेतु निर्माण विषय पर आयोजित मंत्री स्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए ये बात कही। इसके अलावा विदेश मंत्री ने जहाजों और नाविकों की सुरक्षा पर मित्र समूह की उद्घाटन बैठक में कहा कि खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार हो रहे हमले चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि ये हमले अब कोई अपवाद नहीं रह गए हैं। डॉक्टर जयशंकर हाल ही में ओमान की खाड़ी में एंटीगा और बारबुडा के ध्वज वाले मालवाहक पोत MV कैप डाउ पर हमले का जिक्र किया, जिसमें एक भारतीय नाविक की मौत हो गई थी। उन्होंने पनामा ध्वज वाले तेल टैंकर पर एलगाइया के हमले का भी जिक्र किया, जिस पर होर्मुज जलडमरू मध्य में हमला हुआ था और एक भारतीय चालक दल का सदस्य लापता हो गया था। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने विनाशकारी बाढ़ के बाद हिमालयी क्षेत्र में जलवायु अनुकूल तंत्र बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने इसे नेपाल, भारत और चीन के संयुक्त नेतृत्व में स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र में प्रधानमंत्री शाह ने कहा कि बढ़ता तापमान हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को अस्थिर कर रहा है। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि इस तंत्र के माध्यम से तीनों देशों के उपग्रह से प्राप्त डेटा, तकनीकी विशेषज्ञता और आपदा की पूर्व चेतावनी संबंधी सूचनाओं को साझा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हाल की आपदा ने चीन नेपाल सीमा के दोनों ओर बड़े पैमाने पर तबाही मचाई, जबकि बाढ़ का पानी आगे बहकर भारत तक पहुंचा। श्री शाह ने आपदा के बाद सहायता प्रदान करने वाले देशों, विशेष रूप से भारत के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम पूरे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय

0: भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जाएगा। केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के प्रभावित क्षेत्रों में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को 1 अक्टूबर से 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने मणिपुर में 13 पुलिस थानों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम का विस्तार किया है। उत्तर प्रदेश में कई जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज बारिश से कई जिलों में 12वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। लखनऊ सहित कई जिलों में पिछले 24 घंटों से चक्रवाती परिस्थितियों के कारण तेज बारिश हो रही है। जनजीवन और सड़क यातायात बुरी तरह प्रभावित है। राज्य के विभिन्न हिस्सों से बारिश से संबंधित कई दुर्घटनाओं की सूचना मिली है। राहत आयुक्त डॉक्टर ऋषिकेश भास्कर यशोद ने रेड और ऑरेंज अलर्ट वाले जिलों के मजिस्ट्रेट के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मौसम की स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को जमीनी स्तर पर सक्रिय रहने, स्थानीय परिस्थितियों पर लगातार नजर रखने और किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार शनिवार और रविवार को भी राज्य में मौसम की स्थिति ऐसी ही बनी रहने की संभावना है। और जापान एशियाई खेलों के 7वें दिन भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीत लिए हैं। निशानेबाजी में कमलजीत और सुरुचि सिंह ने मिक्स्ड टीम 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण और पुरुष टीम ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में रजत पदक अपने नाम किया। गुलवीर सिंह ने 10,000 मीटर दौड़ में रजत और बरानिका एलंगोवन ने पोल वॉल्ट में कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं, एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदनवार।

आज का चिंतन स्वामी विवेकानंद ने कहा है, कभी कमजोर नहीं पड़ें, आप अपने आप को शक्तिशाली बनाएं, आपके भीतर अनंत शक्ति है। आइए सुने भक्ति संगीत।

ये विविध भारती है, झरोखा में लीजिए सुनी हमारे आज के शेष प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का विवरण। अब से थोड़ी देर में ठीक 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस का भाग 323। 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम में आप सुनेंगे श्रृंखला ख्याल और तरानों की विशेषताएं। आज आप सुनेंगे इस श्रृंखला की 11वीं कड़ी। कलाकार हैं गायक डॉक्टर पंडित गोकुलोत्सव महाराज, प्रस्तुति छाया गांगुली की। और इसी कार्यक्रम का पुनः प्रसारण हम करेंगे संध्या 6:45 पर। सात बजे सुनवाए जाएंगे भूले बिसरे गीत। 7:30 पर आप सुनेंगे युगल गीतों का कार्यक्रम हम हेरा ही प्यार के। 8:15 पर सुनिएगा त्रिवेणी। 8:30 पर होगा कार्यक्रम चित्रलोक। और 9:30 पर आज के फनकार। ये कार्यक्रम आज केंद्रित है फिल्मकार देवानंद पर। दिन में 10 बजे आप सुनेंगे पिटारा में गीतों भरी कहानी दो दीवाने शहर में, लेखिका नासिरा शर्मा, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। 11 बजे मैटिनी शो, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे अभिनेता स्टैंड अप कॉमेडियन उदय दाहिया से यूनुस खान की बातचीत आप सुनेंगे, संपादन सहयोग काजल भद्रज्ञ का, प्रस्तुति जुबैर खान की। 12:05 पर यादों की महफिल, ये कार्यक्रम होगा सुरीला सफर, कार्यक्रम आप सुन सकेंगे दिन में 1 बजे। दो बजे सुनिएगा त्रिवेणी। 2:30 पर सदाबहार नगमे आप सुनेंगे। 3 बजे कार्यक्रम होगा मनचाहे गीत। 3:30 पर नाट्य तरंग में सुनिएगा नाटक बांदी, लेखक इस्मत चुगताई। 4 बजे पिटारा लाएगा बॉम्बे टॉकीज गायिका पूर्णिमा यानी सुषमा श्रेष्ठ से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का दूसरा भाग आपको सुनवाएंगे, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। 5 बजे आप सुनेंगे छाये गीत। 5:30 पर तराने नए पुराने। और 6:30 पर आप सुनेंगे झरोखा। 6:35 पर संध्या रंजन कार्यक्रम प्रसारित होगा।

शाम 7 बजे पार्श्व गायिका लता मंगेशकर द्वारा प्रस्तुत विशेष जयमाला कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे। प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिएगा ज्ञान विज्ञान का कार्यक्रम जिज्ञासा। 8 बजे हवा महल कार्यक्रम में सुनो कहानी आप सुनेंगे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी गूंगी का दूसरा भाग। 8:15 पर सुनिएगा चित्रलोक। 9 बजे होगा कार्यक्रम आपके लिए।

9:30 पर आज के फनकार ये कार्यक्रम केंद्रित है संगीतकार और पार्श्व गायक हेमंत कुमार पर। दस बजे आप सुनेंगे छाया गीत और 10:30 पर होगा कार्यक्रम ढलती जाए रात। झरोखा में श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे हमारे आज के शेष प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का विवरण।

शक्तिवान लगने से मूर्छित लक्ष्मण के उपचार के लिए हनुमान लंका के वैद्य सुषेण को उनके घर समेत उठा लाए हैं। औषधि है संजीवनी बूटी। पर्वत का जहां वो मिलेगी नाम सुनकर पवन पुत्र हनुमान श्री राम का स्मरण कर प्रस्थान करते हैं। गुप्तचरों से ये संवाद सुनकर रावण चिंतित हो जाता है और कालनेमी नामक राक्षस को हनुमान के मार्ग में बाधा डालने के लिए भेजना चाहता है। कालनेमी पहले तो रावण को सद्बुद्धि देने का प्रयास करता है, मदांधता त्याग कर महामोह की निद्रा त्यागने की बात कहता है, किंतु फिर रावण के हाथों मरने की अपेक्षा श्री राम के दूत द्वारा मरना श्रेयस्कर जान मुनि रूप धारण करके पवन पुत्र के मार्ग में माया रचना करता है। प्यास बुझाने के लिए हनुमान मुनि के संकेत पर सरोवर पहुंचते हैं, जहां मगरी के रूप में उपस्थित अप्सरा उनके पैर पकड़ लेती है। हनुमान उसका वध कर देते हैं। स्वर्गारोहण से पूर्व वो मुनि रूपी कालनेमी की वास्तविकता उन्हें बता देती है। कालनेमी का वध करके हनुमान पर्वत पर जड़ी न पहचान सकने की स्थिति में पूरा पर्वत ही उठाकर लंका जाते हुए अयोध्या के आकाश में पहुंचते हैं।

0: संगीत सरिता में आजकल जो श्रृंखला प्रस्तुत की जा रही है उसका शीर्षक है ख्याल और तराने की विशेषताएं। प्रसिद्ध गायक गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज द्वारा दी गई जानकारी और उन्हीं के गायन के उदाहरणों पर यह श्रृंखला तैयार की गई है, लीजिए सुनिए।
1: संगीत सरिता के समस्त श्रोताओं को गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज का अभिवादन। अब मैं आपको उस्ताद आमिर खान साहब के द्वारा रचित राग दरबारी में तराना सुना रहा हूँ, जिसमें हज़रत अमीर खुसरो की रुबाई है। हज़रत अमीर खुसरो की जो रुबाई है वह ख़ास रुबाई इसमें प्रयुक्त की हुई है। उसकी मानी है, बलबम रसीद जानम तो बिया के जिंदा मानम पसजा के मन न मानम बचकार खाही आमद। उसका मतलब है कि मेरे लबों तक जान पहुंच चुकी है, तू जल्दी आ ताकि मैं जिंदा रह जाऊं, और मेरे मर जाने के बाद आया उससे क्या फ़ायदा है, इसलिए यार मन बिया बिया। तो मैं आपको गाकर सुनाऊं।

अब राग मधुवंती में मैं तराने का अपना कंपोजिशन प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसमें रुबाई है, उसका मतलब है कि अपने दिल की बात किसी को मत कहो, अपने जिगरी दोस्त को भी मत कहो, क्योंकि उसका भी कोई दोस्त होगा, इसलिए वो कह देगा। इसलिए अपने दिल की बात को राज रखो। राज दिल बा यार जानी ता तवानी हम मगो, यार ना यारी भुवत अज यार यार अंदेशकुन। लीजिए सुनिए।

0: राग मधुवंती में तराना अभी आप सुन रहे थे। प्रस्तुतकर्ता थे प्रसिद्ध गायक गोस्वामी गोकुलोत्सव महाराज। इनके साथ हारमोनियम पर पुरुषोत्तम वालावलकर ने संगत की और तबले पर इनका साथ दिया ओमकार गुलवाड़ी ने। ख्याल और तराने की विशेषताएं, शास्त्रीय संगीत की इन शैलियों पर आधारित कल की 12वीं और अंतिम कड़ी में आप सुनेंगे ख्याल नुमा ठुमरी की कुछ रचनाएं। संगीत सरिता कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
1: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता छाया गांगुली।

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सुषमा श्रेष्ठ से पूर्णिमा बनने तक का एक सफर। संगीत की दुनिया के दिलचस्प अनुभव और जिंदगी के अनकहे किस्से।
3: यादों की बारात निकली है आज दिल के।
2: मिलिए जाने मानी गायिका पूर्णिमा से एक खास बातचीत में बॉम्बे टॉकीज में।
4: उसका अंतरा हमेशा पंचमदा मेरे लिए पता नहीं क्यों गाते थे। कभी शोज के लिए गए, बस में साथ में बैठे तो मेरा हाथ पकड़ के, वो अंतरा था ना, रखना भरोसा उस पे सदा।
2: 26 सितंबर शाम

0: चार बजे सिर्फ विविध भारती पर। एक विलक्षण गायक,
1: अरे ओरे हे,
0: संगीत के साधक,
1: ओ, ओ, ओ।

0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 7 बजे हैं, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार अलवर।

नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसका संबंध केवल हमारे आसपास के वातावरण से नहीं बल्कि हमारे जीवन, हमारे स्वास्थ्य और हमारे भविष्य से है। हम अक्सर कहते हैं स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि स्वस्थ शरीर के लिए स्वस्थ पर्यावरण आवश्यक है। यदि हवा प्रदूषित होगी, पानी दूषित होगा, भोजन असुरक्षित है, आसपास गंदगी है और लगातार शोर और प्रदूषण बढ़ रहा है, तो इसका प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ना स्वाभाविक है। इसलिए आइए जानते हैं पर्यावरण स्वास्थ्य के अर्थ को। पर्यावरण स्वास्थ्य का सरल अर्थ है हमारे आसपास के प्राकृतिक और मानव निर्मित वातावरण का ऐसा होना जो हमारे स्वास्थ्य को सुरक्षित और बेहतर बनाए। हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय तत्वों में शामिल है स्वच्छ हवा, स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल, स्वच्छ भोजन, साफ सफाई और स्वच्छता, कचरे का उचित प्रबंधन, प्रदूषण पर नियंत्रण, सुरक्षित आवास, स्वच्छ कार्यस्थल, शोर नियंत्रण, हरियाली और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। इसलिए पर्यावरण की रक्षा करना वास्तव में मानव स्वास्थ्य की रक्षा करना है। श्रोताओं, हमारे जीवन की सबसे पहली आवश्यकता है हवा। हम भोजन के बिना कुछ समय रह सकते हैं, पानी के बिना भी सीमित समय तक रह सकते हैं, लेकिन हवा के बिना जीवन संभव नहीं। यदि यही हवा धुआं, धूल और हानिकारक प्रदूषकों से भर जाए तो इसका प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। इसी तरह स्वच्छ पानी हमारे जीवन का आधार है। दूषित पानी अनेक जल जनित बीमारियों का कारण बन सकता है। इसलिए हमें यह समझना होगा कि स्वच्छ हवा बेहतर स्वास्थ्य, स्वच्छ पानी सुरक्षित जीवन, स्वच्छ वातावरण स्वस्थ समाज।

श्रोताओं, अब बात करते हैं पेड़ पौधों की। पेड़ केवल हमारे लिए छाया देने वाला साधन नहीं है, वे पर्यावरण के संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पेड़ हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, तापमान को नियंत्रित करने में सहायता करते हैं और जैव विविधता को बनाए रखने में योगदान देते हैं। आज शहरों का विस्तार हो रहा है, सड़कों, भवनों और अन्य निर्माण कार्यों के लिए हरियाली कम होती जा रही है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि एक पेड़ काटने से पहले 10 पेड़ लगाने की सोच विकसित करें। सिर्फ पौधे लगाना ही पर्याप्त नहीं है, पौधे को बड़ा करना भी हमारी जिम्मेदारी है। श्रोताओं, जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, लेकिन आज नदियों, तालाबों और भूजल पर प्रदूषण और अत्यधिक दोहन का दबाव है। घरों का गंदा पानी, औद्योगिक अपशिष्ट, प्लास्टिक और अन्य कचरा जल स्रोतों को प्रभावित कर सकता है, इसलिए हमें जल संरक्षण को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना होगा। हम नल को खुला नहीं छोड़ें, पानी की बर्बादी रोकें, वर्षा का जल संचयन को बढ़ावा दें, जल स्रोतों में कचरा ना डालें और दूसरों को भी जल संरक्षण के लिए प्रेरित करें। हमें याद रखना चाहिए, जल है तो कल है।

श्रोताओं, पर्यावरण स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कचरे का सही प्रबंधन। आज हमारे घरों और बाजारों से बड़ी मात्रा में कचरा निकलता है। यदि कचरे को खुले में फेंका जाए तो गंदगी, दुर्गंध और विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए हमें गीले और सूखे कचरे को अलग अलग रखने की आदत डालनी चाहिए। रसोई से निकलने वाले जैविक कचरे से खाद बनाई जा सकती है। वहीं कागज, धातु और कई प्रकार के प्लास्टिक जैसे सूखे कचरे का उचित पुनर्चक्रण किया जा सकता है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कम कचरा पैदा करना, कचरे को अलग करना और उपयोगी वस्तुओं का पुनः उपयोग करना। अब बात करते हैं प्लास्टिक प्रदूषण की। प्लास्टिक हमारे दैनिक जीवन में बहुत अधिक इस्तेमाल होता है, लेकिन एक बार इस्तेमाल करके फेंकी जाने वाली प्लास्टिक वस्तुएं पर्यावरण के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। इसलिए हमें अपनी आदतों में छोटे छोटे बदलाव करने चाहिए, जैसे कपड़े का थैला अपनाएं, अनावश्यक प्लास्टिक से बचें और वस्तुओं का पुनः उपयोग करें। हमारा छोटा कदम भी बड़ा परिवर्तन ला सकता है।

श्रोताओं, आज दुनिया जलवायु परिवर्तन जैसी बड़ी चुनौती का सामना कर रही है। बढ़ता तापमान, अत्यधिक गर्मी, बदलते वर्षा पैटर्न और अन्य पर्यावरणीय परिवर्तन मानव जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए पर्यावरण संरक्षण केवल पेड़ पौधे या जंगलों की रक्षा का विषय नहीं है, यह हमारे वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य का प्रश्न भी है। हमें ऊर्जा की बचत करनी चाहिए, अनावश्यक बिजली का उपयोग कम करना चाहिए और सार्वजनिक परिवहन, पैदल चलने या साइकिल जैसी पर्य

पर्यावरण अनुकूल विकल्पों को अपनी परिस्थितियों के अनुसार अपनाना चाहिए। कई बार हम सोचते हैं कि पर्यावरण की रक्षा करना केवल सरकार या बड़ी संस्थाओं की जिम्मेदारी है, लेकिन ऐसा नहीं है। सरकार अपनी जगह काम करती है, संस्थाएं अपनी जगह काम करती हैं, लेकिन आम नागरिक की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम सड़क पर कचरा नहीं डालेंगे, पानी की बर्बादी रोकेंगे, बिजली बचाएंगे, पेड़ लगाएंगे, प्लास्टिक का उपयोग कम करेंगे, स्वच्छता बनाए रखेंगे, तो हम पर्यावरण स्वास्थ्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। हमारे पास पृथ्वी को बदलने की शक्ति भले ही सीमित हो, लेकिन अपनी आदतों को बदलने की शक्ति हमारे पास जरूर है। हमें यह तय करना होगा कि हम आने वाली पीढ़ी को कैसी दुनिया देना चाहते हैं, प्रदूषण से भरी हुई या हरियाली से भरी हुई, गंदे जल स्रोत या स्वच्छ नदियाँ, धुएं से भरी हवा या स्वच्छ हवा। याद रखिए, पर्यावरण सुरक्षित होगा तभी स्वास्थ्य सुरक्षित होगा, स्वास्थ्य सुरक्षित होगा तभी समाज सुरक्षित होगा, और समाज सुरक्षित होगा तभी हमारा भविष्य सुरक्षित होगा। आइए आज हम केवल पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस मनाने तक सीमित ना रहें, बल्कि इसे अपने जीवन की आदत बनाएं। स्वच्छ हवा हमारी जरूरत है, स्वच्छ पानी हमारा अधिकार है, स्वस्थ पर्यावरण हमारी जिम्मेदारी है, और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे बचाना हमारा कर्तव्य है।

श्रोताओं, आज हमने विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस पर आपसे जो बातें की, उम्मीद है आप उसका अनुसरण अवश्य करेंगे। इसी उम्मीद के साथ कार्यक्रम से लेते हैं विदा। कल हम फिर से हाजिर होंगे इसी समय और इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे यानी अनीता शर्मा को दीजिए इस कार्यक्रम से इजाजत। नमस्कार और सुनते रहिए आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार अलवर। हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं FM 103.1 MHz पर। सुबह के 7:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में आप सभी का स्वागत है। फिल्म संगीत का ये पहला गीत सुनिए राजा और रंग फिल्म से। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने, गीत लिखा आनंद बख्शी ने और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: तुम्हारा असली नाम क्या है?
1: जी मेरा असली नाम जॉनी।
0: और नकली?
1: नकली भी जॉनी।
0: इसके अलावा भी कोई नाम है?
1: जी हाँ, जानी आपको ज्यादा पसंद है।

0: जॉनी मेरा नाम इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आवाजें किशोर कुमार और आशा भोसले की, गीत राजेंद्र कृष्ण का और संगीत कल्याण जी आनंद जी का। श्रोताओं, फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से। फिल्म संगीत जारी है, मिलते हैं एक छोटे से संदेश के बाद।
1: हो गया इंतजाम।
2: किसका?
1: गुड्डी की फीस का।
2: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है?
3: लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
4: आरबीआई कहता है
5: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।

0: मुकद्दर का सिकंदर। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आवाज लता मंगेशकर की, गीत अनजान का, संगीत कल्याण जी आनंद जी का। श्रोताओं, यहां लेते हैं एक और छोटा सा अंतराल। अंतराल के बाद फिल्म संगीत जारी है।
1: युवाणी कार्यक्रम में हर बुधवार अब आप सुन सकेंगे अपनी पसंद का कोई भी गाना हेलो फरमाइश में। इसके लिए आपको डायल करनी होंगे हमारे स्टूडियो के नंबर और बताना होगा आपका मनपसंद गाना। हमारे फोन नंबर है 2940675। मोबाइल से कॉल करने पर STD कोड 0144 अवश्य लगाएं। हेलो फरमाइश के इस कार्यक्रम का प्रसारण होता है बुधवार शाम 5:30 पर आपके अपने युवाणी में। सुनते रहें FM 103.1 MHz पर आपका अपना आकाशवाणी अलवर।

अभिमान फिल्म का ये गीत है, आवाज़ लता मंगेशकर और मनोहर उदास की, गीत मजनू का और संगीत एस जी बर्मन का। और श्रोताओं, से गीत के साथ ही आज का फिल्म संगीत यही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी से इसका चयन से बोल रहे हैं FM 103.1 पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दिल्ली से समाचार।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 12 वर्ष में भारत के शहरों और गांवों के बीच अंतर उल्लेखनीय रूप से कम हुआ। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार वर्षा, तेज वर्षा की आशंका को देखते हुए कई जिलों में स्कूल बंद। छत्तीसगढ़ में पिछले दो दिन से लगातार वर्षा के कारण राज्य के सभी स्कूल आज बंद। भारत ने खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार होने वाले हमलों पर चिंता व्यक्त की। सावन बरवाल ने जापान एशियाई खेलों में पुरुषों की मैराथन का रजत पदक जीता और समरकंद में शतरंज ओलंपियाड के 9वें दौर में डी गुकेश के शानदार प्रदर्शन से भारत ने जर्मनी को हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष में भारत के शहरों और गांवों के बीच अंतर उल्लेखनीय रूप से कम हुआ है। उन्होंने ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सार्थक सुधारों का उल्लेख करते हुए कहा कि देश में महिलाओं में आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तिकरण बढ़ा है। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत वाराणसी से वडनगर की यात्रा पर निकले सेवा यात्रियों के साथ वर्चुअल माध्यम से बातचीत में प्रधानमंत्री ने सामाजिक सेवा, सामाजिक सुधार और सकारात्मक बदलाव के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य सभी की भागीदारी और योगदान से ही हासिल किया जा सकता है।
1: हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। चुनौतियां आएगी, चुनौतियों को चुनौती देने का तो संस्कार लेकर के हम चले हैं। इसलिए हमें हर दिन एक नई ऊर्जा लेकर सेवा भाव के साथ राष्ट्र कल्याण, राष्ट्र सेवा का काम, जन सेवा से राष्ट्र सेवा, इस मंत्र को जीना है। इस यात्रा में भी जितने ज्यादा लोगों को सेवा के काम में जोड़ेंगे, ये यात्रा उतनी ज्यादा सफल होगी।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि वडनगर से प्राप्त मूल्यों ने उनके जीवन को आकार दिया है, जबकि काशी से उन्हें जीवन में सेवा मूल्य प्राप्त हुए हैं। प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में यात्रियों ने अपने अनुभव साझा किए। श्री मोदी ने यात्रियों से अपने अनुभवों को डायरी में दर्ज करने का आग्रह भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा से देश सेवा तथा निर्बाध प्रतिबद्धता के भाव से सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की सेवा और सुशासन के दृष्टिकोण से प्रेरणा लेकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने की जानकारी दे रहे हैं। नए श्रम संहिताएं सरकार की इस प्रतिबद्धता के साक्षी हैं।
2: नई श्रम संहिताएं कई वर्तमान कानूनों को एकीकृत आधुनिक ढांचे में समाहित करती हैं, जिन्हें कार्यबल में स्पष्टता, स्थिरता और समानता को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अनुसार इन सुधारों के अंतर्गत 29 केंद्रीय कानूनों को 4 संहिताओं में समाहित किया गया है। वेतन संहिता न्यूनतम वेतन को सार्वभौमिक बनाती है और समय पर भुगतान सुनिश्चित करती है। औद्योगिक संबंध संहिता विवाद समाधान को सरल बनाती है और नियुक्ति में लचीलापन बढ़ता है। वही सामाजिक सुरक्षा संहिता गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म कर्मियों और संगठित क्षेत्र को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। इसी तरह व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियां संहिता कार्यस्थल की सुरक्षा और कल्याण मानकों को बेहतर बनाती हैं। ट्राई सिटी बिल्डिंग कामगार यूनियन चंडीगढ़ के प्रधान रामप्रीत शर्मा ने कहा कि नए श्रम कानून श्रमिकों के हित में है।
3: एक यूनियन लीडर के रूप में मेरा अनुभव है कि अच्छी पॉलिसी वही है जिसमें श्रमिक और इंडस्ट्री दोनों साथ साथ विकास करें। उद्योगों के लिए एक महत्वपूर्ण

0: पहलू यह भी है कि वर्किंग अरेंजमेंट में अधिक फ्लेक्सिबिलिटी आई है।
1: ये चार श्रम संहिताएं भारत के श्रम प्रास्थितिकी तंत्र को आधुनिक बनाने का लक्ष्य रखती हैं, जिससे श्रमिकों और नियोक्ताओं को एक समान नियमों के अंतर्गत लाया जा सका है। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़।
2: उत्तर प्रदेश में कई जिलों में तेज वर्षा के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई जिलों में 12वीं तक के स्कूल बंद हैं। लखनऊ सहित कई जिलों में पिछले 24 घंटों में तूफान के कारण तेज वर्षा हो रही है। राज्य के विभिन्न हिस्सों से वर्षा से संबंधित कई दुर्घटनाओं की भी सूचना मिली है। उत्तराखंड में आज और कल कई स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों में मूसलाधार वर्षा का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों और पर्यटकों से इस दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि चार धाम यात्रा फिलहाल जारी रहेगी।
3: मौसम विभाग के अनुसार आज बागेश्वर, नैनीताल, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। इन जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं देहरादून, पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग और अल्मोड़ा में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के 4000 मीटर और अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी का भी अनुमान है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों और पर्यटकों से मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करने और रेड अलर्ट के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने और राहत एवं बचाव की व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
2: छत्तीसगढ़ में पिछले दो दिन से लगातार हो रही वर्षा के कारण राज्य के सभी स्कूलों में आज छुट्टी घोषित कर दी गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बाढ़ और जलभराव की स्थिति को देखते हुए जिलाधिकारियों को सतर्क रहने और राहत बचाव कार्य करने के निर्देश दिए हैं। उड़ीसा में उत्तर छत्तीसगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में बने निम्न दबाव के चलते कई हिस्सों में तेज वर्षा हो रही है। भूस्खलन और जलभराव से सड़क संपर्क प्रभावित है। एहतियात के तौर पर कई जिलों में स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। एक रिपोर्ट।
4: उड़ीसा में डिप्रेशन कमजोर पड़ गया है, लेकिन राज्य के कई हिस्सों में अभी भी भारी बारिश हो रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आज कुछ जगहों पर, खासकर उत्तरी और पश्चिमी जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। बैतरणी नदी अक्वापदा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। निचले इलाकों में पानी भर गया है और संवेदनशील इलाकों में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
2: मौसम विभाग ने आज हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी वर्षा की संभावना जताई है। इस बीच दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
5: आपका स्मार्टफोन हो या हेडफोन, अप्लायंसेस हो या कार, क्या वो रॉकेट जो आपके डिवाइस पे सैटेलाइट सिग्नल्स भेजता है, हर वो चीज जिसे पाने के लिए हम कभी दुनिया की तरफ देखते थे, आज खुद बनाते हैं और पूरी दुनिया तक पहुंचाते हैं। एक सोच से शुरू हुआ ये सफर और 12 साल में इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी, मोबाइल फोन 32 गुना और एक्सपोर्ट्स 84% बढ़ गए। मेक इन इंडिया ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर दी एक मजबूत पहचान।
6: भारत ग्लोबल बिजनेसेस के लिए नए अवसरों का केंद्र बन रहा है, इसलिए मेक इन इंडिया, इनोवेट विथ इंडिया, स्केल फॉर द वर्ल्ड।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने जहाजों और नाविकों की सुरक्षा पर मित्र समूह की बैठक में कहा कि खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार हो रहे हमले चिंता का विषय हैं। डॉक्टर जयशंकर हाल ही में ओमान की खाड़ी में एंटीगा और बारबुडा के ध्वज वाले मालवाहक पोत MV केप डाउ पर हमले का जिक्र किया। इसमें एक भारतीय नाविक की मौत हो गई थी। उन्होंने पनामा ध्वज वाले तेल टैंकर एल गाइया के मामले का भी जिक्र किया। इसमें भारतीय चालक दल का एक सदस्य लापता हो गया था। विदेश मंत्री जयशंकर ने न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के इतर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव से मुलाकात की और द्विपक्षीय मुद्दों के साथ साथ कई मौजूदा मुद्दों पर चर्चा की। सत्र के दौरान उन्होंने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने खाड़ी संघर्ष से संबंधित नवीनतम घटनाक्रम पर चर्चा की। ब्राजील, चीन, मिस्र, इथोपिया, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात वाले इस समूह का उल्लेख करते हुए

0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ब्रिक्स देशों के नेताओं ने ब्रिक्स सहयोग की समीक्षा की। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने बाढ़ के बाद हिमालय क्षेत्र में जलवायु अनुकूल तंत्र बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने इसे नेपाल, भारत और चीन के संयुक्त नेतृत्व में स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा है कि जल सुरक्षा सभी हितधारकों की साझा जिम्मेदारी है, उसमें नागरिक, सरकार और उद्योग भी शामिल हैं। श्री पाटिल ने नई दिल्ली में कल 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह के समापन सत्र में ये बात कही। श्री पाटिल ने जल संरक्षण में जन भागीदारी के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जल से जुड़ी चुनौतियों का समाधान देशों और संस्थानों के बीच सहयोग के माध्यम से ही किया जा सकता है।
1: जलवायु परिवर्तन के कारण कहीं बाढ़ की चुनौती बढ़ रही है, कहीं सूखे और पानी की कमी का दबाव हो, ऐसे समय में हमें जल प्रबंधन को केवल आज की आवश्यकता नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा से जोड़कर देखना होगा। तीन बातें विशेष रूप से सामने आई हैं। पहली, जल संरक्षण से जन भागीदारी सबसे जरूरी है। दूसरी, विज्ञान और नई तकनीक का लाभ जमीन तक पहुंचना चाहिए। और तीसरी, जल की चुनौतियों का समाधान देशों और संस्थाओं के बीच निरंतर सहयोग से ही मजबूत होगा।
0: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं हिमांशु कांडपाल।
2: पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। इस स्पर्धा में भारत ने 44 साल बाद पदक जीता है। बरवाल ने 2 घंटा 11 मिनट और 37 सेकंड का समय निकालकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए दूसरा स्थान प्राप्त किया। आज महिला और पुरुष वर्ग में भारत की कबड्डी टीमें अपने अपने फाइनल मैच खेलेंगी। फाइनल में दोनों वर्गों में भारत का मुकाबला ईरान से होगा। बैडमिंटन में 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु सिंगल्स में अपने अभियान की शुरुआत करेंगी। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन का मुकाबला पूर्व विश्व चैंपियन सिंगापुर के लो किन यू से होगा। एथलेटिक्स में गुलवीर सिंह 10,000 मीटर में रजत पदक जीतने के एक दिन बाद अब 1500 मीटर स्पर्धा में भाग ले रहे हैं। पारुल चौधरी और पूजा महिलाओं के 1500 मीटर फाइनल्स में उतरेंगी। एशियाई खेलों के 7वें दिन कल भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 3 कांस्य पदक जीते। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। पदक तालिका में भारत 2 स्वर्ण, 10 रजत और 12 कांस्य पदकों सहित कुल 24 पदक जीतकर 12वें स्थान पर बना हुआ है। 99 स्वर्ण पदकों के साथ चीन शीर्ष पर है। जापान दूसरे स्थान पर है, उसने अब तक 29 स्वर्ण पदक जीते हैं। दक्षिण कोरिया 13 स्वर्ण पदकों के साथ तीसरे स्थान पर है। उधर उज्बेकिस्तान के समरकंद में 46वें शतरंज ओलंपियाड के 9वें दौर में विश्व चैंपियन डी गुकेश के शानदार प्रदर्शन से भारत ने जर्मनी को पराजित किया। इस जीत के बाद भारतीय पुरुष टीम दूसरे स्थान पर आ गई है। अब 10वें दौर में भारत का मुकाबला उज्बेकिस्तान से होगा। महिला वर्ग के 9वें दौर में भारतीय टीम उज्बेकिस्तान को 3-1 से हराकर दूसरे स्थान पर आ गई है। अगले दौर में भारतीय टीम का मुकाबला चीन से होगा।
0: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के अंतर्गत आज की कड़ी में पद्मश्री से सम्मानित बसंती देवी से बातचीत प्रसारित की जाएगी। ये कार्यक्रम आज दोपहर 1:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और Facebook पर All India Radio News को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री मोदी के भजन क्लबिंग में शामिल होने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, मोदी जेंजी के साथ भजन क्लबिंग में हुए शामिल। नवभारत टाइम्स के अनुसार जेंजी के साथ पीएम की भजन क्लबिंग। अमर उजाला के अनुसार भजन क्लबिंग में युवाओं संग झूमे प्रधानमंत्री मोदी। लोकसत्ता ने प्रधानमंत्री मोदी का बयान देते हुए लिखा है, देश में दिखा बदलाव, मेक इन इंडिया के 12 वर्ष पूरे। पीएम ने गिनाई उपलब्धियां, निवेश, रक्षा उत्पादन, विनिर्माण और निर्यात में हुई उल्लेखनीय वृद्धि। हिंदुस्तान के अनुसार देश का विकास इंजन बना यूपी। गृहमंत्री अमित शाह बोले, डेड इकोनॉमी कहने वालों की सोच ही डेड। दैनिक जागरण लिखता है, गृहमंत्री ने यूपी में इंटरनेशनल ट्रेड शो के उद्घाटन समारोह में विपक्ष पर साधा निशाना। पंजाब केसरी के अनुसार तमंचों की फैक्ट्री की जगह बन रही ब्रह्मोस। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, भारत की पहल, जहाजों नाविकों पर हमले रोकने के लिए बना ग्लोबल ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, समुद्र में हमले वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा। जनसत्ता के अनुसार न्यूयॉर्क में ईरान के विदेश मंत्री ने कहा, हॉर्मुज खोलने के लिए 7 दिनों का प्रस्ताव। अमर उजाला का शीर्षक है, स्वर्णिम निशाना, सुरुचि और कमल ने देश को दिलाया दूसरा गोल्ड। एक ही दिन में भारत को 2 रजत सहित 6 पदक। दैनिक जागरण की सुर्खी है, अंतरिक्ष में AI डेटा सेंटर बनाने की तैयारी में गूगल। सौर ऊर्जा से चलेगा AI

0: कंप्यूटिंग सिस्टम।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पिछले 12 वर्ष में भारत के शहरों और गांवों के बीच अंतर उल्लेखनीय रूप से कम हुआ। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार वर्षा, तेज वर्षा की आशंका को देखते हुए कई जिलों में स्कूल बंद। छत्तीसगढ़ में पिछले दो दिन से लगातार बारिश के कारण राज्य के सभी स्कूल आज बंद। भारत ने खाड़ी, लाल सागर और काला सागर में वाणिज्यिक जहाजों और नाविकों पर बार बार होने वाले हमलों पर चिंता व्यक्त की। सावन बरवाल ने जापान एशियाई खेलों में पुरुषों की मैराथन का रजत पदक जीता। और समरकंद में शतरंज ओलंपियाड के 9वें दौर में डी गुकेश के शानदार प्रदर्शन से भारत ने जर्मनी को हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं, एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय 8:15 हुए हैं। आइए सुनते हैं सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज आप सुनेंगे पंकज उदास की गायक कसले।

0: सुगम संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखे हैं कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
2: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
3: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
2: हाँ।
3: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
2: हाँ।
3: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
2: हाँ? पता नहीं।
3: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
4: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा, साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं पंकज उदास की गायकी।

पंकज उदास की गाई इसी गजल के साथ ही आज का सुगम संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं, एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय 8:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम बातें फिल्मों की, खनकते संगीत और थिरकते नृत्य से सजे समूह गीत, स्वरालेख अर्चना जैन का, प्रस्तुतकर्ता शिव कुमार शर्मा।

नमस्कार। हिंदी सिनेमा जगत कई दशकों से हम सभी का मनोरंजन करता रहा है, जहां सदाबहार फिल्में, फिल्मों के पाठ, उनका निर्देशन, पात्रों की अदाकारी, फिल्मों का संगीत, सभी ने अपने अपने अंदाज में लोगों का दिल जीता है। तो वहीं बहुत सी फिल्में ऐसी भी रही जिनमें समूह नृत्य, रंग बिरंगे परिधान और मधुर संगीत की धुन पर थिरकते हमारे अभिनेता और अभिनेत्रियों की अदाओं से भरे गीत सदाबहार बन गए।

दोस्तों, हिंदी फिल्मों का दौर केवल संगीत का दौर नहीं था, बल्कि सिनेमा के पर्दे पर गीत, नृत्य और विभिन्न रंगों के उत्सव का दौर भी था। जब कोई फिल्मी गीत शुरू होता तो नायक नायिकाओं के साथ पर्दे पर थिरकते कलाकारों का पूरा समूह माहौल को और भी खुशनुमा बना देता था।

आज हम आपके लिए 60, 70 और 80 के दशक के कुछ ऐसे ही चुनिंदा थिरकते हुए तराने लेकर आए हैं, जो आपको भी झूमने पर मजबूर कर देंगे।

साल 1957 में आई सुपरहिट फिल्म नया दौर का ये एक और सदाबहार गीत रहा, जहां संगीतकार ओपी नैयर और आशा जी व शमशाद बेगम के द्वारा ये गीत गाया गया।

इसी तरह का एक और मशहूर थिरकता हुआ गीत रहा फिल्म किस्मत का, जहां भी संगीत निर्देशन ओपी नैयर साहब का था और आशा जी और शमशाद बेगम की लाजवाब जुगलबंदी।

उस दौर के गीतों में समूह नृत्य की अपनी एक अलग पहचान थी। कहीं शादी ब्याह का उल्लास, कहीं त्योहारों की उमंग, तो कहीं महफिल में साथ थिरकते कलाकार।

0: साल दर साल समूह नृत्य के इन थिरकते गीतों का सिलसिला यूं ही जारी था, जहां होठों पर आता है साधना का कभी न भूलने वाला शरारती अंदाज में झूमता गाता ये गीत।
1: झुमका गिरा रे

साल 1966 में आई ये फिल्म थी मेरा साया, जहां उत्सव में माहौल बना देने वाले इस गीत का संगीत दिया था मदन मोहन ने, और मनमोहक आवाज थी आशा जी की।

बड़ा ही खूबसूरत ये मंजर रहा होगा, जहाँ रंग बिरंगी रोशनियाँ सजे हुए मंच पर थिरकते कदमों के साथ नृत्य की मस्ती में झूमती अभिनेत्रियाँ हर दिल को झूमने पर मजबूर कर दें।

साल 1972 में आई फिल्म समाधि के इस बेहद खूबसूरत नृत्य और संगीत से सजे तराने में अदाकारा थी आशा पारेख। संगीत निर्देशन था आरडी बर्मन का, बोल थे मजरूह सुल्तानपुरी के और दिलकश आवाज थी लता जी की।

गीतों में भिन्न भिन्न नृत्य शैली भी देखी गई, जिन्हें हमारे अभिनेता और अभिनेत्रियों ने बाखूबी निभाया भी और वाह वाही भी लूटी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साल 1968 में रिलीज फिल्म ब्रह्मचारी के उस जबरदस्त हिट गीत की, जिसमें वेस्टर्न रॉक एंड रोल और ट्विस्ट नृत्य शैली देखी गई, जिसे भारतीय दर्शकों के लिए बॉलीवुड फ्री स्टाइल रूप में ढाला गया था।

0: सबको मालूम है और सबको खबर हो गई।
1: इसी तरह का एक और जबरदस्त हिट गीत रहा साल 1970 की फिल्म पवित्र पापी का, जहां पंजाबी नृत्य और गायन का बेजोड़ संगम दिखाई देता है।

0: मोहम्मद रफी और आशा जी की जादुई आवाज से सजे इस गीत का संगीत निर्देशन और बोल दिए थे प्रेम धवन ने।
1: चल केड़ी मेड़ी,
2: चल आज टप्पा,
1: चल कोड़ी फेरा,
2: चल बल शेरा,
3: ओए बल शेरा।

बिक जाए पगड़ी मेरी, चाहे बिक जाए हल, ले दूंगा तू जो मांगे एक बार ठुमक के चल। जरा लचक लचक के, जरा मटक मटक के, लक

एक से बढ़कर एक अलग अलग नृत्य शैली और उसी से जुड़े रंग बिरंगे पारंपरिक परिधानों से सजकर जब हमारे अभिनेता और अभिनेत्री अपने समूह के साथी कलाकारों के साथ नाचते गाते हैं तो एक मजेदार उत्साहपूर्ण माहौल बन जाता है।

जहाँ याद आता है साल 1971 में आई फिल्म कारवा का वो गीत जिसमें आदिवासी समुदाय के परिधानों और नृत्य शैली में थिरकती अरुणा ईरानी और जितेंद्र ने सभी दिलों को जीता।

जब बात हो गायन और समूह नृत्य की अलग अलग शैलियों की, तो भला कव्वाली के रंग से सराबोर इस सदाबहार गीत को कैसे भूला जा सकता है।

साल 1980 में रिलीज फिल्म द बर्निंग ट्रेन के इस बेहतरीन गीत में संगीत दिया आर डी बर्मन ने, बोल थे साहिर लुधियानवी के और गीत गाया मोहम्मद रफी, आशा जी और अन्य साथियों ने।

हिंदी फिल्मों में मनमोहक सामूहिक नृत्य और गायन के साथ समा बांध देने वाले इन खुशनुमा गीतों ने हर दिल में अपनी एक अलग ही पहचान बनाई जो आज तक कायम है। ऐसे ही लाजवाब संगीत को जब मिलता है साथ किशोर कुमार और लता जी की आवाज का, तब बन जाता है एक बेमिसाल गीत। सुनते हैं साल 1979 की फिल्म मिस्टर नटवर लाल का ये

लता जी की सुरीली और खनकती आवाज और कल्याण जी आनंद जी का संगीत जब किसी गीत को मिलता है तो हर किसी के पैर थिरकने को मजबूर हो जाते हैं। ऐसा ही एक यादगार और उम्दा नृत्य शैली से भरपूर गीत फिल्माया गया था रीना रॉय और शत्रुघ्न सिन्हा पर। फिल्म थी साल 1976 की सुपरहिट फिल्म कालीचरण।

नृत्य की उम्दा शैली, कर्णप्रिय संगीत, सुंदर बोल और मधुर आवाज से सजे इन गीतों की माला के कुछ नायाब नगमों के इस सफर में लेखन और वाचन के साथ आपकी हम सफर रही मैं अर्चना जैन।

सुनते रहिए आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम बातें फिल्मों की। अगले हफ्ते होगी मुलाकात ऐसे ही चुने हुए कुछ बेहतरीन तरानों के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बातें फिल्मों की। स्वर आलेख था अर्चना जैन का और प्रस्तुतकर्ता शिव कुमार शर्मा। हम आकाशवाणी अलवर की सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं, FM 103.1 MHz पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे जयपुर से हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

0: प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। विकसित भारत जनसेवा अभियान के तहत आज से प्रदेश में सेवा सेतु शिविर, 22 विभागों से जुड़ी सेवाएं एक स्थान पर उपलब्ध होंगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, राज्य सरकार लगातार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रही है। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने जल सुरक्षा को सरकार और सभी नागरिकों की साझा जिम्मेदारी बताया और वायु सेना का बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2026 आज से जोधपुर में। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत जनसेवा अभियान के तहत आज से प्रदेश में सेवा सेतु अभियान के शिविर लगाए जाएंगे। ये शिविर 28 सितंबर तक गिरदावर सर्किल और ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित होंगे। शिविरों में कृषि, ऊर्जा, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता सहित 22 विभागों से जुड़ी सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। इन शिविरों के जरिए आमजन की समस्याओं और विभिन्न विभागों से जुड़े मामलों का तुरंत समाधान किया जाएगा। प्रदेश के सभी जिलों में आयोजित होने वाले इन शिविरों में आमजन को सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ दिलाने पर भी जोर रहेगा। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कल लोकभवन में वंदे मातरम का सामूहिक गान हुआ। नमामि भारतम अभियान के तहत आयोजित इस गान में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, लोकभवन के अधिकारी और कर्मचारियों ने एक साथ वंदे मातरम का गान किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि एक स्वर, एक संकल्प, एक भारत की भावना के साथ वंदे मातरम के गौरवशाली इतिहास से जन जन को जोड़ने में नमामि भारतम अभियान महत्वपूर्ण है। राज्यसभा सांसद नितिन नवीन ने युवाओं से कहा है कि अच्छा इंसान और अच्छा नागरिक बनना जीवन की सफलता से अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये बात जयपुर के बिड़ला सभागार में सेवा संकल्प अभियान के तहत आयोजित युवा संवाद कार्यक्रम में कही। श्री नवीन ने युवाओं से शॉर्टकट से बचने और राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ अपने लक्ष्य के लिए लगातार प्रयास करने का आह्वान किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने युवाओं से समाज के प्रति संवेदनशील रहते हुए राष्ट्र सेवा करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के निर्माण में युवा शक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य सरकार लगातार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रही है।
1: ढाई साल के अंदर मेरे युवा साथियों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि लगातार हमारी सरकार युवाओं के लिए काम कर रही है। आपने ये भी देखा होगा कि हमने कहा था विधानसभा के अंदर युवाओं को 4 लाख नौकरी देंगे, 1,90,000 नियुक्ति पत्र हमने दे दिए, 1,22,000 प्रक्रियाधीन है जिनके पेपर हो गए और 1.25 लाख का हमने कैलेंडर निकाल दिया और आप निकाल देख लीजिए हम कितनी नियुक्ति दे रहे हैं।
0: विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने युवाओं से लगातार संवाद बनाए रखने और अपनी जड़ों से जुड़े रखने का आह्वान किया है। उन्होंने कल जयपुर में आयोजित एक समिट को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री देवनानी ने कहा कि युवाओं को ज्ञान और प्रतिभा का उपयोग राष्ट्र निर्माण तथा समाज के सकारात्मक बदलाव के लिए करना चाहिए। इस अवसर पर भारत में इजराइल के उप राजदूत फारिस साहिब ने विधानसभा अध्यक्ष से शिष्टाचार मुलाकात की। श्री साहिब ने राजस्थान विधानसभा के डिजिटल संग्रहालय का अवलोकन किया और इसे ज्ञानवर्धक बताया। मिशन लाइफ केंद्र सरकार की ओर से वैश्विक स्तर पर शुरू किया गया एक जन आंदोलन है। इसके जरिए लोगों को रोजमर्रा की आदतों में छोटे छोटे बदलाव कर पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित करना है। एक रिपोर्ट।
2: मिशन लाइफ पर्यावरण के लिए जीवन शैली अभियान प्रो प्लैनेट पीपल के सिद्धांत पर आधारित है। ये मिशन ऊर्जा, जल बचत करने, कचरे में कमी लाने, ई वेस्ट को कम करने और सिंगल यूज प्लास्टिक से बचने

0: अपने पर केंद्रित है, साथ ही सस्टेनेबल फूड सिस्टम और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने पर जोर देता है। इसके तहत इस साल जल शक्ति मंत्रालय की ओर से स्वच्छ गांव सुरक्षित जलवायु अभियान भी शुरू किया गया, जो ठोस कचरा प्रबंधन और मिशन लाइफ के संदेश को ग्रामीण स्तर तक पहुंचाने का काम कर रहा है। वहीं पर्यावरण मंत्रालय का एक पेड़ माँ के नाम अभियान इस मिशन को जन आंदोलन का रूप दे रहा है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से योग को बढ़ावा देने और कम उपभोग वाली जीवन शैली से भी जोड़ा जा रहा है। मिशन लाइफ क्लाइमेट के खिलाफ वैश्विक मंचों पर भारत की प्रतिबद्धता का सबसे बड़ा उदाहरण बनकर उभरा है। समाचार कक्ष से सलेहा गाजी।
1: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, एआईआर न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा है कि जल सुरक्षा सभी हितधारकों की साझा जिम्मेदारी है, जिसमें नागरिक, सरकार और उद्योग शामिल हैं। उन्होंने कल नई दिल्ली में आयोजित 9वें इंडिया इंटरनेशनल वाटर वीक 2026 के समापन सत्र को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री पाटिल ने जल संरक्षण में जनभागीदारी के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जल से जुड़ी चुनौतियों का समाधान देशों और संस्थानों के बीच सहयोग के माध्यम से किया जा सकता है। उन्होंने बेहतर जल प्रबंधन पर जोर दिया।
3: जलवायु परिवर्तन के कारण कहीं बाढ़ की चुनौती बढ़ रही है, कहीं सूखे और पानी की कमी का दबाव हो, ऐसे समय में हमें जल प्रबंधन को केवल आज की आवश्यकता नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की सुरक्षा से जोड़कर देखना होगा। तीन बातें विशेष रूप से सामने आई हैं। पहली, जल संरक्षण से जन भागीदारी सबसे जरूरी है। दूसरी, विज्ञान और नई तकनीक का लाभ जमीन तक पहुंचना चाहिए। और तीसरी, जल की चुनौतियों का समाधान देशों और संस्थाओं के बीच निरंतर सहयोग से ही मजबूत होगा।
2: भारतीय वायुसेना का बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2026 आज से शुरू हो रहा है। ये अभ्यास 12 अक्टूबर तक जोधपुर और आसपास के वायुसेना अड्डों पर आयोजित किया जाएगा। अभ्यास का उद्देश्य वास्तविक युद्ध परिस्थितियों के अनुरूप संयुक्त हवाई अभियानों की योजना और संचालन का अभ्यास करना है, साथ ही सामरिक स्तर पर उपयोगी समाधान विकसित करना है। अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका सहित 8 देशों की वायु सेनाएं अपने विमान और अन्य हवाई संसाधनों के साथ भाग लेंगी। वहीं 32 देशों के प्रतिनिधि अभ्यास में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल होंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने कहा है कि पंचायत चुनाव का प्रस्तावित चरणबद्ध कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है और चुनाव की घोषणा जल्द की जाएगी। उन्होंने चुनाव प्रक्रिया 15 नवंबर से पहले पूरी की जानी है। पंचायती राज विभाग से आरक्षण की लॉटरी संकलित सूचनाएं राज्य निर्वाचन आयोग को प्राप्त नहीं हुई हैं, इसके बाद ही चुनाव कराए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने चुनाव की तारीखों को लेकर लोगों से धैर्य बनाए रखने और अफवाहों से सावधान रहने की अपील की है। जापान में चल रहे 20वें एशियाई खेलों में भारत के सावन बरवाल ने पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। इस स्पर्धा में भारत ने 44 साल बाद पदक जीता है। बरवाल ने 2 घंटे 11 मिनट और 37 सेकंड का समय निकालकर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए दूसरा स्थान प्राप्त किया। स्पर्धा का स्वर्ण पदक जापान के यामाशिता ने जीता। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विकसित भारत जनसेवा अभियान के तहत आज से प्रदेश में सेवा सेतु शिविर। 22 विभागों से जुड़ी सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, राज्य सरकार लगातार युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रही है। जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने जल सुरक्षा को सरकार और सभी नागरिकों की साझा जिम्मेदारी बताया और भारतीय वायुसेना का बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति

0: 2026 आज से जोधपुर में। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी अनवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं, एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दिल्ली से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जनसेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विशेष श्रृंखला।

0: के देश सेवा के 9वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा युवा शक्ति खेल और अंतरिक्ष से विकसित भारत की ओर। इसमें भाग ले रहे हैं इसरो के पूर्व निदेशक प्रमोद काले और वरिष्ठ खेल पत्रकार जी राजा रमन। कार्यक्रम का संचालन कर रही है फरतनाज।
1: नमस्कार, आकाशवाणी के विशेष कार्यक्रम जनसेवा से देश सेवा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ फरहतनाज। आज का भारत युवा भारत है। हमारे देश की 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है और ये युवा सिर्फ सपने देखने वाला नहीं, सपने पूरे करने वाला है। आज हम बात करेंगे दो ऐसे मैदानों की जहां भारत दुनिया को पीछे छोड़ रहा है। एक है खेल का मैदान और दूसरा है अंतरिक्ष का मैदान। जी हां, इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे पहले मेहमान हैं जो इस समय हमारे साथ हैं, इसरो के पूर्व निदेशक जिन्होंने भारत के अंतरिक्ष सपने को सच होते हुए देखा है, डॉक्टर प्रमोद काले जी। नमस्कार प्रमोद जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत।
2: नमस्कार।
1: और आज के हमारे दूसरे मेहमान हैं खेल जगत के जाने माने विश्लेषक श्री जी राजा रमन जी। नमस्कार राजा रमन जी।
3: शुक्रिया फरहत।
1: तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और प्रमोद जी से सबसे पहला सवाल करते हैं। सर, आपने इसरो को साइकिल पर रॉकेट ले जाने के दौर से देखा है, आज हम चंद्रयान के जरिए चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंच गए हैं जहां दुनिया का कोई देश नहीं पहुंचा, और मंगलयान हमने पहली ही कोशिश में बहुत कम बजट में कर दिखाया। ये यात्रा युवाओं को क्या सिखाती है?
2: जो भी कुछ सपने होते हैं वो सच होने के लिए बहुत परिश्रम लेने पड़ते हैं, और तरक्की जब हमारे देश ने जो की है उसके पीछे बहुत सारे लोगों का योगदान रहा है
1: जी।
2: एक तो जब हमने शुरुआत की हमारे सब टीम भी बहुत ही छोटी थी, पैसे भी कम थे, लेकिन सपने बड़े थे और आगे जाके क्या करना है इसका हमें पूरी तरह से ख्याल था
1: जी सर।
2: चंद्रयान 3 जब चंद्र पर जाके उतरा अच्छी तरह से, उसमें से रोवर भी निकला, प्रज्ञान रोवर भी निकला, तब मैं तो सिर्फ टेलीविजन पे देख रहा था यहाँ घर बैठे, और तब मैं सोचता था कि इतने सालों में जो काम किया उसकी सफलता देखने को मिली है।
1: तो अब हम आगे बढ़ते हैं और राजा रमन जी आपके पास चलते हैं, खेल की बात करते हैं। पहले कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, लेकिन आज कहा जा रहा है जो खेलेगा वही खिलेगा। तो ये बदलाव कैसे आया?
3: खेलोगे तो बनोगे लाजवाब, ये भी बोलने लग गए। अच्छी बात है कि 2014 के बाद एक सोच में बदलाव आया है, युवाओं में एक भरोसा आ गया है कि अगर हम खेलते हैं तो हमारा निजी जीवन बहुत बढ़िया चल सकता है। गवर्नमेंट का सपोर्ट टॉप एथलीट्स के लिए बहुत है और युवाओं में एक्स्ट्रा ऊर्जा पैदा हो गया। पहले नहीं था, ये नहीं कह रहा मैं, लेकिन आज की पीढ़ी को ये समझ आ गया कि देश उनका बहुत इज्जत करता है, देश के नेता उनको बहुत इज्जत करते हैं, और इतना सम्मान और प्यार शायद खिलाड़ी को पहले कभी नहीं मिला।
1: सर ये बताइए आप कि सरकार खेलो इंडिया, मेरा युवा भारत, खेल महाकुंभ, फिट इंडिया और नई नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी जैसी कई योजनाएं लेकर आई है, और इनसे क्या बदलाव देखने को मिल रहा है? क्या गांव के बच्चों को भी अब ओलंपिक का सपना देखने का मौका मिल रहा है?
3: प्रधानमंत्री जी ने कहा अपने संबोधन में, ये कहा कि 5 से 15 साल के बच्चों को टैलेंट आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा और फिर 2036 ओलंपिक गेम्स के लिए हम तैयारी करेंगे, अब से शुरू करेंगे। ये सोच बहुत अच्छी सोच है, पहले भी होता था टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, लेकिन अभी एक साइंटिफिक तरीके से होने लगा है, और युवाओं को ये समझ आया कि खेलने से इंसान की सेहत बनती है और शायद भविष्य भी बन जाती है।
1: बिल्कुल। और अब हम प्रमोद जी के पास वापस लौटते हैं और चांद की बात कर लेते हैं कि आज हम चांद से आगे निकल गए हैं, आदित्य L1 सूरज की स्टडी कर रहा है और 2035 तक हमारा अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन होगा, तो इस भविष्य को आप कैसे देखते हैं?
2: बहुत अच्छी तरह से काम चल रहा है। आदित्य जो है वो पृथ्वी से बहुत ही दूर है, लेकिन

0: सूरज की जो स्टडी करनी है तो उसके लिए वहां जाकर ही करनी अच्छी तरह से हो सकती है, क्योंकि 24 घंटे तक हम सूरज को देख सकते हैं। अभी अपने जो एस्ट्रोनॉट है उनको जो हम भेज सकेंगे अगले साल के अंतरिक्ष में, तो वो बता सकेगा, वो प्रयत्न जो होगा वो हमें बता सकेगा कि ये भारत का जो स्पेस स्टेशन बनने जा रहा है वो अच्छी तरह से चलेगा कि नहीं, क्योंकि उसके लिए पहले हमें अपने भारतीय एस्ट्रोनॉट को अपने ही यान से अंतरिक्ष में भेजना है, और वो अगर कर सकेंगे तो हम उसके आगे जाकर बहुत ही काम करना है। अभी चंद्रयान 4 का भी काम चल रहा है, और भी एक लैंडर जो है जापानीज एजेंसी के साथ उनका जो काम चल रहा है उसमें उसका उपयोग हो जाएगा। तो ये सब देख के मुझे ऐसा लगता है कि अभी के जो युवा जो है उन्हें ये प्रयत्न करना चाहिए कि पहले तो क्या सीखना चाहिए, कहाँ सीखना चाहिए और किस तरीके से काम करना चाहिए। अभी जो मैं सोच रहा था कि स्पोर्ट्स की जो बात आ गई, तो स्पोर्ट्स और उसका जो संबंध जो है वो मुझे तो पहले तरह से ही पता है, क्योंकि जब नासा ने पहला उनका सैटेलाइट सिनकॉम 3 1963 में भेजा था, उसका उपयोग 1964 साल के टोक्यो ओलंपिक्स वो अमेरिका में लाइव देख सके
1: जी।
0: और उसके बाद जो प्रगति हुई, जो हमने देखा कि 1982 में इनसेट 1 का हमने प्रक्षेपण किया था वो असफल रहा, लेकिन दूरदर्शन ने रशियन सैटेलाइट स्टेशनर का उपयोग करके पूरे एशियाड गेम्स सब जगह पे दिखा सके, और एशियन गेम्स जापान में चल रहे वो हम यहाँ बैठ के देख सकते हैं। ये कैसे होता है? तो इसके लिए जो दूरदर्शन के जो ट्रांसमिशन सिस्टम है, ऑल इंडिया रेडियो के ट्रांसमिशन सिस्टम है, उनमें सबसे महत्वपूर्ण भाग आज हमारे उपग्रह है, जो उपग्रह का उपयोग करके हम ये सब काम कर सकते हैं।
1: जी, तो ये आपने बहुत ही अच्छी बात बताई, जब एक अंतरिक्ष का जो शख्स है वो खेल की बात करता है तो मुझे लगता है कि अपने आप में इंटरेस्ट जाग जाता है, क्योंकि खेल में भी एक सेकंड की चूक मेडल छीन लेती है और अंतरिक्ष में ठीक वैसी एक सेकंड की चूक मिशन फेल कर देती है। तो दोनों में मुझे लगता है अनुशासन और फोकस बहुत जरूरी है। तो राजा रमन जी, आपसे हम पूछना चाहेंगे कैसा अनुशासन चाहिए?
2: बहुत ज्यादा चाहिए, क्योंकि अगर आपको दुनिया में आगे बढ़ना है और ग्लोबल सुपर पावर बनना है स्पोर्ट में, जैसे अब मुझे लगता है डॉक्टर कले और ऐसे लीडर्स हमारे स्पेस प्रोग्राम को बहुत आगे ले चुके हैं। वहां आप देखिए, एक बार हम शायद 500 सैटेलाइट लॉन्च कर देते हैं, ये कोई सोच भी नहीं सकता था कुछ साल पहले। ऐसे ही कोई नहीं सोच सकता था कि नीरज चोपड़ा मेडल जीतेगा, गोल्ड ओलंपिक गोल्ड मेडल, एथलेटिक्स का पहला गोल्ड मेडल आया था। एक महिला हमारी एक ही ओलंपिक गेम में 2 मेडल हासिल कर सकती है, मनु बाकर की बात कर रहा हूं मैं, ये कोई सोच नहीं सकता था, लेकिन अब संभव हो गया है सब कुछ। अब हमारी सोच शायद छोटी थी, अब सोच को विस्तार करने का एक मौका मिला है, और फिर उस सोच को आगे चल के प्लान में और एक्शन में बदलने का एक मौका मिला है भारत को, और हमारी युवा पीढ़ी शायद वो अनुशासन दिखाने लगी है, चाहे वो क्रिकेट का मैदान हो या हॉकी का मैदान हो या शूटिंग हो या कुश्ती हो या मुक्केबाजी हो या फिर तीरंदाजी हो, ऐसे खेलों में हम बहुत ज्यादा अनुशासन दिखा रहे हैं, खास करके हमारे टॉप एथलीट।
1: राजरमन जी, पहले दिव्यांग बच्चों की जब बात आती थी तो अक्सर लोग निराश हो जाते थे कि कुछ नहीं कर पाएंगे शायद, लेकिन मुझे लगता है पिछले कुछ सालों में दिव्यांग बच्चे ही खेलों में आगे बढ़ रहे हैं।
2: वो भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि दीपा मलिक की बात कीजिए, पहली ऐसी महिला बनी भारत से जो पैरालंपिक गेम्स में मेडल हासिल की है, और कई ऐसे एथलीट हैं, शीतल देवी की जितनी तारीफ की जाए कम, उनके हाथ नहीं है लेकिन पैर से तीर चलाती है और फिर विश्व में बहुत ही विख्यात पाई है, शी इज वेरी फेमस एथलीट। ऐसे बहुत सारे एथलीट है जो बाकियों का हौसला अफजाई करते हैं। पहले होता था जब हम विकलांग को देखते थे तो तरस का एक सोच आता था, अब तरस नहीं समझ की बात होने लगी है। ये बदलाव अभी देखने को मिला है पिछले 10-12 साल में, और हमारे खिलाड़ी, विकलांग खिलाड़ी पैरास्पोर्ट जो खेलते हैं वो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं और फिर बाकियों को भी प्रोत्साहित करते हैं।
1: बिल्कुल राजा रमन जी, इस चर्चा को हम जारी रखेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले हम गगनयान मिशन पर हमारी एक खास रिपोर्ट सुन लेते हैं।
3: श्रोताओं, आज का युवा सिर्फ खेल के मैदान में ही देश का नाम रोशन नहीं कर रहा है, बल्कि विज्ञान और अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी नई उपलब्धियां हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम इसका एक बड़ा उदाहरण है। आज हम बात करेंगे भारत के गगनयान मिशन की। गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर की कक्षा में भेजना और लगभग 3 दिन के मिशन के बाद उन्हें सुरक्षित वापस लाना है। लेकिन श्रोताओं, इंसान को अंतरिक्ष में भेजना आसान काम नहीं है। इसके लिए रॉकेट, अंतरिक्ष यान, जीवन रक्षक प्रणाली, अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा और उन्हें वापस पृथ्वी पर लाने की व्यवस्था जैसी कई तकनीकों का विकास करना पड़ता है। भारत इस दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। ह्यूमन

0: रेटेड लॉन्च व्हीकल यानी मानव को अंतरिक्ष में ले जाने वाले रॉकेट HLV-M3 के सभी प्रोपल्शन स्टेजेस और स्ट्रक्चर्स का डेवलपमेंट और ग्राउंड टेस्टिंग पूरी हो चुकी है। इसके अलावा क्रू मॉड्यूल की सुरक्षित वापसी से जुड़ी डिक्लेरेशन सिस्टम की जांच के लिए 2 इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट भी सफलतापूर्वक किए जा चुके हैं। अब गगनयान कार्यक्रम के अगले महत्वपूर्ण चरण की ओर आगे बढ़ रहा है। गगनयान का पहला अनक्रूड एक्सपेरिमेंटल मिशन 2026 की चौथी तिमाही में लक्षित है। इस मिशन में व्योमित्रा यानी एक हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट को भेजा जाएगा। इसका उद्देश्य उन तकनीकों की जांच करना है जिनकी आवश्यकता भविष्य में भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने के लिए होगी। इसके बाद 2 और अनक्रूड मिशन की योजना है और मानव मिशन को 2027 के लिए लक्षित किया गया है। श्रोताओं, गगनयान सिर्फ एक मिशन नहीं है, ये देश में कई नई तकनीकों और रोजगार के अवसरों का रास्ता भी खोलता है। अंतरिक्ष यान बनाने से लेकर रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, संचार और दूसरे क्षेत्रों में विशेषज्ञता की जरूरत होती है और यही वजह है कि अंतरिक्ष क्षेत्र में युवाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसका एक उदाहरण युविका यानी यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम भी है। 2026 में युविका कार्यक्रम में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के 456 मेधावी विद्यार्थियों ने भाग लिया। इन विद्यार्थियों को इसरो के 9 केंद्रों पर अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीक की जानकारी दी गई। उन्हें वैज्ञानिकों और गगन यात्री से बातचीत, रॉकेट लॉन्च देखने, रोबोटिक्स, चंद्रयान 3 DIY किट और मॉडल रॉकेट जैसे व्यावहारिक अनुभव भी दिए गए। श्रोताओं, भारत की अंतरिक्ष यात्रा अब केवल चंद्रमा या मंगल तक सीमित नहीं है। देश भविष्य में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। भारत की योजना लगभग 2035 तक 5 मॉड्यूल वाले भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को ऑपरेशनलाइज करने की है। इसके पहले मॉड्यूल BAS-1 को 2028 तक लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी आज का युवा जिस विज्ञान को किताबों में पढ़ रहा है, आने वाले समय में उसी विज्ञान का इस्तेमाल अंतरिक्ष में नई उपलब्धियां हासिल करने में कर सकता है। खेल के मैदान में युवा अनुशासन, मेहनत और टीम भावना से देश को गौरवान्वित करता है। वहीं विज्ञान और अंतरिक्ष के क्षेत्र में युवा अपनी जिज्ञासा, ज्ञान और तकनीकी क्षमता से देश के भविष्य को नई दिशा दे सकता है। इसलिए युवा शक्ति खेल और अंतरिक्ष से विकसित भारत की ओर केवल एक विचार नहीं, बल्कि युवाओं की क्षमता को देश के विकास से जोड़ने की दिशा है। भारत की अंतरिक्ष यात्रा आगे बढ़ रही है और इस यात्रा में आज के युवा वैज्ञानिक, इंजीनियर और विद्यार्थी आने वाले भारत की नई कहानी लिख सकते हैं।
1: तो अब हम वापस लौटते हैं प्रमोद जी के पास। और प्रमोद जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि कई बार मिशन फेल हुए, जैसे चंद्रयान 2 की हार्ड लैंडिंग, तो उस रात इसरो में क्या माहौल था और फेल होना भी युवाओं के लिए क्या सबक है?
2: एक तो जब हम हाथ में काम लेते हैं तो पहले से पता होता है कि कुछ गलतियां हो सकती है, कुछ मुश्किलें बढ़ सकती है, तो उसके बाद में क्या करना चाहिए, किस तरीके से हमें इसका अभ्यास करके इसमें क्या सुझाव करना पड़ेगा, तो यही सोच रख के हम काम करते हैं कि कुछ भी तो फेल हो जाए तो ठीक है, हम आगे जाके इसको अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा जब मिशन होता है, इतनी बड़ी टीम जब काम करती है, कभी कुछ गलत हो सकता है, और जो गलत हो जाए तो आगे जाके उसको ठीक करके हम फिर से दोबारा ऐसा ही प्रयत्न करेंगे। ये भावना मन में रख के ही हम आगे काम करते हैं। स्पोर्ट्स में भी जो मैंने देखा है कि टीम स्पिरिट जो होना चाहिए, वही टीम स्पिरिट ये स्पेस के हमारे काम में भी बहुत महत्वपूर्ण है।
1: प्रमोद जी, आप ये बताइएगा कि भारत का स्पेस प्रोग्राम मुख्य रूप से सरकारी संस्थानों के नेतृत्व में हमेशा आगे बढ़ा, लेकिन अब स्टार्टअप्स की बात की जाए या फिर प्राइवेट कंपनियों की, तो इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही है, तो इस बदलाव के सबसे बड़े अवसर और चुनौतियां क्या हैं?
2: पहले से ही हम देख रहे थे कि जब हमने काम खत्म ही लिया था तो सभी जो काम है वो पूरा काम इसरो में ही हो सकता नहीं है। जब इसरो ने काम चालू किया SLV-3 लॉन्च व्हीकल के लिए, तब ध्यान में आया था कि इसके लिए जो काम है उसको इंडस्ट्री में ही करना चाहिए, जो बड़ा काम करना है वो। और तभी से 40 साल हो गए, अभी सभी इंडस्ट्रीज हमें उसके साथ मदद करती है। आज जो देखे तो मुझे लगता है कि 75% काम जो है वो अपने यहाँ की इंडस्ट्री में हो रहा है, और अगर जो ये इंडस्ट्री आगे जाकर ये काम खुद अपने ही हाथ से करे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि जब अनुसंधान करना है, रिसर्च करना है, तो उसके लिए जो काम करना है तो वो इसरो कर सकती है, और लेकिन जो प्राइवेट कंपनीज है वो जो हमारे अभी के जो छोटे जो लॉन्च व्हीकल है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, नहीं तो PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये जो इंडस्ट्री में जो बन सके तो बहुत ही अच्छा होगा। ये स्टार्टअप ने हमें दिखा दिया है, स्काई रूट का जो विक्रम

0: वन जो उन्होंने लॉन्च किया
1: जी,
0: बहुत ही अच्छी तरह से काम हुआ है और ये काम और आगे जाकर वो कर सके पूरी तरह से। उसके लिए जो ईंधन लगा था वो इसरो में ही बना था, तो जो काम इंडस्ट्री कर सके इसरो के बाहर वो जो अपने हाथ में ले ले तो बहुत ही अच्छा होगा। और इस काम में नए इंजीनियर्स है, साइंटिस्ट है, उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहेगा।
1: और अब राजारमन जी आपके पास वापस लौटते हैं, हम बात करते हैं फिट इंडिया की। तो फिट इंडिया सिर्फ एक नारा है या लोगों की आदत वाकई में इससे बदली है?
2: इससे पहले मैं डॉक्टर काले ने जो बात कही है हारने की और जीतने की, वहां से सीख लेने की, ये आपको खेल के मैदान में देखने को मिलता है फरज जी, बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। आप ज्यादा हारते हैं और हार से जो सीख मिलता है वो शायद जीत में नहीं मिलता है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लोग खेलें और सीख लें कि आज हार भी जाए तो अपने आप को कैसे उठाएं, और इसरो ने वो कर दिखाया
1: है। हाँ, और पुरानी कहावत भी है, हार में ही जीत है।
2: बिल्कुल है। और अगर हम फिट इंडिया की अभी बात करते हैं तो फिट इंडिया एक सिर्फ स्लोगन नहीं रह गया, अभी लोगों के जहन में बैठ गया है कि ये एक भारत सरकार का एक बहुत बड़ा मुहिम है लोगों को समझाने का कि अपना सेहत बना के रखो। और सेहत बनाने का एक तरीका है खेल, और आधा घंटा अगर आप खेलते रहेंगे दिन में तो आपकी सेहत बन सकती है। एक बहुत बड़ा चुनौती आने वाला है भारत के सामने, जहाँ पे लाइफस्टाइल डिजीज बहुत बड़े पैमाने पे शायद हमको सामना करना पड़ेगा। यही वजह है कि भारत सरकार ने सोचा है कि फिट इंडिया एक ऐसा मुहिम बनाते हैं, लोगों को समझ आएगा और लोग अपने आप ही अपने सेहत बेटर करने की ओर चल पड़ेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको स्लोगन नहीं हमको मिशन मानना चाहिए।
1: जी अच्छा, अगर हम बात करें कुछ राज्यों की, जैसे उत्तर पूर्व हो गया या हरियाणा, ये छोटे राज्य हैं लेकिन सबसे ज्यादा मेडल यहीं से आते हैं, तो इसका क्या राज?
2: इसके वहाँ के लोगों के अंदर एक शायद भूख है, जो छोटे शहरों में, सिर्फ इन प्रांतों की नहीं बात करता, आप पूरे देश में देखिए जो छोटे शहर से आते हैं या गांव से जो आते हैं खिलाड़ी, उनके अंदर एक भूख होता है, कुछ कर दिखाने का मादा होता है और वो कर दिखाते हैं। शायद थोड़ा अगर एजुकेशन लेवल बेहतर हो जाता तो खिलाड़ी और बेहतर हो सकते हैं, लेकिन ये कहना होगा कि जो खिलाड़ी आए हैं और जो भारत का नाम रोशन किए हैं, उन सब में एक ही बात है कि उनके अंदर एक भूख है, हुनर तो है ही, हुनर चाहिए, उसके साथ कोशिश भी चाहिए, मेहनत भी चाहिए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात उनके अंदर भूख है कि वो कुछ करना चाहते हैं और फिर अपने आप को, अपने फैमिली को, अपने गांव को सुधारना चाहते हैं।
1: जी अच्छा प्रमोद जी, मैंने कुछ समय पहले अखबार में एक खबर पढ़ी थी कि चेन्नई के दो युवाओं ने, अग्निकुल और हैदराबाद के युवाओं ने स्काई रूट बनाया, तो इसरो इसमें कैसे उनकी मदद कर रहा है?
0: उसकी टेस्टिंग के लिए और उसका जो ईंधन जो है वो ईंधन इसरो ने दिया था, प्रोपेलेंट जिसे कहते हैं वो
1: जी।
0: और जब उसको लॉन्च किया विक्रम 1 सतीश धवन स्पेस सेंटर से ही लॉन्च किया था, जो भी कुछ प्रोग्रेस हुआ है वो अच्छी तरह से हुआ है, और जो काम वो कर रहे हैं उसे और भी ज्यादा तरीके से, सिर्फ एक जगह पर नहीं लेकिन भारत में 3-4 जगह से इस तरीके से काम होने की जरूरत है।
1: तो अगर हम आज से 20 साल आगे भारत के स्पेस प्रोग्राम की कल्पना करें तो आप भारत को कहाँ देखना चाहेंगे?
0: चंद्रमा पे जाकर वहाँ से अच्छी तरह से वापस आना, ये महत्वपूर्ण बात होगी।
1: वापस आना और वापस आकर मुझे लगता है खेल जगत की दुनिया में दोबारा चलना। राजारमन जी,
2: 20 साल की अगर बात करें तो अगर हम ओलंपिक के टॉप 10 देशों में हो जाए तो मेरे लिए बहुत सुनहरा सपना साकार हो जाएगा। अगर हमारे खिलाड़ी, हमारे युवा खेल की ओर बढ़ जाते हैं, ज्यादा लोग बढ़ते हैं, और जो शिक्षक है वो और थोड़ा मेहनत करते हैं, सिर्फ 10-12 खिलाड़ी में नहीं फोकस करके 400-500 खिलाड़ी में फोकस करें, उनमें से चैंपियन पैदा करें शिक्षक जो कोचेस है, अगर वो हो जाता है तो हमारा देश बहुत आगे बढ़ सकता है। अभी थोड़ा सा सोच में हमारा बदलाव लाना पड़ेगा, लेकिन चाहे लिएंडर पेस हो या अभिनव बिंद्रा हो या राज्यवर्धन राठौर हो या मनु बाकर हो या नीरज चोपड़ा हो, इन लोगों ने उस सोच में बदलाव लाने का बहुत बहुत योगदान दिया है।
1: तो राजारमन जी, 2036 की अगर बात की जाए, हम आगे ओलंपिक भारत में लाने की बात हो रही है, तो अगर ओलंपिक भारत में हुआ तो इससे युवा शक्ति को क्या फायदा हो?
2: एक बहुत ज्यादा प्रेरणा मिलती है और कईयों को नौकरी लग सकती है। हम समझते हैं कि खेल सिर्फ खिलाड़ियों के लिए है, लेकिन आप देखिए एक पूरा इंडस्ट्री बनता है खेल के इर्द गिर्द, चाहे वो टूरिज्म हो या लेबर फोर्स हो, जो स्टेडियम बनाने का लेबर फोर्स हो, कई सारे लोग जुड़ जाते हैं इसमें, और युवाओं के लिए एक एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी बनता है। खिलाड़ी के लिए तो है ही, लेकिन और भी युवा जुड़ सकते हैं खेल के माध्यम से और उनका भला हो जाएगा।
1: और अब वापस लौटते हैं और अंतरिक्ष की बात कर लेते हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो बच्चों का भविष्य है अंतरिक्ष में आगे के लिए, प्रमोद जी क्या होना चाहिए?
0: जहाँ भी वो सीखते हैं ये बच्चे, उनको पहले से ही थोड़ा सा मार्गदर्शन मिले कि छोटा रॉकेट किस तरीके से बना सकते हैं, छोटा सैटेलाइट किस तरीके से बना सकते हैं, और उसमें जो टीम जो है वो किस तरीके से काम कर सकती है। मैंने यहाँ पुणे में देखा था, एक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के कोई स्टूडेंट्स थे, उन्होंने पूरा

0: प्रयत्न करके एक उपग्रह बनाया जिसका नाम था स्वयं। और रिटायर होने के बाद जब मैं यहाँ आया पुणे में तो मैंने उनको मदद की थी और मैंने देखा कि उनके अंदर जो ऊर्जा थी ये काम वो कर दिखा सकते हैं। वो टीम जो पहले थी वो अंत तक नहीं रहे थी क्योंकि ये तो स्टूडेंट थे, उनके 3-4 साल पूरे होने के बाद वो कॉलेज छोड़ के कहीं और चले जाते हैं, मगर ये कॉलेज ने करके दिखाया था। और इस तरीके से काम जो है जिसमें लगातार काम करने की जरूरत है ये ध्यान में रखकर इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, बड़े दूसरे कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज है, उन्होंने पहले से इस तरीके के काम के लिए उनके जो विद्यार्थी है उनको तैयार करना चाहिए।
1: प्रमो जी, लेकिन अभी तो हमारे पास बहुत सारे संसाधन हैं, इस किसी चीज की कमी नहीं है, इंटरनेट है और बहुत सारी सोशल मीडिया साइट्स हैं जहां पर हम मदद ले सकते हैं, लेकिन जब भारत की अंतरिक्ष यात्रा का सफर शुरू हुआ था तब सीमित संसाधनों से इसकी शुरुआत हुई थी, तो अगर पीछे मुड़कर देखें तो वो कौन से महत्वपूर्ण पड़ाव थे जिन्होंने भारत को एक शुरुआती अंतरिक्ष कार्यक्रम से आज एक सक्षम अंतरिक्ष शक्ति बनने तक पहुंचाया?
0: एक तो पहले हम जब काम करते थे तो पहले 3-4 साल तक जो रॉकेट्स थे वो रॉकेट्स अमेरिका से, फ्रांस से आए थे। उसके बाद में जब हमने अपना खुद का ईंधन जो है वो तैयार किया, सॉलिड रॉकेट प्रोपेलेंट जो है वो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में तैयार हुआ, तो वो प्रोपेलेंट जो है उसी के लेकर हम आगे जाकर काम कर सके। उसके बाद में लिक्विड प्रोपेलेंट और लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम में काम किया, उसके बाद में जाकर क्रायोजेनिक्स में भी काम किया। तो ये जो आत्मनिर्भर जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए सिर्फ कोई इंटरनेट से जो कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिली तो उसमें से कुछ ज्ञान मिलता है, लेकिन ये आगे जाकर ये हमें खुद को करना पड़ता है और ये जो खुद को करना पड़ता है ये देखकर हम आगे चले गए हैं।
1: खुद को देखकर करना पड़ता है राजा रमन जी। तो अगर आप खेल की हम बात करें तो इसमें भी हम वही चीज अपनाना चाहेंगे कि सीमित संसाधन उस समय हुआ करते थे, लेकिन आज बहुत सारी चीजें हैं जो सरकार की तरफ से कई सारी ऐसी योजनाएं चल रही हैं जो बच्चों को आगे आने का मौका देती हैं, तो ऐसे में आप इसमें क्या कहना चाहेंगे?
2: बहुत इम्पोर्टेंट बात छेड़ी है आपने। हाल ही में मेरी बात हो रही थी कुछ शूटर्स के साथ जो निशानेबाज है, राइफल शूटर्स, उनको एक बॉडी आर्मर सूट पहनना होता है। वो सूट पहले आप इंपोर्ट करते थे, अभी भारत में जो बनता है वही दुनिया भर में चलता है। तो भारत में काम शुरू हो गया है, सेल्फ सफिशिएंसी की बात होती है या आत्मनिर्भरता की बात होती है, तो हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं और खेल में भी आ गया है। और ये अच्छी बात है कि खिलाड़ी भी आपको अभी समझ में आया कि विदेश में ही नहीं ट्रेन करते हैं, हमारे पास पटियाला में हो या बेंगलोर में हो या त्रिवेंद्रम में हो, वहां पे भी ट्रेनिंग करके आप विश्व में चैंपियन बन सकते हैं। और ये दिखाया है कि आपके पास अभी सारे संसाधन है, आपकी तैयारी अगर सही हो तो आप विश्व में जाके एकदम कम्पीट कर सकते हैं किसी के साथ।
1: तो एक महिला होने के नाते मैं आप सबसे ये पूछना चाहूंगी कि महिलाओं की भूमिका या फिर महिलाओं के लिए क्या चीजें की जा रही हैं स्पोर्ट्स के लिए?
2: 1970 में कमलजीत संधु पहली ऐसी महिला बनी जो एशियन गेम का गोल्ड मेडल जीती है भारत के लिए, और आज बहुत माहौल बदल गया है और हमें ये समझ आया है, पूरे हिंदुस्तान को समझ आया है कि हमारे महिला शक्ति बहुत स्ट्रांग है और ये बहुत सारे पदक हासिल करते हैं, एशियन गेम में हो या राष्ट्रमंडल खेल हो या फिर ओलंपिक खेल हो, यहाँ पे हमारे महिलाओं का योगदान बहुत ज्यादा है। तो एक कोशिश ये है, अगर आप खेलो इंडिया की बात करें उसके अंदर अस्मिता लीग करके एक शुरू हुआ है सिर्फ महिलाओं के लिए, ये हमारे समझ में आया है कि महिला हमारे लिए कुछ कर सकते हैं। तो छोटे छोटे बच्चों के लिए गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम बना है अस्मिता, वहां से खेलो इंडिया में चलते हैं, खेलो इंडिया से फिर टॉप्स में आते हैं। बहुत सारे अभी रास्ते खुले हैं हमारे महिलाओं के लिए और एक इज्जत मिलने लगा है सोसाइटी में जब वो खेलते हैं और फिर भारत का नाम रोशन करते हैं, दे आर रेस्पेक्टेड अ लॉट मोर, पहले जैसा नहीं, लेकिन अच्छी बातें हो रही है भारत के अंदर और मुझे लगता है कि महिला ही हमें बहुत आगे और लेके जाएंगे।
1: अगर खेल की हम बात करते हैं तो उसमें डोपिंग और एज फ्रॉड जैसे मुद्दे भी शामिल हो जाते हैं, तो युवाओं का जो करियर पूरी तरह से खत्म कर देते हैं, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे, इस चीज को कैसे रोका जाए?
2: डोपिंग के लिए कानून बना है और जब एथलीट डोप करता है या करती है तो एक 4 साल का बैन लग जाता है उनपे, लेकिन जो उन्हें कराते हैं उनको क्रिमिनलाइज करके अभी भारत सरकार एक कानून बनाई है, अगर कोई खिलाड़ी को जबरदस्ती डोपिंग की ओर लेके जाता है तो उन्हें जेल हो सकती है। और ये अच्छी बात है, डोपिंग रोकने का एक बहुत बड़ा तरीका है ये है कि सप्लाई चेन को आप काट दें, तो ये डोपिंग के मामले में वो सही हो गया है। एज फ्रॉड का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा भारत में है, अगर स्पोर्ट करप्शन की बात करें शायद डोपिंग से ज्यादा एज फ्रॉड है और इसमें चाहिए जो पेरेंट्स है, जो स्कूल के अध्यापक है, जो कोचेस है, इनको चाहिए अनुशासित होना और फिर सोचना है कि भारत को अगर आगे बढ़ना है तो एज फ्रॉड नहीं करना है। अगर सही एज में खेलेंगे तो हो सकता है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सीनियर कैटेगरी में भी अच्छा करने लगेंगे, अब सिर्फ जूनियर में करते हैं हम।
1: राजा रमन जी, आपने अनुशासन की

0: बात की तो प्रमोद जी से हम पूछना चाहेंगे कि किसी भी चीज के लिए चाहे वो अंतरिक्ष हो या फिर खेल, अनुशासन बेहद जरूरी है। तो अगर बात की जाए डॉक्टर विक्रम साराभाई की या फिर डॉक्टर अब्दुल एपीजे कलाम की, तो उनसे कौन सी ऐसी बात सीखने की मिली है कि जो आज के युवाओं को जानना होगा?
1: एक तो डॉक्टर विक्रम साराभाई जो हमारे टीचर थे, उनसे मैंने एक देखा था कि जब सुबह उठते हैं एक काम करते हैं, कभी दूसरा काम करते हैं, कभी तीसरा, मगर पूरा दिन अच्छी तरह से काम करते रहते, उनका सब्जेक्ट चेंज करते थे, ये हमें सीखना मिला उनके पास से। और एपीजे अब्दुल कलाम जब हमारे साथ में काम करने के लिए आगे 1963 में, तो उसके बाद मैंने देखा था पहले ही जब हमारी मुलाकात हुई, बाकी सब इंजीनियर्स और 7-8 लोग हम थे, एपीजे अब्दुल कलाम वाज द ओनली एरोनॉटिकल इंजीनियर थे। उनसे हमें बहुत सीखने को मिला कि उनका विषय था एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, हमारा विषय था कम्युनिकेशन, जो भी कुछ हम करते थे उसी में रस लेते थे, हमारे साथ चर्चा करते थे। और आगे जाकर हम जब SLV का काम करना चालू कर दिया, तो तब तक मैं देख रहा था कि वो किस तरीके से काम करते हैं। वो पहले से ही काम करते थे, पूरा रस लेके काम करते थे, पूरी जो उन्होंने टीम बनाई थी वो टीम के साथ वो किस तरीके से काम करते थे और कितनी शांतता पूर्वक, कितनी सभ्यता पूर्वक वो जो काम करते थे, वो सीखने को मिला। तो जब आज मैं सोचता हूँ कि हमारे जो नए इंजीनियर से, नए साइंटिस्ट है, इंडस्ट्री में काम करते हो या इसरो में काम करते हो, तो सबको एक ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो काम है ये पूरे टीम का काम है, कोई एक इंडिविजुअल का काम नहीं है ये। और इसी लिए जो टीम स्पिरिट जो है वो सबसे महत्वपूर्ण काम कर देता है।
0: जी, टीम स्पिरिट मुझे लगता है बहुत जरूरी है राजा रमन जी, हर चीज के लिए।
2: बिल्कुल है, और खेल में ज्यादातर देखने को मिलता है, चाहे आप क्रिकेट टीम की बात करें या फिर हॉकी टीम की बात करें, लेकिन इंडिविजुअल स्पोर्ट में भी फरज जी आजकल टीम आ गया है। एक खिलाड़ी के साथ कोच है, फिर फिजियोथेरेपिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, उनका भी एक टीम बन गया है। युवाओं को भी समझ आया है कि वो भी अपना एक टीम बनाए, चाहे आप धावक हो, स्प्रिंटर हो, या मिडिल डिस्टेंस या लॉन्ग डिस्टेंस रनर हो, या फिर आप मुक्केबाज हो, आप सबको चाहिए टीम। और खेल दिखाता है जब आप मिलके करते हैं तो मुट्ठी बन जाते हैं और फिर ताकत अपने पास आती है, और खेल बहुत सारी सीख देती है सबको। सबसे बड़ी बात यह है कि आप जमीन से जुड़े रहते हैं, आप जितना भी आप अच्छा कर लेते हैं, सचिन तेंदुलकर की बात है, बहुत ही बड़े खिलाड़ी रहे हैं क्रिकेट के और भारत रत्न भी हैं, उन्होंने सिखाया कि आप कितने भी बेहतर हो जाए और बेहतरी हो सकती है, कीप ट्राइंग टू इम्प्रूव, हर रोज आप बेहतर हो सकते हैं। ये उनके रिटायरमेंट तक वो इम्प्रूवमेंट की कोशिश में लगे रहे, परफेक्शन इज यूटोपियन, और वो दिखाएं कि हर रोज मेहनत करने से आप थोड़ा और बेहतर हो सकते।
0: और अगर बात अब 2047 की करते हैं, तो हम आप दोनों मेहमानों से ये पूछना चाहेंगे कि 2047 विकसित भारत के लिए आप लोगों का क्या लक्ष्य होना चाहिए? जी प्रमोद जी, सबसे पहले आप बताइए।
1: जब मैंने पहले पढ़ा था, गांधी जी ने जो लिखा था इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स, और जो उन्होंने विलेज स्वराज के लिए जो बात की थी, वो सीखने के बाद मुझे ध्यान में आया है कि अगर जो हमें आगे जाकर कुछ करना होगा तो ये एक अच्छी तरह से हमारा जो देश है उसको आगे ले जाने के लिए हमारी जो एजुकेशनल सिस्टम है वो एजुकेशनल सिस्टम इतनी अच्छी तरह से बने कि सभी को पूरा ज्ञान मिल सके।
0: जी राजरमन जी,
2: कई साल तक हम बिजली पहुंचाते रहे, पानी पहुंचाते रहे गांव में, अब वो समय आ गया है कि अगर गांव में बच्चों को खेलने का सुविधा मिल जाए तो देश का बढ़ावा हो जाएगा। और शायद विकसित भारत का एक बहुत बड़ा सपना ये होगा कि हर बच्चा खेलने लगेगा और फिर हम अच्छे स्टार्स बनेंगे।
0: तो हमने जैसे जाना कि खेलो इंडिया का जो युवा पोडियम है, जब तिरंगा फहराता है वहां पर, और इसरो का युवा रॉकेट लॉन्च करता है, तो दोनों ही एक ही लक्ष्य को पूरा करते हैं, और वो है युवा शक्ति से विकसित भारत। तो प्रमोद जी क्या कहना चाहेंगे युवा शक्ति के बारे में?
1: ये युवा शक्ति जो है उसको जानना जरूरी है, वो क्या कर सकते है, वो जो हमें ध्यान में आ जाए तो उनसे प्रेरणा लेकर हमारा काम और भी कर सकते हैं। उनको कहाँ जाना है इसकी थोड़ी तो उनको जो कल्पना हो, और वो कल्पना हो तो उसके लिए पूरा सपोर्ट उन्हें देना चाहिए। ये पूरा सपोर्ट अगर जो उनको मिल जाए उनके टीचर्स के साथ, उनकी फैमिलीज के साथ से, तो ये आगे जाकर बहुत ही अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। आगे जाकर जो भी कुछ स्पेस में करना है, स्पोर्ट्स में करना है, तो पहले से ही उनको अच्छी तरह का गाइडेंस मिलना चाहिए। ये जो युवा शक्ति है उन्हें भी एक देखना है कि उनके रोल मॉडल्स क्या है और वो आगे जाकर क्या कर सकते हैं, थोड़ी तो उनको कल्पना होनी चाहिए। ये जो प्रेरणा हो तो उनको बढ़ावा देकर उनका प्रोग्रेस बहुत अच्छी तरह से हो सकता है।
0: प्रमोद जी, देखा जाए तो आजकल के युवा हैं उसमें डिप्रेशन के बहुत ज्यादा मामले सामने आते हैं, वो बहुत जल्दी हार मान जाते हैं और सोचते हैं कि अगर मैं कोई चीज हार गया तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, मतलब बहुत जल्दी वो हार मान जाते हैं। तो ऐसे में आप अपने अनुभव से उनको क्या सीख देना चाहेंगे?
1: हमने जब इनसाइट 1 लॉन्च

0: किया था, तो लॉन्च करने के बाद एक थोड़े ही दिन में ध्यान में आ गया कि अच्छी तरह से काम नहीं करेगा, इसीलिए हमने इनसेट 1B का भी जो काम था उसमें भी अच्छी तरह से ध्यान देकर काम किया। इतने हार मानने की कोई जरूरत नहीं है, कभी कभी ऐसे भी फेल्यूर्स हो जाते हैं और आगे जाकर हमें फिर से उठकर आगे दौड़ना है, यही मैं तो देखता हूँ। आपने डिप्रेशन की जो बात की, ये डिप्रेशन ज्यादा होता है आज मैं देख रहा हूँ, क्योंकि हर समय जो मोबाइल देखते रहते हैं, बाकी के लोग क्या करते हैं वो देखते रहते हैं और उनको ध्यान में आता है कुछ अच्छी तरह से नहीं कर पाते, दूसरे को ही कर पाते, तो ये जो डिप्रेशन की जो बात है ये एजुकेशन में भी है, स्पोर्ट्स में भी है, हमारे काम में भी है, तो एक ध्यान में रखना चाहिए कि थोड़ा सा तो उन्हें सेल्फ स्टडी का जो है वो करना चाहिए कि किस तरीके से ये अभ्यास करके अपने खुद को अच्छी तरह से आगे जाकर क्या कर सकते हैं वो उनके ध्यान में आ जाएगा।
1: जी राजारमन जी, इसमें क्या कहना चाहेंगे?
2: अगर डिप्रेशन की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट बात मेरे को लगता है कि ये आप किसी से बात कर ले, किसी से मदद मांगना कमजोरी का निशाना नहीं होता है, बहुत सही टाइम पे आप अगर मदद मांग लेते हैं तो डिप्रेशन से दूर हो सकते हैं। और एक और तरीका दूर करने का डिप्रेशन को खेलना होता है, जब आप सुबह में आधा घंटा या शाम को आधा घंटा खेल लेते हैं तो आपके मन को एक शांति मिलती है, सेहत बनती है, फिर आप अपना काम बहुत ही बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। जिनका उम्र हो गया वो टहल सकते हैं, लेकिन युवाओं को खास करके ये कहूंगा कि स्कूल में पढ़ाई तो होती रहेगी, पढ़ना जरूर, लेकिन साथ साथ खेलना भी, और दोनों को आप बैलेंस करेंगे तो लाइफ आपका सेटल हो जाएगा और डिप्रेशन नाम की चीज बहुत दूर रहेगी।
1: राजारमन जी, भारत सरकार ने खेल प्रतिभाओं को कम उम्र में पहचानने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं की शुरुआत भी करी है, तो प्रतिभा की पहचान से लेकर अगर बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने तक एक युवा खिलाड़ी को किस तरह की पूरी व्यवस्था की जरूरत होती है?
2: बहुत जरूरी है। पहले मुझे याद है फरज जी, मैं बहुत ही युवा था तब एक हेडलाइन आया था कि हमारे 700 मिलियन लोग हैं और एक भी पदक नहीं, 1976 ओलंपिक गेम्स में से हम खाली हाथ लौट के आए थे। लेकिन आज माहौल बदल गया है, आबादी बढ़ी है, लेकिन सवाल बदला है, सवाल पूछते हैं कि कम मेडल क्यों आते हैं। कम मेडल इसलिए आते हैं क्योंकि हमारे बहुत ही कम खिलाड़ी खेलते हैं, तो एक मुहिम बना है, चाहे वो टैलेंट आइडेंटिफिकेशन का हो, पिछले साल खेल मंत्रालय ने कुछ 2 लाख बच्चों के असेसमेंट्स किए हैं, हो सकता है वहां से कुछ निकल के आए। एक साइंटिफिक तरीके से जीन पूल को लेके टेस्टिंग हो रहा है, एक खोज में लगे हैं। अगर हम कामयाब हो जाते हैं तो देन वी विल फाइंड द क्लू कि हम कौन से स्पोर्ट में और अच्छा कर सकते हैं। 7 या 8 खेल हैं जहां हम बहुत ही बेहतर तरीके से खेलते हैं, क्रिकेट अभी ओलंपिक में आया है, शतरंज में हम शानदार हमारे खिलाड़ी हैं, कई ऐसे खेल हैं, लेकिन ओलंपिक खेल की हमेशा बात होती है, वहां पे एथलेटिक्स में अभी हम वी हैव गॉट अ ब्रेक थ्रू, और खास करके शूटिंग हो या रेसलिंग हो, बॉक्सिंग हो, वेटलिफ्टिंग हो, वहां से तो हमें अच्छे अंजाम आए हैं, लेकिन तैराक अगर कुछ मेडल लाते हैं या जिम्नास्टिक से कुछ मेडल आ जाते हैं तो भारत का बला हो सकता है। इसी का खोज शायद वो 5 से 15 की बात जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है वो अगर सच हो जाता है, उसको हम सही तरीके से उस आइडिया को इम्प्लीमेंट करते हैं तो then we will find the solutions to all our problems.
1: बिल्कुल, जो खेलेगा वही खिलेगा, मुझे लगता है अब ये बात बिल्कुल साकार हो गई है। और श्रोताओं, अंत में चलते चलते हम ये जानना चाहेंगे कि युवा शक्ति के लिए उनका क्या संदेश है कि वो किस तरीके से आगे बढ़े।
0: मुझे तो ऐसे लगता है कि सिर्फ किसी का सुन के आगे नहीं जाओ, अपना खुद का सेल्फ स्टडी का एक रेजिम बनाए और इस तरीके से जो भी कुछ उनके मन में हो, जो भी कुछ विषय उनको सीखना हो तो आगे जाकर उनके आगे के करियर में भी काम आएगा। जब वो सीखते हैं कुछ भी तो उनकी शिक्षा जो है वो कॉलेज पूरा हो जाने के वहां से खत्म नहीं होती, उनको लाइफ लॉन्ग स्टडी करने की जरूरत है, सीखते रहना चाहिए और खुद को अच्छी तरह से वो आगे जाकर कुछ भी जो करना है उसके लिए एक सेल्फ स्टडी करने का जो है वो एक रेजिम बनाना चाहिए।
1: राजारमन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि भारत की युवा शक्ति के लिए खेल क्षेत्र किस तरह रोजगार और नए अवसरों का माध्यम बन सकता है?
2: बहुत बड़ा बन सकता है। कईयों को गलतफहमी है कि सिर्फ खेलना ही एक माध्यम है रोजगार का। यू कैन बिकम अ कोच, आप स्पोर्ट्स साइंटिस्ट बन सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, बहुत सारे रूट्स है आपको स्पोर्ट्स से जुड़ने का। आप अगर पुराने भी खिलाड़ी है तो यू कैन ज्वाइन इन और आप फिर वर्कफोर्स में रह सकते हैं, खेल से जुड़ सकते हैं। अगर आप युवाओं की बात करें तो मैं सिर्फ उनसे एक ही बात कहूंगा कि आप खेलते रहें, पढ़ते रहें और अपना जो आत्मविश्वास है उसको किसी को कम करने का मौका ना दें। वो नशीले पदार्थों से दूर रहिए और फिर जब आपका कोई दोस्त या साथी कुछ अच्छा कर दिखाता है तो आप उसका भी आनंद लीजिए।
1: बिल्कुल, अपने आत्मविश्वास

0: विश्वास को बनाए रखें, अपनी हार को जीत में बदलें और कभी भी डिप्रेशन में ना जाएं, बल्कि हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। तो आकाशवाणी के इस विशेष कार्यक्रम जन सेवा से देश सेवा में अब वक्त हो चला है आपसे अनुमति लेने का, और हम अपने दोनों मेहमानों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद आप दोनों का।
1: विशेष श्रृंखला जन सेवा से देश सेवा के 9वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा, युवा शक्ति खेल और अंतरिक्ष से विकसित भारत की ओर। इसमें भाग ले रहे थे इसरो के पूर्व निदेशक प्रमोद काले और वरिष्ठ खेल पत्रकार जी राजा रमन। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी फरतनाज।
2: हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम।
3: जॉनी मेरा नाम, निर्देशक थे विजय आनंद।
4: तुम्हारा क्या नाम?
5: जॉनी।
4: अरे तू इंसान है या हैवान?
5: तो क्या नाम है तुम्हारा?
4: पहले जरा कानों की महल निकलवाइए, एक ही बात को बार

0: ने देश सेवा के 9वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा युवा शक्ति खेल और अंतरिक्ष से विकसित भारत की ओर। इसमें भाग ले रहे थे इसरो के पूर्व निदेशक प्रमोद काले और वरिष्ठ खेल पत्रकार जी राजा रमन। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी फरतनाज।
1: हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं FM 103.1 MHz पर। आइए सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम।
2: टॉनी मेरा नाम, निर्देशक थे विजय आनंद।
3: तुम्हारा क्या नाम?
4: टॉनी।
3: अरे तू इंसान है या हैवान?
4: तो क्या नाम है तुम्हारा?
3: पहले जरा कानों की महल ने खिलवाई है। एक ही बात को बार बार दोहराने का आदि नहीं हूँ मैं। एक बार और बता, फिर इसके बाद नहीं पूछेंगे।
4: टॉनी
3: मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छे, आपने हमें 10,000 रुपए दिलवाए। अगर मालूम होता कि जिन भूतों से वास्ता पड़ेगा तो आप कभी झूठ से सिद्धांत करके रखो चक्कर हो जाते।
4: हर झगड़ा प्यार और मोहब्बत से निपटाया जा सकता है। आप मेरी मुरम्मत करवाते चले जा रहे हैं, मैं आपको दिल में गाली देता जा रहा हूँ। क्यों ना ऐसी तरकीब लड़ाई जाए कि मेरी मुरम्मत ना हो, आप गाली ना खाएं और बड़े इत्मीनान के साथ आमने सामने बैठ कर सब फैसले कर लिए जाए।
2: इसके बाद 1971 में तेरे मेरे सपने।
5: डॉक्टर जगन, क्या आप यही डॉक्टर जगन्नाथ कोठारी हैं? MBBS बॉम्बे, MRCOG लंदन, मेडिकल रूल्स। इसके साथ तुम क्या कर रहे हो?
6: इनके साथ मैं काम करता हूँ, उनके बारे में जान लेना पसंद करता हूँ।
5: उनके बारे में जान लेने से बेहतर है डॉक्टर आनंद, उनको जान लेना। घबराओ नहीं, बहुत वक्त मिलेगा, जान जाएंगे हम एक दूसरे को।
6: मेरे लिए अभी ये जान लेना बहुत जरूरी है। ठर्रे की बदबूदार बोतल देखता हूँ तो MRCOG लंदन समझ में नहीं आता।
5: आनंद, मैं इसे बिल्कुल जरूरी नहीं समझता कि ये तुम्हारी समझ में है। MRCOG सिर्फ 5 अक्षर हैं जिनका कोई मतलब नहीं, और ये ठर्रे की बोतल एक हकीकत है मेरे लिए, समझे?
2: और 1973 में विजय आनंद के निर्देशन में देव आनंद ने की छुपा रुस्तम।

0: छुप जा जा जा छुप जा तकियन में ओ खटमल।
1: बात चल रही है देव आनंद की कुछ बेमिसाल फिल्मों की। सन 1958 में आई राज खोसला के निर्देशन वाली 16वां साल, हीरोइन थी वहीदा रहमान।

सन 1958 में मधुबाला और नलिनी जयवंत के अभिनय वाली काला पानी, निर्देशक राज खोसला।

0: कोई सोने के
1: नासिर हुसैन के निर्देशन वाली सन 1961 में आई फिल्म जब प्यार किसी से होता है, हीरोइन आशा पारेख।
0: जब प्यार किसी से होता है तो दर्द का दिल में होता है, तुम एक हसीन हो लाखों में, भला पाके तुम्हें कोई खोता है।
1: युग बदलते चले गए, हीरोइनें बदलती चली गईं, लेकिन देव आनंद की शोखी, उनकी चंचलता और बॉक्स ऑफिस पर उनका जादू कायम रहा। सन 1961 में आई वॉर फिल्म हम दोनों, निर्देशक अमरजीत, हीरोइने नंदा और साधना।
0: अभी न जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं।
1: सन 1962 में आई शंकर मुखर्जी की फिल्म बात एक रात की, हीरोइन थी वहीदा रहमान।
0: न

0: अमरजीत ने सन 1965 में देवानंद और तीन हीरोइनों के साथ एक नायाब फिल्म बनाई तीन देवियां। ये हीरोइनें थीं सिमी गरेवाल, नंदा और कल्पना मोहन।
1: ये चीज खास मैंने उस अनजान देवी के नाम लिखी है जो शायद कहीं किसी जिंदगी के मोड़ पर मेरा इंतजार कर रही है, या यूं समझिए कि मैं उसका इंतजार कर रहा हूं।

ये फिल्म फ्लॉप हो गई, लेकिन निर्देशन का देव आनंद का सिलसिला जारी रहा। इसके बाद उन्होंने हरे रामा हरे कृष्णा बनाई साल 1971 में।

0: फिर आई हीरा पन्ना।
1: की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए चाहे मेरा दिल जाए।
0: सन 1978 में आई देश परदेश।
2: अरे

आखिरी दम तक अपनी फिल्मों का निर्देशन करते रहे। साल 2002 में देव आनंद को फिल्म संसार में अपने अमूल्य योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनकी ऊर्जा और जिंदगी के लिए उनका फलसफा नायाब था। दर्द भी हमें

0: हम उसी के होली।
1: 3 दिसंबर 2011 लंदन की एक होटल में देव आनंद का निधन हो गया। सारी दुनिया सन

आनंद, अपनी असीमित ऊर्जा, अपने पॉजिटिव एटीट्यूड और अपने सदाबहार फिल्मी जीवन के लिए हमेशा याद किए जाएंगे। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था देव आनंद पर। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता शकील बख्शी।

0: 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहे हैं कौन, एक मशहूर संगीतकार और एक मशहूर लेखक, निर्देशक और अभिनेता।
1: हमें तुम्हारा लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना हो पाया।
0: इंतजार कीजिए।
2: हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं, FM 103.1 MHz पर। इस समय 10 बजे हैं। विविध भारती के कार्यक्रम आप सुनेंगे इस अंतराल के।

0: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखे हैं कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा, साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
4: अंतराल के बाद आइए सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम।
5: तरह वीडियो बनाएंगे जिस तरह फिल्म मंजिल में अमिताभ बच्चन और मौसमी चटर्जी ने भीगते हुए ये गाना बिना गाए ही महसूस किया था। पलकों पे बारिश, बूंदों के साथ उनके गालों पर बहे आंसू भी, उसके दिल पर छाई घटाबन बरसने लगे थे। उसकी आंखों के पनीले पर्दे पर गानों के शब्दों के साथ शुभम के भीगे चेहरे और उसके हंसते चेहरे की छवि उभरने लगी।
6: मुझ

0: अपने फ्लैट वाली बिल्डिंग की तरफ बढ़ी तो उसे अपनी तरफ ताज्जुब से भरी कई जोड़ी आंखें घूरती हुई नजर आईं। मुंबई की इस बारिश में जिस एहतियात को लेकर लोग यहाँ निकलते हैं वह तो उसने ली ही नहीं। न बदन पर रेनकोट, न हाथ में अम्ब्रेला, वह तो बस अपने में खोई हुई थी। साड़ी से टपकते पानी को देखते हुए उसे ख्याल आया कि वह सीढ़ियां तय करे या फिर लिफ्ट का बटन दबाए। उसे खड़ा देखकर गार्ड ने कहा,
1: मैम लिफ्ट से जाइए, पानी तो साफ हो जाएगा।
0: उसका फ्लैट भी तो 14वीं फ्लोर पर था। उसने धन्यवाद भरी नजरों से गार्ड को देखा और लिफ्ट में दाखिल हो गई। फ्लैट लेते हुए उसे मैनेजर का कहा एक जुमला अक्सर याद आता है,
1: मैम आप दिल्ली से हैं, दिल्ली वाला कोई बात यहाँ नहीं चलेगा, ठीक है ना?
0: शुभम ने फौरन कहा था,
2: जी आप निश्चिंत रहें सर, वैसे तो हम उत्तर प्रदेश से हैं मगर नौकरी के चलते कई शहरों से गुजरना पड़ता है, बस इसीलिए।
0: दोनों को फ्लैट की सख्त जरूरत थी। ऐसी छोटी मोटी बातों को अगर दिल पर लगाकर आदमी हर एक को जवाब देने लगे तो सिवाय एनर्जी वेस्ट के कुछ मिलना नहीं है, इसलिए श्रुति का चौकन्ना होना जरूरी था। अभी यहाँ आए 6 माह ही गुजरे थे कि शुभम को दुबई का ऑफर आ गया और सैलरी देखकर दोनों ने फैसला लिया कि शुभम को दुबई जाना चाहिए। यदि वहां का वातावरण भाया और श्रुति को भी जॉब करने का चांस मिला तो वो भी दुबई चली जाएगी, वरना शुभम 2 वर्ष का कॉन्ट्रैक्ट समाप्त करके लौट आएगा। शुभम और श्रुति को लिविंग में रहते हुए 4 साल हुए थे। दोनों पढ़ने दिल्ली आए थे। कोचिंग सेंटर में दोनों की मुलाकात हुई थी। एक फ्लैट किराए पर लेकर 2 स्टूडेंट्स रह रहे थे, उन्हें वो महंगा पड़ रहा था। शुभम को भी किसी परिवार के साथ उनके बाहर वाले कमरे में रहना पड़ता था जहां से कोचिंग सेंटर काफी दूर पड़ता था। खुद खाना पकाना भी पड़ता था और कभी कभी बाजार से भी खाना पड़ता था। घर से आए रुपए भी कम पड़ते थे। बहुत कुछ सोचकर वह उन लड़कों के साथ रहने लगा। खर्च में बचत के साथ आने जाने में जो समय लगता था उसे थकन भी होती और पढ़ने के लिए समय भी नहीं मिलता था। कोचिंग सेंटर भी वेस्टमेट में था जहाँ कोई खिड़की रोशनदान नहीं था। सड़क की तरफ खुलने वाली केवल इतनी जगह भर थी जहाँ एसी लगा था और उसे भी लेकर अक्सर वहाँ झिकझिक होती थी। छोटे शहर के आंगन दालान में रहने वाले ये तीनों लड़के ये सोचकर जी जान से मेहनत कर रहे थे कि इसके बाद उन्हें अच्छी नौकरी मिल जाएगी और बाकी के दिन अच्छे गुजरेंगे, मगर नेट का पेपर आउट होने की खबर से सबके दिल टूट गए। थका हारा शुभम बोझिल मन लिए जब घर लौटा तो माँ बाप पहले ही खबर सुनकर टूट चुके थे, लेकिन ऊपर से हौसला बनाए हुए थे। जमीन बेचना नहीं चाहते थे मगर उन्हें लगा कि इस बार बेटे के सुनहरे भविष्य के लिए उन्हें बाप दादा की बनाई जायदाद से एक और टुकड़ा बेचना पड़ेगा। 1-2 दिन शुभम उदास रहा, फिर उसने मन बना लिया कि वह खुद काम करेगा और नेट में बैठने का सारा खर्चा खुद अपनी कमाई से पूरा करेगा, मगर ऐसा कुछ नहीं कर पाया और पिता ही एक मोटी रकम उसको हर माह भेजते रहे। इस बार शुभम का साथ अलग तरह का रहा। जो फ्लैट किराए पर ज्वाइंट मिला उसमें 2 लड़कियां और 1 लड़का था। मकान मालकिन अकेली थी, उनके कोई औलाद नहीं थी, उनमें कुंठा या कड़वाहट नहीं थी बल्कि वो ममता से भरी हुई थी। सभी को वह इतवार के दिन दोपहर के भोजन पर बुलाती थी और सबकी पसंद का खाना बनवाती थी। उन्हीं में श्रुति भी थी। श्रुति, हाँ श्रुति, बेहद हंसमुख और दिमाग की तेज लड़की। उसका शौक केवल पढ़ना था। दिल्ली में रहकर भी वह दिल्ली जैसी लड़कियों का फैशन नहीं कर पाती थी। वो भी एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी। उसकी हट और विश्वास को देख पिता ने उसे पढ़ने की छूट दे रखी थी। श्रुति अपनी पढ़ाई में पूरा ध्यान दे रही थी, लेकिन हाँ शुभम के करीब आकर वो बहुत खुश भी थी।

श्रुति खाना पकाते हुए शुभम से बातें कर रही थी और साथ ही उसे खाना पकाने की रेसिपी भी बताती जा रही थी। रात को खाना खाने के बाद श्रुति को पुरानी बातें याद आने लगी और वह बेचैन हो उठी। इस बार ऐसा नहीं हो, मैं सह नहीं पाऊंगी। वह बिस्तर से उठकर टहलने लगी। फिर उसने शुभम को फोन मिलाया। इधर उधर की बातें कर उसने नर्म आवाज में कहा, शुभम सुनो, हमें लिविंग में रहते हुए कई साल होने को आए हैं, तुम्हें नहीं लगता हमको अब शादी कर लेनी चाहिए और फैमिली बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए? अरे इतनी जल्दी क्या है, अभी कमाने तो दो, कुछ जिम्मेदारियां हैं उन्हें पूरी करना मेरे लिए शादी से ज्यादा महत्वपूर्ण है, शुभम ने कहा। हाँ वो तो है, तो भी हमारी उम्र भी तो बढ़ रही है। और श्रुति कहती कहती अचानक रुक गई। शुभम बोला, चिंता मत करो, सब कुछ अच्छा होगा, मुझ पर भरोसा रखो।

हमारे पास अभी अपना मकान भी नहीं है और न ही हम उन खुशकिस्मत जवानों में हैं जिनके माँ बाप दौलतमंद हैं। मैं यहाँ दुबई आया हूँ, बस ये शहर कमाने और बचत के लिए है। हाँ, बात तुम्हारी सही है शुभम, मगर मम्मी पापा शादी को लेकर इतना दबाव डाल रहे हैं कि मैं उन्हें जवाब देते देते थकती जा रही हूँ, और हमारे आपस के रिश्ते की बात भी उनसे कब तक छुपाती रहूंगी। शुभम ने कहा, ये तो सच है, मेरी जॉब भी रह पाती है या नहीं पता नहीं। पता है, यहाँ पर भी छटनी शुरू हो गई है, और अपने देश में आकर जॉब कब मिलेगी कब नहीं क्या कह सकता हूँ। हाँ, यही सोचकर भी मैं परेशान रहती हूँ। मुझ पर भरोसा रखो, यूं दिल छोटा नहीं करते।

0: फोन रखने के बाद उसे याद आया कि 7 फ्लैट शेयर करने के कारण एक अंडरस्टैंडिंग तो चारों में आ ही गई थी, लेकिन श्रुति और शुभम की सादी दोस्ती धीरे धीरे कर प्रेम में बदल गई। जब दोनों की स्टडी खत्म होकर नौकरी की तलाश शुरू हुई तो उन दोनों को लगा था कि ये तो शिक्षा प्राप्त करने से भी कठिन मरहले से गुजरने वाला मामला है। एक दिन शुभम ने श्रुति से कहा था, सुन मेरी बात ध्यान से सुनना, हम दोनों में से जिसे पहले नौकरी मिलेगी वो दूसरे का इंतजार नहीं करेगा, ठीक है, बल्कि वो नौकरी ले लेगा। हमारे बीच जो संबंध है वो वैसा ही रहेगा, इस बात को लेकर हमारे बीच कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना श्रुति?
1: हाँ वो तो ठीक है, तब हम एक साथ नहीं रह सकते हैं क्या?
0: श्रुति ने कहा। हाँ हाँ क्यों नहीं, मगर कुछ माह तो हमें अलग रहना पड़ेगा ना श्रुति।
1: ठीक है, श्रुति को शुभम की ये बात अच्छी लगती है कि वह किसी भी तरह की स्थिति के आने से पहले उसकी अच्छी बुरी संभावना पर खुलकर बातें कर लेता है, जिससे उसे व्यवहारिक रूप से बरतने में किसी तरह की परेशानी महसूस नहीं होती है। पहले नौकरी श्रुति को मिली, वह बहुत खुश थी, मगर अकेले जाने में उसे पता नहीं क्यों झिझक सी लग रही थी। शुभम को छोड़ने का उसका जरा भी दिल नहीं चाह रहा था। जिस तरह संबंध टूट रहे हैं, वैसी कोई दुर्घटना उसकी जिंदगी का भी हिस्सा यदि बन जाएगी तो वो क्या करेगी? उसे तो सचमुच शुभम से प्यार है, उसके घर वाले भी उसके विवाह को लेकर उस पर जोर डालते रहते हैं बिना ये जाने हुए कि आज विवाह करने का मतलब जिम्मेदारियों का बोझ उठाना है। पहले की तरह शादी केवल माँ बाप की कर्तव्य अदायगी नहीं है, बल्कि बेटे या बेटी के लिए एक चुनौती जैसी है। कई तरह की जरूरतें हैं, गाड़ी, MI, मकान या कमरे का किराया और बहुत कुछ। ये सब जानते हुए भी श्रुति चिंता में डूबी खुद से सवाल करती थी, माना मैंने प्यार को महत्व देने की जगह अरेंज मैरिज पापा और माँ के कहने से कर ली और पति से स्वभाव न मिल पाया तो? कितने ही सवालों, समस्याओं और कठिनाइयों से भरी है आज हम युवाओं की जिंदगी, सोचते सोचते चकरा जाती श्रुति। लोकल ट्रेन पर बैठी श्रुति परेशान थी। अंत में उसने फैसला लिया कि वह जॉब तो ज्वाइन कर लेती है और देखती है कि आगे क्या होता है। इधर श्रुति नए जॉब के लिए मुंबई आती है और कुछ माह बाद शुभम को दुबई में नौकरी मिल जाती है, और इस तरह दोनों एक दूसरे से दूर अच्छे दिनों की उम्मीद में फोन पर बात कर लेते हैं।

दुबई की नौकरी कोई बड़ी बात नहीं थी, मगर दुबई का नाम बड़ा था। शुभम से अपनी लड़की की विवाह करने वाले खुशहाल और दौलतमंद घरानों की लाइन लग गई। छोटे शहरों की मानसिकता विदेश की नौकरी सुनते ही प्रभाव में आ जाती है कि लड़की ऐश करेगी, लंबी चौड़ी तनख्वाह होगी और आरामदायक रहन सहन होगा। शुभम के माँ बाप इस अचानक आई तब्दीली को देखकर चकित थे कि कल तक तो ये लोग जिस शुभम और शुभम के परिवार की तरफ आंख उठाकर देखना पसंद नहीं करते थे, आज सभी चीजों का ऑफर था। बीए पास लड़की, उसके दहेज में मोटर और घर, कोई नई बिजनेस में साझेदारी की बात करता। जब शुभम ये सब श्रुति को हंस हंस कर बताता तो श्रुति की जान निकल जाती। उसको लाख भरोसा हो शुभम पर, मगर शुभम को उसके माँ बाप मजबूर भी तो कर सकते हैं अपनी गरीबी और बलिदान का वास्ता देते हुए, कि इसी दिन के लिए ही तो उसे अपना पेट काट काट कर उसको शिक्षा दिलाई और आधी से ज्यादा पुरखों की जमीन बेच उसकी दिल्ली प्रवास की पढ़ाई का खर्च निकाला। कहीं पर जाकर शुभम भी माता पिता की इस कुर्बानी को लेकर भावुक हो उठेगा और अपनी कस्में देकर पिछला भूलने और प्यार को सदा जिंदा रखने की बात कर उसे हालत की पेचीदगी को समझाएगा, तब वो क्या करेगी। विश्व स्तर पर जो युद्धों के कारण आर्थिक मंदी बढ़ रही है, उस स्थिति में रोजगार मिलना आसान नहीं है। ऐसी स्थिति में माँ ने कई लड़कों की तस्वीरें श्रुति को भेजी थी। उनके कहने के अनुसार उसने नेट पर चेक किया भी, उसे उन लड़कों का परिवार और नौकरी शुभम से अच्छी स्थिति की लगी। जो देखने में भी शुभम से ज्यादा हैंडसम दिख रहे थे, मगर प्यार, प्यार के आगे उसे कुछ भी नहीं भा रहा था। उसने अपने मन की उलझन अपनी दोस्त रेखा को बताई तो वह पहले गंभीरता से उसकी परेशानी सुनती रही, फिर एक गहरी सांस लेकर बोली, सुन सखी, ये प्यार नहीं केवल आकर्षण है, कल ये दम तोड़ देगा। हाँ, अरे इतने वर्ष तुम दोनों साथ में रहे, जो जीना था वह तुमने जी लिया, आगे जादू नहीं यथार्थ होगा। जीवन की ठोस सच्चाइयां हमारा समय ठहरने का नहीं चलने का है, समझी तुम। श्रुति ये सब सुनकर अचकचा गई, बोली, देखा तुम कहना क्या चाह रही हो। अरे छोड़ शुभम को और आगे बढ़।

देख रही है तीनों ऑफर कितने बढ़िया हैं। जो उसे दिल ना मिला और शुभम के लिए मन बेचैन रहा तो एक जॉब से दूसरी जॉब हम छोड़ते पकड़ते हैं, रोज नए रेस्टोरेंट में लंच लेते हैं, फिर फिक्स लाइफ तुमने जी ली एक अच्छे इंसान के साथ इतने साल। तुम्हें क्या पता कि इनमें से जिससे शादी करो वो शुभम से भी बेहतर हो और शुभम को तुमसे बेहतर लड़की मिल जाए, क्या पता। रेखा की बात सुन श्रुति सन्नाटे में आ गई। उसने चकित हो रेखा को देखा और नजरें झुका ली। क्या सोच रही हो, रेखा हंसने लगी। जो शादी के बाद पति से बेहतर कोई मिल गया तो अब तब की तब देखी जाएगी, अगर हम तब तक जिंदा बचे। अजीब बात कर रही हो। अजीब तो ये समय है जिसमें हम जी रहे हैं। हर तरफ आग लग रही है, सड़क धंस रही है, पुल टूट रहे हैं, ग्लेशियर फट रहे हैं, नदियां सूख रही हैं, जंगल कट रहे हैं, तो फिर इंसान कैसे इन आपदाओं के प्रभाव से बचा रहेगा, इंसानी जीजी विशा। वही तो मैं कह रही हूँ, समय के साथ चलो, जो बेहतर लगे उसे अपना लो, छूटे को भूल जाओ, रेखा ने कहा। ये सच कुछ लोगों का हो सकता है मगर सबका नहीं रेखा, मेरा तो कतई नहीं। तो फिर जो जैसा है उस पर सवाल क्यों, रेखा ने कटाक्ष भरे स्वर में कहा और लैपटॉप पर झुक गई। उसकी बातों का असर श्रुति पर यह पड़ा कि उसके जहन के जाले साफ हो गए और वह तय करके अपनी सीट पर से उठी कि जो सामने आएगा उसका इंतजार करना ही अच्छा रहेगा और दूसरों की राय और जिंदगी को देखकर कोई फैसला लेना बेवकूफी होगा। ये सोचकर वो एक गहरी सांस छोड़ती है।

पता नहीं नक्षत्रों का कमाल था या अपने अंदर उमड़ते प्रश्नों का हल ढूंढने का समय था। शुभम पर शादी का जोर बढ़ा तो उसने माँ को मन की बात फोन पर बता ही दी कि मेरी पसंद की एक लड़की है, मैं उसे पिछले 5 वर्ष से जान रहा हूँ, वो हमारे परिवार में रचने और बसने के लायक है माँ। माँ कुछ बोली नहीं, चुप्पी साध गई, मगर फोन काटा नहीं। शुभम ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मैं इतना कमा लूंगा माँ और तब मेरे लिए कार, बंगला, खेत, बाग खरीदना कोई कठिन काम नहीं होगा। अगर तुम चाहती हो कि लड़की तुम्हारी पसंद की बहू बनकर घर आए तो मैं राजी हूँ माँ, लेकिन ये बता देता हूँ कि मैं दहेज में फूटी कौड़ी नहीं लूंगा। हाँ, और सुनो माँ, मैं श्रुति का चित्र तुम्हें भेज रहा हूँ। ठीक है बेटा। माँ की सुस्त सी आवाज जब शुभम को पड़ी तो उसने प्रणाम कर फोन काट दिया और आराम से कुर्सी पर कुछ इस तरह हल्का होकर बैठा जैसे दिल और दिमाग से पहाड़ जैसा बोझ उतर गया हो।

शुभम बोझ से आजाद हो गया था, मगर श्रुति अभी भावना और व्यवहारिक यथार्थ में जहनी तौर पर उलझी हुई थी। शायद इसलिए भी कि जब वो लिविंग में रह रहे हैं तो फिर रजिस्टर्ड मैरिज करने में झिझक कैसी, उसके बाद भी तो साथ फेरे लिए जा सकते हैं जब दोनों के माँ बाप इस विवाह के लिए राजी हो जाएंगे। कम से कम इस टेंशन से तो मुझे निजात मिल जाएगी, खुद से वो लंबे लंबे संवाद करती, परंतु जब शुभम से बात करती तो उसके सारे प्रश्न उसके प्रेम भरे संबोधन से पिघल जाते थे। पिछले 3-4 दिनों से वह हिम्मत जमा कर रही थी कि माँ से बता दे कि उसकी पसंद का लड़का है और वह उसी से विवाह करेगी, वरना जीवन भर कुंवारी रहेगी। शाम को जब माँ का फोन आया कि वह दिवाली की छुट्टियों में आ जाती ताकि लड़के वाले उसे देख लेते और वह भी लड़के से मिल लेती, ये बात सुनकर अचानक श्रुति के मुंह से पहले का सोचा हुआ वाक्य निकल गया। माँ को सदमा सा लगा और गुस्से में उन्होंने बहुत कुछ कड़वा कह दिया, जिसे सुनकर पहले श्रुति चुप रही, मगर जब माँ ने ये कहा, ये शादी नहीं हो सकती और तुम भी फौरन नौकरी छोड़कर वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे दोनों भाइयों को तुम्हें लेने भेज रही हूँ, तब श्रुति ने तेज आवाज में कहा, क्यों माँ, दोनों भाइयों ने प्रेम विवाह किया है तो फिर मुझ पर प्रतिबंध क्यों लगा रही हो, बोलो माँ, शायद तुम भूल चुकी हो कि मुझको कानून ने इजाजत दे रखी है, मेरी उम्र को मत भूलना तुम। माँ ने फोन गुस्से से पटक दिया। श्रुति की सांसें तेजी से चलने लगी और वह बड़बड़ा उठी, बचपन से

0: बचपन से माँ मुझे कभी भाइयों को तो कभी पिता के आतंक से धमकाती रहती, पर अब और नहीं, बस अब और नहीं, अब और कुछ नहीं।
1: उसने तूफान को पार कर लिया था, भावनाओं ने उसे झकझोर कर रख दिया था, क्रोध आंसुओं में ढल गया और ठीक उसी तरह वह सुबक सुबक कर रोने लगी जब माँ उस पर पहरे पिटाती थी।

0: दो दिन तक उसने किसी को फोन नहीं किया। तीसरे दिन अचानक शुभम का मैसेज आया, सरप्राइज, मेरी तरक्की के साथ मेरा प्रमोशन भी हो गया है और मैं फैमिली साथ रख सकता हूँ श्रुति। मैसेज पढ़कर श्रुति खुश हुई और जवाब लिखने ही जा रही थी कि उसके ईमेल और व्हाट्सएप पर हवाई टिकट की डिटेल भी आ गई। पढ़कर चकरा गई, समझ नहीं पाई। तभी फोन की रिंग बजी, स्क्रीन पर शुभम का हंसता हुआ चेहरा उभरा। हाय, तैयार रहो, मैं लेने आ रहा हूँ। यहाँ 3 दिनों की छुट्टी है, तुम स्कूल से छुट्टी ले लो, छुट्टी न मिले तो स्कूल से रिजाइन कर दो। हाँ, हमारा यहाँ फ्लैट बेहद खूबसूरत और आरामदायक है, ठीक है, मैं फिर बात करता हूँ तुमसे। फोन बंद हो गया और श्रुति समझ नहीं पाई कि ये सब सुनकर कैसे रिएक्ट करे। उसने टिकटों की तारीख देखी, शुभम के आने की तारीख कल की थी और उन दोनों की उड़ान की परसों दोपहर की थी। श्रुति के बदन से तनाव अपनी जगह छोड़ रहा था और आराम उसकी मांसपेशियों को थपक रहा था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ इतनी आसानी से हो जाएगा, वो भी अचानक, बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना किसी मुश्किल के। ये सोचते हुए वो मन ही मन बहुत खुश हुई।
1: दो दीवाने शहर में।

शुभम जब फ्लैट में दाखिल हुआ तो उसके चेहरे पर खुशी के भाव थे, आंखों में चमक थी। श्रुति को सीने से लगा हुआ बोला, प्यार और विश्वास में बहुत ताकत होती है श्रुति। हाँ, प्यार और विश्वास में बहुत ताकत होती है ना श्रुति? बाहर बादल घिरे हुए थे, मुंबई की बारिश का मौसम। उठो, चलो उठो, बाहर चलते हैं, शुभम ने कहा। अरे अभी बाहर? अरे अभी तो पैकिंग बाकी है, श्रुति ने कहा। चलो ना, चलो तो श्रुति। दोनों फुहारों में भीगते समंदर के किनारे पहुंचे। जी भर कर नहा लो, दुबई में बारिश नहीं होती है, शुभम ने कहा। और श्रुति के मन पर छाए बादल अचानक बरस पड़े और दोनों हंसने लगे।

आशिरा शर्मा की लिखी कहानी दो दीवाने शहर में, वाचक स्वर था मेरा यानी मंदाकिनी जोशी का, संपादन सहयोग सौरभ घारू का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेकी। और अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: तीन अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहे हैं कौन, एक मशहूर संगीतकार और एक मशहूर लेखक, निर्देशक और अभिनेता।
1: हमें तुम्हारा लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना हो पाएगा।
0: इंतजार कीजिए।
2: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का, 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव है। वो है जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का, 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन? दर दुम दर दुम दर दुम दर दुम दर दुम दर। जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का, 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन?
0: तीन अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहे हैं कौन? एक मशहूर संगीतकार और एक मशहूर लेखक, निर्देशक और अभिनेता।
3: हमें तुम्हारा लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा।
0: इंतजार कीजिए।

0: हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं, एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय 11 बजे हैं। विविध भारती के कार्यक्रम आप सुनेंगे इस अंतराल के बाद।
1: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
2: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
3: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
4: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
3: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
4: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
3: पर रेरा तो शहरों में।
4: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है। अब

0: टिकट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
1: अंतराल के बाद आइए सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम।
2: शहर बदलते रहे, ऐसे 5-7 शहरों में बदल के फिर हम लोग, अब नर्मदापुरम हो गया है, पहले नाम होता था होशंगाबाद
3: जी,
2: तो उसमें एक कस्बा है, तहसील प्लेस है पिपरिया।
3: हाँ।
2: वहां मेरा ज्यादा लॉन्ग टाइम बीता है।
3: अच्छा, पिपरिया यानी पचमढ़ी जाने के रास्ते वाली
2: जी? बिल्कुल, पचमढ़ी का मुख्य द्वार।
3: क्या बात है, तो मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा बुंदेलखंड से ताल्लुक है आपका।
2: हाँ जी बिल्कुल है। क्योंकि बुंदेलखंड में मेरा ननिहाल है।
3: अच्छा।
2: हाँ।
3: कहाँ पर?
2: ये है सतना पन्ना।
3: हाँ, पन्ना तो टाइगर रिजर्व के लिए
2: टाइगर रिजर्व है, जहाँ पर हीरे और पन्ने निकलते हैं।
3: क्या बात है। मुझे ये बताइए कि बचपन से जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो परफॉर्मेंस की दुनिया कहाँ से शुरू होती है?
2: ये शुरू होती है 1987 में, जब हमारे एक ऐसे कलाकार जो गायक भी, एक्टर भी, कॉमेडियन भी, राइटर भी, डायरेक्टर भी, तमाम खूबियां जिनके अंदर हैं,
3: किशोर कुमार जी।
2: तो उस समय वो नहीं रहे थे 1987 में, तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पर लगातार उनकी फिल्में आती थी। और मैं उस समय कुछ 6वीं 7वीं पढ़ता था
3: जी,
2: तो उनको जब मैं देखता था तो मैं सोचता था यार ये कौन है, क्योंकि बचपन में इतना ज्यादा हम जानते
3: पता
2: नहीं
3: होता,
2: बस इतना मालूम था कि कोई बहुत अच्छे कलाकार हैं। और जब मैं उनको देखता, उनकी भाव भंगिमाएं जो एक जगह कभी टिकते नहीं थे, आप स्क्रीन पे उनको देखो तो पूरा बॉडी लैंग्वेज उनका हिलते ही रहता था, कभी एक भांग ऊपर जा रही है, तो मैं सोचता था कि क्या कर रहे, ऐसा मैं भी कुछ करूंगा कि लोग हंसे और खुश हों, लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आए।
3: वाह वाह वाह।
2: तो वहां से मैं प्रेरित हुआ और फिर मैंने एक विधा सीखी। वैसे मैं चाहता था कि मैं जिंदगी में गायक बनूं।
3: अच्छा।
2: लेकिन इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी, घर के हालात ऐसे नहीं थे कि हमको अलग से कोई तालीम दी जाए, सिखाया जाए, कहीं भेजा जाए। तो फिर मैंने सोचा एक ऐसी विधा जिसका कहीं कोई स्कूल नहीं होता, और वो है कॉमेडी।
3: बिल्कुल,
2: कॉमेडियन बनाने का कहीं कोई स्कूल नहीं होता।
3: सही है।
2: मतलब आपको एक्टिंग का स्कूल मिल जाएगा, सिंगिंग का मिल जाएगा, डांसिंग का मिल जाएगा, लेकिन कॉमेडी का स्कूल नहीं मिलता।
3: यस।
2: कॉमेडी खुद सीखी जाती है, ये एक लव्य की तरह सीखी जाती है।
3: बिल्कुल।
2: बहुत सारे द्रोण आपके सामने होते हैं, अलग अलग सीनियर कलाकार, किसी का बोलने का ढंग सीखते हैं हम, किसी से बॉडी लैंग्वेज सीखते हैं, किसी से आवाज का थ्रो सीखते हैं। तो मैंने भी ऐसे फिर ये सीखना शुरू किया। और फिर धीमे धीमे करके मैं मंचों पे आने लगा।
3: क्या बात है।
2: और मैं सबसे पहले मैंने मिमिक्री सीखी, क्योंकि स्टैंड अप कॉमेडी का पहला जो पायदान होता था वो मिमिक्री होता था, किसी की नकल कर लेना।
3: और जिन दिनों की आप बात करें उन दिनों तो स्टैंड अप कॉमेडी जैसा कॉन्सेप्ट नहीं था।
2: नहीं था बिल्कुल,
3: पर मिमिक्री बहुत होती थी। और मध्य प्रदेश में मिमिक्री के राजा कौन हुआ करते थे?
2: अरे नायकर साहब।
3: जबलपुर के नायकर साहब।
2: जी जी जी। तो बस ऐसे बड़े सीनियर कलाकारों को हम मंचों पे सुनते थे, उनको सुनकर सीखते थे कि कैसे बोलना है, और फिर हमने कुछ अपना भी सीखा, अपना कुछ बनाया। जैसे मैंने कुछ अलग तरह की मिमिक्री सीखी। उस समय टेलीविजन पर महाभारत सीरियल आता था।
3: हाँ हाँ।
2: तो उनके कुछ कलाकारों की आवाज की कॉपी करने लगा।
3: यहाँ से शुरुआत हुई, जैसे भीष्म पितामह।
2: भीष्म पितामह करता था मैं। दुर्योधन करता था मैं।
3: अच्छा, कड़क आवाज वाला जो।
2: तो लोगों को बहुत पसंद आता था वो। लोगों को लगता अरे महाभारत हमारे घर में आता और उसका कलाकार सामने खड़ा है। तो बहुत लोगों का प्यार मिला उससे मुझे।
3: कुछ करके बताएं।
2: जैसे मैं महाभारत का एक सीन आपको सुनाता हूँ, जिसमें दुर्योधन कुछ कह रहे हैं।
3: हाँ हाँ।
2: और बीच में फिर मुकेश खन्ना भीष्म पितामह को समझाएंगे, तो आप सुनिएगा।
3: जी जी जी।
4: आप चाहे कुछ भी कहे मामा श्री, लेकिन उस ग्वाला कृष्ण को मैं किसी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा। यदि उसने भरी सभा में कोई उल्टी सीधी बात कही तो उसी वक्त उसे बंदी बना लूंगा, समझे?
3: क्या बात है, बिल्कुल पुनीत इसर वाली आवाज है।
2: अब भीष्मता में समझा रहे
3: वो कड़क आवाज,
2: वो समझा रहे हैं। कुछ कहने से पहले तनिक सोच तो लिया करो वत्स, कुछ सोच तो लिया करो। अरे धृतराष्ट्र, समझाओ अपने इस पुत्र दुर्योधन को। अरे कहने से पहले तनिक सोचता भी नहीं है। अरे इस तरह से तुम कहते रहे वत्स, तो बताओ क्या हमारी बूढ़ी छाती अर्जुन के वाणों को झेल सकेंगी वत्स?
3: क्या बात है।
2: तो इस तरह से
3: वो जमाना याद आ गया जब
2: बचपन
3: कर्फ्यू लग जाता था।
2: जी जी।
3: रविवार को लोग महाभारत दिखा करते थे।
2: जी बिल्कुल बिल्कुल।
3: तो ये स्कूल में आप करने लगे?
2: ये मैं स्कूल में करने लगा था।
3: फिर आगे?
2: फिर आगे मैं धीरे से बढ़ा, तो अपने शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से राजधानी भोपाल, फिर आसपास के और बड़े
3: लोग बुलाने लगे
2: ऑर्केस्ट्रा में, नवरात्रि में,

0: फिर ये सोशल वाले जो क्लब्स होते हैं, जो इस तरह के सोशल वाले प्रोग्राम कराते हैं,
1: हाँ
0: उन्होंने मुझे बुलाना शुरू किया।
1: मतलब आप शुरू से ही बिजी हो गए।
0: जी बिल्कुल, मैं 10वीं क्लास में आते आते प्रोफेशनल आर्टिस्ट बन गया था।
1: घर से डांट पड़ती थी
0: मुझे? हाँ घर से डांट पड़ती थी, लेकिन
1: पढ़ लिख लो।
0: लेकिन वो डांट इसलिए नहीं पड़ती थी ज्यादा कि मैं स्कूल अटेंड करता था बराबर।
1: अच्छा।
0: और शाम को 5 बजे छुट्टी हुई स्कूल की, मैं घर आया, मैंने अपनी ड्रेस चेंज की, सब अपने रंगीन कपड़े पहने प्रोग्राम वाले, और किसी ट्रेन में बैठकर आसपास के किसी शहर में
1: अरे
0: पहुंच जाता था, प्रोग्राम करता था, और रात की किसी ट्रेन से वापस आ जाता था।
1: अरे
0: और सुबह बराबर स्कूल अटेंड करता था।
1: इतना डिसिप्लिन, इतनी मेहनत।
0: तो हमारे टीचर मन में सोचते थे क्या है, बोले ये लड़का कल भी स्कूल आया था, आज भी आया है, और आज इसका अखबार में फोटो छपाई, कल ये वहां प्रोग्राम कर रहा था,
1: ये कैसे हो गया,
0: ये कैसे संभव होता। तो बड़े खुश होते थे इसको देखकर कि चलो कोई एक लड़का है जो अच्छा काम कर रहा है, जिसकी फोटो आती है अखबारों में, तो प्रसन्न होते थे बहुत वो।
1: वाह वाह।
0: और मैं पढ़ने में तेज तो नहीं था, लेकिन एवरेज था, लेकिन ठीक था मैं। हाँ
1: बढ़िया है। तो कॉमेडी का जो दौर नहीं था, मतलब मिमिक्री करनी होती थी और अलग अलग शहरों में जाके आप अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे थे, वहां से आगे के रास्ते किस तरह से खुले?
0: देखिए मैं अपने मध्य प्रदेश में सब जगह प्रोग्राम कर रहा था और ये बहुत अच्छे से चल रहा था। तब तक करते करते अपना हाई स्कूल कंप्लीट करके मैं कॉलेज में भी आ गया था, और कॉलेज में जो यूथ फेस्टिवल होते हैं, युवा उत्सव,
1: बिल्कुल
0: उसमें हम प्ले में भाग लेते थे, कभी कहीं भाषण हो रहा है, कहीं वाद विवाद प्रतियोगिता हो रही है, जो भी हो रहा है उसमें हमको उसमें पार्टिसिपेट करना है, ये सब चलता था। उसमें मैं जीत कर एक शहर से दूसरे शहर, फिर कॉलेजेस के प्रोग्राम होते थे,
1: फिर राज्य स्तरीय,
0: हाँ तो उन सब में मैं जाता था। फिर कॉलेज के फाइनल ईयर के बाद मैं सोचा था आप कहीं नौकरी के लिए अप्लाई करूंगा, तभी मेरे घर एक फोन आया।
1: अच्छा।
0: उस समय टेलीफोन होता था, मोबाइल आया नहीं था, आया होगा तो बड़े शहरों में आया था, हमारे यहाँ पहुंचा नहीं था। एक फोन आया, हम स्टार टीवी से बात कर रहे हैं,
1: अरे बाप,
0: एक कार्यक्रम बन रहा है द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, इसमें उदय दहिया साहब को हम बुलाना चाहते हैं।
1: उन तक आपका नाम पहुंच गया था?
0: हाँ, वो टीम जब मध्य प्रदेश आई तो उन्होंने पता किया, जो मैंने आपको बताया सोशल जो प्रोग्राम कराते हैं, इस तरह की समितियां कमेटियां होती हैं, तो उन्होंने बताया एक उदय दाहिया है,
1: वो अच्छा करते
0: हैं, वो बहुत अच्छा कॉमेडी करते हैं। तो उन्होंने मुझे फोन किया घर पे, मैं इत्तेफाक से घर में नहीं था, मेरी माँ ने, अम्मा जिनको बोलते हैं, उनने फोन उठाया, उन्हें बेटा वो तो भोपाल गए शो करने, तो कल आएंगे। उन्हें ठीक है कल हम बात करेंगे। अगले दिन उनका फोन आया तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा प्रोग्राम बन रहा है आप आइए। तो मैंने कहा ठीक है मैं आ जाऊंगा, लेकिन मेरे प्रोग्राम चल रहा है मेरा नुकसान हो जाएगा, और इस प्रोग्राम में आके मैं करूंगा कि आप तो कॉम्पिटिशन कर रहे हैं, कॉमेडी में कोई कॉम्पिटिशन होता नहीं। तो बोले आप कितने पैसे लेते हैं प्रोग्राम के? मैंने कहा मैं 5,000 रुपए बोलता हूँ, मुझे 3,000-4,000 रुपए मिल जाते हैं।
1: तो मेरा इतने ऑनेस्टली बता दिया।
0: हाँ तो वो बोले कि एक काम करते हैं, हम आपको एक प्रोग्राम का पैसा देते हैं, आपका नुकसान नहीं होने देंगे, आप आइए। तो मैं फिर जबलपुर गया, ऑडिशन हुआ, और तुरंत उनने कहा कि आप मुंबई आ रहे हैं।
1: वाह वाह वाह वाह।
0: और ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था,
1: क्योंकि उस वक्त लाफ्टर चैलेंज इतनी बड़ी चीज थी
0: जी,
1: उसमें जितने लोग शामिल हुए
0: जी,
1: सब जो है वो अलग अलग तरह से आज भी सक्रिय हैं
0: जी, बिल्कुल,
1: और बहुत ज्यादा नाम उन लोगों ने कमाया।
0: सच्ची बात है, पूरी दुनिया में नाम हुआ उससे,
1: बिल्कुल। तो हाँ। जो लाफ्टर चैलेंज का जो पहला सीजन था
0: जी,
1: उसमें आप शामिल थे।
0: साहब ये एक मेरी खुशकिस्मती है कि जैसा मेरा नाम है उदय
1: जी,
0: जिसका मतलब ही होता है आरंभ होना,
1: और आरंभ से आप थे,
0: और मैं पहले सीजन के पहले एपिसोड का पहला कंटेस्टेंट था।
1: मतलब आप ही से शुरू हो रहा है?
0: मुझसे लाफ्टर चैलेंज शुरू हुआ था।
1: अरे गजब। और कौन कौन लोग थे उस सीजन
0: उसमें?
1: एहसान थे,
0: राजू श्रीवास्तव थे, सुनील पाल थे, एहसान कुरेशी थे,
1: हाँ।
0: और जो अभी सीएम साहब हैं पंजाब के, भगवंत मान साहब थे।
1: गजब गजब।
0: तो ये सारी
1: मजेदार कॉमेडी करते थे वो,
0: बहुत मजेदार कॉमेडी होती थी।
1: गजब। उसको तो लोग बहुत देखा करते थे और लोग इंतजार करते थे, कोई एपिसोड चूकता नहीं था।
0: सच्ची बात।
1: लेकिन मुकाबला कितना सख्त था, एक से बढ़ के एक दिग्गज, सबकी अपनी अपनी शैली।
0: हाँ,
1: सुनील पाल की अपनी शैली, एहसान भाई की वो जो खींच कर बोलने की शैली
0: जी,
1: है ना, जो वो कहां के एहसान भाई,
0: वो मध्य प्रदेश के हैं,
1: सिवनी के,
0: सिवनी के हैं।
1: तो वो अपनी शैली लेके आए।
0: जी हाँ।
1: आपकी अपनी शैली।
0: जी बिल्कुल।
1: तो अपनी पहचान बनाने के लिए और इन दिग्गज लोगों से मुकाबला करने के लिए कितना जिगरा चाहिए था?
0: नहीं, हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं, और हम कुछ मुकाबले के लिए या उसके लिए तैयार नहीं थे। हम तो ये था कि हमें जो आता है वो हमको करना है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: अब जो सुनने वाले हैं, जो निर्णय करने वाले हैं, वो देखेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। हम तो सब अपना अपना फन लेकर आए थे, और ना तो

0: हम किसी सामने वाले को देखकर अपना कोई अस्त्र शस्त्र बदल सकते थे
1: जी,
0: क्योंकि था ही उतना,
1: बिल्कुल
0: कोई एक्स्ट्रा कुछ था नहीं कि यार इन्होंने ये सुनाया तो अब मैं ये सुना दूंगा। हमारे पास अपना था, हमको ये सुनाना है।
1: क्या बात है।
0: अब ये अच्छी बात है कि जो सुनने वाले हैं, दर्शक हैं, श्रोता हैं, जज हैं, उनको पसंद आ गया।
1: लेकिन एक मजेदार बात मुझे समझ आ रही है कि ये लाफ्टर चैलेंज सीजन वन एपिसोड वन आप परफॉर्म कर रहे हो, कितना दबाव था और क्या परफॉर्म किया था आपने
0: वहां पर? ऐसा था कि कुछ फिक्स तो था नहीं, उन्होंने कहा कि आप क्या क्या सुनाते हैं सुनाइए। तो हमने अपना सुनाया आधा घंटा, पौना घंटा, एक घंटा।
1: अच्छा।
0: तो उन्होंने उसमें किया कि ये रख लीजिए आप।
1: वाह।
0: और ये आपको एक एपिसोड में चार अलग अलग दौर होंगे, पहला हाँ। दूसरा तीसरा, तो पहले दौर में ये सुनाइए, दूसरे दौर में ये सुनाइए, फाइनल में ये सुनाइए।
1: करेक्ट है।
0: तो पहले दौर में उन्होंने जो था हमारा ही माल पूरा, बस उन्होंने सिलेक्ट किया कि ये सुनाइए, और वो हमने सुनाया और वो पसंद आया लोगों को।
1: क्या था वो?
0: वो उस समय वो बात हो गई 20 वर्ष पुरानी, 2005 में आया था ये। तो पहले एपिसोड में मैंने जो सुनाया था वो कुछ लोगों की फिजिकल बॉडी के ऊपर था वो, कि अलग अलग तरह के लोग होते हैं, दुबले पतले मोटे अलग अलग तरह के लोग, तो उनको किस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या उनको फायदे होते हैं। तो एक बहुत मोटा आदमी जूते की दुकान में गया और जूते वाला उसके सामने जूते रखते जा रहा, उसको क्या पेट इतना बड़ा था कि नीचे पैर दिखते नहीं थे उसको, तो वो ऐसे पैर करता था और बोलता था ये बन नहीं रहे, ये भी ठीक नहीं है, ये नहीं बन रहे। दुकान वाला परेशान, पसीना पोछड़ा, जूते का ढेर लगा हुआ है, बोल रहा कहां से ऐसे लोग आ जाते हैं। अचानक वो बोला यार ये एकदम सही है, ये एकदम फिक्स आ रहा, ये कितने का है? दुकान वाला बोला ध्यान से नीचे देख, वो जूता नहीं है, जूता रखने का डब्बा है जिसमें पैर फंस गया।
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: तो इस तरह का मैंने कुछ सुनाया था कि मैं एक कार्यक्रम से आ रहा था,
1: हाँ।
0: ट्रेन से आ रहा था, मेरी स्टेशन आने के चार स्टेशन पहले एक बहुत मोटी सी बहन जी मेरे पास आ गई और बोली भाई साहब मुझे अगले स्टेशन पे उतार दोगे? तो मैंने कहा क्यों बहन जी, आपसे क्या उतरते नहीं बनता? बोले ये बात नहीं है भाई साहब, दरअसल मैं बहुत मोटी हूं तो मुझे सामने नीचे का दिखता ही नहीं है, तो मैं सीधे उतर नहीं पाती हूं, तो मैं ऐसे घूम के उतरती हूं तो लोग समझते मैं चढ़ रही हूं, धक्का देकर ऊपर कर देते हैं। मैं चार स्टेशन से ट्राई कर रही हूं उतरने का, अभी तक नहीं उतर पाई।
1: कहां से सोचते हैं आप?
0: तो इस तरह का कुछ मैंने सुनाया था वहां पर।
1: अच्छा। लेकिन लगातार जो मामला आगे बढ़ता चला गया तो जाहिर है कि मुकाबला भी सख्त हुआ और जो अपने कमान के तीर है वो तो खर्च होते जा रहे थे।
0: हाँ जी, हाँ जी।
1: तो फिर कैसे सस्टेन किया?
0: देखिए एक फसल कटती है तो दूसरी
1: तो आ जाती है।
0: तो वही चल रहा था कि जो पुराना था वो भेज दिया, अब कुछ नया बनाइए।
1: हाँ।
0: और जो नया बनाते हैं, नया क्रिएशन करते हैं, वही मार्केट में चल पाते हैं।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: एक निश्चित मात्रा में कोई लेकर अगर चल रहा है तो वो तो एक दिन खर्च हो जाएगा, फिर वो आदमी क्या करेगा।
1: बिल्कुल।
0: तो हम हमेशा कुछ ना कुछ नया बनाते हैं।
1: देखिए इतने साल हो गए, कितना आपने गिना? 20 साल,
0: 20 वर्ष हो गए।
1: 20 वर्ष में तो कितनी फसल उगा देनी पड़ी होगी?
0: बहुत सारी। अब आपने याद दिलाया तो मैं याद कर रहा हूँ 20 साल पहले क्या सुनाया था। ये हम स्टेज पर सुनाते ही नहीं है आजकल, कुछ और ही सुनाते हैं, कुछ और चलते रहते हैं,
1: क्योंकि सब बदल गया है,
0: सब जमाना बदल रहा है पूरा।
1: उस वक्त जो कंटेस्टेंट थे उनके साथ किस तरह के रिश्ते थे, क्योंकि मुकाबला भी तो हो रहा था?
0: जी बिल्कुल, कलाकारों का आपस में कोई मुकाबला नहीं था, सब आपस में एंजॉय करते थे।
1: तो बैक स्टेज क्या चलता रहता था? इतने सारे कॉमेडियन एक साथ अलग अलग इलाकों के जुड़ रहे हैं,
0: बहुत मजे करते थे। मतलब जो वहां नहीं होता था,
1: हाँ,
0: उसकी बातें चलती थी।
1: अच्छा।
0: और उसको लेकर कॉमेडी की जाती थी, और चूंकि मिमिक्री आर्टिस्ट थे तो साथ वालों की, कलाकारों की मिमिक्री की जाती थी।
1: हाँ।
0: तो बहुत मजेदार होता था।
1: एक दूसरे की भी करते थे?
0: एक दूसरे की
1: जैसे
0: भी करते थे। तो बुरा मानेंगे अगर सुनेंगे तो, हमारे
1: मानेंगे।
0: आप नायकर साहब को सुनते हैं?
1: अरे नायकर साहब हमारे शहर के हैं।
0: तो वो जब बात करते थे बोलते थे अरे दहिया ये देखो भैया हमारा तो ऐसा है कि हम जो है तो कभी ये भीड़ भाड़ के चक्कर में पड़ते नहीं है, हम अपना जबलपुर में रहते हैं, वहीं से प्रोग्राम करते हैं, बम्बई आते हैं, अपना प्रोग्राम किया और भैया चले गए जबलपुर, ये भीड़ भाड़ का चक्कर अपने को नहीं जमता।
1: बिल्कुल यही स्टाइल है उनकी, और वो जो चेहरे के निष्प्रिय भाव।
0: जी जी। तो ऐसे हम लोग एक दूसरे का भी करते थे।
1: अरे वाह क्या बात है। एक कॉमेडियन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है पैनी नजर रखना और दुनिया की धड़कनों को पहचानते रहना। इन दिनों आप कौन कौन से आइटम्स कर रहे हैं और उनमें से कुछ हमारे लिए पेश कीजिए।
0: जरूर, इस समय मैंने जो अपना एक कार्यक्रम बनाया है जो खास तौर से बहुत पसंद भी किया जा रहा है।
1: हाँ।
0: मैं स्कूल में जो

0: अच्छे हैं और जो परीक्षा को लेकर उनके मन में एक डर होता है और कम परसेंट ना जाएं, बहुत दबाव होता है बच्चों के
1: बहुत ज्यादा
0: और कई बार अनहोनी घटनाएं भी हो जाती हैं, तो उनको लेकर मैंने एक प्रोग्राम बनाया है। वो मुझे उसमें स्कूल वाले और कॉलेज वाले अपने स्कूलों में बुलाते हैं और मैं अपनी बातों से बच्चों को हंसाते हुए हल्का फुल्का मनोरंजन करते हुए उनको उस फियर से बाहर करता हूँ।
1: अरे गजब।
0: और उनको ये समझाता हूँ कि जिंदगी में पढ़ाई तो जरूरी है लेकिन सबसे जरूरी कोई अगर चीज है तो वो है आपकी जिंदगी।
1: वाह वाह वाह।
0: आपका जो जीवन है उससे बड़ा कुछ भी नहीं है।
1: कितनी प्यारी बात है।
0: तो ये कॉन्सेप्ट लेकर मैं चल रहा हूं और इसको लेकर मैं बच्चों के बीच में कॉमेडी भी करता हूं, उनके स्कूल की बातें करता हूं, फिर अपने स्कूल की बातें उनको बताता हूं, हमारे पेरेंट्स क्या करते थे, हमारे टीचर क्या करते थे, आज के पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, आपके टीचर आपको क्या दे रहे हैं और आपको क्या सुविधाएं मिल रही हैं, और ये सब बताते हुए मैं उनको बताता हूं तो वो बच्चों को बड़ा मोटिवेट होते हैं। और मैं समझता हूं कि अगर मेरी बातें सुनकर बच्चे थोड़ा भी सीख जाएं या एक दो बच्चे भी सुधर जाएं, वो ना करें जो वो कर लेते हैं, तो मैं समझूंगा कि मैं अपने मिशन में सफल हो गया हूं।
1: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया बात है ये। लाफ्टर चैलेंज में शामिल होने के बाद जाहिर है कि अपना शहर छूट गया
0: जी,
1: है ना, और आप मुंबई के हो गए
0: जी।
1: जिंदगी कितनी बदल गई?
0: जिंदगी बदली तो है लेकिन बदलाव ही प्रकृति का नियम है, जो बदलता है वही सर्वाइव करता है, आगे जाता है। थमा हुआ पानी तो एक दिन दुर्गंध मारने लगता, जो बहता है वो साफ निर्मल होता जाता है। तो हम लोग बढ़ रहे हैं तो धीरे धीरे करके हमारे अंदर भी कुछ बुराइयां रही होंगी, वो पीछे छूटती जा रही हैं और अच्छा साफ होके उजले होते आगे बढ़ते जा रहे हैं।
1: क्या बात है। एक के बाद एक लगातार आपने बहुत सारे टेलीविजन पर काम किए और उसके जरिए आपकी लोकप्रियता भी लगातार बढ़ती चली गई। सबसे ज्यादा एंजॉय किस प्रोग्राम में किया आपने?
0: देखिए, काम तो बहुत सारा किया लेकिन जो शुरुआत कहते हैं ना, जब शुरू होता है वो आनंद एक अलग ही होता है। वो जो लाफ्टर चैलेंज किया था हम लोग, उसके बाद तो फिर क्या, वो पहली बार था, पहली बार हवाई जहाज में बैठना, पहली बार फाइव स्टार होटल में बैठना, पहली बार कैमरे के सामने किसी बड़े मंच पर सामने सेलिब्रिटी बैठे हुए हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो वो जो अनुभव था वो अद्भुत था। उसके बाद तो फिर वो एक आदत में आ गया कि भाई अब कोई और दूसरा सेलिब्रिटी आएगा, अब कोई दूसरा मंच होगा। लेकिन जो पहला मंच था उसका अपना एक अलग मजा था।
1: बिल्कुल बिल्कुल। अब जो आपके पेरेंट्स हैं उनकी किस तरह की रिएक्शंस होती हैं आपके करियर को लेके? और क्योंकि जाहिर है कि जब आप अपने मध्य प्रदेश में परफॉर्म कर रहे थे तो उनकी एक चिंता आपके करियर को लेकर रही
0: जी। पहले तो ऐसा था कि पहले उनको स्टार्टिंग में डर लगता था कि क्या कर रहा है, हमारे पूरे खानदान में आसपास दूर दूर तक कोई कलाकार नहीं,
1: परफॉर्मर नहीं था,
0: और अगर वहां छोटी जगह में जो कलाकार होते भी हैं तो पार्ट टाइम में कलाकारी करते हैं, बाकी या तो कहीं नौकरी कर रहे होते हैं या कोई दुकानदारी कर रहे होते हैं। क्योंकि कलाकारी करके कोई अपना घर चला लेगा, जीवन चला लेगा, ये वहां कोई सोच भी नहीं सकता। तो यही कहते थे कि बेटा ये क्या चल रहा है तुम्हारा। तो हम बोलते थे कि अभी स्कूल चल रहा है, पढ़ रहे हैं, आगे चल के नौकरी करेंगे, काम करेंगे, ये शौक है हमारा। लेकिन जब उससे पैसे मिलने लगे, अखबारों में फोटो छपने लगी और पैसे आने लगे, तो उनको लगा कि कुछ तो अच्छा कर रहा है।
1: जब टेलीविजन पर आपको देखा मम्मी पापा ने
0: जी,
1: तो वो कैसा मोमेंट था?
0: वो तो अद्भुत था। वो बड़ी मजेदार घटना है। मेरे पिताजी तृतीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी थे, बिजली विभाग में लाइनमैन की पोस्ट पर थे वो
1: जी जी।
0: तो बड़े अधिकारी ऊपर होते हैं साहब, बड़े बड़े, और काम बताते हैं, मिस्टर दाहिया यहाँ, मिस्टर दाहिया वहां जाओ, मिस्टर दाहिया। बाबूजी बोले, एक दिन मेरे कान में आवाज आई, दाहिया साहब। तो बोले, यार साहब मुझे दाहिया साहब क्यों बोल रहे हैं? बोले, जी सर। दाहिया साहब, ये उदय दाहिया कौन है? तो बोले, साहब मेरा लड़का है दूसरे नंबर का। अरे बोले, उनको कभी आते हैं यहाँ? बोले हाँ आते हैं। बोले, आए तो एक बार घर भेज देना, हमारे बच्चे मिलना चाहते हैं।
1: अरे गजब गजब।
0: तो वो मूवमेंट इतना अच्छा था कि पिताजी ने बताया, बोले बेटा तुम्हारे कारण आज मेरे साहब ने मुझे साहब कहा।
1: कितनी प्यारी बात है, मतलब उन्हें कितना अच्छा लगा होगा।
0: बहुत अच्छा लगा
1: कि बेटे ने कोई तो उपलब्धि हासिल की है।
0: जी जी।
1: अब तो ये ट्रैवल करना, परफॉर्म करना एक रूटीन बन गया है। लेकिन अपने काम में नवीनता बनाए रखने के लिए क्या करते हैं आप?
0: मैं देखो आपको बताऊं, मैं एक तो पढ़ने का बड़ा शौकीन हूं।
1: हाँ हाँ।
0: और मैं चूंकि एक हास्य अभिनेता हूं, तो मैं व्यंग बहुत पढ़ता हूँ। मैंने परसाई जी को खूब पढ़ा हुआ है।
1: क्या बात है।
0: उनका पूरा जितना भी साहित्य है छह खंड में, वो मेरे पास है।
1: हाँ।
0: शरद जोशी जी हैं, जितने भी बड़े बड़े व्यंगकार हैं उनकी किताबें मेरे

0: पास हैं, उनको सबको मैं पढ़ता हूं। और एक बड़ी अच्छी चीज ईश्वर ने मुझे दी है कि मैं जो पढ़ता हूं या जो देखता हूं वो मुझे याद हो जाता है, वो बरसों बरस तक याद रहता है।
1: वाह वाह वाह।
0: तो मैं जो भी पढ़ता हूं वो याद रहता है, और कभी कभी मौका आने पर मैं उनको मंच पे सुना भी देता हूं,
1: बहुत
0: जैसा मौका आ जाए।
1: क्या बात है।
0: तो वो बाद में नाम भी बोलता हूं उनका कि इनकी रचना है ये।
1: हाँ हाँ।
0: क्योंकि वो उनका अधिकार है। जैसे मैं आपको एक छोटी सी रचना सुनाता हूँ,
1: जरूर, जरूर।
0: परसाई जी की, मैं उनकी रचना है घंटों सुना सकता हूँ, इतनी याद है मुझे।
1: वाह वाह।
0: एक छोटी सी रचना सुनाता हूँ।
1: जरूर।
0: लोग कुत्ते पालने के बड़े शौकीन होते हैं, और आजकल बड़ा मीडिया में छाया भी है, हमारे यहाँ से कोर्ट से भी निर्देश होते हैं, डॉग के ऊपर बड़े केसेस होते रहते हैं। लोग कुत्ते पालते हैं, अलग अलग तरह के कुत्ते पालते, क्या शौकीन लोग होते हैं। एक आदमी अपने कुत्ते को लेकर यहां से निकला, दूसरा आदमी कॉलोनी के उस तरफ से निकला, ये दोनों आमने सामने से निकल रहे थे, क्रॉस हो रहे थे, अचानक इस आदमी के कुत्ते ने उस आदमी के कुत्ते को भौंक दिया।
1: याद आ गई मुझे ये रचना।
0: तो वो साहब बोले, बताओ कैसा कुत्ता है? मैनर्स लेस कुत्ता है। मैनर्स ही नहीं है, बताओ भौंक रहा है, भौंका जाता है क्या? तो ये साहब बोले, मैनर्स लेस किसको बोला है? मेरा कुत्ता बहुत अच्छी नस्ल का है, एक नंबर का कुत्ता है, और ये जो तुम बोल रहे हो ना नस्ली कुत्ता, तुम्हारा होगा ऐसा रोड छाप। हमारा नस्ली कुत्ता बोले, रोड छाप हमारा नहीं है, रोड छाप आपका कुत्ता है। अगर हमारा कुत्ता रोड छाप होता तो भौंकता, आपका कुत्ता भौंका है, आपका कुत्ता रोड छाप है। बोले, मैं आपको जानता हूं बहुत अच्छे से, आपका कुत्ता भी रोड छाप है और आप भी रोड छाप हो, पिछले साल ऑफिस में रिश्वत लेते पकड़े गए थे। हाँ, तो बोले आपको भी मैं जानता हूं, उसके एक साल पहले आप भी थाने गए थे। किसी ने पूछा क्या हो गया, बोले कुछ नहीं, कुत्तों की लड़ाई हो रही
1: है। क्या बात है। परसाई जी की जो निगाह है वो बहुत तेज, और वो जो समाज पर जो चिकोटी काटते हैं
0: जी,
1: बहुत तेज होती है
0: जी,
1: बहुत तीखी होती है
0: जी।
1: तो देखिए कितने सुंदर तरीके से आपने पेश किया। इतनी सारी बातें हो रही हैं, अब हम चाहते हैं कि थोड़ा परफॉर्म करते हैं आप हमारे लिए, लोग इंतजार कर रहे होंगे।
0: जी जरूर जरूर। मैं आपको अपनी एक रचना सुनाता हूँ
1: जी,
0: जिसको सुनाकर स्टार टीवी पे मेरा चयन हुआ था।
1: अच्छा।
0: इसको सुनने के बाद उस टीम ने कहा था कि एक ऐसी कॉमेडी है जिसे बोलकर सुनाना बहुत कठिन है, इसको पिक्चराइज तो किया जा सकता है लेकिन कोई बोल के बताए और वो पिक्चर सामने बन जाए, ऐसा हम पहली बार देख रहे हैं।
1: ओके।
0: तो ये कहानी है कि भगवान ने इंसान को दिमाग दिया है, तो वो इसलिए दिया है ताकि वो किसी काम को करे तो वो काम को अच्छे से कर ले, मुसीबत में ना फंसे, और थोड़ा जल्दी कर ले दिमाग लगा के। लेकिन इंसान की आदत है कि उसके पास दिमाग है तो ज्यादा चलाता है उसको, और जब ज्यादा दिमाग चलाता है तो किस मुसीबत में फंसता है वो। तो एक आदमी को डॉक्टर के पास लाया गया, डॉक्टर ने देखा उस आदमी का सर फूटा है, दांत टूटे हैं, पसलियां टूटी हैं, हाथ टूटे, कमर टूटी, पैर भी टूटे हैं। तो डॉक्टर ने पूछा, यार एक चीज बताओ, आदमी का एक्सीडेंट होता है तो वो एक दो जगह से टूटता है, तुम ये ऊपर से नीचे तक कैसे टूट गए? तो उसने क्या बताया, बोले डॉक्टर साहब ये सब होशियारी के चक्कर में हुआ है। बोले कैसे? बोले डॉक्टर साहब क्या हुआ कि एक 10 मंजिल ऊंची बिल्डिंग में सबसे ऊपर काम चल रहा था, शाम के टाइम ठेकेदार आया और बोला ये जितनी ईंट रखी हैं ये पूरी ले जाकर नीचे रख के आओ, उसके बाद तुम्हारी छुट्टी। तो मैंने मन में सोचा कि अगर एक एक दो दो करके ये नीचे ले जाऊंगा ईंटों को तो मेरा तो सवेरा यही हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब मैं होशियार आदमी, मैंने दिमाग लगाया, वहां एक ऐसी गर्री लगी थी ऊपर, उस पे मैं ऐसे सामान खींच खींच के ऊपर लाते थे हम, तो मैंने एक अच्छी लंबी रस्सी उठाई और वो घिर्री में यूं फंसाया तो उसके दोनों छोर चले गए नीचे। अब डॉक्टर साहब मैं नीचे उतर के आया, मैंने उसके एक छोर पे खाली ड्रम बांध दिया, खाली ड्रम 15 किलो का और मेरा वजन 50 किलो का, और मैंने दूसरे छोर को खींच खींच के ड्रम पहुंचा दिया ऊपर। अब दूसरे छोर को मैंने खंबे से बांध दिया, अब मैं ऊपर चढ़ के आया डॉक्टर साहब, और मैंने सारी ईंट उठा के वो ड्रम में डाल दी। अब ड्रम हो गया 400 किलो का और मेरा वजन तो 50, मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब मैं नीचे उतर के आया डॉक्टर साहब, और मैंने मन में सोचा कि खंबे से रस्सी खोल के और धीरे धीरे छोड़ता जाऊंगा तो ड्रम नीचे आता जाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब मैं ये भूल गया कि ड्रम 400 किलो का और मैं 50 किलो का। तो जैसे ही मैंने खंबे से रस्सी खोली डॉक्टर साहब, सट से मेरे दोनों पैर जमीन से उठे, मैं सरसराता ऊपर जा रहा, ड्रम सरसराता नीचे आ रहा, सरसराते चले जा रहे, सरसराते चले आ रहे, और जैसे ही मैं 5वीं मंजिल पे पहुंचा तो ड्रम आके मेरी खोपड़ी में लगा, खोपड़ी फूट गई। मैंने कहा रस्सी नहीं छोड़,

0: छोड़ना अपन बहुत होशियार आदमी पांचवी मंजिल पे आ गए, यहां से अगर रस्सी छोड़ेंगे तो खोपड़ी फूट चुकी, नीचे गिरेंगे हाथ पैर सब टूट जाएंगे। तो मैं रस्सी जोर से पकड़ा रहा डॉक्टर साहब, अब मैं सरसराता ऊपर जाऊं, ड्रम सरसराता नीचे जाए, सरसराते चले जा रहे, सरसराते चले आ रहे, और जैसे ही मैं ऊपर पहुंचा तो मेरे दोनों हाथ वो गर्री में चले गए, तो दोनों हाथ टूट गए।
1: लो भैया,
0: मैंने कहा खोपड़ी पहले ही फूट चुकी, हाथ इसमें टूट गए, अगर यहां से रस्सी छोड़ दी तो नीचे गिरूंगा तो साफ ही हो जाऊंगा। तो मैं जोर से रस्सी पकड़ा रहा डॉक्टर साहब, अब हुआ क्या कि जैसे ही ड्रम जमीन पर गिरा तो वो वजन के कारण फट गया, और जैसे ही फटा तो उसी ईंट गिर के हो गई खाली, तो वो हो गया 15 किलो का और मैं 50 किलो। अब डॉक्टर साहब मैं ऊपर से सरसराता नीचे आऊं, ड्रम सरसराता ऊपर जाए, और सरसराते चले जा रहे, सरसराते चले आ रहे, और जैसे ही मैं पांचवी मंजिल पे पहुंचा तो खाली ड्रम आके मेरे पैर में लगा तो दोनों पैर टूट गए। मैंने कहा रस्सी नहीं छोड़ना, नहीं तो अपने हाथ पैर सब टूट गए, यहां से नीचे गिरे तो साफ ही हो जाएंगे। तो मैं जोर से रस्सी पकड़ा रहा डॉक्टर साहब, अब मैं सरसराता नीचे जाऊं, ड्रम सरसराता ऊपर जाए, और मैं जैसे ही नीचे पहुंचा तो वो ईंट के ढेर में गिरा। तो मेरी कमर टूट गई डॉक्टर साहब, और जैसे ही कमर टूटी तो मुझे चक्कर आ गया, और जैसे ही चक्कर आया तो मेरे हाथ से रस्सी छूट गई, और जैसे ही रस्सी छूटी तो 15 किलो का ड्रम 10वीं मंजिल से सरसराते आया और आकर मेरे ऊपर गिरा, पसलियां टूट गई, दांत टूट गए। अपन बहुत होशियार आदमी।
1: क्या बात है, ये तो विडंबनाओं का जो आपने दृश्य खींचा है वो बहुत ही कमाल है।
0: जी जी,
1: तो इस तरह से आप जो है कहानियां सुनाते हैं, अपने जीवन की सबसे यादगार घटना, सबसे यादगार शो हमें बताएं।
0: शो तो यादगार बहुत सारे हुए हैं, कई जगह गए हैं, अलग अलग तरह के मंच मिलते हैं, कभी कोई आध्यात्म का मंच होता है, कभी कोई राजनीतिक मंच होता है, कभी कोई फिल्मी सितारों का मंच होता है। तो हम जहां जाते हैं लोग हमसे अपेक्षा करते हैं कि वहां से रिलेटेड कोई बात करें। तो एक बार मैं प्रोग्राम करने गया था ब्रह्म कुमारी माउंट आबू, तो दादी ने मुझे बुलवाया और कहा, उस समय तक कुछ वैसे कॉमेडियन आ गए थे जो आजकल बहुत छाए हुए हैं, जो थोड़े से बिलो द बेल्ट बात करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो उन्होंने मुझे कहा, बेटा ये आध्यात्म का मंच है और आप लोग कॉमेडी वाले हैं, तो थोड़ा सा मंच की गरिमा बनाए रखिए। तो मैंने कहा जी दादी। अगले दिन जब मैं मंच पे आया तो मैंने प्रोग्राम किया ही नहीं, मैंने पहले एक छोटा सा प्रवचन सुनाया,
1: अरे गजब,
0: 1-1.5 मिनट की बात थी। वो इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने कहा कि अब इस लड़के को जो करता है करने देना, ये बहुत अच्छा करने वाला है।
1: वाह वाह वाह।
0: वो चूंकि शिव बाबा को मानते हैं, तो मैंने जाके शुरू ही ऐसे किया कि शिव बाबा ने ही सब कुछ बनाया है, जितने भी रस हैं, श्रृंगार रस, हास्य रस, रौद्र रस, सारे रस बाबा ने ही बनाए हैं। और जब जब शिव बाबा ने कोई रस बनाया तो उसके साथ एक कैरेक्टर बनाया। जब श्रृंगार रस बनाया तो रति और कामदेव को बनाया, जब वो हमारे हृदय में आघात करते हैं तो प्रेम जागता है। ऐसे अलग अलग रस बनते गए, एक एक कैरेक्टर आते गए। फिर उन्होंने हास्य रस बनाया, तो हास्य रस के साथ उन्होंने भगवान श्री गणेश की रचना की। उदाहरण के तौर पर हम जब आरती गाते हैं तो गणेश जी की आरती में एक लाइन आती है, पग खंबासा उदर पुष्ट है, देख चंद्रमा हास्य करे, दे श्राप श्री चंद्रदेव को कलाहीन तत्काल करे।
1: वाह।
0: जब चंद्रदेव ने पहली बार गणपति जी को देखा तो उनका बड़ा सा पेट, खंबे जैसे बड़े बड़े कान, तो उनको उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, थोड़ा सा हंस दिए, लेकिन अगली लाइन में कहा है दे श्राप श्री चंद्रदेव को कलाहीन तत्काल करे। गणेश जी को गुस्सा आ गया कि मुझे देख के कोई हंसेगा, मैं तुझे श्राप देता हूं, सारी कलाओं से विमुक्त करता हूं। तब ये बात आई कि देवता हास्य के लिए नहीं होते, देवता पूजनीय होते हैं।
1: वाह वाह।
0: उस दिन के बाद गणेश जी को देखकर कोई नहीं हंसा, वो प्रथम पूज्य बन गए। लेकिन भगवान शंकर जी ने ये रस तो बना ही दिया था, तो इसको बिखेरने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए था। तब भगवान श्री गणेश ने हम जैसे गणों की उत्पत्ति की और अब हमारी रचना करके हमको आदेश दिया कि जाओ इस संसार में मेरे बनाए हुए हास्य रस को बिखेर दो।
1: वाह।
0: तो उनके आदेश से मैं मंच पे आपके सामने खड़ा हूं और अब मैं यहां से उनके हाथ से रस को बिखेरूंगा।
1: क्या बात है।
0: तो ये बात जब मैंने वहां कही तो बड़े खुश हो गए वो दादी माँ, और बोली ये लड़का जो है ये जो कॉमेडी सुनाता है इसको सुनाने देना।
1: वाह वाह वाह वाह। मतलब प्रॉपर मंच की गरिमा का
0: जी
1: आपने पालन किया।
0: जी बिल्कुल।
1: उदय जी, इतनी सुंदर बात आपने कही कि कॉमेडी के मंच पर गरिमा कायम रखनी कितनी जरूरी है। ब्रह्म कुमारी जब आप गए और वहां परफॉर्म किया, आज जो कॉमेडी मंचों की हालत है और दोनों तरह की कॉमेडी हो रही है, एक वो जो बहुत शालीन है और एक वो जिसमें शालीनता के तत्व

0: कम है, तो क्या राय है आपकी?
1: देखिए, हर दौर में एक दर्शक वर्ग रहा है। अच्छी फिल्में, अच्छी कहानियां, अच्छे सीरियल पहले भी थे, बुरी कहानियां, बुरे सीरियल, बुरे दृश्य एडल्ट फिल्में पहले भी थी। सब जगह एक दर्शक वर्ग होता है। इनका भी एक दर्शक वर्ग है, वो इनको सुन रहा है, देख रहा है, लेकिन ये दौर ज्यादा लंबा कभी चलता नहीं है। एक जमाना था जब बड़ी खराब सी किताबें पढ़ने की रेलवे स्टेशनों के आसपास खूब बिकती थी, आज वो कहीं दिखाई नहीं देती है। ये इस तरह की जो चीजें होती हैं, ये कुछ समय के लिए होती हैं, इनकी उम्र लंबी नहीं होती है। ये लोगों के लिए कौतूहल का विषय तो होती है थोड़ी देर के लिए, लेकिन ये जहन से बाहर भी बहुत जल्दी होती है। लेकिन जो अच्छा साहित्य, अच्छी फिल्में, अच्छा सामाजिक चीजें होती हैं, इनकी उम्र बहुत लंबी होती है, चलती रहती है। अब नायकर साहब को देखिए ना, हमारे मध्य प्रदेश के जो हैं, वो पिछले 60-65 सालों से मंचों पे हैं और आज भी हैं वो।
0: बिल्कुल,
1: आज वो 80 प्लस की एज में हैं
0: जी,
1: और अभी भी वो मंचों पर दो दो ढाई ढाई घंटे, तीन तीन घंटे परफॉर्म कर लेते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और जो आज के नए कॉमेडियन जिस तरह से कर रहे हैं, पहली चीज तो मैं उनको कॉमेडियन नहीं मानता हूं। और उनका एक दर्शक वर्ग है, वो कभी किसी के घर के शादी विवाह के कार्यक्रम में, किसी सामाजिक संस्था में जहां बहुत भीड़ हो, वो वहां परफॉर्म नहीं करवाते। वो ऐसे 25-50-20 लोग बैठ गए सामने और उनको किस्सा गोई जैसा सुनाते हैं, तो वो अलग तरह का है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। आपकी जो पूरी यात्रा है उसमें एक पक्ष जो है बहुत बड़ा, वो अभिनय की दुनिया का है
1: जी।
0: ये कहां से शुरुआत होती है और इसमें कितना एंजॉय किया है आपने अभिनय की अपनी यात्रा में?
1: इसमें मैंने बहुत एंजॉय किया है, और अभिनय करना तो मैं चाहता था शुरू से, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए ना तो सुविधाएं थी, ना साधन थे, ना तो घर से इतने संपन्न थे कि घर से पैसे लेकर आ जाएं, ना मुंबई शहर में कोई रिश्तेदार था जिसकी सहारा हो कि इनके पास चले जाएं। तो हमारे लिए सपना ही था, लेकिन कहते हैं कि सपना अगर अच्छे से देखो तो वो भी पूरा हो जाता है। और जो एक 15-16 साल की उम्र का सपना होता है ना, वो पूरा जरूर होता है।
0: क्या बात है।
1: वो जो उम्र होती है 10वीं 11वीं जब पढ़ रहे होते हैं, उस समय सपने में ज्यादातर हमें अपने क्लास की कोई खूबसूरत लड़की दिखाई देती है। वो उम्र ऐसी होती है, ज्यादातर लड़कों को यही होता है, वो फिलॉसफी है, उम्र ऐसी होती है। मुझे उस समय सपने में दिखाई देता था कि एक मंच है और सामने सेलिब्रिटीज बैठे हुए हैं, मैं मुंबई में खड़ा हूं और मैं प्रोग्राम कर रहा हूं।
0: वाह वाह वाह।
1: ये सपना मैं 15-16 साल की उम्र में देखता था
0: और वो पूरा हुआ।
1: इसलिए वो पूरा हुआ कि उस उम्र में जो सपना देखा जाता है वो पूरा होता है। मेरे साथ के लड़कों ने अपनी गर्लफ्रेंड का सपना देखा तो उसके साथ शादी करके अपने शहर में रह रहे हैं, उनका सपना ही पूरा हुआ है। मेरा अपना पूरा हुआ है।
0: जी जी
1: जी। सबका अपना अपना प्यार था, मेरा प्यार मंच था तो मुझे मंच मिल गया।
0: बिल्कुल। और बाद में एक्टिंग की दुनिया में चले आए और आपकी अपनी एक अलग पहचान एक्टिंग को लेकर बनी।
1: जी, मैंने कुछ सीरियल किए, मैंने लापतागंज किया है।
0: लापतागंज तो जैसे आपके साथ जुड़ गया है।
1: जी जी, लापतागंज किया मैंने, उसमें एक कॉमन मैन का कैरेक्टर किया, जिसमें एक ही एपिसोड में मैंने 5 तरह के कैरेक्टर किए, अलग अलग तरह के। फिर मैंने दूरदर्शन पे एक राशि विला सीरियल आता है वो किया, उसमें मैं लीड कैरेक्टर में था, उसमें उपासना सिंह हमारी बहन बनी थी, राजू खैर हमारे पिताजी बने थे, हेमंत पांडे हमारे बड़े भाई बने थे। ऐसे अलग अलग और भी बहुत से सीरियल किए, कुछ फिल्में की मैंने। एक मैंने ऐसी फिल्म की है जिसका नाम है कड़के कमाल के।
0: वाह वाह वाह।
1: और ये फिल्म है, इसमें नेपाल और हिंदुस्तान दोनों जगह की फिल्मों के कलाकारों ने मिलकर एक फिल्म की है।
0: अच्छा अच्छा।
1: तो हीरो हीरोइन नेपाल के है, आर्यन अधिकारी और नीता धुमाना, ये वहां के बड़े स्टार है नेपाल के।
0: जी जी।
1: और कुछ एक्टर वहां के थे और कुछ हमारे यहाँ के, तो उसमें राजपाल यादव है, दयाशंकर पांडे है, मैं हूँ, मुश्ताक खान है, ऐसे अच्छे कलाकार हैं उसमें काफी। तो वो फिल्म मैंने की है, कुछ और भी फिल्में की हैं मैंने। एक फिल्म मैंने की है लव की अरेंज मैरिज, ये विनोद भानुशाली प्रोडक्शन की फिल्म है
0: जी।
1: और इसमें मैं राजपाल यादव और अन्नू कपूर जी का दोस्त बना हूँ।
0: वाह वाह वाह।
1: तो ऐसे कुछ फिल्में की हैं मैंने।
0: कितना डिफरेंट है मंच पर परफॉर्म करना और एक्टिंग करना?
1: बहुत फर्क है, बहुत ही फर्क है। क्योंकि सबसे बड़ा फर्क तो ये है कि मंच पे हम करते हैं एकल अभिनय, उसमें हमें किसी का आपको क्लू नहीं चाहिए होता है, खुद ही कर रहे होते हैं। लेकिन जब एक्टिंग कर रहे होते हैं तो सामने वाले का डायलॉग कब खत्म हो रहा है, उसका डायलॉग किस रेंज पे था, उसने किस टोन में बोला है, वो किस सुर में था, उसके सुर से अपने सुर को मिलाना होता है। वो अगर गुस्से में है, किस भाव में है, तो हमको भी उसी हिसाब से बात करना है।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: तो अभिनय बहुत डिफरेंट चीज है।
0: बिल्कुल। तो अभी अभिनय और कॉमेडी दोनों तरह की चीजें लगातार चल रही हैं।
1: जी, जी,
0: इतनी देर से हम बात करें, अब हम चाहते हैं कि थोड़ा परफॉर्म करें आप हमारे लिए।
1: जी बिल्कुल। मैं अभी जो बच्चों के लेकर कुछ सुनाता हूँ, तो उसके ऊपर

0: मैं सुनाता हूं कि आज के बच्चे क्या तेज दिमाग के बच्चे हैं। हम लोग तो कैसे थे, हमें तो पता ही नहीं होता था। अगर कोई कुछ बात करता था, घर में कोई आ जाए तो मेहमान के सामने बोलने में थोड़ा सा संकोच करते थे, डरते थे। बोलने से पहले सोचते थे कि हमारे बोलने के बाद हमारे पापा जी का क्या रिएक्शन होगा। लेकिन आज के बच्चे एकदम बिंदास हैं। मैंने एक बच्चे से पूछा, मेरे से बात कर रहा था, तो उससे पूछा मैंने, कहा बेटा एक चीज बताओ, जब ये कॉर्न तवे पर फूट कर पॉपकॉर्न बनता है गरम तवे पर, तो उछलता क्यों है? तो बोलता, अंकल आप उस पर बैठ के देखो, समझ में आ जाएगा। तो आज के बच्चे इतने हाजिर जवाब हैं, ऐसी बातें हैं उनकी कि जो उनका जवाब होता है वो हमारी समझ से बाहर होता है।
1: जी बिल्कुल, क्या बात है। तो ये जो पूरा परिदृश्य जहां अब चारों तरफ कॉमेडी है, लोग पॉडकास्ट में भी कॉमेडी कर रहे हैं, वीडियोस आ रहे हैं, टेलीविजन पर कंटेंट है, ओटीटी पर कंटेंट है, तो क्या एक कॉमेडियन के तौर पर आपकी चुनौतियां बढ़ गई हैं?
0: हाँ, बढ़ तो गई है। एक सबसे बड़ा कारण ये हुआ कि पहले अगर एक आधा घंटे का कंटेंट किसी के पास होता था तो बरसों बरस उसको सुनाते रहता था। एक शहर में सुनाया, कल जाके दूसरे शहर में वही सुना दिया, परसों तीसरे शहर में। आज हमारे साथ ये कि यहाँ हम कुछ सुनाते हैं और वो वीडियो बन जाते हैं और वो रातों रात वायरल हो जाते हैं सब जगह। तो जब हम अगले शहर में पहुंचते हैं तो उनके पास हमारा कंटेंट पहले से पहुंचा हुआ होता है, तो वहां जाके हमें कुछ नया सुनाना होता है।
1: हर बार कुछ
0: तो
1: नया,
0: हमेशा कुछ नया करते रहना
1: पर
0: पड़ता
1: पुरानी
0: है।
1: चीजों की जो लोकप्रिय हो चुकी है उनकी फरमाइशें भी आती हैं।
0: हाँ, फरमाइश तो आती है, ये है, ये भी एक फायदा है कि लोगों का एक मनोविज्ञान है कि वो वही सुनना चाहते हैं जो उन्होंने आपसे पहले सुना हुआ है।
1: आपके लिए किस तरह की फरमाइश आती है?
0: मैं अगर मध्य प्रदेश में हूं तो वहां की बुंदेली भाषा के लोग चाहते हैं कि मैं उनको कुछ सुना दूं, और अगर मैं यहां हूं तो मेरा अपना जो स्टाइल है लोग चाहते हैं कि वो सुनाए।
1: तो हम भी चाहते हैं आप बुंदेली में सुना दें।
0: हाँ, क्योंकि हमारा ये रेडियो तो पूरे बुंदेलखंड, पूरी दुनिया में जाता है, तो बुंदेलखंड के लोग भी सुनते हैं इसको। तो बुंदेली में वहां के लोगों की एक बड़ी विशेषता होती है, वो जब बात करते हैं तो बड़ा तेज दिमाग होता है और कुछ शब्द ऐसे बोलते हैं जो वहां के लोग ही समझ पाते हैं। भाषा का है वो। जैसे एक इंटरव्यू था और एक ऐसे आदमी की जरूरत थी जो कम से कम शब्दों में अपनी बात पूरी करे। अब एक आदमी गया, बोले मे आई कम इन सर? अरे बोले तुम अंदर आने में इतनी बात कर रहे हो, काम क्या करोगे, जाओ यहां से। तो दूसरा गया, उसने हिंदी में बोला, श्रीमान जी क्या मैं अंदर आ सकता हूं? बोले आप तो उनसे भी ज्यादा बात कर रहे हो, यहां उस आदमी की जरूरत है जो कम बात करे। अब ये हमारे यहां का था, बुंदेलखंड का, उसने दोनों को बुलाया, बोले क्या पूछा? अरे बोले मैंने अंग्रेजी में बोला, मुझे अंदर नहीं आने दिया। बोले मैंने हिंदी में बोला शुद्ध, मुझे भी नहीं आने दिया। अब बोले देखो मैं जा रहा हूं। ये गए, इन्होंने दरवाजे को थोड़ा सा ऐसा धक्का मारा, सर अंदर किया और बोले काय आए।
1: बोले आज दो ही शब्दों में निपटा दिया,
0: दो शब्दों में निपटा दिया। तो बोले आ जाओ, तुम्हारी जरूरत थी।
1: क्या बात है, क्या
0: तो
1: बात
0: ऐसे
1: है?
0: लोकल की भाषा के
1: बुंदेलखंड की स्पिरिट को आपने बिल्कुल पकड़ा है।
0: जी जी जी,
1: है ना। और कुछ बुंदेली में?
0: अब बुंदेली का मेरा एक सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, जो वहां पर लोग बहुत सुनते हैं और बहुत वायरल है।
1: जी,
0: थोड़ा सा 2-2.5 मिनट का है वो,
1: जरूर।
0: तो हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में नर्मदा मैया बहती हैं और नर्मदा जी जो है हमारे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। मतलब नर्मदा जी के कारण मध्य प्रदेश पल रहा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: उन्हीं उन्हीं का जो जल आता है उसी से सब खेती सिंचाई सब होती है। तो बड़ी श्रद्धा का विषय है हमारे यहाँ, और लोग अमावस और पूर्णिमा के दिन नर्मदा जी में स्नान करने जाते हैं। और जब वो स्नान करने जाते हैं तो हर बड़े शहर से नर्मदा जी 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर ऐसे गांव गांव से निकली है वो।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो लोग वहां दर्शन करने जाते हैं, नहाने स्नान करने। तो ज्यादा आवागमन के साधन नहीं है, एक सरकारी बस चलती थी, उसके बाद एक 3 पहिए का टेम्पो चलता जिसमें 15-20 लोगों को वो
1: बिल्कुल,
0: वो ड्राइवर ऐसा लटक के चला,
1: लंबा वाला।
0: हाँ, तो वो टेम्पो में एक गांव की महिला पहली बार बैठ के नर्मदा जी में स्नान करने जाती है। अब रात को तैयारी शुरू हो गई है, तो हमारे यहाँ जो बच्चों के जो नाम होते हैं वो बड़े गांव के हिसाब से रख देते हैं।
1: बिल्कुल,
0: शहर जैसे अच्छे नाम नहीं होते। काला देखा तो करिया नाम रख दिया, गोरा देखा तो भूरा रख दिया, थोड़ा हेल्दी देख गया तो लड्डू गोपाल रख दिया। तो उनके बच्चे थोड़ा काला था तो उसका नाम रख दिया था करिया। अब पिताजी को वहां दद्दा बोलते हैं और माँ को बाई बोलते हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो करिया के दद्दा यानी करिया के पिताजी और करिया की बाई यानी करिया की माँ। अब दोनों की बात चल रही है, कल नर्मदा जी नहाने जाना है। तैयारी शुरू हुई है, करिया के पिताजी यानी करिया के दद्दा ने बोलना शुरू किया।

0: अरे करिया के भाई, उमदा बास्केट में धोतिया लपेट के धल लियो, भुनसारे अपन नरबदा सपड़वे चल
1: भुनसारे
0: और सकारू जल्दी उठ जाइयो, लेट हो गए और बस निकल गई तो समस्या हो जाए, फिर कछु साधन नहीं मिले।
1: हो
0: अब सुबह पहुंचे तो इत्तेफाक से बस निकल गई,
1: निकल गई।
0: तो अब करिया की बाई ने पूछा कि अब का हुई है,
1: बस तो गई,
0: अब का हुई है, बस तो गई। तो अब इनकी बात चल रही है, करिया के दादा बोले कछु नहीं हो, चुपचाप मेरे पीछे चलिया। अब वो आगे कैसे गए, वो पूरा किस्सा लौट के आके वो महिला अपनी एक पड़ोस की महिला को बता रही कि क्या हुआ।
1: ठीक है,
0: बोले कल का भाव आई जी, करिया के दादा कहन लगे कि चल तेरे का नरब दस पड़ भी धलना तो भाई भंसारे हम उठे बनिंदा बास्केट में धोतिया लपेट के धरी और सकारू सकारू उठ के बास्केट हाथ में लेके बस स्टैंड तन चले गए। वहां जान के देखे भाई तो बस निकल गई थी। तो मैंने कही अब भगवान जाने का हुई है। तो भाई जी करिया के दादा मुहे आगे ले गए, आगे ले गए भाई, वे भाई कैसो टीन को डब्बा सो ठाड़ो बा को आंग ऐसा सुंगरिया जी सोमो। तो मैंने कही काय करिया कि दादा जो का जल थे, तो वो कहने लगे जा को ना टेम्पू है,
1: टेम्पू
0: तो अपन जई से चल हैं आज। तो भाई जी करिया कि दादा तो उमदा ड्राइवर के बगल में आंगे बैठ गए और मेरे का जो पीछे पटिया में बिठा दई।
1: हो
0: अब मैं वहां बैठी बैठी सोच रही अब भगवान जान का हुई है जाम। तो भाई ये कि तो बड़ो करिया से मोड़ा आओ माने बा को ढकना ऊंचो कर दो। और मैं वहां में बैठी बैठी सोच रही कि अब भगवान जान का हुई है। तो भाई बाने कोप्पा भर के पानी लिया और बाह में लेके टिको तो माने गट गट गट करके एक कोप्पा पानी पी गो। तो मैंने कहा यू मीर राम जो के सो टेम्पू जल थे। अब मैं सोच रही अब भगवान जान का हुई है जाम है। तो भाई बाब करिया मोड़ा ने रस्सी निकारी और बाकी बोनट में ऐसी लपेट दई। ओबर रस्सी लपेट के जीवन बाकी रस्सी पकड़ के एक पांव बाकी टायर पे धरो। ओबर ड्राइवर से कहने लगो हूं। तो भाई ड्राइवर ने भी कह दई हूं। और जैसे ही ड्राइवर ने हूं कही जीवन ने जोर से खींच के तान दो तो फटफटा के चालू हुआ। अब वो ऐसो डगमगा रहो। तो मैंने कही काय भैया अब भगवान जाने जा मक्का हुई है। तो जी जी बा ड्राइवर के बगल में एक टीढ़ो सो हैंडल लगो थो, बान बाय पकड़ के भीतरे करो फिर बाहर करो फिर भीतरे करो। मैंने कही जो का जल थे। तो बगल वाली बाई कहन लगी जो गेयर है जैसे चला थे जो। अब बाई वो धीरे धीरे आगे बढ़ो और एक रपटा पे धीरे धीरे ऐसो चढ़ रहो। तो मैंने कही काय ड्राइवर भैया जो ऐसो चढ़ा चढ़ा ऐसो न हो जाए
1: पलट तो नहीं जाएगा।
0: तो मैंने कही तू रोक दे तो मैं उतर जाऊं। तो वो कहन लगो रोकत नहीं हूं, रोक हूं तो पीछे लुढ़क जे। तो मैंने कही फिर लगे जान दे और आगे जान के जीजी वो एक पानी के डबरा में आड़ो होगा।
1: अरे दद्दा रे,
0: फिर काय की नरब दजी जी भाई डबराम सपड़ के लौटे आए।
1: क्या शुद्ध बुंदेली मजा आ गयो। क्या शानदार बुंदेली रचना आपने सुनाई, सच में मजा आ गयो। ये जो बुंदेली लोग हैं वो समझ सकते हैं कि इस भाषा की जो मिठास है,
0: जी जी जी,
1: है ना, बुंदेलखंड तो बुंदेलखंड है,
0: सच्ची बात।
1: तो जो प्रांतीयता कॉमेडी में आप लेके आते हैं वो कितना काम करती है मंच पर?
0: बहुत काम आती है ये भाषा जो है। पता नहीं क्यों भाषा को लेकर बहुत विवाद देखने को मिलता है, लेकिन मैं समझता हूँ भाषा कभी विवाद का विषय होती नहीं है, भाषा सिर्फ संवाद का विषय होती है। हम आपस में बात करते हैं, आप अपनी संवेदनाएं अपने भाव एक दूसरे तक पहुंचाते हैं शब्दों के माध्यम से, वो भाषा है। भाषा के लिए क्या लड़ना, मैं तो सोचता हूं कि सारी भाषाएं सीखना चाहिए,
1: बिल्कुल
0: सारी भाषाएं आनी चाहिए, लेकिन हमारा देश इतना विस्तृत है, इतना बड़ा है और इतनी सारी भाषाएं हैं, संभव नहीं है कि कोई सारी भाषाएं सीख पाए। और जब भाषा नहीं आती और जबरन बोली जाए या जबरदस्ती बुलवाई जाए या नहीं आ रही तो भी बोली जाए, तो फिर आदमी हास्यास्पद हो जाता है।
1: बिल्कुल
0: हाँ, भाषा नहीं आती बड़ी समस्या होती है। मैं तो नया नया मुंबई में आया था, मुझे मराठी बिल्कुल नहीं आती थी तब। मैं एक बस में चढ़ा, मेरे सामने एक लड़की खड़ी थी, वो बोली लव कर लव कर, मैं उसके चक्कर में चार स्टेशन आगे चला।
1: वो लव कर बोल रही थी,
0: मैं समझ में नहीं पा रहा था कि आखिर बोल क्या रही है। भाषा आना बहुत जरूरी, सीखना पड़ता है। मैं लोखंड वाला में रहता था, 2005 की बात है, बहुत भयंकर बाढ़ आई थी। लोगों के घर डूब गए, गाड़ियां डूब गई, इतने लोग डूब गए। 4 महीने बाद मैंने देखा बड़े बड़े पोस्टर लगे होर्डिंग वहां पर, उस पे लिखा बाढ़ दिवस का शुभेच्छा, बाढ़।

0: रास्ता शुभेच्छा। मैं परेशान कि यार 4 महीने पहले लोग डूब के मर गए, ये कौन है जो बाढ़ दिवस की शुभेच्छा दे रहा है। फिर किसी ने बताया जन्मदिन को बाढ़ दिवस बोलते हैं। मैंने कहा यहां रह के सारी भाषा सीखनी पड़ेगी क्योंकि भाषा आना बहुत जरूरी। फिर मैंने इसका एक सॉल्यूशन निकाला।
1: अच्छा,
0: मेरी जो पत्नी है वो मराठी है।
1: अच्छा, तो आपने ये
0: तो अब मैंने शादी की तो अब वो मराठी है, उनको सारी मराठी आती
1: है। उनका ताल्लुक कॉमेडी से है या वो आपकी कॉमेडी करती
0: है? नहीं, वो बिल्कुल नहीं है और इस लाइन से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है उनको। तो इसका फायदा ये हुआ कि मैं चूंकि कलाकार हूँ, कोई कुछ बोलता है तो याद कर लेता हूँ। अब मुझसे कोई अगर मराठी में कुछ बोलता है तो मैं ध्यान से सुनता हूँ, वह घर पे जाके पूछता हूँ ऐसा बोला था, ये मेरे लिए ठीक है, कोई गलत बात तो नहीं है। अगर ठीक हुआ तो कोई बात नहीं, नहीं तो अगले दिन उस आदमी से बहस करने पहुंचता हूँ।
1: ऐसा है
0: तो वो बोलता है तुम्हारा ट्यूबलाइट का स्टार्टर खराब है क्या, तुमको कल बोलो आज लड़ने आते हो। मैं बोला भाई तुम बोल के रह जाते हो, मुझे घर पे क्लियर करना पड़ता है जाके।
1: बिल्कुल सही है। अब ये बताइए कि लड़ाई किस भाषा में होती है, हिंदी में कि मराठी में?
0: लड़ाई तो देखो इसका एक बड़ा फायदा है, दो भाषीय लोग अगर शादी कर लें और ना तो आप उसकी भाषा सीखो और ना वो

0: उनको सारी मराठी आती
1: क्या
0: है।
1: उनका ताल्लुक कॉमेडी से है या वो आपकी कॉमेडी करती
0: नहीं
1: है?
0: वो बिल्कुल नहीं है और इस लाइन से दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है उनको। तो इसका फायदा ये हुआ कि मैं चूंकि कलाकार हूं, कोई कुछ बोलता है तो याद कर लेता हूं। अब मुझसे कोई अगर मराठी में कुछ बोलता है तो मैं ध्यान से सुनता हूं और घर पे जाके पूछता हूं ऐसा बोला था, ये मेरे लिए ठीक है, कोई गलत बात तो नहीं है। अगर ठीक हुआ तो कोई बात नहीं, नहीं तो अगले दिन उस आदमी से बहस करने पहुंचता हूं।
1: ऐसा है
0: तो वो बोलता है तुम्हारा ट्यूबलाइट का स्टार्टर खराब है क्या, तुमको कल बोलो आज लड़ने आते हो। मैं बोला भाई तुम बोल के रह जाते हो, मुझे घर पे क्लियर करना पड़ता है जाके।
1: बिल्कुल सही है। अब ये बताइए कि लड़ाई किस भाषा में होती है, हिंदी में कि मराठी में?
0: लड़ाई तो देखो इसका एक बड़ा फायदा है, दो भाषीय लोग अगर शादी कर लें और ना तो आप उसकी भाषा सीखो और ना वो आपकी सीखे,
1: बिल्कुल
0: उसमें फायदा ये होता है जब लड़ाई होती है तो वो अपनी भाषा में गाली दे, अपन अपनी में, तो ना उसको समझ में आए ना अपने को समझ में आए
1: तो वो मराठी में शुरू हो जाती है।
0: ऐसा होता नहीं है।
1: उनके सामने आपको कितना बोलने को मिलता है, क्योंकि आप मंचों पर इतना सब परफॉर्म करते हैं, पर घर पर आप परफॉर्मर हैं या लिस्नर हैं?
0: एक्चुअली एक अंग्रेजी की बड़ी अच्छी कहावत है, अ गुड लिस्नर बिकम अ गुड स्पीकर। एक अच्छा सुनने वाला ही आगे चल के बहुत अच्छा वक्ता बन सकता है। तो मैं मंच के ऊपर बोलता हूँ और घर में बाकी टाइम में सिर्फ सुनता हूँ। बाकी टाइम में सिर्फ सुनता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कितना अच्छा वक्ता मुझे मिल जाए और मैं उसको घंटों बैठ के सुन लूं। मैं आज भी बहुत अच्छा लिसनर हूं।
1: आपने अपनी पत्नी पर कोई कॉमेडी बनाई है?
0: बिल्कुल बनाई है।
1: सुनाइए।
0: देखिए मैं
1: लेकिन याद रहे कि घर पे खाना मिले आपको?
0: हाँ बिल्कुल मिलेगा। आप मुझे देख ही रहे मेरा रंग रूप कैसा
1: जी,
0: है
1: जी।
0: लेकिन मेरी पत्नी एकदम गोरी है। अब आप सोचेंगे कि उन्होंने मुझसे शादी कैसे कर ली, अब आप सोचेंगे कि चलो उनका तो वहां जाके माइंड डाइवर्ट हो गया, उनके पिताजी को सोचना चाहिए था कि मैं किससे शादी कर रहा हूं। तो यहां भी मेरी लॉटरी लगी। मेरे जो ससुर हैं वो कोल माइंस में नौकरी करते हैं।
1: लो
0: तो दिन भर वो कोयले की खदान में रहते हैं अंदर, उसी को देखते जब उनने मुझे देखा तो बोले उससे तो यही ठीक है। तो ऐसे मैं अपने पर्सनल लाइफ पे भी कॉमेडी बनाते रहता हूं।
1: क्या बात है, बहुत सही है। अच्छा कॉमेडी की दुनिया में बहुत सारे छोटे छोटे शहरों के बच्चे हैं जिनके ख्वाब हैं ये सब टेलीविजन सीरियल्स और रियलिटी शोज कॉमेडी शोज देख करके वो भी एक दिन नाम कमाएं। आप संघर्ष के उसी रास्ते से आते हैं कि एक छोटे से शहर से मुंबई शहर तक का सफर आपने तय किया है, तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे आप कि ये रास्ता कितना आसान कितना मुश्किल है और कितना धीरज रखना पड़ता है?
0: देखिए मैं एक बात मानता हूं कि हमारी जो फील्ड है कलाकारों की, इसमें मुंबई आने के बाद आपका कला जो है वो 10-20% चलता है और 80-90% भाग्य चलता है। अगर आपका भाग्य प्रबल है तो आप मुंबई नहीं भी आएंगे तो उदय दाहिया की तरह आपको गांव से बुला लिया जाएगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: मैं मुंबई नहीं आया था।
1: यस।
0: यहां आकर मैंने कोई स्ट्रगल नहीं किया है, मुझे तो मुंबई से लोग जाके गांव से उठाकर लेकर आए।
1: बिल्कुल।
0: वो उसका एक ही कारण है कि मैं जो काम कर रहा था उसको इतनी ईमानदारी से कर रहा था और मैं कभी सोचते ही नहीं था कि यहां जाऊंगा वहां जाऊंगा, ये तो मुझे लोग खींच रहे हैं मेरे पास आओ यहां आओ। तो बस काम अच्छे से करते रहो, आपसे आपके आसपास के लोग कहने लगे कि भाई तुम यहां के लिए नहीं बने हो, तुम कहीं और जाओ। अपने आप रास्ता बनता जाएगा। लेकिन कभी भी किसी की बातों में आकर अपना शहर मत छोड़िए। एकदम से किसी बड़े शहर में मत पहुंच जाइए। जैसे छत पर चढ़ने के लिए 15-20 सीढ़ियां होती हैं और आप एक एक के चढ़ के फिर आप ऊपर पहुंचते हैं, यही यहां पर लागू होता है। आप पहले अपने शहर में करिए, अपने स्कूल में करिए, घर में करिए, मोहल्ले में करिए, शहर में करिए, आसपास के शहरों में करिए। जब आपको लगे कि हाँ मुझे सब पसंद कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे करके रास्ते खुलते जाएंगे और लोग खुद आपको बुलाएंगे।
1: क्या बात है, बहुत सही सलाह आपने दी है। और इतनी लंबी बातचीत हमने कर ली, आपने किशोर कुमार का नाम भी लिया कि 87 में उनसे आपको प्रेरणा मिली थी, लेकिन किसी गाने का जिक्र अभी तक नहीं हुआ, तो अपनी पसंद का एक गाना बताइए जो अभी हम अपने श्रोताओं को सुनवाएंगे।
0: वैसे तो किशोर कुमार जी के इतने सारे गाने हैं जो मुझे पसंद है और उनमें से कोई एक कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी एक गाना है जो डुएट है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है वो गाना, वो है फिल्म डॉन का। क्योंकि इस गाने में ऐसा लगता है जैसे मैं ही अपील कर रहा हूं, जिसका मुझे था इंतजार
1: वो घड़ी आ गई,
0: वो घड़ी आ गई।
1: वाह,
0: तो मेरी जिंदगी में वो घड़ी आ चुकी है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ वो वाला गाना बजाया जाए।

0: उदय जी बहुत मजा आया आपसे बातचीत करके, और आगे भी मिलेंगे और बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विविध भारती में आने के लिए।
1: बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
2: मैटिनी शो, इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे हास्य कलाकार उदय सिंह दहिया से यूनुस खान की ये बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग और समृद्धि नायक, संपादन सहयोग काजल भदरगे। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का, 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन? जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन?
1: तीन अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहे हैं कौन? एक मशहूर संगीतकार और एक मशहूर लेखक, निर्देशक और अभिनेता।
2: हमें तुम्हारा लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना हो पाया।
1: इंतजार कीजिए। एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव है, वो है जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
3: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
1: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: द फैमिली मैन से दर्शकों का दिल जीतने वाले जेके, कुछ अनसुने किस्से, कुछ मजेदार राज। दमदार किरदार, कैमरे के परे उनकी क्रिएटिव दुनिया, जिंदगी की बातें और ढेर सारी मस्ती भी।
5: मांगा जो उसने एक सितारा, हमने जमीन पे चांद बुला।
4: सुनिए एक दिलचस्प बातचीत अभिनेता शारिब हाशमी के साथ।
6: मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटरटेन करने के लिए ही
7: पैदा हुआ।
6: जब मैं लोगों को हंसाता हूँ तो मेरा 2 लीटर खून बढ़ जाता है।
4: सेल्यूलॉइड के सितारे 29 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: ये विविध भारती।
8: हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं, एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दिल्ली से हिंदी में समाचार।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वीं उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि हैं। ये सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने अपने देशों की प्राथमिकताओं और नजरिए को सामने रखेंगे। डॉक्टर एस जयशंकर ने एआई की संभावनाओं का उपयोग करने के साथ साथ इसके संभावित प्रभावों का अनुमान लगाने और जोखिमों को कम करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। वे आज ग्रीस के विदेश मंत्री जॉर्ज गेरा पेट्रिसिस के साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में एआई, विशेष रूप से समुद्री सुरक्षा विषय पर आयोजित कार्यक्रम की सह अध्यक्षता कर रहे थे। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि एआई और समुद्री सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र में भारत की महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने

0: वैश्विक महामारी से निपटने की तैयारियों को मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वे न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित कर रही थीं। सुश्री श्रीवास्तव ने कहा कि भारत ने महामारी और अन्य स्वास्थ्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए प्रयोगशाला नेटवर्क, आपात समन्वय, स्वास्थ्यकर्मियों, आवश्यक दवाओं और चिकित्सा सुविधाओं की क्षमता बढ़ाई है। इस अवसर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने वैश्विक महामारी तैयारियों को मजबूत करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया। ओडिशा में उत्तर छत्तीसगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में बने निम्न दबाव के चलते कई हिस्सों में तेज वर्षा हो रही है। भूस्खलन और जलभराव से सड़क संपर्क प्रभावित हुआ है। एहतियात के तौर पर कई जिलों में स्कूल भी बंद किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
1: उड़ीसा में डिप्रेशन कमजोर पड़ गया है, लेकिन राज्य के कई हिस्सों में अभी भी भारी बारिश हो रही है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आज कुछ जगहों पर, खासकर उत्तरी और पश्चिमी जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। बैतरणी नदी अक्वापदा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। निचले इलाकों में पानी भर गया है और संवेदनशील इलाकों में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: छत्तीसगढ़ में पिछले तीन दिनों से हुई भारी बारिश के कारण राज्य के बस्तर संभाग सहित मध्य छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में नदियां उफान पर हैं और कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। उत्तर प्रदेश में कई जिलों में हो रही तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई जिलों में 12वीं तक के स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। उत्तराखंड में आज और कल कई स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों में मूसलाधार वर्षा का रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर सिंह ने सार्वजनिक जीवन में पूरी निष्ठा के साथ देश की सेवा की। गृहमंत्री अमित शाह ने आज बंगाल पुनर्जागरण के महान स्तंभ ईश्वर चंद्र विद्यासागर को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने शिक्षा को सामाजिक बदलाव का एक सशक्त माध्यम बनाया। भारत की महिला कबड्डी टीम ने एशियाई खेलों में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। जापान में खेले गए रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारत ने ईरान को 37-34 से पराजित किया। भारतीय टीम पूरे टूर्नामेंट में अजेय रही। एशियाई खेलों में भारत का ये तीसरा स्वर्ण पदक है। इससे पहले महिला क्रिकेट टीम और 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में सुरुचि सिंह फोगाट और कमलजीत की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था। भारत की पुरुष कबड्डी टीम का आज फाइनल में ईरान के साथ मुकाबला होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और खेल मंत्री मांडविया ने मैराथन में रजत पदक जीतने पर सावन बरवाल को बधाई दी है। एशियन गेम्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुष मैराथन में सावन बरवाल ने रजत पदक जीता। आकाशवाणी की विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित बसंती देवी से उत्तराखंड में पर्यावरण संरक्षण और कोसी नदी के पुनरुद्धार के क्षेत्र में उनके योगदान के बारे में बातचीत करेंगे। ये कार्यक्रम आज दोपहर 1:10 पर आकाशवाणी गोल्ड पर प्रसारित किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आइए अब सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम।
3: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज महान अभिनेता सदाबहार देव आनंद की याद का दिन है। धर्मदेव पिशोरीमल आनंद का जन्म 26 सितंबर 1923 को हुआ था। एवरग्रीन देव आनंद के फिल्मी सफर का आगाज हुआ था 1946 में आई फिल्म हम एक हैं से। 6 दशकों से अधिक लंबे करियर में उन्होंने 100 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया। तो आइए यादों की महफिल में आज याद करते हैं हिंदी फिल्मों में एक लंबी और सफल यात्रा तय करने वाले पद्मभूषण और दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित निर्माता निर्देशक हिंदी फिल्मों के एवरग्रीन यानी के सदाबहार निर्माता निर्देशक हीरो और पहले रोमांटिक हीरो देव आनंद की यादों को सुनकर उनके गीत। तो साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। गीतकार है शैली।

0: हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं, एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय 12:15 हुए हैं। विविध भारती के कार्यक्रम आप सुनेंगे इस अंतराल के बाद।
1: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
2: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
3: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
4: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
3: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
4: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
3: पर रेरा तो शहरों में।
4: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
3: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
0: अंतराल के बाद आइए सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम।

0: अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में स्वागत है।
1: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन? दर दुम दर दुम दर दुम दर दुम दर दुम दर
2: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं, वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
3: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
2: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार और उषा खन्ना की आवाजों में। इस गीत को लिखा है इंदिवर ने, संगीत से सवारा है कल्याण जी आनंद जी ने, फिल्म का नाम है जॉनी मेरा नाम।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
1: यादों की महफिल कार्यक्रम में अगला गीत सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। शब्द रचना नीरज की, संगीत रचना सचिन देव बर्मन की। फिल्म का नाम है तेरे मेरे सपने।

0: द फैमिली मैन से दर्शकों का दिल जीतने वाले जेके, कुछ अनसुने किस्से, कुछ मजेदार राज। दमदार किरदार, कैमरे के परे उनकी क्रिएटिव दुनिया, जिंदगी की बातें और ढेर सारी मस्ती भी।
1: मांगा जो उसने एक सितारा, हमने जमीन पे चांद बुला।
0: सुनिए एक दिलचस्प बातचीत अभिनेता शारिब हाशमी के साथ।
2: मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटरटेन करने के लिए ही पैदा
3: हुआ।
2: और जब मैं लोगों को हंसाता हूँ तो मेरा 2 लीटर खून बढ़ जाता है।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 29 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: यादों की महफिल में आनंद बख्शी का लिखा गीत सुनिए, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। धुन बनाई है राहुल देव बर्मन ने, फिल्म का नाम है हीरा पन्ना।

0: 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहे हैं कौन, एक मशहूर संगीतकार और एक मशहूर लेखक, निर्देशक और अभिनेता।
1: हमें तुम्हारा लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना हो पाया।
0: इंतजार कीजिए
2: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत आप सुनेंगे एक बार फिर किशोर कुमार की आवाज में। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है राहुल देव बर्मन का और फिल्म का नाम है हरे रामा हरे कृष्णा।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
1: काला बाजार, इस फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में। गीत लिखा है शैलेंद्र ने, संगीतकार हैं सचिन देव बर्मन।

0: 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहे हैं कौन, एक मशहूर संगीतकार और एक मशहूर लेखक, निर्देशक और अभिनेता।
1: हमें तुम्हारा लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा।
0: इंतजार कीजिए।

0: 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहे हैं कौन, एक मशहूर संगीतकार और एक मशहूर लेखक, निर्देशक और अभिनेता।
1: हमें तुम्हारा लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाया।
0: इंतजार कीजिए,
2: आइए सुनते हैं अगला गीत आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में। गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी, धुन तैयार की है सचिन देव बर्मन ने, फिल्म का नाम है बम्बई का।

साथियों लीजिए सुनिए अगला गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। इस गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत है सचिन देव बर्मन का और फिल्म का नाम है तीन देवियां।

साथियों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश आप सुनेंगे मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में। इस गीत को लिखा है साहिर लुधियानवी ने, संगीत है जय देव का और फिल्म का नाम है हम दोनों।

साथियों, यादों की महफिल कार्यक्रम में आज हमने याद किया सदाबहार रोमांटिक हीरो देव आनंद की यादों को। यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगमों में उप महापौर पद के लिए चुनाव प्रक्रिया आज सुबह 10 बजे से शुरू हो गई है। तीनों नगर निगमों में उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। उम्मीदवार दोपहर 2 बजे तक नामांकन वापस ले सकेंगे। यदि एक से अधिक उम्मीदवार मैदान में रहते हैं तो दोपहर 2:30 बजे से 5 बजे तक मतदान होगा। मतदान के बाद मतगणना कर परिणाम घोषित किए जाएंगे। वहीं यदि किसी नगर निगम में केवल एक उम्मीदवार मैदान में रहता है तो उसे विरोध निर्वाचित घोषित किया जाएगा। बालोतरा जिले के विभिन्न विद्यालयों में मतदाता जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गई। स्वीप कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों ने रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से मतदान के महत्व का संदेश दिया। विद्यालयों में मेहंदी प्रतियोगिता के दौरान बालिकाओं ने हाथों पर मतदान से जुड़े संदेश और डिजाइन बनाए। वहीं डिजिटल बोर्ड के माध्यम से विद्यार्थियों को मतदान की प्रक्रिया समझाई गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज प्रतापगढ़ दौरे पर हैं। उनका दशहरा मैदान में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद दोपहर 2 बजे मुख्यमंत्री राजकीय महाविद्यालय के लिए रवाना होंगे, जहां कॉलेज के ऑडिटोरियम में कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। भारतीय वायुसेना का बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2026 आज से शुरू हो रहा है। ये अभ्यास 12 अक्टूबर तक जोधपुर और आसपास के वायुसेना अड्डों पर आयोजित किया जाएगा। अभ्यास का उद्देश्य वास्तविक युद्ध परिस्थितियों के अनुरूप संयुक्त हवाई अभियानों की योजना और संचालन का अभ्यास करना है, साथ ही सामरिक स्तर पर उपयोगी समाधान विकसित करना है। अभ्यास में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, श्रीलंका, संयुक्त

0: संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका सहित 8 देशों की वायु सेनाएं अपने विमान और अन्य हवाई संसाधनों के साथ पहुंची हैं। उधर बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय और अमेरिकी सेना के जवानों ने संयुक्त इंटर ऑपरेबिलिटी ड्रिल में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, एआईआर न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका प्रसारण होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। बीकानेर वेटरनरी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों को ऊंटनी के दूध पर शोध के लिए पेटेंट मिला है। इन शोधकर्ताओं ने ऊंटनी के दूध से प्राप्त प्रोटीन हाइड्रोलाइटेट के गुणों और क्षमता को बेहतर बनाने पर काम किया था। भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय की ओर से ये पेटेंट मिला है। ये अनुसंधान ऊंटनी के दूध की उपयोगिता बढ़ाने में सहायक होगा। राज्य में ऊंट पालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पशुपालक समुदाय की आजीविका से जुड़ा है। ऐसे में ऊंटनी के दूध के प्रसंस्करण, पोषण संबंधी विशेषताओं और उसके उपयोग पर शोध की संभावनाएं बढ़ी हैं। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने प्रदेश में मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए कड़ी निगरानी रखने को कहा है। उन्होंने कल जयपुर में नारकोटिक्स कंट्रोल विजन 2026-2029 की समीक्षा बैठक में ये बात कही। उन्होंने अधिकारियों को तस्करी नेटवर्क के खिलाफ आसूचना आधारित कार्रवाई मजबूत करने, सिंथेटिक ड्रग्स पर रोक और संवेदनशील जिलों में निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने एक अन्य बैठक में राजस्व अदालतों के कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने पुराने मामलों को प्राथमिकता से निपटाने और प्रकरणों की स्थिति ऑनलाइन दर्ज कराने को कहा। बैठक में महिलाओं और बालिकाओं के वैधानिक अधिकारों तथा सार्वजनिक और सामुदायिक भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। भारत की महिला कबड्डी टीम ने एशियाई खेलों में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। जापान में खेले गए रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारत ने ईरान को 37-34 से पराजित किया। भारतीय टीम पूरे टूर्नामेंट में अजेय रही। एशियाई खेलों में भारत का ये तीसरा स्वर्ण पदक है। इससे पहले महिला क्रिकेट टीम और 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में सुरुचि सिंह फोगाट और कमलजीत की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: सुंदर इबारत प्रेम की उस कहानी को सुर देती है जिसमें मिलन की खुशी, बिछड़ने की कसक और साथ बिताए पलों की सुहानी यादें एक साथ धड़कती हैं। उसमें कहीं भरोसे की मिठास है, कहीं जुदाई का डर, तो कहीं फिर लौट आने की उम्मीद। अगला एक साथी ने अलग मैसेज लिखा है कि दो दिलों की दास्ता है इस कहानी में, मिलने की खुशी है, बिछड़ने का गम है और वो हमेशा साथ रहे। आज के गीत आने की आशा और बिछड़ने के दर्द से भरे हैं और अपने प्रियतम को पास रोक लेने की कोशिश करते नजर आते हैं। आज की इबारत में मिलन की खुशी भी है और जुदाई का गम भी। तड़प ये दिन रात की, कसक ये बिन बात की, और जब मिले तब देखते ही तुझे मेरे दिल ने कहा, जिंदगी भर तुझे देखता ही रहूं। अच्छा तो हम चलते हैं, चले जाना जरा ठहरो। मोहब्बत में कभी मंजिल मिलती है तो कभी जुदाई का डर सताता है। उसके बिना बहारों की खुशी भी अधूरी लगती है और दिल चाहता है कि वो कुछ पल और ठहर जाए। चाहत और भरोसे के सहारे प्यार के तूफानों को पार करते हुए मन कभी साहिल की तलाश करता है। आना जाना और बिछड़ना जीवन का हिस्सा है, मगर साथ बिताए पल हमेशा दिल में रहते हैं। पास बैठकर बीती रातों की कहानी सुनते सुनते कब दिन ढल जाता है पता ही नहीं चलता। साथियों, कार्यक्रम की शुरुआत में जो ये गीत आप सुनने जा रहे हैं, इन कलाकारों के नाम लिख

दीजिए और इस अभिनेता का देव आनंद के साथ क्या रिश्ता है वो भी हमें बता दें। इस गीत में आवाज है किशोर कुमार की, संगीत है बप्पी लहरी का, गीतकार है अमित खन्ना और फिल्म का नाम है चलते चलते। और साथ ही अपने विचार, अपने जवाब हमें लिख दीजिए।

0: गांव में सब जगह जाकर मैं सबका संगठन बना के सबको एक करूंगी। मान गए वो, फिर आ गए, फिर दूसरे गांव में, तीसरे गांव में, ऐसे जाकर पूरे कोसी नदी के वहां सोमेश्वर घाटी में उधर उधर सब जगह वो काम किया तो सब मान गए। जंगल नहीं काटा तो जंगल बच गया, फिर पानी आने लग गया धीरे धीरे।
1: जैसे आपने जो काम किया वो खासकर कोसी नदी बागेश्वर के आसपास, हाँ। आप आश्रम में बहुत समय तक रहे, आपके मन में कैसे आया कि प्रकृति से जुड़े हैं, नदी को बचाएं, कैसे आपने सोचा ये सारी चीज?
0: क्यों, मैं तो जब इलाके में रहती थी, जब वहाँ प्रकृति ऐसी हो गई, जब पानी खत्म हो गया, खेती नहीं होने वाली हुई, सब इस प्रकार का हो गया और लड़ाई मार झगड़ा और में लग गया, तब मुझे बहुत दुख हो गया। मैंने कहा जब सब घर घर में ऐसे हो जाएंगे, ये हो जाएगा, तो हमारा उत्तराखंड की देव भूमि महान कैसे बनेगी। तो यही इसी को लेकर मैंने गांव गांव में उनसे कहा कि हमको अपना जीवन, अपना देश, अपना गांव, अपना परिवार को महान बनाना है, तभी हम आगे बढ़ेंगे, तभी हमारी देव भूमि महान बनेगी। अभी भी मैं कहती हूँ कि हमारे उत्तराखंड के देव भूमि को हमको महान बनाना है। हम अच्छा व्यवहार करेंगे, अच्छी शिक्षा देंगे और अच्छा वो होगा तो आगे की पीढ़ी भी अच्छी होगी, तो यही मेरा काम होता है।
1: बसंती दी, जब आप अभियान शुरू कर रही थी, लोगों को जोड़ रही थी अपने साथ, इसके लिए कितनी चुनौतियां आई लोगों को जोड़ने में, महिलाओं को जोड़ने में, क्योंकि ग्रामीण महिलाएं थी, आपने उनको संगठित किया, कितनी परेशानियां चुनौतियां आपके सामने आई?
0: चुनौतियां तो बहुत आई, सब लोग कहने लगे बड़ी आ गई है, ये तो आश्रम में रहती है और हमारी महिलाओं को इतना भड़का रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, वो कर रही है करके। कहीं वो महिलाओं का महिला मंगल दल बनाया और उनको मैंने कहा चलो अब आ, तुम, तुम्हारे पास लकड़ियां हैं, अब तुम यहाँ से अब लकड़ी नहीं ले जाओगे, जंगल बचाना है, ऐसे करके वो फिर आ गए मेरे साथ गांव में, फिर दूसरे गांव में, तीसरे गांव में, ऐसे जाते जाते मैंने 200 गांव में महिला संगठन बनाया। तो सब उनको बताया, सब मान गए बहुत अच्छी तरह। तो ऐसे करके गांव गांव में जाकर वातावरण अच्छा बना दिया, तो जंगल बचाने का, पानी बचाने का, महिला सशक्तिकरण, भाई लोगों को नशा मुक्त करना, तो ऐसे ऐसे करके सब वातावरण अच्छा बना दिया। मैंने कहा तुम भी थोड़ा सीखो महिलाओं से, मैंने कहा संगठन बन गया है, जंगल बचाना है, पानी बचाना है, खेती अच्छी बनानी है, बच्चों को पालना पोसना है, आगे पढ़ाना है, जैसे लड़कों को तो स्कूल भेजने वाले हुए, लड़कियों को नहीं, लड़के लड़कियों को पढ़ाने का नहीं हुआ। जब मैंने कहा लड़कियां नहीं पढ़ेंगी तो क्या होगा, लड़कियों को भी पढ़ाना है, तो बालवाड़ी खोली हमने फिर आश्रम के द्वारा, एक बालवाड़ी से 200 गांव में बालवाड़ियां खोली लड़कियों को पढ़ाने का, और भाई लोगों को नशा मुक्त किया मैंने। जब परिवार तुमसे क्या सीखेगा और बच्चे कैसे आगे बढ़ेंगे, हमारा वातावरण कैसे अच्छा होगा, तुमको तो ये सोचना चाहिए।
1: बिल्कुल, हाँ। पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण के साथ ही नशा उन्मूलन के क्षेत्र में आपके जो प्रयास है वो सराहनीय है। आज जब आप अपने कार्य को देखते हैं बसंती जी, आपने पर्यावरण संरक्षण, महिला सशक्तिकरण और नशा मुक्ति को लेकर जो कार्य किए, कैसा महसूस होता है कि आपने हमारी पीढ़ियों को इतना कुछ आपने दिया है, कैसा लगता है?
0: अच्छा लगता है, क्योंकि लोग तभी तो सब जगह किताबों में भी लिखते हैं, ऐसे वो भी देते हैं कि आपने इतना अच्छा काम किया, तभी तो पद्मश्री अवार्ड भी मिला। तो ऐसे करके धीरे धीरे वातावरण बहुत अच्छा हो गया गांव गांव में सब जगह, और बच्चे भी अच्छे हो गए, उनको भी अच्छी तरह पालना पोसना और ऐसा कर लिया, और लड़कियों को भी, जब हमने और बालवाड़ी में एक बालवाड़ी से लेकर 200 गांव में बालवाड़ी खोली लड़कियों के लिए, तो वो भी पढ़ने लग गए, लिखने लग गए, तो ऐसा वातावरण बन गया, तो सब गांव गांव में बहुत खुश हो गए।

0: और फिर और सरकार के द्वारा फिर लड़कियों को भी पढ़ाने के लिए सरकार ने स्कूलों में उनको भी भर्ती कर दिया, बालवाड़ी से लेकर फिर वो और स्कूलों में भी ऐसे पढ़ने लगी।
1: अच्छा, जो कोसी नदी का आपका अभियान था वो बहुत ही सराहनीय अभियान रहा है और कई आज के जो जनरेशन है वो भी उससे प्रेरणा लेती है। आपको लगता है किस तरीके से आपने कोसी नदी, क्योंकि उस टाइम कोसी नदी की स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी, आपने कैसे, आपके मन में आया कि इसको बचाया जाए?
0: पहले तो कोसी नदी में बहुत पानी आता था, जब जंगल कट गया तो पानी नहीं आने वाला हुआ, तब तो मैंने कहा, तभी तो मैं 7 दिन गांव में गई, कोई महिलाएं नहीं मिली और वो गांव के रास्ते ही जंगल में गई, वहां मुझे वो महिलाएं मिल गई। मैंने उनसे कहा कि तुमने इतना जब जंगल काट के खत्म कर दिया, पानी और जंगल पेड़ काट के और ऐसे इतने तुमने कनखले बना दिए, वो कर दिया, वो सड़ गए हैं और वो बेकार हो गए हैं, जब पानी नहीं आएगा तो क्या पियोगे, कैसे जिंदा रहोगे, कैसे खेती पाती होगी, ये तो तुम सोचो, तुम नहीं सोचते हो तो फिर और क्या होगा, ऐसे ऐसे करके तो वातावरण फिर बहुत अच्छा हो गया।
1: संती जी, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, हमारे जो युवा पीढ़ी है, उनके लिए क्या संदेश आप देना चाहेंगी कि वे पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दे सके, क्या उनसे कहना चाहेंगी आप?
0: तो उनसे भी तो वही कहना है, नशा मत करो, वातावरण अच्छा बनाओ, परिवार अच्छा बनाओ, आगे की पीढ़ी अच्छी होनी चाहिए, तभी तो हमारा देश भारत वर्ष अच्छा होगा। उत्तराखंड देव भूमि को मैं यही कहती हूँ कि महान बनाना है, जब सब लोग परिवार परिवार में, गांव में, इलाके में सब अच्छे होंगे, अच्छे व्यवहार वाले होंगे और अच्छा वातावरण होगा तो सब खुश रहेंगे।
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए।
0: आपको भी धन्यवाद।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे उत्तराखंड में पर्यावरण संरक्षण और कोसी नदी के पुनर्जीवन के लिए कार्य करने वाली तथा पद्मश्री से सम्मानित बसंती देवी के साथ बातचीत। संवाद का संचालन कर रहे थे राकेश पंत। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।

साथियों, आपने जो जवाब लिखे हैं वो हमने देख लिए। इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं राजेश खन्ना, आशा पारेख, विनोद खन्ना, अरुणा ईरानी, निरूपा रॉय, सुजीत कुमार, राजेंद्र नाथ और जूनियर महमूद। हमारे साथियों ने हमें बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स और जवाब लिखे हैं। एक साथी ने लिखा है कि कभी कभी किसी का मिलना ही हमारी मंजिल बन जाता है और फिर उसके जाने का ख्याल भी दिल को बेचैन कर देता है। चाहत बस इतनी होती है कि वो थोड़ा और ठहरे, क्योंकि कुछ साथ पल भर के नहीं होते, उम्र भर के लिए अच्छे लगते हैं। और हम कहते हैं कि आपने टॉपिक को बिल्कुल सही पकड़ा है। कुछ रिश्तों में भरोसा इतना गहरा होता है कि जुदाई का ख्याल भी अच्छा नहीं लगता। दिल चाहता है साथ यूं ही बना रहे और ये सुहाने पल कभी जल्दी ना ढले। मोहब्बत शायद यही है, किसी के आने से दिल को मंजिल मिल जाए और उसके जाने का ख्याल आते ही दिल कहे ठहरो, अभी तो कुछ पल और साथ रहो।

एक साथी ने लिखा है कि आज की इबारत में हमें भरोसा भी नजर आया, तो दिल ने कहा भरोसा बहुत नाजुक सा रिश्ता है, उसे बनाने में वक्त लगता है, लेकिन एक छोटी सी ठेस भी इसे हिला सकती है। भरोसा वो है जहां शब्द कम पड़ जाएं, फिर भी दिल कहे तुम हो तो सब ठीक है। एक साथी ने लिखा है कि फिल्म अर्पण का गीत परदेश जाके परदेसिया भूल ना जाना पिया, इसका इंतजार है। जब मिले हम तो थमी सी रह गई ये जिंदगी, तेरी आंखों ने कहा मैं हूं यहीं पर कहीं, फासले जितने भी हो अब इस जमाने के दरमियां, तेरी धड़कन में धड़कता रहूंगा मैं हर घड़ी। हमारी एक साथी ने लिखा है कि जहां एक तरफ मंजिल पा लेने की खुशी है, तो दूसरी तरफ किसी खास इंसान के बिना रहने की बेबसी और अधूरापन भी है। जब इंसान अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत मुकाम पर पहुंच जाता है, लेकिन वहां उसके साथ उसका वो खास शख्स नहीं होता, तो वो सफलता या मंजिल भी अधूरी सी लगने लगती है। अगला कमेंट है कि आज फिर मैं लंबी यात्रा पर हूँ, ट्रेन में कार्यक्रम का लुत्फ उठाऊंगा। तो ठीक है, सुनते रहिए विविध भारती। हमारे एक साथी ने लिखा है कि आज लाइव रहना बड़ा मुश्किल है, हमारे फॉर्म हाउस पर नेट बहुत वीक होता है, अगर सही रहा तो जरूर जुड़ूंगी। तो ठीक है, कोशिश कीजिए नेटवर्क में आने की। एक साथी ने लिखा है कि नजरों ने जब से तुम्हें पाया है, इस दिल को सिर्फ तुम्हारा ही साथ भाया है। तुम दूर जाने की बात करते हो, जरा सोचो तुम्हारे बिना मेरी सुबह और शाम का क्या होगा।

इस हसीन मौसम की हर बूंद मुझसे पूछती है कि तुम कहाँ हो। अभी तो धड़कनों ने संभलना सीखा है। अभी से मुख मोड़कर मत जाओ। मुझे तुम्हारी मोहब्बत पर पूरा एतबार है, बस इस बात का डर है कि ये वक्त कहीं हमें जुदा ना कर दे। आओ कुछ पल और पास बैठो, ताकि इन ढलती हुई रातों में हम अपनी अधूरी दास्तां को पूरा कर सके। बहुत अच्छा लिखा है आपने। बिछड़ गए तो फिर मिलेंगे हम दोनों एक बार, या इस बस्ती में या इसकी हदों के पार। साथियों, हमारी जिंदगी मुख्तलिफ रास्तों से गुजरती है। दुनिया की इस भाग दौड़ में या हालात की वजह से रिश्ते, नाते, मोहब्बतें, दोस्त एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। फिर वक्त का पहिया घूमता है और बिछड़े हुए लोग दोबारा मिल जाते हैं। कहते हैं कि दिल की लगन हो सच्ची तो रास्ते अपने आप बनते हैं, और मिलकर बिछड़े हुए दोबारा मिलते हैं। रिश्ते और मोहब्बतें वक्त और फासलों से ज्यादा असर रखती हैं, और बिछड़ने के बाद मिलने का मजा ही कुछ और होता है। सदाबहार मेलोड्रामा फिल्म आया सावन झूम के जय शंकर और आरती की कहानी। अनजाने में जय की गाड़ी से एक व्यक्ति की टक्कर और मौत, जो कि आरती के पिता थे। इस भयानक हादसे के बाद एक गहरा अपराध बोध, उसके बाद कहानी में गलत फहमियां, उतार चढ़ाव, सच्चाई का सामने आना और एक समाधान पर कहानी खत्म। तो बताइए कि ये जय आरती कौन थे, और आया सावन झूम के इस फिल्म के निर्माता निर्देशक का नाम भी हमारे FB पेज पर लिख दे। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, और फिल्म का नाम है आया सावन झूम के, और आपके जवाबों का हमें है इंतजार।

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का।

0: 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
1: साथियों, आपने जो कमेंट्स और जो जवाब लिखे वो हमने देख लिए हैं और उन्हें अभी पढ़ देते हैं। इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं धर्मेंद्र, आशा पारेख, निरूपा रॉय, नज़ीर हुसैन, राजेंद्र नाथ, रूना ईरानी, जलाल आगा, और इस फिल्म के निर्देशक थे रघुनाथ झलाई और निर्माता थे जे ओम प्रकाश। अब पढ़ते हैं आपके कुछ और कमेंट्स। आज की इबारत मिलन और बिछड़ने की उम्मीदों को लेकर घड़ी गई है और इस दृष्टिकोण से आज की ये इबारत सराहनीय है। एक साथी ने लिखा है कि प्रेम में बस एक बात समझी जा सकती है कि सरलता ही प्रेम है और ये सरलता ही दो लोगों को जोड़े रखती है। अगर आपके मन में सरलता नहीं है तो बिछड़ना तय है। अगला मैसेज है कि जहां एक पक्ष रोक रहा है और दूसरा पक्ष उसे समझा रहा है और विश्वास दिला रहा है, ये इबारत प्रेम की उस अवस्था को दर्शाती है जहां मिलन की खुशी और बिछड़ने का डर साथ साथ चलते हैं। प्यार में मिलन के हसीन पल वाकई बहुत खास, गहरे और जीवन भर के लिए यादगार पल होते हैं। जीवन में उतार चढ़ाव तो आते जाते रहते हैं, लेकिन ये हसीन पल एक ऐसी अनमोल पूंजी बन जाते हैं जिन्हें इंसान मुश्किल वक्त में भी याद करके मुस्कुरा उठता है। एक साथी ने लिखा है, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार, तो हमारी तरफ से आपको भी। अगला एक मैसेज है कि आज तो सिर्फ सुनने का मन है, कोई कमेंट नहीं। हमें ये गाना याद आ रहा है, दिन ढल जाए हाय रात ना जाए। एक साथी ने लिखा है, कभी कभी प्यार का सबसे सुंदर हिस्सा मिलना नहीं बल्कि बिछड़ने के बाद भी किसी का दिल में बने रहना होता है। कुछ लोग जिंदगी में पल भर के लिए आते हैं मगर उनकी यादें उम्र भर साथ चलती हैं। मिलन चेहरे पर मुस्कान छोड़ जाता है और फिर बिछड़न आंखों में नमी। मगर सच्चा प्यार वही है जो दूरियों के बाद भी दिल की धड़कनों में अपनी जगह बनाए रखे। एक साथी ने लिखा है, मगर सच्चा प्यार वही है जो दूरियों के बाद भी दिल की धड़कनों में अपनी जगह बनाए रखे। अगला मैसेज है कि उम्र के इस मोड़ पर बिछड़े कॉलेज मित्र जब सालाना यूनियन मीटिंग में मिलते हैं तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता, मानो आयु बढ़ जाती है। हमारे एक साथी ने एक लिस्ट भेज दी है, तेरा जाना दिल के अरमानों का लुट जाना, जाते हुए ये पल छिन क्यों जीवन दिए जाते हैं, आजा रे प्यार पुकारे नैना तो रो रो, बाय बाय मिस गुड नाइट कल फिर मिलेंगे, आना जाना लगा रहेगा, दुख जाएगा सुख आएगा, ये गीत लिखकर इन्होंने भेजे हैं। एक साथी ने लिखा है, आज मैं कमेंट नहीं कर पा रही हूँ, परिवार के संग हूँ। एक साथी ने लिखा है कि घर में बहू बेटी जब जाती है तो जत्रा निकाला जाता है, उसका कुछ ले जाने वाला सामान एक अच्छे समय पर घर से बाहर कहीं पर रख दिया जाता है और जाते समय उसे भी ले लिया जाता है। एक साथी ने लिखा है कि जब मैं 6 साल का बच्चा था तब बिली मोरा के पास एक कस्बे में मेरा बहुत प्यारा मित्र था, बाद में मेरे पिताजी का ट्रांसफर हो गया कारण इसके बाद संपर्क टूट गया, पर मैंने FB पर उसे ढूंढ निकाला और एक दो बार अच्छी तरह उनसे बात भी हुई, पर बाद में उनसे हमारा संपर्क टूट गया।

अंग्रेजी कहानी द प्रिंस एंड द पाउपर पर आधारित ये एक नैतिक सीख देने वाली फिल्म है। राजा और रंक, एक गरीब लड़का और एक राजकुमार जिनके चेहरे एक जैसे होते हैं, दोनों आपस में मिलते हैं और एक दूसरे की पहचान अपना लेते हैं। राजकुमार को बाहर की दुनिया की गरीबी कठिनाइयों का अनुभव होता है, जबकि रंग को राजमहल के कड़े नियम और षड्यंत्रों का सामना करना पड़ता है। अदला बदली की ये कहानी हमें इंसानियत और दूसरों के दुख दर्द को समझने की सीख देती है। तो बताइए हमें कि ये राजा और रंग की भूमिका निभाने वाले महान अभिनेता कौन थे, और खलनायक और साथी कलाकारों के नाम भी लिख दें।

0: 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहे हैं कौन, एक मशहूर संगीतकार और एक मशहूर लेखक, निर्देशक और अभिनेता।
1: हमें तुम्हारा लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना हो पाया।
0: इंतजार कीजिए,
2: हमारे साथियों ने संदेश भेज दिए हैं, जवाब हमें मिल गए हैं। सुधीर

और विजय यानी कि संजीव कुमार, महेश कोठारे, निरूपा रॉय, अजीत कमल कपूर और कुमकुम। इस फिल्म के निर्देशक थे कोलजी प्रत्यगात्मा और निर्माता थे एलवी प्रसाद। गीत में साथियों आवाज़ आपने सुनी मोहम्मद रफ़ी की, गीत रचना आनंद बख्शी की, संगीत रचना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की और फिल्म का नाम था राजा और रंक। आवाज की दुनिया के दोस्त हमसे जुड़े हुए हैं और लगातार अपने कमेंट्स लिख रहे हैं, हमें अपने संदेश भेज रहे हैं। एकदम लाइव कार्यक्रम है ये सुरीला सफर, तो हम अपने साथियों के कुछ संदेश पढ़कर आपको सुनवा देते हैं। एक साथी मित्र ने लिखा है कि अगर दिशा भूल में कोई विदा लेता है तो उनकी शुभ यात्रा हेतु पहले ही कोई वस्त्र यात्रा के रूप में अन्य के घर में रख दिया जाता है, फिर यात्रा वाले दिन वहां से लेकर यात्रा करते हैं। ये शुभ मंगल यात्रा का धार्मिक प्रावधान है। एक साथी ने लिखा है कि मेरा प्यारा पालतू लैब्राडोर बीटल नाम था उसका, दो दिन पहले वो गुजर गया हमेशा के लिए मुझसे। उन्होंने लिखा है कि मिलना बिछड़ना रीत यही है, प्यार यही है, प्रीत यही है, मेरा आखिरी गीत यही है। एक साथी ने लिखा है कि फूल खिले हैं तो झड़ेंगे ही, बादल हैं तो खिलेंगे ही, भूख प्यास है तो तड़पेंगे ही, ईर्ष्या है तो जलेंगे ही, तारे हैं तो टूटेंगे ही, अपने हैं तो रूठेंगे ही, और प्रेमी हैं तो बिछड़ेंगे ही। ऐसा क्यों जी?

साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में। गीतकार हैं शमसुल हुदा बिहारी, संगीतकार हैं ओपी नैयर। फिल्म का नाम है ये रात फिर ना आएगी। एक रहस्यमयी और पुनर्जन्म पर आधारित क्लासिक फिल्म जिसमें प्यार, धोखा, सस्पेंस का ताना बाना बुना गया, जहां अंत में सारे राजों से पर्दा उठता है। तो इस फिल्म के मुख्य कलाकारों और निर्देशक का नाम लिख दीजिए अपने कमेंट्स में, और किसी को आप कैसे विदा करते हैं, क्या कहते हैं उनसे, वो भी लिख दीजिए।

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का, 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन? दर दुम दर दुम दर दुम दर दुम दर दुम
3: दर। साथियों, आपने जो जवाब लिखे हैं वो हमने देख लिए और अब हम उन्हें पढ़ते हैं। ये रात फिर ना आएगी, इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे पृथ्वी राज कपूर, बिस्वजीत, शर्मिला टैगोर, मुमताज और निर्देशक थे ब्रिज सदाना। हमारे एक साथी ने कमेंट लिखा है कि बंद मुट्ठी आए थे जाएंगे खुले हाथ, आए थे अकेले जाएंगे अकेले, इससे जुड़ा गुजराती भजन है, एकला जा आव्या मनवा, एकला जवाना साथी विना संगी विना। इस आने जाने के बीच हमें जो मित्र या जीवन साथी मिला, परिवार बना, उसी से बना ये जीवन चक्र यूं ही चलता रहा है और रहेगा। और इस जीवन चक्र में जब विविध भारती जैसा साथी साथ हो तब जीवन का सफर सुरीला मधुर बन जाता है। ये अगला कमेंट है कि अक्सर देखा गया है कि प्यार में कई प्रेमियों के दिल टूट जाते हैं पर उन्हें जीवन में ना उम्मीद नहीं होना चाहिए और अपनी तकदीर पर भरोसा रखना चाहिए। हिंदी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म अराउंड द वर्ल्ड जो भारत की पहली 70mm टेक्नीकलर फिल्म थी, जिसमें सफर के दौरान रोमांस, कॉमेडी और विदेशी नज़ारों की यात्रा को

साथियों, आपके जवाब हमें मिल गए हैं। राज कपूर, राजश्री, प्राण, ओम प्रकाश, महमूद, प्रेम चोपड़ा, अमिता, असला, अचला, सचदेव और राज मेहरा। इस फिल्म के निर्माता निर्देशक थे पच्छी। गीत में आवाजें थी मुकेश और शारदा की। गीतकार हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन। फिल्म का नाम था अराउंड द वर्ल्ड और अभिनेत्री राजश्री के पिता मशहूर फिल्म निर्माता निर्देशक अभिनेता वी शांताराम जी और उनकी माता जी जानी मानी खूबसूरत अभिनेत्री जयश्री हैं। और इस फिल्म की शूटिंग भारत के अलावा जापान, अमेरिका, कनाडा, स्पेन में की गई थी। साथियों, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। तो सुरीला सफर के बन के हम सफर आज आप हमारे साथ चले और अपने विचार, बातें, संदेश आपने हमारे साथ साझा किए, आप सभी को हम देते हैं धन्यवाद। आज की तरह कल भी तय कीजिए संगीत का ये सुरीला सफर देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के साथ।

0: and Policy Research, the ministry said that the release of the magazines mark an important expansion of CSIR, National Institute of Science Communication and Policy Research's popular science publishing portfolio. India has made a strong medal haul at the IIT Nagoya Asian Games today, adding 4 medals across kabaddi, athletics, shooting and squash. The latest results have taken India's overall medal tally to 27. A report.
1: The Indian women's kabaddi team clinched the gold medal, defeating Iran 37-34 in a closely contested final. Captain Pushpa Rana led India to victory. In athletics, Savan Barwal bagged silver in the men's marathon, ending India's 44-year wait for a podium finish in the discipline, clocking 2 hours, 11 minutes and 37 seconds. His performance marked a personal best and a new national record. In shooting, Tilotama Sen, Vidarsa K. Vinod and Ashi Choksi secured silver in the women's 50-meter rifle 3-position team event, scoring 1,763 points. In mixed double squash, Joshna Chinnappa and Vilvan Senthil Kumar won bronze. With these 4 medals, India are currently placed 12th in the medal standings and its overall tally has reached 27 with 3 gold, 11 silver and 13 bronze. Komadi Parekh, Akashwani News, Delhi.
0: And now before we end the bulletin, the headlines once again. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar calls to leverage AI-created opportunities while addressing associated risks. Co-chairs event on AI in the context of international peace and security in New York. Mr. Jaishankar to address 81st United Nations General Assembly in New York this afternoon. Foreign Secretary Vikram Misri calls for urgent UNSC reform to give developing nations greater voice. Continuous rain in Odisha, Chhattisgarh, Bihar and Uttar Pradesh disrupts normal life. Heavy rainfall alert for today over parts of Uttar Pradesh, Uttarakhand, Chhattisgarh and Madhya Pradesh. Iran proposes deal to reopen Strait of Hormuz in 7 days if US meets its conditions. US rejects the proposal. Indian women's kabaddi team clinches gold, beating Iran at Asian Games, wins 2 silver medals in women's shooting and men's marathon. And with that, we end the midday news.
2: नमस्कार, दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एआई से मिलने वाले अवसरों का लाभ उठाने और इससे जुड़े जोखिमों से निपटने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में एआई विषय पर आयोजित कार्यक्रम की सहअध्यक्षता की। विदेश मंत्री आज न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने विकासशील देशों को अधिक अधिकार देने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधार का आह्वान किया। ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार और उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी। ईरान ने अमेरिका द्वारा उसकी शर्तें मानने पर 7 दिन के भीतर होर्मुज जलडबरू मध्य खोलने का प्रस्ताव दिया। अमेरिका ने प्रस्ताव खारिज किया। भारतीय महिला कबड्डी टीम ने एशियाई खेलों में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। महिला निशानेबाजी और पुरुष मैराथन में भी 2 रजत पदक हासिल किए। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एआई की संभावनाओं का उपयोग करने के साथ साथ इसके संभावित प्रभावों का अनुमान लगाने और जोखिमों को कम करने की आवश्यकता पर बल दिया है।
3: वे आज ग्रीस के विदेश मंत्री जॉर्ज गेरा पेट्रिटिस के साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में एआई, विशेष रूप से समुद्री सुरक्षा विषय पर आयोजित कार्यक्रम की सहअध्यक्षता कर रहे थे। एक रिपोर्ट।
4: डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि एआई और समुद्री सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र में भारत की महत्वपूर्ण प्राथमिकताएं हैं। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली घोषणा में एआई संसाधनों तक लोकतांत्रिक पहुंच, सुरक्षित और भरोसेमंद प्रणालियों के निर्माण, मानव क्षमता में निवेश तथा आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण के लिए एआई के उपयोग पर जोर दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि समुद्री क्षेत्र में एआई से समुद्री गतिविधियों की निगरानी, खोज और बचाव, आपदा प्रबंधन तथा संदिग्ध गतिविधियों की पहचान में मदद मिल सकती है। एआई का उपयोग जहाजों, संचार नेटवर्क और समुद्र के भीतर महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने वाले साइबर अभियान

0: साधनों के लिए भी किया जा सकता है। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: विदेश मंत्री एस जयशंकर आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। ये सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने अपने देशों की प्राथमिकताओं और नजरिए को सामने रखेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने विकासशील देशों की आवाज और प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान G77 के विदेश मंत्रियों की 50वीं वार्षिक बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए श्री मिश्री ने कहा कि सामूहिक प्रयासों से अल्पविकसित और विकासशील देशों को केवल नियमों का पालन करने वाले देशों की श्रेणी से आगे बढ़कर नियम तय करने में भागीदार बनना होगा। उन्होंने बहुपक्षवाद को जन केंद्रित और विकासोन्मुख बनाने में G77 की निरंतर प्रासंगिकता का भी उल्लेख किया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने वैश्विक महामारी से निपटने की तैयारियों को मजबूत करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई है। वे न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित कर रही थीं।
2: सुश्री श्रीवास्तव ने कहा कि भारत ने महामारी और अन्य स्वास्थ्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए प्रयोगशाला नेटवर्क, आपात समन्वय, स्वास्थ्य कर्मियों, आवश्यक दवाओं और चिकित्सा सुविधाओं की क्षमता बढ़ाई है। उन्होंने कोविड महामारी से मिले अनुभवों को दीर्घकालिक निवेश, मजबूत संस्थागत क्षमता और लचीली स्वास्थ्य प्रणालियों में बदलने पर बल दिया। उन्होंने आवश्यक स्वास्थ्य उत्पादों तक सभी देशों की समान और उचित पहुँच की आवश्यकता का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि कोविड महामारी के दौरान भारत ने करीब 30 करोड़ वैक्सीन की खुराक लगभग 100 देशों और संयुक्त राष्ट्र की दो संस्थाओं को उपलब्ध कराई। इस अवसर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने वैश्विक महामारी तैयारियों को मजबूत करने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया।
3: सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज पटना में देश के पहले पीड़ित अधिकार केंद्र का उद्घाटन किया। ये केंद्र बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के परिसर में स्थापित किया गया है। ये केंद्र विभिन्न अपराधों के पीड़ितों, जिनमें अदृश्य पीड़ित भी शामिल हैं, को एक ही स्थान पर कानूनी अधिकार और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएगा। यहाँ पीड़ितों को मनोवैज्ञानिक सहयोग, परामर्श और अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि बच्चों में नशे की लत को केवल जन स्वास्थ्य का मुद्दा नहीं बल्कि बाल संरक्षण के विषय के रूप में भी देखा जाना चाहिए। वे आज पटना में बचपन की पुनर्स्थापना, नशे की रोकथाम और देखभाल तथा संरक्षण की जरूरत विषय पर आयोजित सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के मेरठ में जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जोन ए में 16,726 अनधिकृत निर्माणों को सील कर ध्वस्त करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने शहर के 3 अन्य क्षेत्रों में अवैध निर्माण को लेकर भी विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के 85वें स्थापना दिवस के अवसर पर तमिल, तेलुगु, मराठी, बंगाली और असमिया भाषाओं में 5 नई लोकप्रिय विज्ञान पत्रिकाओं का शुभारंभ किया। इन पत्रिकाओं को CSIR राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान ने प्रकाशित किया है। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के 358 तालुकों में से 265 को सूखा प्रभावित घोषित किया है, जो राज्य का 74% हिस्सा है। 32 जिलों में बारिश की कमी और लंबे समय तक सूखे की स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। ओडिशा में कम दबाव की वजह से लगातार हो रही बारिश ने राज्य के कई हिस्सों, खासकर उत्तरी जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। मौसम विभाग ने आज ओडिशा में तेज बारिश का अनुमान जताया है।

0: लगातार हो रही बारिश ने उत्तरी ओडिशा में तबाही मचा दी है, जिससे बालेश्वर, भद्रक और जाजपुर में बाढ़ का गंभीर खतरा पैदा हो गया है। आखुआपदा में बैतरणी नदी खतरे के निशान को पार कर गई है, जिससे भद्रक और जाजपुर के कुछ हिस्सों में बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है। लगातार बारिश के कारण केउंझर में जोड़ा के पास राणासाला घाट पर भी सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है, जहां चट्टानों और मिट्टी के गिरने से लोगों और वाहनों को आवाजाही के लिए खतरा पैदा हो गया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: बिहार में पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने आज कई जिलों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है।
2: राज्य के विभिन्न जिलों में पिछले चार दिनों से हो रही लगातार बारिश से कोसी, गंडक और बागमती समेत कई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। सुपौल में कोसी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी को देखते हुए एहतियातन वीरपुर कोसी बैराज के 40 गेट खोल दिए गए हैं। वहीं पश्चिम चंपारण में गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। पटना समेत कई स्थानों पर हो रही लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। इस बीच मौसम विभाग ने आज पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण और गोपालगंज जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: उत्तर प्रदेश में बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। राज्य के 63 जिले तेज बारिश की चपेट में हैं और पूरे राज्य में सिर्फ एक दिन में औसत से 19 गुना ज्यादा बारिश हुई है। सभी जिलों में प्रशासन हाई अलर्ट पर है, सभी स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। इस बीच मौसम विभाग ने उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में भी दिन में कुछ स्थान पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के जरिए देश सेवा के मंत्र और अटूट संकल्प के साथ सार्वजनिक सेवा में 25 साल पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी विजन से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज हमारी विशेष श्रृंखला में जानकारी दे रहे हैं कि कैसे अहमदाबाद स्थित गिफ्ट सिटी जैसी दूरदर्शी पहलों के जरिए इस विजन को हकीकत में बदला गया है। एक रिपोर्ट।
3: वर्ष 2008 में परिकल्पित और भारत के पहले ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के रूप में स्थापित गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी गिफ्ट सिटी आधुनिक शहरी नियोजन और वैश्विक वित्त के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। स्वचालित कचरा संग्रहण प्रणाली, डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम और समर्पित यूटिलिटी टनल जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ निर्मित गिफ्ट सिटी भारत का पहला कार्यात्मक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र बन चुका है। गिफ्ट सिटी की दूरदर्शी नींव और उसके विकास पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
4: 2008 में वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस और रिसेशन का दौर था, लेकिन उस समय गुजरात फिनटेक के क्षेत्र में नए और बड़े कदम बढ़ा रहा था। मुझे खुशी है कि वो आइडिया आज इतना आगे बढ़ चुका है। गिफ्ट सिटी कॉमर्स और टेक्नोलॉजी के हब के रूप में अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। गिफ्ट सिटी वेल्थ और विजडम दोनों को सेलिब्रेट करता है। मुझे ये देखकर भी अच्छा लगता है कि गिफ्ट सिटी के जरिए भारत विश्व स्तर पर सर्विस सेक्टर में मजबूत दावेदारी के साथ आगे बढ़ रहा है।
3: इस अनूठे इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल को रेखांकित करते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा,
5: माननीय प्रधानमंत्री जी के गुजरात में निर्मित हुआ एक आइकॉनिक प्रोजेक्ट है गिफ्ट सिटी। आमतौर पर रियल एस्टेट के विकास का एक ट्रेंड होता है कि पहले उद्योग आते हैं, फिर लोग आकर बसते हैं और आवश्यकता अनुसार डेवलपमेंट होता है।
3: आज गिफ्ट सिटी भारत के बढ़ते प्रभुत्व का एक जगमगाता प्रतीक बन चुका है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है जिसमें 7 दिन के भीतर होर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और क्षेत्र में जारी संघर्ष समाप्त करने की बात कही गई थी। ईरान फिलहाल अमेरिका के आधिकारिक जवाब का इंतजार कर रहा है। ईरान ने प्रस्ताव दिया था कि सभी मोर्चों पर 7 दिन के भीतर संघर्ष समाप्त किया जाए, अमेरिका ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी हटाए, ईरान की जब्त धनराशि जारी करे और उसके तेल पर लगे प्रतिबंधों में छूट दे। इसके बाद होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने की बात कही गई थी। भारत की महिला कबड्डी टीम ने एशियाई खेलों में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारत ने ईरान को 37-34 से

पराजित किया। एशियाई खेलों में भारत का ये तीसरा स्वर्ण पदक है। इससे पहले महिला क्रिकेट टीम और 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में सुरुचि सिंह और कमलजीत की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने महिला कबड्डी टीम को खिताब बरकरार रखने पर बधाई दी है। एशियाई खेलों में भारत के सावन बरवाल ने पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। इस स्पर्धा में भारत ने 44 साल बाद पदक जीता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने पुरुष मैराथन में रजत पदक जीतने वाले सावन बरवाल को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन, धैर्य, टीम भावना और दृढ़ संकल्प ने देश को गौरवान्वित किया है। भारत की तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और आशी चौकसी की टुकड़ी ने एशियाई खेलों में आज महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन स्पर्धा में रजत पदक जीता और तिलोत्तमा व्यक्तिगत स्पर्धा में चौथे स्थान पर रहीं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राइफल थ्री पोजीशन टीम स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और कोचालुमकल और आशी चौकसी को बधाई दी है। स्क्वाश में अनाहा सिंह ने जापान की सतोमी वातानाबे को हराकर महिला सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। वहीं पुरुष सिंगल्स में अभय सिंह ने भी पाकिस्तान के मोहम्मद इरफान को हराकर गोल्ड मेडल राउंड में प्रवेश किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एआई से मिलने वाले अवसरों का लाभ उठाने और इससे जुड़े जोखिमों से निपटने की आवश्यकता पर बल दिया है। उन्होंने न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में एआई विषय पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता की। विदेश मंत्री आज न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने विकासशील देशों को अधिक अधिकार देने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधार का आह्वान किया। ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार और उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। और भारतीय महिला कबड्डी टीम ने एशियाई खेलों में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। महिला निशानेबाजी और पुरुष मैराथन में भी 2 रजत पदक हासिल किए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन। पेश है कार्यक्रम सदाबहार नखमे। कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत है हेमंत कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन। फिल्म का नाम है पतीता।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन?
1: आइए अब सुना जाए अगला गीत, जिसे लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत है सचिन देव बर्मन का, आवाज है हेमंत कुमार की, फिल्म का नाम है सोलवा।

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव है। वो है जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं एक बार फिर हेमंत कुमार की आवाज में। गीतकार है साहिर लुधियानवी, तर्ज है सचिन देव बर्मन की, फिल्म का नाम है हाउस नंबर 44।

0: द फैमिली मैन से दर्शकों का दिल जीतने वाले जेके, कुछ अनसुने किस्से, कुछ मजेदार राज। दमदार किरदार, कैमरे के परे उनकी क्रिएटिव दुनिया, जिंदगी की बातें और ढेर सारी मस्ती भी।
1: मांगा जो उसने एक सितारा, हमने जमीन पे चांद बुला।
0: सुनिए एक दिलचस्प बातचीत अभिनेता शारिब हाशमी के साथ।
2: मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटरटेन करने के लिए ही पैदा
3: हुआ।
2: जब मैं लोगों को हंसाता हूँ तो मेरा 2 लीटर खून बढ़ जाता है।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 29 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: ये विविध भारती है, देश की सुरीली धड़कन, और इस वक्त आप सुन रहे हैं सदाबहार गीतों का कार्यक्रम सदाबहार नखमे। आइए सुनते हैं अगला गीत हेमंत कुमार की आवाज में। गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार है सचिन देव बर्मन। फिल्म का नाम है बात एक रात की।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन राम।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुखड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: पहली अक्टूबर से हम शुरू कर रहे हैं नई श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। सुनिए संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: साथियों लीजिए सुनिए साहिर लुधियानवी का लिखा गीत हेमंत कुमार की आवाज में। तर्ज है सचिन देव बर्मन की, फिल्म का नाम है जाल।

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। तीन अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहे हैं कौन? एक मशहूर संगीतकार और एक मशहूर लेखक, निर्देशक और अभिनेता।
2: हमें तुम्हारा लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना हो पाया।
0: इंतजार कीजिए
3: साथियों, कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश है गायक और संगीतकार हेमंत कुमार की आवाज में। गीतकार है शकील बदायूनी। फिल्म का नाम है 20 साल बाद।
4: जरा नजरों से कह दो जी।

0: मन चाहेगी।
1: मन चाहेगी
0: मन चाहेगी।

ये विविध भारती है, हर दिल से जुड़ी देश की सुरीली धड़कन। पेश है कार्यक्रम मन चाहे गीत। कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं आपके खत और आपकी पसंद के फरमाइशी गीत। कार्यक्रम का पहला गीत जिसकी फरमाइश भेजी है आप सभी दोस्तों ने, दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया लाल, रीता देवी, आकाश कुमार और शिल्पा रानी, सुखजी नगर इंदौर से जगदीश चौहान पेंटर, ललिता चौहान, विशाल, आरुषि, प्रियंका, ख्याति, शक्ति, ऋतिक, शौर्य, बसंती बाई और किशन लाल जी चौहान, रामलीला मैदान सचिंदी से बाबा शिवानंद त्रिपाठी, शशि और शिवांग त्रिपाठी, मनु विजय मिश्रा, गोविंदा साहू, अमन पीए और गोविंद ओमर और अमरजीत सिंह सांगा, बेनीपट्टी मधु बनी बिहार से अरविंद कुमार, निवेश कुमार, नियति कुमारी, मनिया कुमारी और गुड़िया कुमारी, करीमनगर तेलंगाना से लक्ष्मी नारायणा, विजया अभिनय, साई किरण, शेखर श्रीनिवास और पन्ना वेंकटेश, एकलव्य नगर जिला रंगारेड्डी से सुषमा, बाबू अकेला और बिजली। तो लीजिए सुनिए अपने पसंद का ये गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार है आनंद बख्शी, संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और फिल्म का नाम है उपहार।

0: तीन अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहे हैं कौन, एक मशहूर संगीतकार और एक मशहूर लेखक, निर्देशक और अभिनेता।
1: हमें तुम्हारा लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना हो पाया।
0: इंतजार कीजिए।
2: मन चाहे गीत कार्यक्रम का अगला फरमाइशी गीत है मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी, तर्ज है उषा खन्ना की और फिल्म का नाम है साजन की सहेली। और इस गीत को सुनने के लिए हमें फरमाइशी खत लिखे हैं आप सभी दोस्तों ने। जिला कासगंज उत्तर प्रदेश से योगेंद्र नायक, गीता निहारिका और सुशांत नायक, तेलीपाड़ा बिलासपुर से रज्जन साहू, बेबी ईशानी, अनीता श्रीवास और छन्नूलाल श्रीवास, शाहूनगर यवतमाल महाराष्ट्र से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल चेतन, रोशनी और बेबी प्रियांशी, दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, झावेंद्र कुमार वर्मा।

किशोर कुमार वर्मा और दीपक कुमार वर्मा। छत्तीसगढ़ बेमेतारा जिला से सुरेश कुमार सारथी, कमलकांत सारथी, रुद्र कुमार सारथी, वीरेंद्र कांत सारथी और ब्रजकांत सारथी। महामाया पाड़ा ग्राम दरचौरा से फिरंता साहू और दोरोलीन साहू, कामेश्वरी कुमारी और प्रीतम कुमारी साहू की पसंद पर सुनिए ये गीत।

ये विविध भारती है और इस समय आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम मन चाहे गीत। कार्यक्रम का अगला गीत सुनने के ख्वाहिशमंद है आप सभी। नरेंद्रपुर कोलकाता से गौरी शंकर भट्टाचार्य, सौभाग्यवती रोली शंकर भट्टाचार्य, विष्णु चित्रकार देवदास भट्टाचार्य और कालिदास बाबू मोशाय, ग्राम लोहेडी महुबा उत्तर प्रदेश से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, अरविंद राघवेंद्र, रिया रेणु, दिव्यांशी रोनिका और रागनी यादव, नौसारी गुजरात से रमेश सूर्यवंशी, मीरा सूर्यवंशी, सिद्धेश माधुरी और गौरी सूर्यवंशी, गोबरेरिया रनकाल हावड़ा से शाहिदा बेगम, रज्जाक अली, दीपक और स्वीटी, और नेवल आर्मामेंट डिपो मुंबई से मिस्टर अनुराग मलियाली। आप सभी की पसंद पर सुनिए मोहम्मद रफी और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में आनंद बख्शी का लिखा गीत। धुन है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की और फिल्म का नाम है शारदा।

कार्यक्रम का अगला फरमाइशी नगमा है लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में। गीतकार है हसरत जयपुरी, संगीतकार है रविंद्र जैन, फिल्म का नाम है राम तेरी गंगा मैली। और सुनने के ख्वाहिशमंद है आप सभी दोस्त दिल्ली रोहिणी सेक्टर 24 से सत्य प्रकाश सनोडिया, दतरंगी भाटापाड़ा छत्तीसगढ़ से नोखेलाल वर्मा, हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा और पुष्पेंद्र मणि वर्मा, दिग्रस से किरण शिंदे, जया शिंदे और अनुराग शिंदे, कुंवर कॉलोनी बुढ़वा एमपी से प्रवीण श्रीमाली और मीना श्रीमाली, सेक्टर 24 कुंडलेश्वर खंडवा से योगेश गुजराती, रेखा गुजराती, महिमा हर्षिता मुस्कान और अभय गुजराती, मौताड़ा महाराष्ट्र से प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख, रिसोड करडा से सानवी देशमुख, सर्वद देशमुख और समस्त राजे जाधव वायाड़ और देशमुख परिवार। साथियों लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये फरमाइशी गीत।

0: साथियों आपको बता दें, आज के मन चाहे गीत कार्यक्रम में हमें सहयोग मिला स्नेहल भी से और योगिता जाधव से। मन चाहे गीत कार्यक्रम में आज मैं थी आपके साथ सलमा सैयद, और विविध भारती से कार्यक्रम मन चाहे गीत की प्रस्तुत करता है तेजश्री कामले।
1: मन चाहे गीत।
2: मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं इस्मत चुगताई का लिखा नाटक बांदी।
1: कौन कौन है? अरे ये मसहरी के नीचे कौन है? निकल निकल, नहीं तो हड्डी पसली एक कर दूंगा। निकल। ओ ये पलंग के नीचे घुसी क्या करेगी? कौन है तू?
2: हलीमा।
1: हलीमा, चल बाहर निकल। राहुल वाला
2: नहीं
1: नहीं निकलेगी। अच्छा ठहर जा।
2: अहिला मेरी टांग छोड़िए।
1: तू बाहर निकल।
2: नहीं आप मारेंगे।
1: जरूर मारूंगा। निकल तो निकल सीधी तरह।
2: आए मेरी चोटी, आपके हाथ जोड़ो छोटे सरकार। ए मैं मर गई। अल्लाह।
1: क्या कर रही थी ये मसहरी के नीचे दबकी? क्या कर रही थी?
2: कुछ नहीं सरकार।
1: सरकार की बच्ची क्यों आई थी कमरे में?
2: वो छोटे सरकार, उन्होंने नया बुबू ने भेजा।
1: तुझे नया बुबू ने हमारे कमरे में भेजा था?
2: जी।
1: झूठी।
2: अल्लाह कसम।
1: क्यों भेजा था?
2: वो बस भेजा था। सच्ची छोटे सरकार, मेरी गर्दन टूटी।
1: आज मैं तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। तू मेरे कमरे में आई कैसे?
2: सरकार कसम से बुबू ने।
1: झूठी।
2: सरकार आप सरकार।
1: मगर बुबू ने तुझे क्यों भेजा था? बोलती क्यों नहीं? बता, नया बुबू ने तुझे हमारे कमरे में क्यों भेजा था?
2: वो आपके आपके पैर दबाने के लिए।
1: हमारे पैरों में क्या हो गया?
2: फुटबॉल खेलकर आए होंगे ना। लेट जाइए सरकार, मैं पैर दबा दूं।
1: हमारे पैरों में दर्द नहीं
2: सरकार।
1: चल भाग यहां से, और अगर फिर आई तो जूते पड़ जाएंगे। अरे सुना नहीं, निकल हमारे कमरे से
2: सरकार।
1: अब जाती है कि
2: मुझे ना निकालिए सरकार।
1: क्या पक रही है गधी? अब हमारा हाथ छोड़।
2: मेरी अच्छे सरकार।
1: देख हलीमा, तू अभी बच्ची है, तू समझती नहीं रात को किसी लड़के के कमरे में जाना अच्छा नहीं।
2: छोटे सरकार, अपनी लौंडियों को यूं ना धुतकारिए।
1: ओहो कैसी बातें कर रही है हलीमा।
2: मैं आपकी बांदी हूँ छोटे सरकार, बड़े नवाब ने मुझे आपके लिए खरीदा था। मुझे मत ठुकराइए, मैं आपकी खिदमत करूंगी आपके कदमों में।
1: खामोश बेवकूफ, तू जानती है तू क्या कह रही है? हम बांदी के रिवाज के सख्त खिलाफ है। हलीमा तुम बांदी नहीं, तुम्हारे माँ बाप शरीफ इंसान थे, कहत के जमाने में मजबूर होकर वो तुम्हें दे गए थे।
2: मेरे माँ बाप ने मुझे 10 सेर अनाज के बदले मुझे बेच दिया था, बड़े नवाब ने मुझे आपके लिए खरीदा था।
1: ये इंसानों की खरीदो फरोख्त से हमें घिन आती है। नहीं हलीमा, तुम बांदी नहीं बनोगी, किसी अच्छे नेक आदमी से तुम्हारा ब्याह कर दिया जाएगा।
2: नहीं सरकार, ब्याह शादी हम बदनसीबों के हिस्से में नहीं। अगर आपने मुझे ठुकरा दिया तो मुझे कैसर नवाब के हाथ बेच दिया जाएगा।
1: कैसर नवाब
2: जी?

0: कैसा नवाब, आपको मालूम है कौन सी बीमारी है? सर से पैर तक सड़ रहे हैं।
1: मगर ये नहीं हो सकता।
0: यही होगा, उनके शिकारी कुत्तों की जोड़ी हशमत नवाब आपके बड़े भाईजान को बहुत पसंद है। 1800 की है कुत्तों की जोड़ी, वो कई बार मुझे मांग चुके हैं।
1: नहीं, ये हरगिज नहीं होगा। हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम पर भरोसा रखो हलीमा, हम ये गंदा व्यापार नहीं होने देंगे। हम प्यारी अम्मी से कहकर।
0: उनके हुक्म से तो नया बूबू ने मुझे भेजा है।
1: ये कैसे हो सकता है? प्यारी अम्मी तुमसे बहुत मोहब्बत करती हैं, तुम्हारा बड़ा ख्याल रखती हैं।
0: इसलिए कि मैं उनके लाडले की खिदमत में मुकर्रर की जाऊंगी।
1: मेरी अम्मी इतनी बेरहम नहीं हो सकती।
0: ये बेरहमी नहीं मेरे भोले नवाब, उनकी ऐन नवाजिश है। नया बूबू तो कहती थी आज सरवरी को आपकी खिदमत के लिए भेजा जाए।
1: सरवरी को? ला हौला वला कुव्वत।
0: हाँ सरकार, बूबू मुझसे खफा नहीं, क्योंकि मैंने जब्बार के मुंह पर जूती मार दी। मुए ने मेरी चुटकी काटी, मैंने पैर से जूती उतार कर दी नाक पर।
1: अच्छा किया, ये हरामजादा जब्बार बड़ा चलता पुरसा है।
0: नयाब बूबू ने बड़े नवाब से मुझे जब्बार के लिए मांगा, मगर उन्होंने कहा हलीमा तो मेरे छम्मन की है। अच्छा सरकार।
1: नहीं नहीं हलीमा छोड़ो।
0: मेरे नवाब।
1: हलीमा जाओ हलीमा, ये गुनाह है। Get out, you stupid girl.
0: छोटे सरकार।
1: तुम मुझे गुनाह के गार में घसीटना चाहती हो? निकल जाओ। Get out. Oh my God, my God.
0: या अल्लाह।
2: अरे भाई जहांगीर साहब और समन्या, अरे भाई क्या हाल चाल है?
3: आपकी दुआ है अफजल भाई।
2: अमा यार, क्या हर वक्त किताबों से सर मारा करते हो?
3: इम्तिहान आ रहे हैं, मुझे जरा फुर्सत कम है। कहिए क्या काम है?
2: हम आए हैं और तुम्हें फुर्सत नहीं, ये तो पुराना किस्सा है। अमा अमा ये क्या किस्सा है?
3: कौन सा किस्सा?
2: यही कि रात को तुम्हारी खिदमत में बांदी पेश की गई और तुम्हारे हाथ पैर फूल गए।
3: ऐसी तो कोई बात नहीं, दरअसल मैं लौंडियों बांदियों के रिवाज को पसंद नहीं करता।
2: वजह?
3: मैं इसे बदकारी समझता हूँ।
2: ओहो, मगर मियाँ हमारे यहाँ ये दस्तूर बरसों से चला आ रहा है।
3: मैं इसे गुनाह समझता हूँ।
2: अमा घास खा गए हो? क्या हमारे बुजुर्ग गुनाहगार थे?
3: कतई गुनाहगार थे और मुजरिम भी।
2: ला हौल वला कुव्वत, ये भूसा तुम्हारे दिमाग में ये वाहियात किताबें पढ़ पढ़ के भर गया है। किसी ने सुन लिया मियाँ तो पागलखाने पहुंचा दिए जाओगे।
3: ये घर कुछ पागलखाने से कम है, जमाने जहालत के रिवाज अभी तक कलेजे से लगाए बैठे हैं।
2: मैं हकीम साहब किबला के मतलब से होकर आ रहा हूँ, वो एक मुकवी माजून तैयार करवा रहे हैं।
3: मुझे मुकवी माजून की नहीं अफजल भाई, तन्हाई की जरूरत है। इम्तिहान करीब आ रहे हैं।
2: अमा यार लानत भेजो साले इम्तिहानों पर।
3: आप तशरीफ ले जाइए।
2: अमा हम तो तुम्हारे ही भले को।
3: आप सीधी तरह जाएंगे या नहीं?
2: बुजुर्गों की नहीं सुनोगे तो पछताओगे छमन मियां। बेचारी मुमानी साहबा सर पकड़े बैठी हैं। बड़े साहबजादे तो गए काम से, अब छोटे भी चले। मियां रियासत कोरट हो जाएगी अगर औलाद नरीना ना पैदा हुई।
3: औलाद नरीना शादी के बाद ही पैदा होगी।
2: मगर बांदी से क्यों भी देखते हो? शादी वक्त आएगा हो जाएगी।
3: और बांदी?
2: बांदी काम आएगी।
3: और हुरमा खानम बर्दाश्त करेंगे।
2: तुम्हारी मंगेतर पढ़ी लिखी है तो इसका यह मतलब नहीं कि वो खानदानी रस्म रिवाज को नहीं समझती हैं।
3: यानी मेरी बांदियों पर उन्हें कोई एतराज ना होगा?
2: नहीं, बांदी बांदी है और बेगम बेगम।
3: तो मैं ऐसी बेवकूफ लड़की से शादी नहीं करूंगा।
2: अमा अजीब हवनक आदमी हो।
3: अगर कोई औरत अपने मियाँ की बांदी को बर्दाश्त कर सकती है तो उसके दो मतलब हो सकते हैं, या तो वो शोहर से मोहब्बत नहीं करती या उसमें खुददारी नहीं। मैं जिस औरत से शादी करूंगा उसे बराबर के हुकूक दूंगा। अगर मैं बांदी रख सकूंगा तो उसे भी गुलाम रखने की इजाजत।
2: ला हौल वला कुव्वत, मियाँ तुम्हारा भेजा तो सलामत है।
3: जब अब्बा हुजूर तवायफों के यहां जाते थे तो मैं सोचा करता था हमारी प्यारी अम्मी के दिल पर क्या गुजरती हो।
2: ये तुम्हें क्या हो गया है साहबजादे?
3: जब्बार अब्बा हुजूर की बांदी नायाब का बेटा है। मैं जब उसे अब्बा हुजूर की मोटर चलाते देखता हूं मेरा सर शर्म से झुक जाता है। वो हमारा भाई है मगर उसके साथ गुलामों जैसा बर्ताव होता है। अब्बा हुजूर कैसे बर्दाश्त करते हैं? मैं और जब्बार नहीं पैदा करना चाहता।
2: तो एक काम करो साहबजादे।
3: क्या?
2: जाते जाते मैं मिनहारन भी को भेजे देता हूं, चूड़ियां पहन के बैठ रहो घर में।
3: शुक्र खुदा का, चले तो सही। कौन हलीमा, तुम फिर आ गई? नायाब बुबू?
0: मुझे नायाब बुबू ने नहीं भेजा, आज मैं खुद आई हूँ।
3: हलीमा
0: खुदा का वास्ता अच्छे नवाब, अगर मुझसे ऐसी घिन आती
3: नहीं
0: है तो...
3: हलीमा हमें तुमसे घिन

0: तुम छोटी सी थी, तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर चली गई तो तुम बहुत रोई। हमारा नन्ना सा दिल तुम्हें रोता देखकर तड़प गया। हलीमा, तुम हमें बहुत प्यारी लगती हो, इतनी प्यारी कि तुम्हारी तरफ देखते हुए डर लगता है।
1: मेरे अच्छे नवाब।
0: नहीं नहीं हलीमा, हमारे इतने करीब ना हो। ये रात का सन्नाटा, इस पर तुम्हारे ये आंसू। हलीमा, हम इंसान हैं, फरिश्ता नहीं, हमारे अज़्म को पाश पाश न करो। तुम्हारे आंसुओं से हमारा गरेबान चल उठेगा, रहम करो हलीमा।
1: रहम की भीख तो मैं आपसे मांगने आई हूँ। कल पैसा नवाब अपने शिकारी कुत्ते बेच रहे हैं, मैं आपकी हूँ मियाँ, अपनी हलीमा को बचा लीजिए।
0: हलीमा, मेरा एक दोस्त है, तुम उससे शादी कर लो, वो मेरा बहुत प्यारा दोस्त है।
1: मैं किसी की दुल्हन बनने से बेहतर आपकी लौंडिया बनना चाहूंगी।
0: मुझे बांदियों से घिन आती है, तो मैं तुमसे शादी करूंगा।
1: अल्लाह का वास्ता, शादी का लफ्ज भी मुझसे नहीं निकालिएगा। याद नहीं, सिकंदर नवाब ने अपने निकाह की जिद की थी, उनके दादा ने निगोड़ी को जहर पिला दिया था।
0: कौन सिकंदर नवाब? वो पगले चचा?
1: हाँ, वो उसके गम में पागल होकर गली कूचों में खाक छानने लगे।
0: हम तुम्हें मरने नहीं देंगे हलीमा।
1: आपके फरिश्तों को कुछ पता नहीं चलेगा और आपकी हलीमा खाक में मिल जाएगी। आंख खोलकर आप ही को देखा और दिल में बसा लिया, आपकी बांदी बनना मेरे लिए मिराज से कम नहीं। आपकी और आपकी दुल्हन बेगम की खिदमत करूंगी और अपने नसीब को दुआ दूंगी।
0: नायाब बुबू की तरह और जब्बार पैदा होंगे, वो ड्योढ़ी पर पहरा देंगे या मोटर साफ करेंगे,
1: ये उनकी खुशकिस्मती होगी।
0: तुम जाहिल और बेवकूफ हो।
1: मगर हूँ आपकी।
0: ओहो, जाओ हलीमा, खुदा रह चली जाओ।
1: मुझसे पीछा छुड़ाना है तो अपने हाथों से मेरा गला घोट दीजिए।
0: हलीमा, तुम्हारे हाथ कितना सर्द हो रहे हैं।
1: तो गर्म कर दो मेरे शहजादे।
0: हलीमा हलीमा, हम तुम्हें धोखा नहीं देंगे। हलीमा, हम खुदा को हाजिर और नाजिर जानकर कसम खाते हैं कि तुम्हें अपनी बेगम बनाएंगे, तुम हमारी दुल्हन हो। खुदा और रसूल खुदा की कसम, तुम हमारी दुल्हन हो। हलीमा हलीमा।
2: हर बात की एक हद होती है नायाब, लड़के को तो जैसे जुनून हो गया है, दुनिया जहान का होश नहीं। बांदी न हुई, जी का आजार हो गई, अल्लाह रखे अपने बाप पर गए हैं।
3: ऐसा ही जुनून था, मगर जब जब्बार पेट में आया तो सब चाव चौचले खत्म। तेल देखिए, तेल की थार देखिए, मुझे तो लौंडिया इन दिनों कुछ मरझिल जैसी दिखाई देती है।
2: ऐ सच, तुम्हें खुदा की कसम।
3: हाँ बेगम, भलाई आंखों से कोई बच सकता है? अब कोई दिन जाता है जो साहबजादे के सारे चाव चौचले खत्म।
2: अभी तो कुछ गर्मी में कमी नजर नहीं आती है।
3: आ जाएगी, आप देखते जाइए, जी से उतरी के साहबजादे घिन खाने लगेंगे।
2: तो फिर निगौड़ी को गांव भिजवा दो।
0: क्या गांव जा रही हो? क्यों?
1: मेरा जी चाह रहा है।
0: हमें छोड़कर चली जाओगी?
1: जल्दी आ जाऊंगी।
0: कितनी जल्दी?
1: थोड़े दिनों बाद।
0: कितने होते हैं थोड़े दिन?
1: यही कुछ 6-7 महीने।
0: 6-7 महीने?
1: आहिस्ता बोलो।
0: हम मर जाएंगे।
1: अल्लाह न करे, आपकी बलाएं मेरे सर मेरे नौशा, बुरी फाल मुझसे न निकाली। अल्लाह अपने रहम और करम से आपकी खदमत के लिए जरूर वापस लाएगा।
0: और जो न लाया हलीमा, तुम्हारे जाने के ख्याल से मेरी जान खींची जाती है, छाती में सांस घुट रही है। तुम क्यों जा रही हो हलीमा? जान, ऐसा चीज डरता है कि तुम चली गई तो फिर वापस ना होगी।
1: नहीं नौशा, मैं बच जाऊंगी, सभी नहीं मर जाती। सनोबर की और बात थी, बड़े सरकार ने लात मार दी थी तो पेट में बच्चा मर गया था। हाय, मैं मर जाऊं, ये क्या कह रही हूँ?
0: बच्चा?
1: नहीं नहीं छोटे सरकार, मैं
0: मेरे सर की कसम खा।
1: नहीं अल्लाह नहीं।
0: हलीमा, तू झूठ बोल रही है, इसमें रोने की क्या बात है?
1: मैं मर गई तो सरवरी आपकी खिदमत करेगी।
0: सरवरी? नहीं हलीमा, हमें किसी की खिदमत की जरूरत नहीं। तुम गांव नहीं जाओगी हलीमा।
1: जी।
0: बच्चा कब तक होगा?
1: 6 महीने बाद।
0: अगर रोएगा तो हम बाजी को बहुत डांटेंगे।
1: गांव से इस बदनसीब के रोने की आवाज आपके कानों तक कैसे पहुंचेगी सरकार?
0: तुम गांव नहीं जाओगी।
1: ऐसी बातें नहीं कीजिए सरकार।
0: मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा।
1: लीला मेरे भोले सरकार, ये महल का दस्तूर है।
0: हम इस घिन

0: अपने दस्तूर को तोड़ेंगे। शट अप।
1: घोड़े बचिए हशमत नवाब,
2: ये लीजिए।
1: ये शह वो मारा।
0: भाईजान मुझे आपसे कुछ बातें करना थी।
2: मैं इस वक्त बड़े जोर की बातें जमी है, खुदा की कसम। लीजिए अफजल भाई, खा लीजिए, हमारा घोड़ा हजम ना होगा।
0: भाईजान
2: मां क्या बेवक्त सर पर नाजिल हो जाते हो।
1: शह हशमत नवाब शह।
0: प्लीज भाईजान, मेरी मौत और जिंदगी का सवाल है।
2: ओफ कहो, क्या कहना चाहते हो।
0: जरा मैं
2: अमा तकल्लुफ क्यों कर रहे हो, अफजल भाई से क्या पड़ता।
0: भाईजान
2: अमा कह भी चुको,
0: हलीमा को गांव क्यों भेजा जा रहा है।
1: क्यों इतना सटपटाते हो बरखुरदार, अरे तुम्हारे लिए दूसरा इंतजाम हो जाएगा।
0: मुझे दूसरा इंतजाम नहीं चाहिए।
1: सरवरी जालिम पटाखा है पटाखा, है क्या उठान है। अमा उस चिपकली से तुम्हें कह नहीं आती।
2: अफजल भाई अच्छा जाने दो, आगे चलो।
0: मैं उसे गांव नहीं भेजने दूंगा।
2: न्याय ये महल का पुराना दस्तूर है।
0: वो गाय भैंस नहीं, वो
1: कहो कहो शर्मा क्यों गए।
0: वो मेरे बच्चे की अमानतदार है।
2: शर्म करो मियां साहबजादे, बड़े भाई के सामने मुंह फाड़कर अपने करतूत की शेखी मार रहे हो। ला हौल वला कुव्वत।
1: महल की पॉलिटिक्स में मर्दों का दखल नहीं होता। प्यारी अम्मी जो मुनासिब समझती हैं वही करती हैं।
0: भाई जान,
1: और फिर सितंबर के महीने में हुरमा बीबी से तुम्हारा निकाह होने वाला है।
0: मैं हुरमा से शादी नहीं करूंगा, मेरी शादी हो चुकी है।
2: बहुत खूब, वो कब।
0: मैंने खुदा को हाजिर और नाजिर जानकर हलीमा को अपना लिया।
2: और निकाह काजी कौन था।
0: खुदा और रसूल के बाद काजी की जरूरत नहीं।
1: वल्ला तुमने अपना निकाह खुद पढ़वा लिया, अच्छी दलील है।
2: जाओ मियां, क्यों वक्त जाया कर रहे हो। हाँ भाई अफजल भाई, हाँ भाई। दूसरी बाजी जमाए। ला हौल वला कुव्वत, सारा मजाक किरकिरा कर दिया।
0: मैं हलीमा के साथ वो सब कुछ नहीं होने दूंगा जो सनूबर के साथ।
1: जमन मियां तुम जामे से बाहर हो रहे हो, अपने बड़े भाई का दिल दुखाते तुम्हें शर्म नहीं आती।
0: मेरे बड़े भाई का दिल पत्थर का है, इन्हें दुख नहीं होता।
2: दूर हो जाओ मेरे सामने से, इससे पहले कि मैं ये भूल जाऊं कि तुम मेरे छोटे भाई हो। दबा हो जाओ यहां से।
0: भाई जान मैं
2: बदतमीज।
1: ये क्या करते हो हशमत मियां, क्या
2: मैं इस मर्दूत का खून पी जाऊंगा, इसे हिम्मत कैसी हुई।
1: चले जाओ चमन मियां, खुदा का वास्ता भाई चले जाओ यहां से।
3: बेगम साहिबा एक बात कहूं।
4: कह भी चुको, क्या कह रही हो।
3: नजम बिटिया भी तो अल्लाह रखे उम्मीद से है,
4: उसका इस वक्त क्या जिक्र ले बैठी।
3: अल्लाह सलामती से फरागत दिलाए। फरागत पाकर विलायत जाने की इरादा है।
4: हाँ हाँ, खुदा जीता रखे मेरी लाडली को।
3: आमीन। तो गोद वाले को विलायत संतुन ले जाएंगी।
4: दीवानी हुई हो, वहाँ मुई ठिठरन में गोश्त की बोटी को क्या लेके जाएगी। खैर से वो मेरे पास ही रहेगा,
3: और दूल्हा नवाब का अकेले जाना भी दुरुस्त नहीं, वो मुई फरिंगन फिर ही लग जाएगी।
4: अय है दीवानी हो गई हो नायाब, इस वक्त उस प्यारों पीटी मेम की मैयत काहे को पीटने बैठ गई।
3: अल्लाह जानता है बेगम, आप तो जबान कतरे लेती हैं, मुंह जली की बात तो सुनिए। आपका नमक खाया है तो क्या मैं।
4: ए बुआ तो कुछ मुंह से फूटो तो।
3: नजम बिटिया और हलीमा का बस दो चार दिन का फर्क होगा, हफ्ते भर का भी हुआ तो कोई बात नहीं, बच्चे को पाक साफ दूध मिलेगा।
4: मगर अभी 6 महीने पड़े हैं, खैर से उस वक्त मुई को बुला लेना, इस वक्त तो मुर्दार को दफा करो।
3: जो हुक्म सरकार, मगर गांव में अच्छी देखभाल न हुई तो धान पान तो है ही अल्लाह मारी। यहाँ मेरे नजरों के सामने रहेगी तो मुई को अच्छी तरह खिलाऊंगी पिलाऊंगी, और फिर साहबजादे की जिद भी पूरी हो जाएगी।
4: जिद ही तो मैं पूरी नहीं करूंगी,
3: आपकी मर्जी, मगर इतना कह देती हूँ साहबजादे भी जिद के पूरे हैं, बस कुछ दिन जाते हैं कि आप ही आप साहबजादे के दिल से नामराद उतर जाएगी, अपना काम भी निकलेगा और छुद्दा उन पर धरा जाएगा।
4: कभी सोचती हूँ नायाब तुम न होती तो।
3: अल्लाह ने आपकी खिदमत की सआदत बख्शी, ये मेरे नसीब है बेगम साहब।
4: जरी खासदान आगे बढ़ाओ।
3: लीजिए, हुक्म हो तो आज हुरमा बीबी को जेवरात दिखा लाऊं, देखे क्या कुछ पसंद फरमाती है।
4: अच्छा दिखा लाओ।
3: अभी मतन तुम्हारी बेगम कहाँ है, जाओ जरा अर्ज करो, नायाब खिदमत में हाजिर हुई है।
4: ओहो नायाब बहू, कहिए महल में सब कैसे हैं, अच्छे तो हैं।
3: जी हाँ, सब अल्लाह का फजल है। बैठिए बिटिया,
4: जरा नहाने जा रही हूँ, आप बैठिए, अम्मी आती ही होंगी।
3: लॉन्ड्री तो आपके पास हाजिर हुई थी।
4: क्या है।
3: ये जेवरात पसंद फरमाइए।
4: क्यों
3: रानी बिटिया, नवाब

0: मैंने जेवरात भेजे हैं, इनमें से जो पसंद हो वो फरमा दीजिए, बाकी के लिए बम्बई ऑर्डर जाएगा।
1: मैं क्यों पसंद फरमाऊं?
0: छोटे सरकार की जिद है कि आपकी राय के बगैर कुछ ना खरीदा जाए।
1: कौन छोटे सरकार? छम्मन मियां?
0: जी जी हाँ।
1: ओहो, हलीमा बीवी के लिए मुझसे जेवरात क्यों पसंद करवा रहे हैं?
0: क्या फरमा रही है बिटिया, छोड़िए मजाक। ये देखिए, ये विलायती जुगनू, क्या कहते हैं उसे, अल्लाह मारा, ये हाँ लाकेट।
1: इसमें मजाक की कौन सी बात है, छम्मन मियां भी दीवाने हैं, अपनी बीवी के लिए जेवर खरीद रहे हैं तो मेरी पसंद की क्या जरूरत?

0: अति जुगनू क्या कहते हैं उसे, अल्लाह मारा ये, हाँ लाकेट।
1: इसमें मजाक की कौन सी बात है, छमन मियां भी दीवाने हैं, अपनी बीबी के लिए जेवर खरीद रहे हैं तो मेरी पसंद की क्या जरूरत
0: है। हाय हाय रानी बिटिया क्या फरमा रही हैं आप,
1: क्यों क्या हलीमा उनकी दुल्हन नहीं है?
0: खुदा ना करे, हलीमा तो बांधे है।
1: बच्चा तो छमन मियां का है ना।
0: बच्चा कैसा बच्चा?
1: फरखुंदा खाला कह रही थी कि
0: ए बस करो बिटिया, खुदा ना करे ये लौंडियां बांदियां इधर उधर का कूड़ा महल के माथे थोपना चाहती हैं।
1: बोलो बोलो जब्बार की कसम खाकर कह दो।
0: ए बिटिया आप भी गजब करती हैं, आखिर को नवाबजादे हैं मगर वो लौंडे बांदी तो जी का बेलावा होती है, इन कमबख्तों से शादी ब्याह नहीं होता।
1: तो नवाबजादे शादियां किससे करते हैं?
0: हम नवाबजादियों से और क्या बिटिया रानी।
1: हशमत भाई की तो एक बांदी थी, क्या नाम था, सनोबर।
0: ये वो रानी बिटिया ये जेवर तो मुलाहजा फरमाइए।
1: एक बात पूछूं, सच सच बताओगी बाबू?
0: शौक से पूछिए मगर वो
1: नवाबजादों के लिए तो बांदियां होती हैं और नवाबजादियों के लिए गुलाम।
0: हाय हाय बिटिया रानी जरा तो शर्म कीजिए, ये आप क्या कह रहे हैं?
1: क्यों अगर छमन मियां को जी बहलावा चाहिए तो उनकी दुल्हन को भी तो।
0: अम्मा जान नहीं इसलिए मुझ बुढ़िया की गत बना रहे हैं, वो होती तो मजा न थी जो यूं मेरे मुंह पर जूतियां मारती। बेटी जान ये गल भर की जबान लेकर किसी ऊंचे खानदान में कैसे निभेगी?
1: खुदा न करे जो मैं किसी ऊंचे खानदान को निभाने जाऊं, मैं ऊंचे खानदानों को गिलाजत का ढेर समझती हूँ।
0: बस बीवी बहुत दुर्गत बना ली, बंदी चली।
1: आय हाय बुबू मैंने आपको तो कुछ नहीं कहा।
0: जिनका सारी उम्र नमक खाया उनको तो कहा, तो मेरी सात पुश्तों को कहा।
2: ओहो नायाब आई है, चली कहाँ, क्या हवा के घोड़े पे सवार आई हो? ये डब्बे कैसे हैं?
0: बिटिया रानी को जेवर दिखाने को भेजे हैं, खैर से बकरीद की चार निकाह है, जेवर बम्बई से बनकर आएंगे।
2: नायाब बूबू तुम खानदान से अलग नहीं, तुमसे कौन सा भेद छुपा है, समझ में नहीं आता किस मुंह से कहूँ। जमाना बदल रहा है बुआ, आजकल के बच्चे कुछ नहीं समझते।
0: मैंने तो पहले भी कहा था बेगम ये फरखुंदा बेगम की सोहबत रंग लाएगी।
2: ऐ है कैसर नवाब कीड़ों भरा कबाब, लानत उसकी सूरत पर।
0: आप बहुत भोली हैं बेगम, नवाबों में हजार ऐब हुआ करते हैं मगर खसम को छोड़ के दूसरा करना और वो भी बाल बच्चों वाली होकर, तौबा मेरी तौबा। बाबा ने पढ़ा लिखा के बेटी का सत्यानाश मार दिया।
2: ऐ खानदान ने उनका हुक्का पानी बंद करके क्या बिगाड़ लिया, जहाँ जाते हैं लोग उन्हें हाथों हाथ लेते हैं, नाम है इज्जत है।
0: सुना है मियाँ की कमाई पूरी नहीं पड़ती तो खुद नौकरी करती हैं, मर्दों के कॉलेज में पढ़ाती हैं बेगम, नौच यूँ कोई शर्म हया बेच खाए तो क्या आज करूँ बेगम से जाके?
2: यही कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मेरी एक नहीं चलती।
3: अम्मा हमारे सामने अपनी बदकारियों का इस ढिकाई से इकरार, एक तो मोहरी में मुंह देते हो और।
4: मगर प्यारी अम्मी ने हलीमा को मुझे दिया, वो मेरी है, वो मेरी जिंदगी है, मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता, वो मेरे बच्चे की माँ है।
3: मियाँ तुम बिल्कुल ही बच्चे हो।
4: दूस भाई आप नहीं समझते।
3: इसमें समझने की क्या बात है साहबजादे,
4: हलीमा मर जाए।
3: मर जाने दो साली को, हम तुम्हें अपनी माँ रोक देंगे, वल्लाह क्या पटाखा है।
4: कमीने पाजी।
3: छमन होश में आओ, क्या पागल हो गया?
4: हाँ हाँ मैं पागल हो गया हूँ, मैं किसी का खून कर दूंगा, चले जाइए यहाँ से। हलीमा हलीमा।
5: जी सरकार।
4: कौन सरवरी?
5: जी।
4: तुम यहाँ क्या कर रही है?
5: आपके पाजामे में कमरबंद डाल रही हूँ, बटन कहाँ है, कुर्ते में लगा दो।
4: चल भाग यहाँ से और हलीमा को भेज।
5: मुझे बेगम साहब ने भेजा है, हम्माम में पानी तैयार है।
4: हलीमा कहाँ है?
5: ये लीजिए कुर्ता, नया तौलिया हमाम में लगा दिया है।
4: ओहो हम पूछते हैं हलीमा कहाँ है और तू बकवास किए जा रही है।
5: अल्लाह हमें क्या मालूम है, उधर कहीं बैठी होगी।
4: जा बुला ला। जाती है कि मार खाएगी, चल भाग।
5: हम नहीं जाते।
4: कहाँ है हलीमा बता।
5: उई अल्लाह मेरी छोटी तो छोड़िए, हाय मैं मर गई, हाय मेरी मैया।
4: बता, नहीं बताएगी?
5: बताती हूँ।
4: बोल।
5: वो उधर शागिर्द पेशे में।
4: क्यों?
5: वो उसका जी अच्छा नहीं है। इन्हें खुदा का वास्ता कहाँ जा रहे हैं, मर्दों के जाने का वक्त नहीं।
4: फरखुंदा बाजी।
5: अरे छमन मियां क्या पैदल भागे चले आप?
4: साइकिल पर। फरखुंदा बाजी वो मर रही है।
5: अहे कौन?
4: हलीमा।

0: प्यारी अम्मी ने उसे काल कोठरी में फेंकवा दिया है। मैंने कहा डॉक्टर ने बुलवा दीजिए तो बोले भको मत।
1: ठहरो,
0: मर जाएगी, वो मर जाएगी सनूबर की तरह।
1: नहीं मियाँ, तुम्हारी हलीमा नहीं मरेगी, मैं चलती हूँ, जरा हॉस्पिटल एम्बुलेंस के लिए फोन कर दूं।
2: बुबू, नया बुबू, अस्पताल की लॉरी आई है।
3: अस्पताल की लॉरी? दीवानी हुई है ना मुराद?
2: अल्लाह कसम, चल के देख लो।
3: ये क्या कस्सा है नायर?
2: लॉरी के पीछे फरकुंदा नवाब की मोटर, मैंने अपनी आंखों से उतरते देखा, साथ में छमन मियां भी हैं।
3: तो ये बात है, फरकुंदा नवाब की ये हिम्मत।
4: लीजिए, वो आ गई।
1: तस्लीम मानी जान।
3: जियो, ये मुझे अस्पताल की लॉरी क्यों आई है?
1: हलीमा को लेने।
3: तुम्हारी अकल मारी गई है फरकुंदा नवाब?
1: इस वक्त बहस ना कीजिए, पहलोठी का बच्चा है। अगर
3: तुम्हारी बला से, तुम कौन होती हो महल के मामलात में दखल देने वाली?
1: देखिए मुमानी जान, बात बढ़ाने से कोई फायदा नहीं, अगर केस बिगड़ गया तो याद है सनोबर का किस्सा।
3: हद से न बढ़ो फरकुंदा।
1: मुझे मजबूर न कीजिए मुमानी जान।
3: क्या मतलब?
1: मतलब ये कि फिर मुझे पुलिस को फोन करना पड़ेगा।
3: पुलिस?
4: इंशाल्लाह।
3: मामू को पुलिस चढ़ा के लाओगी? गारत हो मेरे सामने से।
1: छमन, स्ट्रेचर मंगवाओ।
0: नहीं, मैं उठा लूंगा।
1: संभाल के इस चादर में लपेट लो।
5: आप क्या कर रहे हैं छोटे सरकार? अल्लाह का वास्ता, मुझे मर जाने दीजिए।
0: चुप रहो बेवकूफ।
1: कमबख्त लालटेन भी तो बुझी जाती है। ओफो,
0: कोई बात नहीं, मुझे दिखाई दे रहा है।
6: ये क्या हो रहा है?
1: आदा मामू जान, हलीमा को अस्पताल ले जा रहे हैं।
6: हमसे पूछे बगैर?
0: ये मर जाएगी अब्बा हुजूर।
6: मर जाने दो
0: अब्बा हुजूर।
6: इसे पलंग पर डालो और हमारे साथ आओ।
0: नहीं,
6: तुम्हारी ये हिम्मत? एक जलील बांदी के लिए हमसे गुस्ताखी कर रहे हो बेशर्म?
0: ये बांदी नहीं, मेरी बीवी है।
6: क्या बकते हो मर्दूद? हम तुम्हें आग कर देंगे, कौड़ी कौड़ी को मोहताज कर देंगे।
0: मुझे आपकी दौलत से एक पाई भी नहीं चाहिए।
6: तुम्हारे इतने दिमाग?
4: होश में आओ बेटे, मैं अम्मी डॉक्टर नहीं बुलवा दूंगी।
0: नहीं प्यारी अम्मी, अब ये महल मेरे और मेरी बीवी के लिए जेल से बदतर है।
4: अरे कहाँ जा रहा है छमन मेरे लाल, इस बला को लेके कहाँ जाएगा बेटे?
0: दुनिया बहुत बड़ी है प्यारी अम्मी, सभी तो इस महल में नहीं रहते। मैं भी वहां जा रहा हूँ जहाँ और करोड़ों रहते।
4: न जाओ मेरे लाल।
0: खुदा,
4: न जाओ मेरे लाल। छमन,
6: जाने दो बेगम, साहबजादे नाक के बल चलकर वापस आएंगे। जरा दो चार थपेड़े खा लेने दो, मिजाज दुरुस्त हो जाएंगे।
4: वो नहीं आएगा, वो कभी नहीं आएगा, मैं उसे जानती हूँ। ना मुराद बांदी ने मेरे लाल पर जादू कर दिया।
2: नहीं बुबू, कैसे हैं चमन मियां के साहबजादे, कैसे हैं बताओ ना।
3: मेरे कान न खा, मुई छाती में सांस तो समाती नहीं, दम तो लेने दे रही।
4: अरे अब दम बाद में लेना, पहले बताओ बच्चा कैसा है?
3: अरे बेगम, बस चांद का टुकड़ा है, वो अपने दादा की सूरत।
4: घर बार कैसा है?
3: अरे बेगम कुर्बान जाऊं, ना घर ना बार, मुई तिल बराबर कोठरी है, बस अल्लाह रखे आपकी मुसहरी जितनी होगी के उससे कुछ बड़ी। पर बेगम क्या बताऊं, मेरा तो देखकर कलेजा फट गया। मैं गई तो हलीमा अंगीठी पर कुछ पका रही थी और छमन ने वहां पलंग पर लेटे थे, एक हाथ में किताब थी और दूसरे से बच्चे का झूला हिला रहे थे।
4: या अल्लाह, खुदा समझे उस नामुराद बांदी से।
7: नाट्य तरंग में अभी आप इसमत चुगताई का लिखा नाटक बांदी सुन रहे थे। भाग लेने वाले कलाकार थे मुहाफिज हैदर, डॉली रिजवी, सैयद अहमद रिजवी, क्यू एन कश्मीरी, मुमताज बशीर, सुरैया डागर, सिकंदर जहां, रेखा गांधी, शमीम बानू, प्रकाश अरोड़ा, शाहगुल दुर्रानी और हेमांगिनी रानडे। ये आकाशवाणी मुंबई की प्रस्तुति थी। अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम संपन्न होता है।
8: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।

0: के जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
1: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
2: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला।
2: दोस्तों नमस्कार, एक गायिका जिनका नाम था सुषमा श्रेष्ठ।

0: पूर्णिमा के नाम से वो खूब मशहूर हुई। आज बॉम्बे टॉकीज में आपको सुनवा रहे हैं जानी मानी गायिका सुषमा श्रेष्ठ यानी पूर्णिमा से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। तो आइए सुनते हैं इस बातचीत का दूसरा भाग। सुषमा जी, आज फिर एक बार आपका हम स्वागत करते हैं और चलिए बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो इतने सारे संगीतकारों के साथ आपने काम किया है जी, बड़े महान लोग, एक बाल गायिका के रूप में ये अनुभव आपका कैसा रहा, क्योंकि आप लगभग छोटी ही थी।
1: हाँ हाँ।
0: और किसके साथ ज्यादा कंफर्ट जोन में रही?
1: नहीं मंदाकिनी जी, मुझे इस बात का एहसास ही नहीं था कि मैं किन दिग्गजों के सामने खड़ी हूँ
0: जी,
1: मैं किन दिग्गजों के साथ काम कर रही हूँ, ये कौन है जो मुझे इतना प्यार कर रहे हैं। जैसे मदन मोहन जी के बारे में, उनके गुस्से के बारे में बहुत सुना था
0: जी, बिल्कुल।
1: अब उनके पास गई वो कोशिश फिल्म, उसमें दो ही गाने थे मंदाकिनी जी, एक रफी साहब का था और एक मेरा। तो मैं जब गई उनके पेडर रोड के फ्लैट में, बहुत बड़ा हॉल था उनका और सारे कोरस सिंगर्स, मैं उन्हें सहगायक कहती हूँ, कोरस सिंगर्स नहीं कहती, वो बैठे थे, कुछ म्यूजिशियंस भी थे, वो टेनिस खेलने गए थे और हम सब बैठे हैं। थोड़ी देर में आए, आते ही बोले, सब एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, बच्चा कहाँ है, बच्चा कहाँ है, बच्चा कहाँ है। वो बच्चा तो मतलब मैं इतनी छोटी सी थी तब, तो ये है वो जो मैसेंजर्स हमारे होते थे जो हमको रिकॉर्डिंग्स के मैसेज दिया करते थे, जागीरदार जी बोले, सब जी ये इतनी

0: बेटी आजा बेटा गाना कौन लिखेगा, तो मौसी लिखती थी।
1: अच्छा।
0: जैसे उन्होंने गाना शुरू किया, बोला देखो अब मैं सुनाता हूँ आराम से, हाँ डरने का नहीं। अब उन्होंने शुरू किया, अगर मैं अपनी जुबानी कहूँ तो मेरा पिकअप बहुत फास्ट है मंदाकिनी जी,
1: जी
0: बहुत फास्ट। तो जैसे ही मदन मोहन जी ने गाना गाया तो मैं रुकी, क्योंकि ये तमीज सिखाई गई थी कि जब तक वो नहीं कहेंगे तुम गाओ, तुम्हें याद भी हो गया तो।
1: अच्छा।
0: तो मुझे देखा, बोले एक बार और गाऊं, कहा नहीं मैं गाऊं, तो बोले गाओगी कहा। तो मैंने शुरू किया, वो गाना था कुछ कोशिश फिल्म का गाना था। हमसे है वतन हमारा और वतन से हम, देश है धर्म हमारा देश है करम, तररम परम परम पतररम, ये गाना था।
1: जी।
0: तो मैंने कहा मैं गाऊं, तो बोले गाओ। मैंने शुरू किया, उन्होंने बाजा बंद किया। अब सब डर गए कि भाई अब कुछ तो होगा। बोले जागीरदार सबसे बड़ा चॉकलेट लेके आए इस बच्ची के लिए। और मुझे देखा, तुम्हारा पिकअप तो बहुत अच्छा है बेटा।
1: बिल्कुल।
0: तो मौसिन को पूछा अब सीखती है, मौसिन ने कहा हाँ भी थोड़ा सीखने लगी है। अरे सिखाइए इसे, ये बच्चा बहुत आगे बढ़ेगा, इतना भी काफी था।
1: हाँ,
0: उनके लिए इतना कहना ही
1: बहुत
0: काफी,
1: बहुत बड़ी बात।
0: ये मुझे लगता है मेरी जिंदगी के कॉम्प्लीमेंट्स में इसे सुनहरे अक्षरों से मैं लिखूं तो भी कम है।
1: कम है जी,
0: है
1: जी,
0: ना
1: जी।
0: उनके साथ तो ये था मेरा। नौशाद साहब, उनके बंगले पे बुलाया उन्होंने कार्टर रोड, और मैं गई। उस वक्त मेरे उस्ताद ताज अहमद खान साहब, जिनसे मैंने डैडी के बाद तकरीबन 15-16 साल मैंने उनसे तालीम जी, और उनको भेजा मेरे पास कल्याण जी अंकल ने, वो भी एक अलग कहानी है मैं बाद में बताऊंगी। तो अबू साहब, मैं उन्हें अबू साहब कहती थी
1: जी,
0: तो उन्होंने कहा कि नौशाद साहब के पास जब जा रही हो तो मैं भी चलूंगा, क्योंकि मैं उन्हें वो चीजें सुनाना चाहता हूं जो मैंने तुम्हें सिखाया है।
1: जी।
0: तो हम गए, और वो भी टेनिस खेलने गए थे।
1: अच्छा।
0: वो दिलीप साहब के साथ खेलते
1: हाँ,
0: थे टेनिस।
1: हाँ, हाँ।
0: शाम को हम पहुंचे, उन्होंने उनका म्यूजिक रूम था बंगले पे, बैठे बैठे आए, माफ कीजिए मुझे देर हो गई, चेंज करके फ्रेश होके आए। तो अबू साहब ने हाँ हाँ खान साहब बताइए, वो तो जानते थे उन्हें, प्लीज बच्ची को कुछ सिखाया है आपको? हाँ हाँ हाँ प्लीज सुनाइए सुनाइए। तो मैंने कुछ गजलें उनको सुनाई
1: जी,
0: और सुनकर मंदाकिनी जी तकरीबन 6:30 बजे मैंने शुरू किया, एक गजल सुनाई, बोले कुछ और सुनाओ बेटा, फिर और करते करते 10 बज गए
1: रात की,
0: आप यकीन नहीं करोगे, और बस बच्चे को कुछ खिलाओ, बच्चा और कुछ सुनाओ। और पता उन्होंने कितनी बड़ी बात वो बोले, मंदाकिनी जी बोले बेटा काफी देर हो गई है, मैं तुम्हें थका रहा हूं, लेकिन मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं, वो इसीलिए कि मुझे नहीं मालूम था कि तुम ऐसा गाती हो, और मैंने जिस गाने के लिए तुम्हें बुलाया है उसमें एक दो ही लाइंस हैं, तो क्या तुम गाना पसंद करोगे?
1: अरे
0: तो अबू साहब ने कहा कि वो सुनहरा संसार आई ना, दो फिल्में आई थी उनकी उस वक्त बिल्कुल आखिर आखिर में, सुनहरा संसार का उसमें एक गाना था, मैं बताता, वो भी रफी साहब के साथ, बाबुल के घर के बाद पी की गली आती है, देवर भाभी में दर टली जाती, फिर हम जो तुझे छेड़े ओ भाभी तो क्या है खराबी, इतना ही था बस
1: जी।
0: तो अबू साहब ने कहा नौशाद जी आप क्या बात कर रहे हैं, आपने हमारी बच्ची को बुलाया, जहे नसीब, हम तो सोच भी नहीं सकते कि ये इस काबिल है कि आपके सामने बैठकर आपको कुछ सुना सके। बहुत उसके बाद उत्तम भैया उनके असिस्टेंट
1: जी, जी
0: तो उत्तम भैया ने बहुत, वो तो हमेशा ही हेल्प करते थे। तो बस फिर वो गाना मैंने गाया, फिर एक दो डबिंग्स के लिए भी बुलाया उन्होंने।
1: आपकी पसंद का ये गीत सुनते हैं।

0: सुषमा जी, आपकी बातें हम सुन रहे हैं और हमें लगता है कि आपने अपनी एक अलग स्टाइल बनाई, तो अलग स्टाइल बनाने का जो विचार है ये आपके मन में कैसे आया? हमारे श्रोता भी ये जानना चाहते हैं।
1: एक बात आपको आज बताना चाहूंगी।
0: जी जी।
1: मैं अपने श्रोताओं को,
0: जी,
1: एक गाना मैं डब कर रही थी जिसे लता जी गाने वाली थी, ठीक है, और सुनिए, हेमा मालिनी जी पर वो फिल्माया जाने वाला था। तो जब मैंने गाना शुरू किया तो अंदर तो मेरी मौसी और सब थे, तो जो फिल्म सेंटर के रिकॉर्डिस्ट हुआ करते थे कौशिक बाबा, नौशाद साहब ने उनको पूछा, कौशिक बाबा कैसा गा रही है बच्ची? क्या मैं बंदा के नहीं जी, 12 साल की थी। तो कौशिक बाबा ने झट से कहा कि लता वाली बात नहीं है। तो अच्छा। पता है क्या क्या कहा नौशाद साहब ने?
0: हाँ।
1: बोले मुझे लता नहीं चाहिए, मुझे सुषमा चाहिए।
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: इसलिए मैं उसे उसके तरीके से गाने दे रहा हूँ।
0: जी, जी जी जी जी।
1: तब मुझे ये एहसास हुआ मंदाकिनी जी, मैंने इन चीजों में बहुत, मतलब कैसे कहूँ, मैं वो पहले से ही बहुत जहनी थी मैं, तो उस वक्त मुझे ये एहसास हुआ कि इसका मतलब मैं अपनी एक स्टाइल बना सकती हूँ।
0: बिल्कुल।
1: मतलब मैं अपनी स्टाइल बनाऊं तो उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। वो उस वक्त से ही वो दिमाग मेरा चलने लगा।
0: और इतनी छोटी उम्र में आपने इस बात को पकड़ लिया।
1: आप अगर सुनो, देखो मंदाकिनी जी, मैं आपको एक छोटा सा एक मिसाल देती हूँ। है ना बोलो पापा को मम्मी से प्यार है, पापा मम्मी मिलते हैं चुपके चुपके हंसते हैं, जाने क्या क्या कहते हैं बातें करते रहते हैं। वो ही फॉलो किया मैंने, दिल तुम मेरा तू उस पे बात पे आ गई। पर वही
0: जी,
1: तो वो बड़ी होती गई, वो जहन में था कि मुझे अपनी एक स्टाइल बनानी।
0: जी बिल्कुल,
1: वो था बस।
0: तो, और उसे पर्दे पर देखना भी उतना ही अच्छा लगता था जब अभिनेत्री उसको उसी तरीके से अपने होठों को बनाकर गाती है, तो बड़ा मजेदार वो सीन लगता है।
1: और जहाँ तक प्रभावित होने का सवाल है मंदाकिनी जी, आपने जो सवाल किया, प्रभावित तो मैं एक ही इंसान से जिंदगी में हुई, एक इंसान बतौर एक इंसान और बतौर एक म्यूजिक कंपोजर, और वो है वन एंड ओनली मिस्टर आरडी बर्मन
0: जी,
1: मेरे पंचमदा
0: जी।
1: इतनी प्रभावित कि मैं, मतलब मैं शब्दों में बयान ही नहीं कर सकती कि मैं उन्हें अपनी जिंदगी में कौन सी जगह देती हूँ।
0: जी, जी।
1: तो
0: होता है जब एक कलाकार दूसरे कलाकार के साथ संगीत विधा को जीता है, तो आप कहीं ना कहीं इतने प्रभावित हो जाते हैं कि आप उनमें खो जाते हैं। इस तरह की
1: उन्होंने मुझे परफ्यूम कैसे लगाना वो भी सिखाया। इतना, मतलब हमारा एक बहुत ही अनूठा रिश्ता था,
0: बॉन्डिंग
1: बहुत
0: जो थी,
1: बहुत बहुत अलग।
0: तो क्यों ना पंचम दा का ही गीत सुन लिया जाए, जिसमें आपने अपनी आवाज,
1: तेरा मुझसे है पहले का नाता
0: कोई, थोड़ा सा गाएंगी तो हमें भी अच्छा लगेगा। आज सामने सुनने का मौका मिला है हमें भी,
1: कोशिश करूंगी। गला बंद है पर कोशिश करूंगी।
0: जी बिल्कुल।
1: तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई, तेरा मुझसे है।

0: वाह वाह, बहुत खूब सुषमा जी। और इसमें आप जब कुछ वर्डिंग्स भी बोलती हैं जो
1: जी,
0: वो बच्चा अपने
1: वो मुझे पंचमदा ने सिखाया, पता है उन्होंने कहा वो शर्मिला जी का बेटा है वो
0: जी, डैडी
1: शर्मिला जी कैसे बोलती हैं
0: हाँ।
1: मैं मिमिक्री अच्छा करती हूँ तो मैंने थोड़ा सा बोला यही चाहिए मुझे हाँ, आगे क्या है डैडी
0: हाँ।
1: मैं तो भूल ही गया, मुझे वो चाहिए। बहुत यादें आपने ताजा की आज
0: जी, जी, जी।

0: मैं इसी बात पे आऊंगी। कुदरत जब किसी को बनाना चाहता है ना, तो वो उस वक्त वो एक ऐसा माया जाल फेर देता है, फैला देता है कि उस वक्त वो इंसान जो उस सिचुएशन में रहता है ना, जैसे मैं
1: जी,
0: मुझे खुद को भी इस बात, अगर आप मुझे आज पूछेंगी कि उस रिकॉर्डिंग के दौरान क्या हुआ क्या नहीं, हालांकि ये गाना मेरे लिए नहीं था मंदाकिनी जी।
1: अच्छा,
0: इस गाने को लता जी गाने वाली थी।
1: अच्छा
0: जी। मुझे तो वो पंचमदा तो कोशिश वो उसमें लगे ही रहते थे कि कहां से इसको मैं कौन सा एक मौका दूं, एक लाइन ही दे दूं, एक डायलॉग ही दे दूं। तो वो तो रुके हुए थे कि कब मैं, क्योंकि बर्मन चाचा बोल चुके थे कि मैं तुझे नहीं दे पाया
1: जी
0: कोई भी गाना अच्छा, पर तेरा दादा तुझे तेरी जिंदगी का सबसे प्यारा गाना गवाएगा ना पंचम, गवाएगा ना पंचम।
1: अरे
0: तो उन्होंने फोन करके ये कह के बुलाया कि ये गाना डबिंग के लिए प्रॉक्सी, तो अगर तुम गा गई तो भाई रख सकते हैं, नहीं तो मुश्किल है। तो ये दो पार्ट्स में है गाना, आपको भी याद होगा, एक किशोर काका का सोलो है, वो सोलो पार्ट गाकर वहीं फिल्म सेंटर में किशोर काका आराम कर रहे थे। दो शिफ्ट्स में काम होता था तब, 9 से 1 और फिर 3 से आगे।
1: अच्छा।
0: और फिर ओवर टाइम, तो वहीं सोए थे वो। उन्हीं का गाया हुआ मुझे पोर्शन पंचमदा ने बोला सुनो, लास्ट अंतरा लिखो और देखो, लर्न द सॉन्ग। तब मुझे भूपी अंकल और उत्तम भैया ने ही मदद मेरी की
1: जी,
0: बहुत ज्यादा
1: जी।
0: गाना सीखा मैंने, फिर रिहर्सल हुई, जब माइक पे गए, हालांकि किशोर काका काफी कॉन्फिडेंट थे,
1: वो गाएगी,
0: हाँ बोले गाएगी, गाएगी पंचम, वो गाएगी, गाएगी, छोड़ यार डब वब का छोड़, वही गाएगी। तो वो बोले देखता हूँ, डायरेक्टर मनमोहन देसाई जी
1: जी,
0: जब वो आए उन्होंने सुना, फिर उन्होंने अप्रूवल दिया कि नहीं डब करने की जरूरत नहीं है, ये आवाज, ये बच्चा इतना अच्छा गा रहा है और इसकी आवाज जो है वो मेरे फिल्म के कैरेक्टर को बिल्कुल सूट
1: करती है,
0: इस करके ये गाना मुझे मिला।
1: तो चलिए एक गीत सुन लेते हैं, आपकी पसंद का बताइए, तेरा मुझसे है पहले का नाता,
0: बिल्कुल
1: आप ही का गाया हुआ सुन
0: जी जी।

0: मेरी जिंदगी का, मैं कैसे कहूँ, मेरी जिंदगी की पहचान
1: जी जी
0: ये गाना बन गया
1: जी बिल्कुल।
0: तेरा मुझसे है पहले का नाता
1: कोई।
0: कोविड के वक्त कितने लोगों ने मुझे मैसेजेस भेजे, फोन, जब उनके घर में कोई बीमार हो, कितना ऐसा हुआ है कि ये हमारा फेवरेट गाना
1: क्या
0: है।
1: बात है।
0: एक कोई बेटा अपनी माँ के लिए गा रहा है, कोई पत्नी अपने पति, ये मतलब, और मुझे वीडियोस बना बना के भेजे हैं
1: जी,
0: लोगों
1: जी,
0: ने
1: जी।
0: किसी किसी के थ्रू। लेकिन मंदाकिनी जी, इस फिल्म का एक और गाना था, मेरे बेटे सुन, उसका अंतरा हमेशा पंचमदा मेरे लिए पता नहीं क्यों गाते थे। कभी शोज के लिए गए, बस में साथ में बैठे तो मेरा हाथ पकड़ के, वो अंतरा था ना कि रखना भरोसा उस पे सदा जिसने है सबको

0: वाला तो वो ही रखवाला है, उसी को बुलाना तो आ जा।
1: ये जो वो बोलते थे ना मंदाकिनी, मैं डायनामिक्स की जहां बात कर रही।
2: जी जी
1: देखिए, मैं जो बच्चे सुन रहे हैं अगर उनके लिए ये है सिर्फ यू नो कि तारा रा रा रा, ये हुआ एक खुले गले का, फिर
0: कहा ना भुलाना तो ये रा रा रा,
1: और सॉफ्ट
0: उसी को बुलाना तो आजा आजा।
2: क्या बात है, क्या तो बात है।
1: ये मैंने
2: ये आधार का जी, ये पंचम धाम में ही ये गुण थे।
1: ये उतार चढ़ाव डायनामिक समझे से
2: जी,
1: कहते
2: जी, जी,
1: कहां कितना आपको जोर देना,
2: देना है,
1: कहां आपको कितना सॉफ्ट करना है,
2: वाह,
1: कहां आपको कितना फेड इन फेड आउट करना है,
2: वाह।
1: ये वो हमेशा मेरा हाथ पकड़ के पता नहीं यही अंतरा गाते।
2: जी जी जी, मतलब आप कितनी भाग्यशाली रही कि आपको इतने बड़े लोगों का प्यार मिला, स्नेह मिला,
1: बहुत,
2: उस छत्र छाया में आपने
1: बिल्कुल
2: सुषमा श्रेष्ठ का जीवन जिया है, जो
1: ये मेरा भाग्य ही
2: नसीब नहीं मिलता है, अच्छे अच्छों को नहीं मिला
1: नहीं
2: है। अभी भी ऐसी बाल गायिकाएं नहीं है जिनको हम उंगलियों पे गिने या उनका नाम ले सके सुषमा श्रेष्ठ के अलावा।

0: तो इसके बाद फिर मैंने देखिए ना कैसे दिग्गजों के साथ काम किया। लता जी, उनके साथ पहले तो मैंने गाया था फिल्म, एक जॉय बांग्लादेश आई थी, आईएस जौहर साहब की फिल्म
1: हाँ
0: थी,
1: हाँ
0: है
1: हाँ
0: ना,
1: हाँ जी
0: बांग्लादेश वॉर के
1: जी
0: ऊपर वो
1: जी
0: था। वो पहली बार मैं उनसे मिली थी। हाँ, उसके बाद मैंने गाया उनके साथ यादों की बारात।
1: बारात, वाह।
0: ये गाना मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ये बहुत ही, मतलब मैं समझती हूँ, एक और मेरे दिल के करीब का गाना
1: बिल्कुल, ये हमारे दिल के
0: है
1: भी
0: ना।
1: करीब उतना ही।
0: और इसका ऐसा है ना मंदाकिनी जी, वो तीन तीन बच्चे बताए हैं ना, सबसे छोटा जो बच्चा वो आमिर खान
1: हाँ, बिल्कुल जी।
0: है। तो मुझे क्या मालूम कि आगे चल के ये इतना बड़ा स्टार बनेगा और मैं इसके लिए मिस्टर लोवा लोवा तेरी आंखों का जादू गाऊंगी।
1: जी बिल्कुल,
0: तो वो गाना मैंने, और ये गाना मेरे साथ गाया पद्मिनी, पद्मिनी
1: कोल्हापुरी
0: कोल्हापुरी।
1: ने जी।
0: लेकिन इसके क्या होता, वहां प्रोडक्शन कंट्रोलर्स आते थे जो गाने के पूरी डिटेल्स, मतलब लिरिक्स के साथ शूटिंग के लिए, वो नागरा क्या बोलते हैं ना, नागरा वो लेकर
1: जी
0: आते
1: जी
0: थे।
1: जी
0: तो
1: जी
0: वहां एक गलती प्रोडक्शन वालों की ये हुई कि उन्होंने जैकेट, मतलब उस गाने में मेरा नाम नहीं दिया,
1: अच्छा,
0: जिसको लेकर नासिर साहब ने खुद मुझे फोन किया, मंदाकिनी जी
1: नासिर हुसैन साहब
0: जी,
1: ने।
0: कि मैं बेटा, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, पर
1: अरे
0: अब सब कुछ चला गया है, अब वो टाइटल्स सब कुछ हो गया, अब
1: हाँ
0: क्या।
1: हाँ
0: नहीं, मैंने
1: हाँ
0: कहा अंकल आप प्लीज ऐसा मत कहिए, मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है कि एक तो मैं आपके प्रोडक्शन में गा रही हूं और मैं लता जी के साथ गा रही हूं,
1: सबसे बड़ी
0: वही
1: बात
0: मेरे लिए काफी है।
1: जी जी
0: इतनी दुआएं दी उन्होंने, बोला मैं तुझे फिर गवाऊंगा, नहीं मैं तुझे गवाता रहूंगा। फिर ये तो यादों की बारात, वो गाना बजाए,
1: यादों की
0: यादों
1: बारात
0: की
1: निकली
0: बारात
1: है आप,
0: निकली है
1: पर
0: आज।
1: आपको गाना
0: हाँ
1: होगा, शर्त यही है।
0: प्लीज, मैं कोशिश करूंगी।

0: सपनों की शहनाई बीते दिन। देखिए मैं जो कह रही हूं ना, फेड इन फेड आउट पुश बैक
1: जी,
0: पुश बैक
1: जी,
0: वो इनकी ये स्टाइल मैंने पंचम दास से सीखी
1: जी।
0: डा डा रा रा रा रा रा, आप समझे?
1: वो खुद भी ऐसे ही गा देते हैं।
0: हाँ बिल्कुल। डा रा

0: तो बात कर रहे हैं हम आपके बचपन की
1: जी।
0: और अब सुषमा श्रेष्ठ के उस आखिरी मोड़ पर हम आ गए हैं जहां हम कहना चाहेंगे कि कुछ गाने ऐसे थे जैसे कि क्या हुआ तेरा वादा, तेरी है जमी तेरा आसमान, और सबसे बड़ी बात
1: धर्म
0: करम की फिल्म
1: धर्म करम भी था,
0: धर्म
1: एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल मुकेश शंकर के साथ,
0: और एन चंद्रा की फिल्म अंकुश का इतनी शक्ति हमें देना दादा जिसमें आपने पुष्पा पागधरे के साथ
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो ये गीत बड़ा भावनात्मक गीत था उस उम्र में, वो भावनात्मक दृष्टिकोण कैसे आपके भीतर आया, इस गीत को गाना आसान नहीं था?
1: मंदाकिनी जी मुझे ऐसा लगता है कि मैं बचपन से ही वैसी थी। देखिए ना, मैंने पहला गाना जो उठाया गाने के लिए बचपन में भी वो था रोतड़ू गाना, कांटों की दुनिया है तुझसे, फिर मैं गाती थी एक तू ना, ये मेरा चॉइस रहा है
0: जी।
1: सिर्फ मैं ना वर्ड्स का गड़बड़ करती थी, तो एक तू ना मिला को मैं चूना मिला बोलती।
0: अच्छा।
1: और डैडी बहुत हंसते थे और बार बार गवाते थे और करेक्ट नहीं करते थे कि उसको चूना मिला बोलने दो। तो चॉइस मेरा यही रहा है।

0: अलग बात है कि आगे चल के मुझे अलग स्टाइल के गाने गवाए गए, वो एक अपनी कहानी है, लेकिन चॉइस तो मेरा यही रहा है। तो वो जो एक मैं बोलूंगी कि भाव से गाना जिसे कहते हैं, प्लेबैक सिंगिंग जिसे हम कहते हैं, हम माफी चाहूंगी सारे दिग्गजों से, मैं माफी चाहूंगी
1: जी,
0: लेकिन प्लेबैक सिंगिंग एक बहुत अलग, एक बहुत ही अलग गेम है,
1: विधा है।
0: बिल्कुल, मुझे नहीं लगता कोई भी इसे ठीक तरह से विस्तार में समझा पाएगा कि ये क्या है। लेकिन प्लेबैक सिंगर्स जो है ना, वो खास एक ढांचे में वो उनको ढाल के भेजता है, ऐसा मेरा मानना है। तो वो मेरे में, मुझे लगता है बचपन से था प्लेबैक सिंगिंग। तो ये सब गाने भी जब मैंने गाए, जैसे एक दिन बिक जाएगा, माटी के, मैं ठीक समझ जाती थी कि क्या सिचुएशन है, क्योंकि वो गाना भी पंचमदा ने जबरदस्ती मुझे गवाया है। राज साहब की फिल्म बन रही है तो आर के बैनर में इसका एक गाना होना ही चाहिए। राज साहब प्लीज, आप तो आप ही की फिल्म है, एक एक सिचुएशन बनाओ। फिर तेरा मुझसे है पहले का, उनको सुनाया, देखिए क्या गाती है, क्या गाती है, कर दो ना, कर दो ना, अच्छा अच्छा ठीक है। ऐसे करके उन्होंने वो सिचुएशन बनाई, मुकेश अंकल के साथ मुझे गवाया, तो मुझे ठीक मालूम था कि उनको वो तरम पम कैसे चाहिए। तरम पम उसमें राज साहब ने कहा भी मुकेश अंकल को,
1: जी
0: ए मुकेश चंद, वो बच्चा बोल रहा है वैसा तरम पम नहीं आ रहा है तुम्हारा।
1: अरे
0: पर उनकी, उनका बड़प्पन देखिए। ये पहले भी एक बार मैं मुकेश झट से बताती हूँ, मुकेश अंकल के साथ मैंने जो पहला गाना गाया वो बापी दा की पहली फिल्म थी
1: जी,
0: नन्हा शिकारी।
1: अच्छा।
0: हाँ, ये मुखर्जी ब्रदर्स यानी काजोल के चाचा पिताजी, काजोल के पिताजी उसके डायरेक्टर थे, तो वो बापीदा की पहली फिल्म थी। और उसमें जब हम रिहर्सल कर रहे थे तो बापीदा की मम्मी ने मुकेश अंकल से कहा कि तुम ना ऊपर के सुर को, क्योंकि उसका अंतरा था, चाहे मझधार में नैया हो, वो उसको तुम ज्यादा मत खेचो, तोड़ दो, नहीं तो तुम बेसुरा हो जाता। ऐसे बोली वो। अब सब साइलेंस के, अब तो गदा पड़ी। लेकिन मुकेश अंकल की बढ़ाई देखिए, बड़प्पन उनका देखिए, वो बाजा बजा कर गाते थे। इवन रिकॉर्डिंग्स में वो हंसने लगे और बोले ठीक कह रही हैं आप।
1: अरे
0: बड़प्पन देखिए,
1: क्या बात है।
0: वहां मैंने ये एक और, मैं बहुत नोट करती थी ये सब बातें,
1: ये नम्रता भी,
0: ये नम्रता होना, अपनी कमजोरी को समझना, जानना और एक्सेप्ट करना, उसके लिए भी बहुत हिम्मत लगती है।
1: और एक बच्चे के सामने जब कहा जा रहा हो उसको अप्रिशिएट करते हुए,
0: और वही तो, बात इस गाने में भी हुई कि मुकेश चंद वो तरम पम बच्चे की तरह तो हंसने लगे, बोले अरे बच्चा तू तो हमेशा फंसाती है मुझे।
1: अरे
0: राज, बच्चा तरम पम बोलेगा और मैं बोलूं, उसमें फर्क तो होगा। अरे फिर भी मुकेश चंद देख वो कह, अच्छा बता बेटा कैसे बोल रही है, तरम पम तरम पम, नहीं नहीं मेरे से नहीं होगा राज, उसी से बोलो, उसी से बुलवाओ,
1: क्या
0: नहीं तुम्हारे अंतर में तुम बोलोगे, चलो ठीक है मुकेश चंद बोल दो जैसे बोल रहे हो। तो ये जो मैंने सब देखा, ये माहौल, एक वो जो कॉमरेडशिप, एक एक्सेप्टेंस,
1: बिल्कुल
0: कि नहीं मैं नहीं कर सकता, जो मैं कर सकता हूँ वो मैं करूंगा, जो मैं नहीं कर सकता वो मैं नहीं करूंगा,
1: बिल्कुल इसको इसको स्वीकार कर लेना,
0: ये ईमानदारी
1: जी
0: है ना
1: जी,
0: ये सब मैंने सीखा मंदाकिनी
1: जी।
0: वो अगर चाहे तो थोड़ा सा गाना प्लीज बजा दीजिए
1: जी,
0: क्यों मैं समझती हूँ हर हर कलाकार के लिए ये वो है,
1: फिल्म धर्म कर्म का
0: वो जो अंतरा है कि ना हो बस में तेरे कुछ भी माना, तेरा धर्म है अपना कर्म निभाना, तेरे पीछे मतवाले सब सोचे।

0: क्या बात है,
1: एक दिन बिक जाएगा
0: माटी
1: माटी
0: के
1: के मूल,
0: मूल
1: ये
0: में।
1: हर कलाकार के लिए है। अगर आप बजा सकें तो प्लीज मेरे
0: बिल्कुल
1: लिए ये गाना
0: बिल्कुल, ये
1: बजाइए।
0: गाना हम बजाएंगे और हमारे
1: जी
0: श्रोता सुनना भी चाहेंगे, तो चलिए सुनते हैं
1: जी
0: ये गीत।

0: इस गीत को सुनने के बाद तो देखिए रोंगटे खड़े से हो गए हैं, और हर वक्त जब इस गीत को हम सुनते हैं तो वाकई जीवन की सच्चाई हमें समझ आती है कि किस तरह से जीवन को जीना चाहिए। तो हम बात कर रहे थे एन चंद्रा की फिल्म अंकुश की, इतनी शक्ति हमें देना चाहता, ये आपका शायद अंतिम गाना था।
1: सुषमा श्रेष्ठा के नाम से गाया हुआ मेरा अंतिम गीत था।
0: जी जी।
1: और क्या होता था मंदाकिनी जी, मैं अगर थोड़ा सा जल्दी से आपको बताऊं,
0: जी,
1: जैसे मैंने क्या हुआ तेरा वादा रफी साहब के साथ गाया था, तो उसमें तो मैंने शिवांगी कोल्हापुरे जो शक्ति कपूर जी की बीवी और श्रद्धा कपूर और श्रद्धा कपूर की मां
0: है,
1: तो उसके साथ गाया था ये गाना। तो वहां भी जब वो अंतरे में भूलेगा दिल, अब मैं ये किस्मत की बात जहां करती हूँ, लेकिन उस गाने से मेरी पहचान बनी। मैं जहां जाती हूँ मुझे वो गाना गाने के लिए मजबूर करते हैं लोग, वो गाना मेरा है नहीं वैसे, लेकिन इट्स हम डुएट ही बोलेंगे उसे, है ना। तो भाग्य ने मेरा बहुत साथ दिया मंदाकिनी,
0: और उस गाने के बगैर पूर्णिमा जी अधूरी लगती हैं।
1: और नासिर साहब, नासिर अंकल ने कहा, मैं तुझे बोला था ना बेटा, मैं बार बार बुलाऊंगा तुझे, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, फोन करके माफी। क्या मतलब, वो कौन थे वो, मैं क्या थी उनके आगे और क्या हूँ, इज नासिर हुसैन। और मेरी मेरी किस्मत देखिए, एक के नडियाड वाला फिल्म्स, आगले लग जा, तेरा मुझसे है पहले, आज मैंने उनके पोते के लिए, वो हम पूर्णिमा पर जब आएंगे तो वो गाना जरूर बजवाऊंगी आपसे, साजिद के साथ उनके पोते के साथ काम किया
0: जी,
1: इतनी मतलब
0: बड़ी बात है, और ता उम्र याद रहने वाली बात।
1: और ये आखिरी गीत इतनी शक्ति, हमने सोचा ही नहीं था मंदाकिनी जी, कुलदीप सिंह जी ने ऑफ कोर्स गाना कंपोज किया, मैं उनको पापा जी कहती हूँ, और लिखा है उसको अभिलाष जी ने, फिर बहुत बदकिस्मत इतने बेहतरीन राइटर लिरिसिस्ट एन चंद्रा जी की शायद पहली फिल्म। पता है मंदाकिनी जी, मैं अगर मैं बोलूं आपको, मैं बहुतों के लिए बहुत लकी हूँ। देखिए मैंने सबकी जो करियर

0: जो शुरुआत हुई है काफी, जैसे रमेश सिप्पी जी, सलीम जावेद जी, फिर एन चंद्रा जी
1: उनके शुरुआती दौर में,
0: काजोल और रानी मुखर्जी, तो हाँ मैं लकी हूँ सबके लिए शायद। यस यस यस,
1: आप हमारे लिए लकी हैं।
0: तो ये हमने सोचा ही नहीं
1: जी,
0: था
1: जी,
0: कि ये गाना एक दिन इस देश, मैं बोलती हूँ देश विदेश में तो पॉपुलर हुआ, पर इस देश का एक नेशनल एंथम बन जाएगा।
1: बिल्कुल,
0: है ना। आज देखिए मतलब क्या, किस स्तर पे वो गाना पहुंच
1: बिल्कुल,
0: गया।
1: बिल्कुल। और पुष्पा जी जैसी गायिका जो कि बहुत ही जहीन एक गायिका है, उनके साथ गाना आपको मिला।
0: बिल्कुल। और मैं, मुझे पता ही नहीं कि पापा जी ने उनको क्यों चुना इस पर। मैंने जब फिल्म देखी तो वो उस कैरेक्टर के साथ जो उनकी आवाज,
1: वो वही थी,
0: ये उन लोगों की ग्रेटनेस थी।
1: पुष्पा जी की ही आवाज हो सकती थी।
0: मुझे जब ये सवाल करते हैं, वो आप कीजिएगा जरूर, कि तब के संगीत और अब के में क्या फर्क,
1: जी,
0: कीजिएगा
1: जरूर।

0: मुझे पता ही नहीं कि पापा जी ने उनको क्यों चुना इस पर। मैंने जब फिल्म देखी तो वो उस कैरेक्टर के साथ जो उनकी आवाज,
1: वो वही थी
0: ये उन लोगों की ग्रेटनेस
1: जी, वो
0: थी,
1: पुष्पा जी की ही
0: है ना।
1: आवाज हो सकती थी।
0: मुझे जब ये सवाल करते हैं, वो आप कीजिएगा जरूर कि तब के संगीत और अब के में क्या फर्क,
1: जी मेरा ही
0: कीजिएगा
1: सवाल
0: जरूर,
1: है,
0: तब मैं आपको
1: जी
0: बताऊंगी
1: मेरा ही
0: कि
1: सवाल है।
0: क्या फर्क है। बस वो इतनी शक्ति हमें देना दाता, मतलब कितने लोग फोन करके कहते हैं कि एक किसी बैंक के मैनेजर ने मुझे कॉल किया, वहां कोई हमारा एक सिंगर गया था, स्टेज पे गाता है बच्चा, तो वो गाना बज रहा था और सब, वो जब गया तो सब बिल्कुल खड़े होकर विनम्र तरीके से
1: खड़े हो गए।
0: बस वो गाना
1: जी जी
0: वो बंद हुआ, फिर सब बैठ गए, चलो अब काम। तो वो बोला, पता है ये मेरी दीदी ने, दीदी ने तो बोले हाँ सुषमा, अरे वही पूर्णिमा दीदी, उन्होंने गाया है। तो मैनेजर ने मुझसे बात किया और बोली कि आपके गाने से हम दिन की शुरुआत करते
1: करते
0: हैं,
1: हैं
0: हम कितने भाग्यशाली हैं, आप प्लीज आइएगा हमारे
1: जी
0: बैंक में, सिर्फ
1: जी
0: आइएगा
1: जी
0: तो हम सोचे, हमको ऐसा लगेगा कि हमने बहुत कुछ पा
1: जी
0: लिया। मैंने सुना है स्कूल्स में गाते हैं, इवन बच्चों के शायद सिलेबस में, शायद मैंने सुना है, मुझे पता नहीं
1: और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि जब आकाशवाणी की
0: जी।
1: दुनिया में
0: जी
1: हम कई बार जब हमें देशभक्ति गीत बजाने होते हैं या
0: जी
1: मोटिवेशनल सॉन्ग बजाने होते हैं
0: जी
1: तो ये गाना नंबर वन पर होता है।
0: देखिए
1: मतलब हर आकाशवाणी से ये गाना बजा है, हर आकाशवाणी से, और विविध भारती में भी कितनी बार इस गाने को
0: है
1: हर
0: ना।
1: उद्घोषक ने बजाया है।
0: और अफसोस कि जिन लोगों ने, जो जुड़े हैं इस गाने के साथ, पापा जी कुलदीप सिंह जी, अभिलाष जी, तो बेचारे उनका तो निधन हो गया, उनको वो कैसे कहूँ, वो
1: हाँ वो
0: पहचान,
1: स्थान।
0: वो स्थान नहीं मिला जिसके वो काबिल हैं,
1: बिल्कुल,
0: जिसके वो हकदार हैं।
1: कुलदीप सिंह जी के तो म्यूजिक की अगर हम बात करने चले तो एक लंबा समय निकल जाएगा।
0: कितने गुणी,
1: बहुत
0: बाप रे।
1: बहुत बिल्कुल।
0: तो
1: तो चलिए
0: इतने
1: ये गीत हम सुनते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल

0: देखिए, इस गीत को सुनने के बाद हम भी वैसे ही हो गए जैसे हम जिक्र कर रहे थे कि ये गीत हमें कितनी गहराई की ओर ले जाता है ना। तो पूर्णिमा जी, हम आपसे आज बातचीत कर रहे हैं बचपन से अभी तक का जो आपका सफर है गायिका बनने का, उस विषय पर। और ये बातचीत तो हमारी बहुत ही रोचक और शानदार हो रही है, हमारे श्रोता भी ऐसा महसूस कर रहे होंगे यकीनन। लेकिन सुषमा से पूर्णिमा आप कैसे बनी, ये जो सफर है ये भी हम जानना चाहते हैं कि सुषमा से पूर्णिमा बनने तक का ये सफर कैसा रहा। तो चलिए, ये बातचीत हम करेंगे अब अगले अंक में।
1: बॉम्बे टॉकीज, इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे गायिका सुषमा श्रेष्ठ यानी पूर्णिमा से मंदाकिनी जोशी की ये बातचीत। अभी आप सुन रहे थे इस बातचीत का दूसरा भाग। ये बातचीत यहीं खत्म नहीं हुई, इसका तीसरा और अंतिम भाग आपको सुनवाएंगे अगले हफ्ते। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर भावना सिद्धल, संपादन सहयोग अंबालिका सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: सुपर है अपना बॉम्बे टॉकी।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
4: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
4: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
4: सदा रही है, सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत।

FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। शाम के 5 बजे हैं। प्रस्तुत है बहनों के लिए कार्यक्रम महिला जगत।

महिला जगत कार्यक्रम सुनने वाली हमारी सभी सखियों को रश्मि का प्यार भरा नमस्कार। कैसी हैं हमारी सभी सखियाँ? उम्मीद है अपने अपने परिवार के साथ खुश होंगी और स्वस्थ भी। सखियों, सिर्फ कहे को नहीं अनकहे को भी समझें। मनुष्य का जीवन शब्दों और भावनाओं का सुंदर मेल है। हम अपनी बात कहने के लिए शब्दों का सहारा लेते हैं, लेकिन हर भावना शब्दों में व्यक्त नहीं हो पाती। कई बार आंखें वह कह देती हैं जो होठ नहीं कह पाते। सखियों, कई बार मुस्कान के पीछे छिपी हुई उदासी को समझना पड़ता है और कई बार किसी की खामोशी में छिपी पुकार को सुनना पड़ता है। इसलिए जीवन में केवल कही हुई बातों को सुनना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि अनकही बातों को समझना भी ज़रूरी है। हमारे आसपास ऐसे अनेक लोग होते हैं जो अपने मन की बात खुलकर नहीं कह पाते। कोई अपनी परेशानी के चलते दूसरों पर बोझ नहीं बनना चाहता, कोई अपने दुख को छिपाकर मुस्कुराता रहता है, तो कोई यह सोचकर चुप हो जाता है कि शायद कोई उसे समझने वाला नहीं है। ऐसे लोगों के लिए हमारी थोड़ी सी संवेदनशीलता बहुत मायने रखती है। कई बार कोई व्यक्ति मुस्कुराते हुए कहता है, मैं ठीक हूँ, लेकिन उसकी आंखों में छिपी उदासी कुछ और ही कहानी कह रही होती है। कोई बच्चा अपनी परेशानी बताने के बजाय चुप हो जाता है। कोई बुजुर्ग अपनी ज़रूरत बताने में संकोच करता है। कोई मित्र कुछ नहीं हुआ कहकर बात टाल देता है। ऐसे समय में उसके शब्दों से अधिक उसकी खामोशी को समझना ज़रूरी होता है। आज की वैसे भी तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में हम सुनते तो हैं, लेकिन अक्सर समझते नहीं। सामने वाला अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता और हम जवाब देने की तैयारी करने लगते हैं। बातचीत में धैर्य कम और प्रतिक्रिया अधिक हो गई है। हमें यह सीखना होगा कि किसी को सुनना केवल उसके शब्द सुन लेना नहीं है, बल्कि उसकी भावनाओं को महसूस करना भी है। रिश्तों में भी अनकही बातों का विशेष महत्व है। पति पत्नी, माता पिता और बच्चे, भाई बहन, मित्र या सहकर्मी, हर रिश्ते में कभी न कभी ऐसी स्थिति आती है जब कोई व्यक्ति अपनी बात स्पष्ट रूप से नहीं कह पाता। उस समय सामने वाले के व्यवहार में आए छोटे छोटे बदलावों को समझना ही रिश्ते को टूटने से बचा सकता है। कभी किसी का अचानक शांत हो जाना, पहले की तरह बातचीत ना करना, बार बार अकेले रहना या छोटी छोटी बातों पर परेशान होना उसके भीतर चल रहे किसी संघर्ष का संकेत हो सकता है। इसका अर्थ यह नहीं कि हम हर खामोशी का अर्थ निकाल लें, बल्कि

हमें बिना अनुमान लगाए प्रेम और सम्मान के साथ पूछना चाहिए कि अगर आप कुछ साझा करना चाहें तो मैं सुनने के लिए यहाँ हूँ। बच्चों के मामले में तो यह संवेदनशीलता और भी ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे हमेशा अपनी परेशानियों को शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाते। उनके व्यवहार में बदलाव, पढ़ाई में रुचि कम होना, चुप रहना या अचानक गुस्सा करना हमें संकेत दे सकता है कि उन्हें बातचीत और सहारे की ज़रूरत है। उन्हें डांटने के बजाय प्यार से सुनना और विश्वास का वातावरण देना अधिक महत्वपूर्ण है। इसी तरह बुज़ुर्ग भी कई बार अपनी तकलीफ इसलिए नहीं बताते क्योंकि वे दूसरों को परेशान नहीं करना चाहते। वे कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन शायद उन्हें केवल थोड़ा समय बातचीत और अपनापन चाहिए होता है। उनकी कही बात के साथ साथ उनकी ज़रूरत को समझना भी हमारे संस्कारों का हिस्सा होना चाहिए। कभी कभी एक छोटी सी संवेदनशीलता किसी के लिए बहुत बड़ा सहारा बन जाती है। एक फोन कॉल, कुछ मिनट की बातचीत या बिना किसी निर्णय के किसी की बात सुन लेना परेशान व्यक्ति के मन का बोझ हल्का कर देता है। सखियों, जीवन में रिश्ते केवल शब्दों से नहीं चलते। रिश्तों को समझ, विश्वास, संवेदना और मौन की भाषा भी चाहिए। कई बार सबसे महत्वपूर्ण बातें कही नहीं जाती, वे आँखों में दिखाई देती हैं, व्यवहार में महसूस होती है और खामोशी में सुनाई देती है। इसलिए सिर्फ कहे को नहीं, अनकहे को भी समझें, क्योंकि कई बार दिल की सबसे गहरी आवाज़ शब्दों में नहीं, खामोशी में सुनाई देती है। तो सखियों, अब वक्त हो गया है आपके मनोरंजन का, तो चलिए मिलकर सुन लेते हैं ये मधुर गीत।

0: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: पंडित जी, मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
2: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
1: हाँ।
2: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं?
1: हाँ।
2: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं।
2: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
3: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
4: सखियो, उम्मीद है गीत आपको पसंद आया होगा। सखियो, परमाणु हथियार मानव सभ्यता के द्वारा निर्मित सबसे विनाशकारी हथियारों में से है। इनका एक बार प्रयोग व्यापक स्तर पर मानव जीवन, पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों के लिए गंभीर संकट पैदा कर सकता है। इसी खतरे के प्रति विश्व समुदाय को जागरूक करने और परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन की दिशा में प्रयासों को मजबूत करने के उद्देश्य से 26 सितंबर को परमाणु हथियारों के

मूल खात्मे का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। परमाणु हथियारों की भयावहता का अनुभव दुनिया हिरोशिमा और नागासाकी की त्रासदियों के माध्यम से कर चुकी है। इन घटनाओं ने ये स्पष्ट कर दिया कि युद्ध में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल केवल तत्काल जनहानि तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लंबे समय तक स्वास्थ्य, पर्यावरण और सामाजिक जीवन को प्रभावित कर सकता है। इसलिए परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व की कल्पना मानवता की सुरक्षा से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय है। सखियों, यह दिवस केवल परमाणु हथियारों के विरोध का प्रतीक नहीं है, बल्कि शांति, संवाद, कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने का अवसर भी है। दुनिया के देशों के बीच मतभेद होना स्वाभाविक है, क्योंकि इन मतभेदों का समाधान बातचीत और शांतिपूर्ण तरीकों से किया जाना चाहिए। हथियारों की होड़ के बजाय शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान, पर्यावरण संरक्षण और मानव विकास में संसाधनों का उपयोग पूरी मानवता के लिए अधिक लाभकारी हो सकता है। सखियों, परमाणु हथियारों का उन्मूलन एक कठिन और दीर्घकालिक लक्ष्य है। इसके लिए देशों के बीच विश्वास, पारदर्शिता, हथियार नियंत्रण, निरस्त्रीकरण संबंधी समझौतों और सहयोग की आवश्यकता है। परमाणु हथियारों के समूल खात्मे का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हमें यह संदेश देता है कि स्थायी शांति केवल हथियारों से नहीं, बल्कि विश्वास, सहयोग और संवाद से स्थापित होती है। हमें ऐसी दुनिया के निर्माण का प्रयास करना चाहिए जहां बच्चों को युद्ध और विनाश का भय नहीं, बल्कि शिक्षा, विकास और सुरक्षित भविष्य की उम्मीद मिले। आइए इस अवसर पर हम शांति और मानवता के मूल्यों को मजबूत करने का संकल्प लें। परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व का सपना कठिन अवश्य है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, जिम्मेदार नीतियों और निरंतर प्रयासों के माध्यम से इसे भविष्य का लक्ष्य बनाया जा सकता है। हथियारों की दौड़ नहीं, शांति की ओर कदम बढ़ाएं। मानवता को सुरक्षित रखें और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सजाएं। तो सखियों, इसी के साथ अब करवा देते हैं आपका मनोरंजन और मिलकर सुन लेते हैं ये मधुर गीत।

0: खो गया इंतजाम।
1: किसका?
0: गुड्डी की फीस का।
1: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
2: आरबीआई कहता है,
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: सुबह के समय बच्चों को स्कूल जाना हो या बड़ों को ऑफिस, हर कोई जल्दी में रहता है और इसी जल्दबाजी के कारण हम कई बार नाश्ता भी नहीं कर पाते। तो सखियों, अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल मैं आपके लिए नाश्ते की ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे झटपट तैयार किया जा सकता है। सूजी और चावल के आटे से बनने वाला यह नाश्ता कम तेल और मसाले में बनाया जा सकता है। इसके लिए हमें चाहिए आधा कप सूजी, आधा कप चावल का आटा, 3 चम्मच दही, 1 कप पानी, 1 मीडियम साइज प्याज, 3 चम्मच गाजर, 1 चम्मच हरा धनिया और 1 कटी हरी मिर्च, नमक स्वाद अनुसार, काली मिर्च पाउडर 1/4 चम्मच, 1 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स और बेकिंग सोडा 2 चुटकी। इसके अलावा तड़के के लिए 1 चम्मच तेल, जीरा 1/2 चम्मच, 2-3 लहसुन कली और 5-6 करी पत्ता। सबसे पहले एक बाउल में बारीक सूजी डालें, इसमें दही और पानी डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब इस बैटर को 2 मिनट के लिए छोड़ दें जिससे सूजी फूल जाएगी। कुछ देर बाद इसमें चावल का आटा और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मिक्स करें। इसमें जीरा, काली मिर्च पाउडर, चिली फ्लेक्स, प्याज, गाजर, हरी मिर्च, हरा धनिया और नमक डालकर सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब तड़के के लिए पैन में थोड़ा सा तेल डालें, इसमें जीरा, लहसुन और करी पत्ता डालकर गर्म करें और ऊपर से 1 चम्मच तैयार किया हुआ बैटर डालें। इसे धीमी आंच पर पकाएं और पलट कर दूसरी तरफ भी पकने दें। पकने के बाद हरी चटनी के साथ गर्मा गर्म सर्व करें। सखियों, हमारा मन तो करता है कि हम आपसे ऐसे ही बातें करते रहें, लेकिन घड़ी की सुई हमें जाने का इशारा कर रही है। तो फिर हाजिर होंगे नई नई जानकारियों और मधुर गीत संगीत के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, आपकी सखी रश्मि को नमस्कार।

FM 103.1 MHz पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। शाम के 5:23 हुए हैं। अभी बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम महिला जगत, और अब सुनेंगे युवा श्रोता अपना कार्यक्रम युवाणी।

नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी का युवा श्रोताओं के खास कार्यक्रम युवाणी में। मैं हूं आपकी दोस्त एंड होस्ट नमिता तिवाड़ी। दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूं कि आप सब अच्छे होंगे और आप अपने जीवन में भी एक नया अपडेट ढूंढने की कोशिश जरूर कर रहे होंगे। वैसे दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले एक नया ट्रेंड जो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल रहा था, वो आपने जरूर देखा होगा, जिसमें हम सब ने अपनी नई पिक्चर्स को 90s के जमाने में बदला था। आपने भी ये जरूर किया होगा और हमने ये देखा कि उस जमाने में और आज के जमाने में कितना ज्यादा अंतर आ गया है। उस दौर की स्टाइल, उस दौर का फैशन, उसकी कास्टिंग, उस टाइम का जो बिहेवियर, वो सब कुछ आज की तुलना में कितना अलग था ना। क्योंकि दोस्तों, जीवन में बदलाव तो आते रहेंगे। हर एक दौर में, हर एक पड़ाव में हमें एक नया परिवर्तन देखने को जरूर मिलेगा। और हाँ, ये परिवर्तन सिर्फ बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि हमारे अंदर भी होता रहता है। हर दिन कुछ ना कुछ हमारे अंदर जरूर बदलता है। कभी हमारा पहनावा बदलता है तो कभी हमारे काम करने के तरीके बदलते हैं। कभी किसी रिश्ते की तरफ हमारा झुकाव इतना ज्यादा होता है तो कभी किसी रिश्ते को हम बिना बात अपने से दूर कर लेते हैं। वैसे समय के साथ बदलने के लिए हमारी सोच भी उसी के अनुरूप बदलना जरूरी होती है। और सच कहें तो बदल जाना किसी भी तरीके की कोई कमजोरी नहीं बल्कि ये एक इशारा है कि हम अपने आप को विकसित कर रहे हैं। हम पुरानी रूढ़िवादी सोच से, अपनी पुरानी मानसिकता को खत्म करके अपने जीवन को एक नई दिशा, एक नए बदलाव के लिए चुन रहे हैं। दोस्तों, हमारा बदलाव हमारी परिस्थितियों को भी सहज बना रहा होता है, क्योंकि कई बार कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां पर हम एक ही प्रकार की रूढ़िवादी सोच से सही फैसला नहीं ले सकते। यानी कि कई बार कुछ डिसीजन ऐसे लेने होते हैं जहां पर हमें बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होना पड़ता है, बहुत ज्यादा अलग तरीके से सोचना पड़ता है। जैसे कि पुराने जमाने में हमारा समाज कभी भी एक महिला को, एक औरत को साक्षर करवाने के समर्थन में इतना तत्पर नहीं था। परंतु आज बदलते जमाने के हिसाब से और लोगों की बदलती सोच के हिसाब से महिलाएं शिक्षित होने के साथ साथ हर क्षेत्र में अपना नाम कमा रही हैं, अपने परिवार में, अपने समाज में अपनी काबिलियत को मुकाम दे रही हैं। चाहे वो पायलट बनकर हो, चाहे वो अच्छी पॉलिटिशियन बनकर, एक अच्छी टीचर बनकर हो, या फिर एक कुशल हाउसवाइफ बनकर, हर क्षेत्र में वो आगे बढ़ रही हैं। अगर महिलाओं की इसी काबिलियत को रूढ़िवादी सोच ने दबा दिया होता तो क्या आज हमारा समाज इतना विकसित हो पाता? नहीं ना, क्योंकि समाज का हर एक व्यक्ति अपनी सोच के कारण ही समाज का उत्थान करता है। दोस्तों, जैसे आधुनिकता का ही अगर हम उदाहरण लेने की बात करें तो हम हर 2-3 साल में एक नया फोन बदल लेते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि हमें भी अपडेट रहना जो होता है नए फीचर्स से, नई टेक्नोलॉजी से। तो फिर अपने अंदर के जो बदलाव हैं उनको भी तो बदलने की जरूरत है। ये भी तो सोचने की जरूरत है कि अरे भाई, यहां भी एक अपडेट तो जरूर होना चाहिए। और सच कहूं तो हम अक्सर पुरानी आदतों को छोड़कर नया बदलाव

चाहते हैं, पर हम उस बदलाव को खुद ही एक्सेप्ट नहीं करते। हम यही सोचते हैं कि लोग हमारी सोच को तवज्जो दें, हमारी परिस्थितियां भी हमारे अनुकूल रहें और लोग हमारे हिसाब से ही बर्ताव करें। लेकिन दोस्तों, ऐसा होता नहीं। समय कभी भी हमारे हिसाब से नहीं चलता। ऐसे में अगर हम अपनी आदतों को बदलने के लिए तैयार नहीं हैं, तो समस्या समय में नहीं बल्कि हमारी जिद में और हमारी सोच में है। लेकिन यहाँ पर एक बात समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए कि खुद को बदलने का मतलब अपनी पहचान को खो देना नहीं है, बल्कि अपने संस्कारों को, अपनी ईमानदारी को, अपने आत्मसम्मान को और अपने मूल्यों को कायम रखते हुए अपनी सोच को बेहतर बनाना ही सही कहें तो असली बदलाव है। दोस्तों, कभी कभी हमें ये भी स्वीकार करना होता है कि जो तरीका कल सही था, जरूरी नहीं कि आज भी वो सही ही हो। यानी कि आज के समय के हिसाब से अगर हम फैसला लें तो हर फैसला अपनी एक जगह बनाता है। जो रिश्ता कभी बहुत महत्वपूर्ण था, जरूरी नहीं कि आज उसकी सीमाएं तय करना हमारे लिए पॉसिबल हो। जो सपना कभी हमारा था, हो सकता है कि आज हमारी प्राथमिकताएं बदल गई हों, और इसमें कोई शर्म की बात भी नहीं है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें ये सीखना होगा कि कब हमारी सोच हमें बदलनी है, कब हमें अपनी आदतें बदलनी है और कब हमें अपने जीवन को एक नई दिशा की तरफ ले जाना है। और जो व्यक्ति समय के साथ सीखता है, वो कभी भी परिस्थितियों का शिकार नहीं हो सकता, बल्कि परिस्थितियां उसको मजबूत करने के लिए आती हैं। इसलिए अगली बार जब समय बदले या फिर बारी आए अपने अंदर कुछ बदलने की, तो ये बात मत कहिएगा कि दुनिया बहुत बदल गई है। एक बार खुद से जरूर पूछिएगा कि क्या मैं भी उतना ही तैयार हूँ बदलने और सीखने के लिए। क्योंकि दोस्तों, समय के बदलने के साथ साथ अपने आप को भी बदल लेने में बुद्धिमानी है।

0: अरे भैया, सामान खरीदते समय एक्सपायरी डेट देखी, सोना खरीदते समय हॉलमार्क देखा, और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा? सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया, कोई सब्जी भाजी थोड़े खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा, और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा। समझे कि नहीं समझे भैया?
1: दोस्तों, कुछ सपने परिस्थितियों के आगे छोटे पड़ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग हालात को भी अपनी ताकत बना लेते हैं। ऐसी ही एक कहानी है श्री धन्या सुरेश की, जो संघर्ष की एक मिसाल बनकर उभरी हैं। दोस्तों, श्री धन्या का बचपन वायनाड के कुरीचिया आदिवासी समुदाय में बीता। परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि माता पिता को दिहाड़ी मजदूरी करके घर चलाना पड़ता था। इसके बाद भी उन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई को प्राथमिकता दी। श्री धन्या को स्कूल पहुंचने के लिए रोजाना करीब 4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। सीमित संसाधनों के बीच भी उन्होंने पढ़ाई करना जारी रखा, और उनके लिए ये सब आसान तो बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन परिवार के सहयोग ने उनके शिक्षा के सफर को कभी रुकने नहीं दिया। दोस्तों, समय के साथ श्री धन्या की पढ़ाई आगे बढ़ी और उन्होंने अनुसूचित जनजाति विभाग में काम करना शुरू कर दिया। इसी दौरान उनकी मुलाकात प्रशासनिक व्यवस्था और अधिकारियों के कामकाज से करीब से हुई। उस समय वायनाड के सब कलेक्टर रहे श्री राम सांबा शिवा राव को स्थानीय लोगों के बीच मिलने वाले सम्मान को देखकर उन्होंने ये देखा कि एक अधिकारी की वैल्यू क्या होती है। एक अधिकारी के काम का समाज पर पड़ने वाला प्रभाव श्री धन्या को प्रभावित कर गया, और यहीं से उनके मन में सिविल सेवा में जाने की इच्छा मजबूत हुई। दोस्तों, आईएएस बनने का सपना देखने के बाद असली चुनौती उसे हासिल करना थी। श्री धन्या ने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की और लिखित परीक्षा में सफलता हासिल कर इंटरव्यू के लिए चयनित हुई। लेकिन दिल्ली जाकर इंटरव्यू के लिए जरूरी खर्च उनके परिवार की आर्थिक क्षमता से

नंबर था। ऐसे में उनके दोस्तों ने उनका साथ दिया और करीब 40,000 रुपए इकट्ठा करके उनकी यात्रा और इंटरव्यू में पहुंचने में उनकी मदद की। इस सहयोग ने उन्हें अगले पड़ाव तक पहुंचा भी दिया। और दोस्तों, श्री धनिया की मेहनत रंग लाई। साल 2019 में उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 410 यानी कि 410वीं रैंक उन्होंने हासिल की। इसके साथ ही उन्होंने आईएएस बनने का अपना सपना पूरा किया। उनके इस सफर में खास बात ये रही कि जिस अधिकारी के काम से प्रेरित होकर उन्होंने प्रशासनिक सेवा में जाने का फैसला किया था, बाद में उन्हें उसी अधिकारी के साथ में काम करने का अवसर भी मिला। कोझिकोड में असिस्टेंट कलेक्टर के तौर पर काम करते हुए उनके करियर में एक खास पड़ाव भी उन्होंने हासिल किया। दोस्तों, इसके बाद श्री धनिया की कहानी का एक अगला महत्वपूर्ण अध्याय जिला प्रशासन से जुड़ा। उन्होंने कासरगोड की जिला कलेक्टर के रूप में जिम्मेदारी संभाली और उनके सफर में बचपन की जो आर्थिक मुश्किलों से लेकर सिविल सेवा परीक्षा की जो सफलताएं थी, जो भी प्रशासनिक जिम्मेदारियां थी, उनके कई पड़ाव आए। उनकी यात्रा उन युवाओं के लिए प्रेरणा का एक उदाहरण बनती है जो कि सीमित संसाधनों के बाद भी अपने लक्ष्य को, अपने किसी बड़े लक्ष्य को हासिल करने का सपना देखते हैं। तो दोस्तों, अगर आपकी आंखों में भी कोई एक सपना है तो आंखों में एक ख्वाब सजाएं और बस उस लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में लग जाएं। अगर आपकी मेहनत सच्ची है और पूरी लगन से आपने मेहनत की होगी तो आपकी मेहनत एक ना एक दिन रंग जरूर लाएगी। तो आइए अब चलते हैं एक गीत की ओर।

0: पंडित जी मुहूर्त देखो ना, फ्लैट खरीदना है।
1: क्या प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है?
0: हाँ।
1: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट हैं।
0: हाँ।
1: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
0: हाँ? पता नहीं।
1: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पोजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
3: दोस्तों, हमारे देश में कुछ जगह, कुछ स्मारक और कुछ रोड्स का नाम अपने ब्रिटिश सरकार से ताल्लुक रखते हुए तो जरूर सुने होंगे। इसी के लिए 8 सितंबर दिल्ली के ऐतिहासिक राजपथ को नया नाम देने के साथ ही सरकार ने इस कदम को स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री के औपनिवेशिक मानसिकता के किसी भी निशाने को मिटाने के 5 संकल्प में से एक पर आधारित बताया है। दोस्तों, सरकार ने कहा है कि यह कदम प्रधानमंत्री जी द्वारा औपनिवेशिक विरासत और औपनिवेशिक प्रतीकों के बोझ को दूर करने और भारतीय परंपराओं तथा रणनीतिक विचारों के साथ बदलाव के लिए एक सतत और सचेत प्रयास का हिस्सा है। दोस्तों, इस संदर्भ में एक नोट में सरकार ने पिछले 8 वर्षों में इस दिशा में उठाए गए कई कदमों को भी रेखांकित किया है, जो कि इस प्रकार हैं कि औपनिवेशिक मानसिकता के किसी भी निशान से छुटकारा पाने की कवायद के तहत प्रधानमंत्री जी ने राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम कर्तव्य पथ रखने का फैसला किया है। सम्राट जॉर्ज पंचम के सम्मान में इस पथवे को किंग्स वे का नाम दिया गया था, जिसका हिंदी नाम राजपथ है। दोस्तों, एक बदलाव यह भी है कि 2 सितंबर को प्रधानमंत्री जी ने भारतीय नौसेना के नए निशान का अनावरण किया, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि सेंट जॉर्ज क्रॉस को हटाकर देश के युद्ध पोतों पर दास्ता और एक औपनिवेशिक अतीत के जो शेष निशान है उनको हटा दिया जाता है। यह कदम समृद्ध भारतीय समुद्री विरासत के अनुकूल है। सेंट जॉर्ज क्रॉस को भारतीय नौसेना के ध्वज से हटा दिया गया है और इसे छत्रपति शिवाजी महाराज की मुहर से प्रेरित एक ध्वज के स्थान पर बदल दिया गया है। दोस्तों, प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर अपने संबोधन के दौरान औपनिवेशी युग की छवियों को खत्म करने के अपने इरादे की भी घोषणा की थी। हालांकि प्रक्रिया 2016 में शुरू हो चुकी थी, जब रेस कोर्स रोड का नाम बदलकर लोक कल्याण मार्ग कर दिया गया था। और दोस्तों, प्रधानमंत्री जी का आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर ही है। दोस्तों, सरकार ने 2014 में 1500 से अधिक पुराने और अप्रचलित कानूनों को निरस्त कर दिया है। इनमें से अधिकतर कानून ब्रिटिश काल में बनाए गए थे। दोस्तों, इसी के साथ ही जो हमारा 2017 में 92 साल पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ ही मिला दिया है। इसी के साथ सरकार ने औपनिवेशिक युग से फरवरी के आखिरी दिन में बजट पेश करने की परंपरा को भी समाप्त कर दिया है। बजट अब फरवरी के पहले दिन प्रस्तुत किया जाता है। जनवरी में प्रधानमंत्री जी ने इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की होलोग्राम प्रतिमा का भी अनावरण किया। अब उस क्षेत्र में एक और प्रतिमा स्थापित की जाएगी, जहां पर पहले किंग जॉर्ज पंचम की प्रतिमा स्थापित की। दोस्तों, इस वर्ष गणतंत्र दिवस के दौरान बीटिंग द रिट्रीट समारोह के समापन पर बजने वाली धुन अबाइड विद मी को हटा दिया गया है और इसकी जगह कवि प्रदीप की मौलिक कृति ए मेरे वतन के लोगों की धुन बजाई गई। दोस्तों, कभी न बुझने वाली अमर जवान ज्योति को राष्ट्रीय समर स्मारक की लौ के साथ मिला दिया गया है। दोस्तों, दिसंबर 2018 में मोदी जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस किताब के आधार पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 3 द्वीपों का नाम बदलने का भी फैसला किया। 1943 में बोस ने सुझाव दिया कि अंडमान और निकोबार समूह का नाम बदलकर क्रमशः शहीद और स्वराज स्मारक कर दिया जाए। इसी की तर्ज पर स्वतंत्रता सेनानी बोस की याद में रॉस द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, नील द्वीप का नाम बदलकर शहीद द्वीप और हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप कर दिया गया है। दोस्तों, प्रधानमंत्री जी ने हाल

कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में विप्लवी भारत गैलरी का भी उद्घाटन किया है। भारत की एक पूर्व ब्रिटिश साम्राज्य के नाम पर निर्मित विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में प्रधानमंत्री जी ने स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों के योगदान को प्रदर्शित करने वाली एक गैलरी का भी उद्घाटन किया है। दोस्तों, प्रधानमंत्री जी मातृभाषा में पठन पाठन के हिमायती रहे हैं, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि एनईपी 2020 में परिलक्षित होता है। यह ब्रिटिश काल में अंग्रेजी आधारित शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने से उलट मातृभाषा में पठन पाठन की तरफ बढ़ने के लिए एक प्रस्थान बिंदु था, जिसको बदलकर आज हमारी मातृभाषा में पठन पाठन की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। दोस्तों, 2014 में आम आदमी को परेशानियों से बचाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने दस्तावेजों के स्वप्रमाणन और हलफनामों के न्यूनतम उपयोग पर भी जोर दिया है। दोस्तों, औपनिवेशिक अतीत को मिटाए जाने के लिए कुछ अन्य प्रतीक, जैसे कि 2015 में औरंगजेब रोड का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम रोड कर दिया गया है, 2017 में डलहौजी रोड का नाम बदलकर दारा शिकोह रोड कर दिया गया है और 2018 में तीन मूर्ति चौक का नाम बदलकर तीन मूर्ति हाइफा चौक कर दिया गया है। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे परिवर्तन थे जिनसे हमारे देश की औपनिवेशिक मानसिकता को मुक्त करने के लिए कुछ जरूरी पड़ाव उठाए गए हैं। आइए अब सुनते हैं एक और गीत।

अभी वह श्रोता युवाणी कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी अलवर का सरस का चैनल है। अब सुनिए समाचार जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं। प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केरलम के भविष्य के लिए नीली अर्थव्यवस्था में बहुत संभावनाएं हैं और सहकारी के क्षेत्र को इसका लाभ उठाना चाहिए। श्री शाह ने केरलम के कुंद्रा में आज भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अंतर्गत शी मार्ट पहल सहित कई विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से ही लोग केंद्र में सहकारिता मंत्रालय की मांग करते रहे हैं।
1: आजादी से अब तक देश के सभी किसानों का और कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़े हुए सभी लोगों का एक मांग था कि केंद्र में कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बने, मगर वो पूरा नहीं होता था। नरेंद्र मोदी जी ने कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाकर देश के ग्रामीण विकास, कृषि विकास और वीमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है।
0: श्री शाह ने सहकारी क्षेत्र के उत्पादों वाले मंडप का भी दौरा किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री सुरेश गोपी, राज्य सरकार के मंत्री एम लीजू, पीसी विष्णुनाथ, सांसद एन के प्रेमचंद्रन, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक राजीव चंद्रशेखर तथा अन्य लोग शामिल हुए। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा है कि केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश को विमानन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कुरनूल को विमानन और ड्रोन गतिविधियों के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के कुरनूल हवाई अड्डे पर एक कार्यक्रम में श्री नायडू ने कहा कि उनका ध्यान केवल हवाई अड्डों पर ही नहीं बल्कि पायलट प्रशिक्षण, रखरखाव, जमीनी संचालन और हवाई अड्डा प्रबंधन को शामिल करते हुए संपूर्ण विमानन इकोसिस्टम के निर्माण पर है। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए कल रविवार को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। ये निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों ने हड़ताल के दौरान एटीएम से निःशुल्क मासिक सीमा से अधिक बार लेन देन का शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एआई की क्षमताओं का उपयोग करने के साथ साथ इसके संभावित प्रभावों का अनुमान लगाने और जोखिमों को कम करने की आवश्यकता पर बल दिया है। वे आज ग्रीस के विदेश मंत्री जॉर्ज गैरोपेट्रिटिस के साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संदर्भ में एआई, विशेष रूप से समुद्री सुरक्षा विषय पर आयोजित कार्यक्रम की सह अध्यक्षता कर रहे थे। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। ये सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अपने अपने देशों की प्राथमिकताओं और दृष्टिकोण को सामने रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश और विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। महाराष्ट्र के मुंबई में प्रतिष्ठित लाल बाग चराजा और चिंचपोकलीचा चिंतामणि सहित कई गणपति प्रतिमाओं का आज विसर्जन किया गया। हजारों श्रद्धालु 21 घंटे से अधिक समय तक चले जुलूस में शामिल हुए। जापान एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। वहीं सावन बरवाल ने पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए रजत पदक हासिल किया। तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और आशीष चौकसी की तिकड़ी ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन स्पर्धा में रजत पदक जीता। भारत पदक तालिका में 4 स्वर्ण, 11 रजत और 13 कांस्य समेत 28 पदकों के साथ 11वें स्थान पर। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर ये

आकाशवाणी अलवर का आंसर इसका चैनल है। शाम के 6:05 हुए हैं। लीजिए अब आपको जानकारी दे दें हमारी आज की सभा के शीर्ष और कल प्रसारित होने वाले कार्य।

श्रोताओ, आपसे बस थोड़ी ही देर में यानी 6:10 पर आप सुनी के फिल्म संगीत। 6:30 बजे हिंदी में प्रादेशिक समाचार होंगे, उसके बाद जिले की चिट्ठी और 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम जयपुर केंद्र से रिले करेंगे। 7 बजे किसान भाइयों के लिए किसान वाणी कार्यक्रम होगा, ये प्रायोजित कार्यक्रम भी हम जयपुर केंद्र से रिले करेंगे। 7:30 पर आनंद लीजिएगा फिल्म संगीत का। रात्रि 8:15 पर लोक संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे लोक गाथा, श्रवण कुमार प्रसंग, कलाकार होंगे दुर्गा प्रसाद और साथी। 8:45 पर समाचार संध्या और 9 बजे अंग्रेजी में समाचार हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। 9:15 से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम, जिन्हें हम मुंबई केंद्र से रिले करेंगे। रात 10 बजे आप सुनेंगे जापान में चल रहे एशियन गेम्स 2026 के 20वें संस्करण पर डेली हाईलाइट कैप्सूल, जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। 10:20 से सुनिए विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से। 11 बजे हिंदी में समाचार दिल्ली केंद्र से और 11:05 पर सभा समाप्त होगी हमारी आज की।

कल की हमारी सभा आरंभ होगी सुबह 6 बजे हिंदी में समाचारों के साथ। 6:05 पर सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम बंधन बार। 6:30 बजे सुनिए झरोखा के अंतर्गत कार्यक्रम विवरण। 6:35 पर रामचरित मानस गान। संगीत सरिता आप सुनेंगे कल सवेरे 6:45 पर। नमस्कार अलवर ये कार्यक्रम होगा सुबह 7 बजे। 7:30 पर आने लीजिए फिल्म संगीत का। 8 बजे समाचार प्रभात, 8:15 सुगम संगीत में गजलें और 8:30 पर सुनिएगा स्वास्थ्य पत्रिका। इसमें डॉक्टर योगेश चौधरी से शिव कुमार शर्मा की बातचीत। इस भेंटवार्ता का विषय रहेगा रेबीज कारण लक्षण व उपचार। 9 बजे हिंदी में प्रादेशिक समाचार होंगे, उसके अलावा दिन में 1 बजे और शाम 6:30 बजे हिंदी में प्रादेशिक समाचार होंगे। 9:10 से सुनिए विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से।

श्रोताओं, कल सुबह 10:55 पर आप सुनेंगे मन की बात कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा देश की जनता के साथ मन की बात तथा मन की बात का संस्कृत भाषा में अनुवाद। हिंदी में समाचार होंगे दिन में 12 बजे दिल्ली केंद्र से, 12:05 से सुनिए विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से।

कल के कार्यक्रमों में आप सुनेंगे शाम 5 बजे फुलवारी कार्यक्रम बाल श्रोताओं के लिए, उसके बाद 5:30 बजे युवा श्रोताओं के लिए युववाणी कार्यक्रम होगा। रात 10 बजे आप सुनेंगे जापान में चल रहे एशियन गेम्स 2026 के 20वें संस्करण पर डेली हाईलाइट कैप्सूल। शाम 7 बजे होगा प्रायोजित कार्यक्रम ग्राम भारती। तो ये थे हमारी कल की सभा के शेष रहे कुछ कार्यक्रम और आज की सभा के शेष रहे और कल प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों का विवरण।

कुमार शानू की आवाज में कभी हाँ कभी ना फिल्म के गीत के बाद श्रोताओं अब आप सुन रहे हैं अलका याग्निक और विनोद राठौर की आवाजें, अनु मलिक का संगीत, गौहर कानपुरी के बोल, बाजीगर फिल्म का ये गीत।

मोहित चौहान की आवाज में आप सुन रहे एक पहली लीला, इस फिल्म का गीत मनोज मुंतशिर का, संगीत टोनी कक्कड़ का।

एक पहेली लीला इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, मोहित चौहान की आवाज थी। इसी के साथ हमारा फिल्म संगीत का ये प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। अब सुनिए हिंदी में प्रादेशिक समाचार जिले की चिट्ठी और फिर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार जयपुर केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रतापगढ़ से 924 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। कहा, गांव के हर व्यक्ति की प्रगति और कल्याण के लिए सरकार प्रतिबद्ध। प्रदेश भर में आज से सेवा सेतु शिविरों की शुरुआत। 22 विभागों की सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध। जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगमों में आज हुए उपमहापौर चुनावों में भाजपा के प्रत्याशी निर्वाचित। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़ और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि गांव के प्रत्येक व्यक्ति की प्रगति और कल्याण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता को पेयजल, खेती और उद्योग के लिए समुचित पानी की उपलब्धता के लिए लगातार काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री आज प्रतापगढ़ में 924 करोड़ रुपए की लागत से 1452 विकास कार्यों के शिलान्यास और लोकार्पण समारोह में बोल रहे थे। श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप वांगड़ कांठल क्षेत्र के जिलों सहित प्रदेश भर में अंतिम छोर के व्यक्ति को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं।
1: विकसित राजस्थान में हम सबका योगदान होना चाहिए। हमारे गांव का विकास, हमारे क्षेत्र का विकास, हमारे विधानसभा का विकास, हमारे जिले का विकास कैसे होगा, इस पर हमें काम करना चाहिए, क्योंकि हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब को गणेश मान करके पूजा करने वाले लोग हैं। पूरे देश में सेवा के कार्य चल रहे हैं, हमारे प्रदेश में सेवा के कार्य चल रहे हैं। हर गांव, हर गरीब, हर किसान, हर मजदूर, हर युवा, हर महिला से जुड़ करके विकसित भारत का जो उनका संकल्प है उसे पूरा कर रहे हैं।
0: मुख्यमंत्री ने आदिवासियों द्वारा वनगिरी ब्रांड से बनाए गए प्राकृतिक शहद आदि पराग को बिक्री के लिए जारी किया। उदयपुर संभाग के प्रवास पर गए मुख्यमंत्री ने इससे पहले प्रतापगढ़ के दीपेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना कर राज्य में सुख समृद्धि की कामना की। उनका उदयपुर में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद का भी कार्यक्रम है। प्रदेश भर में विकसित भारत जनसेवा अभियान के तहत आज से सेवा सेतु शिविरों की शुरुआत हुई। 28 सितंबर तक लगने वाले इन शिविरों में कृषि, ऊर्जा, महिला बाल विकास और सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता विभाग सहित 22 विभागों से जुड़ी सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई गई हैं। गिरदावर सर्किल और ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित इन शिविरों के जरिए आम जन की समस्याओं और विभिन्न विभागों से जुड़े मामलों का समाधान किया जाएगा। पाली में लगाए गए शिविरों में आज पहले दिन राजस्व अभिलेखों के शुद्धिकरण और सहमति से खातों के विभाजन सहित विभिन्न समस्याएं दूर की गईं। झुंझुनू के 77 गिरदावर सर्किल मुख्यालयों पर लगे शिविरों का प्रशासनिक अधिकारियों ने दौरा कर आम जन की परेशानियां समझी। हमारे सिरोही संवाददाता ने बताया कि शिविरों को लेकर ग्रामीणों में उत्साह का माहौल है।
2: सिरोही जिले में आदिवासी बहुल और दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित इन शिविरों का उद्देश्य सरकारी योजनाओं और सेवाओं को लोगों के नजदीक उपलब्ध करवाना है। शिविरों में करीब 22 विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहकर ग्रामीणों को विभिन्न सरकारी योजनाओं और सेवाओं की जानकारी दे रहे हैं। विशेष रूप से आदिवासी परिवारों, किसानों, महिलाओं, युवाओं और जरूरतमंद लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है। इससे ग्रामीणों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिल रही है और कई कार्यों का स्थानीय स्तर पर ही समाधान हो रहा है। साकेत गोयल, आकाशवाणी समाचार, सिरोही।
0: मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने एनसीआर में वायु प्रदूषण प्रबंधन उपायों की आज समीक्षा बैठक ली। शासन सचिवालय में हुई इस बैठक में मुख्य सचिव ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से लगते प्रदेश के जिलों में प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से क्षेत्र में अधूरे सड़क कार्यों को 31 अक्टूबर तक पूरा कराने को कहा। मुख्य सचिव ने एनसीआर के सभी पेट्रोल पंपों पर चार्जिंग स्टेशन लगाने और वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए सभी संबंधित विभागों को आपसी तालमेल के साथ काम करने को कहा। देश भर में कल रविवार को अवकाश के दिन भी सार्वजनिक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। यूनाइटेड फोरम ऑफ

0: बैंक यूनियंस की ओर से सोमवार से 3 दिन की देशव्यापी बैंक हड़ताल को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि ग्राहकों की सुविधा के लिए रिजर्व बैंक की सभी शाखाएं, कार्यालयों, एटीएम और करेंसी चेस्ट को चालू रखा जाएगा। इस बीच सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों ने हड़ताल के दौरान एटीएम से निशुल्क मासिक सीमा से अधिक लेन देन का शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगमों में आज उप महापौर चुनाव हुआ। तीनों ही जगह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने जीत हासिल की। जयपुर में सरोज कंवर, जोधपुर में विजय सिंह पंवार और कोटा में विवेक राजवंशी निर्वाचित हुए। इसके साथ ही प्रदेश के 309 निकायों के 10,245 वार्डों में चुनाव प्रक्रिया संपन्न हुई। खाटू श्यामजी नगर पालिका में अध्यक्ष पद पर आज मतगणना में कांग्रेस की विनीता पूनिया को निर्वाचित घोषित किया गया है। वहां उपाध्यक्ष का चुनाव कल होगा। गौरतलब है कि एक राज्य एक चुनाव के तहत प्रदेश में 9 और 11 सितंबर को 2 चरणों में हुए मतदान के नतीजे अब पूरी तरह सामने आ गए हैं। भारत सहित 8 देशों की वायु सेनाओं का हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2026 आज से जोधपुर में शुरू हुआ। अभ्यास में भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, फ्रांस, जर्मनी, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका की वायु सेनाएं अपने लड़ाकू विमानों और युद्धक संसाधनों के साथ शामिल हो रही हैं। 12 अक्टूबर तक चलने वाले अभ्यास के दौरान सरहदी क्षेत्र के वायुसेना अड्डों पर इन देशों के युद्ध कौशल को परखा जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि अभ्यास का उद्देश्य वास्तविक युद्ध परिस्थितियों के अनुरूप संयुक्त हवाई अभियानों की योजना और संचालन का अभ्यास करना है।
1: अभ्यास में अमेरिका की 5वीं पीढ़ी के F-35 लड़ाकू विमान भाग ले रहे हैं। भारतीय वायुसेना के राफेल और Sukhoi-30 MKI के साथ इनके युद्धाभ्यास से हवाई अभियानों की क्षमता और आपसी समन्वय को परखा जाएगा। पहली बार F-35 की भागीदारी भारतीय वायुसेना को उन्नत लड़ाकू तकनीक और परिचालन रणनीतियों को समझने का अवसर देगी। अभ्यास में हवाई युद्ध, ग्राउंड अटैक, एयर डिफेंस और खोज बचाव जैसे मिशनों का प्रशिक्षण होगा। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में समाज के सभी वर्गों के विकास के लिए काम हुआ है। उन्होंने कहा कि देश में जनगणना की प्रक्रिया चल रही है और इससे नए आंकड़े सामने आएंगे। श्री अठावले आज जयपुर में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि समाज में जातिगत भेदभाव को समाप्त किया जाना जरूरी है और इसके उन्मूलन के लिए सभी को आना होगा।
2: हमने 12 सालों में काम किया है, भारत की इकोनॉमी 4 नंबर पर लाई है, रोड के काम बहुत अच्छे बन गए हैं, नेशनल हाईवे के, रेलवे में काफी सुधार हो चुका है। अभी जो म्युनिसिपैलिटी के चुनाव यहाँ हुए नगर पालिका के, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने अनेक जगह पर जीत हासिल की है, तो बीजेपी अनेक साल तक सत्ता के बाहर रही।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। जापान में चल रहे 20वें एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। देश की महिला और पुरुष कबड्डी टीमों ने आज अपने अपने फाइनल मुकाबलों में ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीते हैं। इससे पहले महिला क्रिकेट टीम और 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में भी भारतीय खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक हासिल किया था। इस बीच सावन बरवाल ने पुरुषों की मैराथन में देश के लिए स्पर्धा का 44 साल बाद रजत पदक जीता। वहीं भारतीय महिला निशानेबाजों की टीम ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस में रजत पदक अपने नाम किया। स्क्वाश स्पर्धा में अनाहत सिंह महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गई हैं। वहीं पुरुष सिंगल

इसमें अभय सिंह ने भी पाकिस्तान के खिलाड़ी को हराकर गोल्ड मेडल राउंड में प्रवेश किया। गौरतलब है कि इन खेलों में भारत अब तक 4 स्वर्ण, 12 रजत और 13 कांस्य पदक जीतकर तालिका में 10वें स्थान पर पहुंच गया है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने हीमोफीलिया बीमारी और इससे जुड़े उपचारों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए चिकित्सा कर्मियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का आह्वान किया है। राज्यपाल आज हीमोफीलिया जागरूकता राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत के अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि हीमोफीलिया से पीड़ित 3/4 से अधिक लोगों की समय पर पहचान नहीं हो पाती, जिससे रोग बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को मनी माइंडेड नहीं होकर सर्विस माइंडेड बनना चाहिए। राज्यपाल ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को विश्व की सबसे बड़ी चिकित्सा राहत योजना बताते हुए कहा कि रोजाना आज देश के 6 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 5 लाख रुपए तक के सालाना स्वास्थ्य बीमा का लाभ दे रही है। शिक्षा विभाग की 2 महत्वपूर्ण पहलों खुशीशाला खुद की खोज और एआई आधारित दक्षता आकलन को राष्ट्रीय स्तर पर स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली में आयोजित समारोह में राज्य परियोजना निदेशक डॉ. रश्मि शर्मा ने बताया कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा तकनीक के प्रभावी उपयोग के जरिए विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता में बढ़ोतरी के प्रयास किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि ये दोनों पहलें करीब 4 महीने पहले शुरू की गई हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रतापगढ़ से 924 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। कहा, गांव के हर व्यक्ति की प्रगति और कल्याण के लिए सरकार प्रतिबद्ध। प्रदेश भर में आज से सेवा सेतु शिविरों की शुरुआत। 22 विभागों की सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध। जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगमों में आज हुए उप महापौर चुनावों में भाजपा के प्रत्याशी निर्वाचित। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह आकाशवाणी से आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से कोटा जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख आशीष मेहता ने तैयार किया है। जिले में नगर निकाय चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए। कोटा नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की मेयर प्रत्याशी अनुसुईया गोस्वामी ने जीत हासिल की। कोटा जिले की 5 नगर पालिकाओं में अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल करते हुए क्लीन स्वीप किया है। चारों निकायों इटावा, रामगंज मंडी, सांगोद, सुकेत और सुल्तानपुर में भाजपा उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। सुल्तानपुर नगर पालिका में भाजपा की अनीता मेघवाल, रामगंज मंडी नगर पालिका में भाजपा के नरेंद्र काला, इटावा नगर पालिका में भाजपा समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी निर्मला नागर, सांगोद नगर पालिका में भाजपा के चंद्र प्रकाश सोनी तथा सुकेत में जितेंद्र चोपड़ा ने अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की। विकसित भारत जनसेवा अभियान के तहत जिले भर में आंगन मिलन सेवा कार्यक्रम आयोजित हुआ। जिले में 1312 आंगनबाड़ी केंद्रों पर आयोजित इन कार्यक्रमों में आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़ी महिलाओं, बच्चों और अभिभावकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और आशा सहयोगिनियों के योगदान को सम्मान देते हुए कार्यकर्ता और सहायिका को तुलसी का पौधा देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में आंगनबाड़ी केंद्रों को केवल बच्चों की देखभाल तक सीमित नहीं रहते हुए उन्हें बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य, सीखने और रचनात्मक विकास के साथ परिवार और समुदाय को जोड़ने का माध्यम बनाने पर जोर दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर पिछले दिनों जिले भर में सांसद जन सेवा अभियान के तहत जन सेवा शिविर आयोजित किए गए। शिविरों में विभिन्न सरकारी योजनाओं और सेवाओं के माध्यम से लाभ प्रदान किए गए। लोकसभा अध्यक्ष ने कोटा में टेंट एंड डेकोर एक्सपो 2026 में सहभागिता की। उन्होंने कहा कि टेंट और डेकोर व्यवसाय केवल आयोजन और सजावट तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे बड़ी संख्या में कारीगर, तकनीशियन, व्यापारी और अन्य लोग जुड़े हुए हैं। ये क्षेत्र रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर बीते दिनों सांगोद विधानसभा क्षेत्र के प्रवास पर रहे। उन्होंने इस दौरान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कनवास में 70वीं जिला स्तरीय खो खो खेलकूद प्रतियोगिता 2026 के उद्घाटन

0: समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि खो खो जैसे पारंपरिक और स्वदेशी खेलों के आयोजन से युवाओं में टीम भावना, नेतृत्व क्षमता और त्वरित निर्णय लेने के कौशल का विकास होता है। ऊर्जा मंत्री ने सांगोद पंचायत समिति परिसर में आयोजित समारोह में क्षेत्र को 49 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी। जिला कलेक्टर पीयूष सामरिया ने चिल्ड्रन केयर होम बालिका गृह का निरीक्षण किया। उन्होंने बालिकाओं के लिए उपलब्ध सुविधाओं, व्यवस्थाओं और उनके संरक्षण तथा पुनर्वास से संबंधित कार्यों का जायजा लिया। बालिकाओं की शिक्षा को प्राथमिकता देते हुए उनकी नियमित पढ़ाई, शैक्षणिक प्रगति और समुचित मार्गदर्शन पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने बालिकाओं से संवाद करते हुए उन्हें माता पिता और बड़ों का सम्मान करने, शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने तथा जीवन में कुछ नया और बेहतर करने के लिए प्रेरित किया। कोटा में अनंत चतुर्दशी का पर्व हर्षोल्लास और भक्तिभाव के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सूरजपोल गेट से भव्य शोभा यात्रा की शुरुआत हुई। शोभा यात्रा में 90 अखाड़े, 200 झांकियां, 10 भजन मंडलियां और 10 डांडिया मंडलियां मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। इसके अलावा पंजाब का पारंपरिक युद्ध कौशल गतका श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण था। शोभा यात्रा सूरजपोल से शुरू हुई, मुखापाड़ा, कैथुनी पोल, सब्जी मंडी, चार खंबा, रामपुरा और आर्य समाज मार्ग से होते हुए बारादरी पहुंची। कोटा कृषि विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय समन्वित आलू अनुसंधान परियोजना की 2 दिवसीय वार्षिक समीक्षा बैठक बीते दिनों आयोजित हुई। इस बैठक में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला के निदेशक डॉक्टर ब्रिजेश सिंह सहित देश भर के विभिन्न अनुसंधान केंद्रों के वैज्ञानिकों और प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में डॉक्टर ब्रिजेश सिंह ने आलू से जुड़ी जनभ्रांतियों को दूर किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि केवल 0.1% फैट होने के कारण उबला हुआ या भुना हुआ आलू मोटापा नहीं बढ़ाता है, बल्कि इससे अत्यधिक तलकर खाने से फैट बढ़ता है। कोटा जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ, पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा प्रतापगढ़ हूँ, 924 करोड़ रुपया विकास परियोजना वारी नींव रखी और पूरा फ्या काम जनता ने सौंपया। कहो सरकार गांवारा हर एक जनारी बरकत और भलो करनो तय कीनो। प्रदेश में आज सेवा सेतु शिविरारी शुरुआत हुई। 22 महकमारी सेवावां एक ही ठौड़ मिल रही है। जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगम में आज उप महापौर ओहदारा चुनाव किया। 3 ही ठौड़ भारतीय जनता पार्टी रा उम्मीदवार जीतिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल समारोह 11 बजे आकाशवाणी प्रसारित करया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात माय विचार बतावेला। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा गांवारा हर एक जनारी बरकत और भलारो संकल्प दोहरायो है। वे आज प्रतापगढ़ माय 924 करोड़ रुपया रा खर्च हुए वनवाड़ा विकास रा 1452 कामारी नींव रखी और पूरा फिया काम जनता ने सौंपिया। ई मौके वे कहो के प्रदेश री जनता ने पीवण रा पानी सागे खेतीबाड़ी और कारखाना सारू जरूरी तादाद माय पानी मुहैया करावण बाबत लगातार काम करियो जा रियो है। मुख्यमंत्री कहो के वागड़ और कांठल हलका समेत राज्य रा हर एक जना ने विकास री मुख्य धाराओं जोड़बारी कोशिश करी जा रही है।
2: विकसित राजस्थान में हम सबका योगदान होना चाहिए। हमारे गांव का विकास, हमारे क्षेत्र का विकास, हमारे विधानसभा का विकास, हमारे जिले का विकास कैसे होगा, इस पर हमें काम करना चाहिए। क्योंकि हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब को गणेश मान करके पूजा करने वाले लोग हैं। पूरे देश में सेवा के कार्य चल रहे, हमारे प्रदेश में सेवा के कार्य चल रहे। हर गाँव, हर गरीब, हर किसान, हर मजदूर, हर युवा, हर महिला से जुड़ करके विकसित भारत का जो उनका संकल्प है उसे पूरा कर रहे हैं।
1: मुख्यमंत्री आदिवासियों का न्यू बनाई जा वन गिरी ब्रांड रा प्राकृतिक शहद आदि पराग ने बिक्री सारू जारी कीनो। इमो के सांसद मान शंकर निनामा और कैबिनेट मंत्री गौतम दर...

बाबूलाल खराड़ी और हेमंत मीणा समेत वठेरा जनता रा नुमाइंदा ही मौजूद हा। इनु पहली मुख्यमंत्री प्रतापगढ़ रा दीपेश्वर महादेव मिंदर माए पूजा अर्चना कर राज्य माए सुख समृद्धि री कामना कीनी। प्रदेश माए विकसित भारत जनसेवा अभियान रा तहत आज सेवा सेतु शिविर सरूफिया 28 सितंबर ताई लगाया जा रहा आ शिविरा माए कृषि ऊर्जा महिला और बाल विकास और सामाजिक न्याय और अधिकारिता महकमा समेत 22 विभागों जुड़ी सेवावां

0: ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਮਾਮਲਾ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਣਾ ਸਿਰੋਹੀ ਖਬਰਨਵੀਸ ਬਤਾਇਓ ਕਿ ਆ ਸ਼ਿਵਰਾਂ ਸਾਰੂ ਗਾਂਵ ਵਾਲਾ ਮਾਏ ਉਮਾਉ ਰੋ ਮਾਹੌਲ ਹੈ।
1: सिरोही जिले में आदिवासी बहुल और दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित इन शिविरों का उद्देश्य सरकारी योजनाओं और सेवाओं को लोगों के नजदीक उपलब्ध करवाना है। शिविरों में करीब 22 विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहकर ग्रामीणों को विभिन्न सरकारी योजनाओं और सेवाओं की जानकारी दे रही है। विशेष रूप से आदिवासी परिवारों, किसानों, महिलाओं, युवाओं और जरूरतमंद लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है। इससे ग्रामीणों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिल रही है और कई कार्यों का स्थानीय स्तर पर ही समाधान हो रहा है। साकेत गोयल, आकाशवाणी समाचार, सिरोही।
0: मुख्य सचिव वी श्रीनिवास राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण प्रबंधन राजतन रो आज जायजो लीनो। इसारू अहलकार सागर राखी जी मीटिंग माए मुख्य सचिव राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र लागोड़ा प्रदेश रा जिला माए प्रदूषण फैलावन वाली मोटर गाड़ियां रा मालिकां रा खिलाफ अभियान चलावन रा हुकम दीना। मुख्य सचिव अहलकारों ई हलका माए सड़का बनावन रा काम 31 अक्टूबर ताई पूरा करावन सारू कहो। वे एनसीआर रा सगला पेट्रोल पंप मथे गाड़ियां चार्ज करन री मशीना लगावन और हवारी क्वालिटी माए सुधार सारू संबंधित महकमा ने तालमेल सागे काम करन बाबत कहो। देश माए काल दीतवार न छुट्टी रा दिन ही सरकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुलिया रहवेला। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस का नियम सोमवार उंबलाई जी 3 दिन री हड़ताल न ध्यान रखता थका वो फैसलो करी चियो है। वित्त मंत्रालय रे मुजब ग्राहकान असुविधा सारू रिजर्व बैंक री सगली शाखावा दफ्तर एटीएम और करेंसी चेस्ट खुलिया रहवेला। ये बीचे कई सरकारी वाणिज्यिक बैंक हड़ताल रे दौरान एटीएम हर महीना मुफ्त रकम निकालबारी सीमाओं बत्ता लेन देन री फीस माफ करन रो फैसलो किनो है। ऐ समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रिया हो। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप माना एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR News और फेसबुक मथे AIR News Rajasthan पर आई सुन सको हो। जयपुर जोधपुर और कोटा नगर निगम माए आज उप महापौर ओहदा सारू चुनाव हो। आ 3 ही निगम माए भारतीय जनता पार्टी रा उम्मीदवार जीत्या। जयपुर माए सरोज कंवर, जोधपुर माए विजय सिंह पंवार और कोटा माए विवेक राजवंशी चुनीचिया। इस आगे प्रदेश रा 309 नगरीय निकायां रा 10,245 वार्डा माए चुनाव रो काम पूरो वे गयो। खाटू श्याम नगर पालिका माए अध्यक्ष ओहदा माथे चुनाव माए कांग्रेस री विनीता पुनिया चुनीची। वठे उपाध्यक्ष ओहदा सारू चुनाव काल फैला। ध्यान जोग है कि एक राज्य एक चुनाव री सोच रा तेत राज्य में 9 और 11 सितंबर ने पड़िया वोटा की गिनती पाछे सगला नतीजा आ गया है। भारत समेत 8 देशों री वायु सेना रो भेड़ो अभ्यास तरंग शक्ति 2026 आज जोधपुर में शुरू हो। ई अभ्यास में भारत सागे ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, फ्रांस, जर्मनी, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका री वायुसेना आप आपरा लड़ाकू विमाना और युद्ध माय काम आवण वाला साधना सागे शिरकत कर रही है। 12 अक्टूबर ताई चलन वाला अभ्यास रे दौरान सरहदी हलकारा वायुसेना अड्डा माथे आ देशां री लड़ाई लड़बारी तरकीबा ने परख करी जावेला। महाना जोधपुर खबर नवीस बतायो कई भेड़ा अभ्यास रो मकसद लड़ाई रा असली हालात रा मुजब भेड़ा हवाई अभियाना री योजना बनावन अरवाना चलावन रो अभ्यास करनो है।
2: अभ्यास में अमेरिका की 5वीं पीढ़ी के F-35 लड़ाकू विमान भाग ले रहे हैं। भारतीय वायुसेना के राफेल और Sukhoi-30 MKI के साथ इनके युद्धाभ्यास से हवाई अभियानों की क्षमता और आपसी समन्वय को परखा जाएगा। पहली बार F-35 की भागीदारी भारतीय वायुसेना को उन्नत लड़ाकू तकनीक और परिचालन रणनीतियों को समझने का अवसर देगी। अभ्यास में हवाई युद्ध, ग्राउंड अटैक, एयर डिफेंस और खोज बचाव जैसे मिशनों का प्रशिक्षण होगा। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर।
0: केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले कहो है कि देश में लारला 12 साल में समाज रा सगला तबका रा विकास सारू काम पियो है। वे आज

0: पुरमाए खबरनवी सागे बातचीत कर रहा है। अठावले कहो कि देश में जनगणना रो काम चल रो है, जिणु नवी जानकारियां सामी आवेला। वे कहो कि समाज में जातिगत दुभांत खत्म करनो जरूरी है, जिन सारू सगणा ने आगे आवनो वेला।
1: हमने 12 सालों में काम किया है, भारत की इकोनॉमी 4 नंबर पर लाई है, रोड के काम बहुत अच्छे बन गए हैं, नेशनल हाईवे के, रेलवे में काफी सुधार हो चुका है। अभी जो म्युनिसिपैलिटी के चुनाव यहाँ हुए नगर पालिका के, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने अनेक जगह पर जीत हासिल की है, तो बीजेपी अनेक साल तक सत्ता के प्रभाव रही।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल आकाशवाणी प्रसारित करया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात माय विचार बतावेला। आ हर महीना प्रसारित करया जावन वाला ई कार्यक्रम री 138वीं कड़ी फैला। कार्यक्रम रो प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन रा सगला चैनला, AIR न्यूज री वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप माथे करयो जावेला। इसागे AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री रा दफ्तर और सूचना और प्रसारण मंत्रालय रा यूट्यूब चैनल माथे इनरो प्रसारण करियो जावेला। जापान में चल रहा 20वां एशियाई खेलां री कबड्डी होड़ में आज भारत री पुरुष और महिला दोनों टीमा सोनारा तमगा जीतिया। महिला वर्ग में भारत री टीम ईरान ने 37-34 जदके पुरुष वर्ग में भारत ईरान ने 40-34 शिकस्त दीनी। भारत आज सोनारा 2 तमगा जीतिया। इसा गई भारत हाल ताई सोनारा 4, चांदीरा 12 और कांसारा 13 तमगा समेत 29 तमगा जीत और 10वीं ठौड़ माथे आ गयो है। इविच सावन बरवाल पुरुषां री मैराथन दौड़ माय देश सारू ई होड़ माय 44 साल पाछे चांदी रो तमगो जीत्यो। भारत री महिला निशानेबाज टीम 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस होड़ माय चांदी रो तमगो जीत्यो। दूजिकानी स्क्वाश माय अनाहत सिंह महिला सिंगल्स रा फाइनल माय पूग की है। ई होड़ रा पुरुष सिंगल्स माय अभय सिंह ई पाकिस्तान रा खिलाड़ी न हरार गोल्ड मेडल राउंड में दाखिल वे क्या है। राज्यपाल हरिभाव बागड़े चिकित्सा कर्मचारियों और सामाजिक काम करण वालों हीमोफीलिया बीमारी और इनू जुड़िया इलाज रे बारे में जाग जगावन बाबत कहो है। वे आज हीमोफीलिया जागरूकता राष्ट्रीय अभियान री शुरुआत रे मौके बोल रहा है। राज्यपाल कहो कि हीमोफीलिया रे कारण मंदा 3/4 बत्ता लोगों में ई बीमारी री टेम सर पिछाण नहीं वे सके है, जिणु बीमारी बध जावे है। शिक्षा विभाग कान्यू करीब 4 महीना पहले शुरू करी जी 2 खास पहला, खुशी शाला खुद की खोज और AI आधारित दक्षता आकलन ने नई दिल्ली में राखी जा राष्ट्रीय स्तर रा जलसा में स्कॉच पुरस्कार नवाजी जी है। राज्य परियोजना निदेशक डॉक्टर रश्मि शर्मा बतायो कि स्कूल शिक्षा विभाग री ओर तकनीक ने असरदार तरीकों काम लेर विद्यार्थियों रा सीखण रा बूता माय बढ़ोतरी री कोशिश करी जा रही है। आखिर माय खास समाचार एक कर फेर सुन ले रहो। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा प्रतापगढ़ 924 करोड़ रुपया री विकास परियोजना वारी नींव रखी और पूरा फिया काम जनता ने सौंपया। कहो सरकार गांवारा हर एक जनारी बरकत और भलो करनू तय कीनो। प्रदेश में आज सेवा सेतु शिविरां री शुरुआत हुई, 22 महकमारी सेवा में एक ही ठौड़ मिल रही है। जयपुर जोधपुर और कोटा नगर निगम में आज उप महापौर ओहदारा चुनाव किया, 3 ही ठौड़ भारतीय जनता पार्टी रा उम्मीदवार जीतिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काल सवेरा 11 बजे आकाशवाणी प्रसारित करया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात माय विचार बतावेला। इसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। नमस्कार।
2: FM 103.1 MHz में ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान वाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, जिसे हम जयपुर केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
6: किसान वाणी कार्यक्रम सुन वाला सगला श्रोतावान है आशा धाबाई का घना घना राम राम। अदिति जी आपने भी मारा घना घना राम राम सा।
7: राम राम आशा जी और सुन वाला सगला श्रोतावान अदिति भट्टरो ने भरियो नमस्कार और राम राम सा।
6: और आज रामा श्यामा की बात किसान वाणी कार्यक्रम में थोड़ी सी बात आप आई करे ना भाई, अपना जो काश्तकार भाई है वे पूरी तैयारी में छे कि अबा जो खरीफ की फसल छे जो कि कटाई के नजदीक आगी छे, कई लोग काट भी लिया छे जाकर थोड़ी अगेती छी, बाकी भाई या न काट समेटा और आगे की तैयारी करा
7: जी सर।
6: तो बात तो इतनी छे भाई, अबार जो खरीफ की फसल छे बाजरा, मूंग, मूट, गवार, सोयाबीन, मूंगफली, वहां सब ने आप निरीक्षण करता रहो, अगर लागे कि तरह से पगी छे तो कटाई जरूर से कर
7: जी सा। और कटाई के पाछे जो आपनो अनाज छे उन्हें पूरी तरीके सुखानो छे, जितना आपना जो विशेषज्ञ बतावे है उस स्तर तक वाने सुखार, फिर साफ सफाई के पाछे सुरक्षित भंडारण आपन ने करनो छे।
6: और आबाला टाइम में देखो अब आपने जो सरसों की बुआई छे उनको टाइम भी नजदीक छे, तो पूरी तैयारी राखो सा कि आपका क्षेत्र के हिसाब से कसी उपयुक्त किस्म छे और कहीं आपने उनकी बिजाई करनी छे, बीज बीज लियार तैयार रखो ताकि जो ही समय आवे आप तुरंत कर दे, कोई देरी ना होवे, क्योंकि समय पर नीबजा जो भी आप चीज नीबजा चाह वो एक तरह से मोती को ही काम करे छे।
7: जी सा। तो अगर आप अगेती फसल लेनो चाहवा तो खेत की तैयारी कर लेवा, और अगर पचेती फसल तो भी आशा बहन खेत की तैयारी तो आपने करनी करनी चाहे, तो खेत की तैयारी करा, रबी फसला के लिए खेत तैयार करा।
6: अजाद बात तैयारी की आ रही है, तो अब आपनी अगली तैयारी यही है कि आपने जो विषय विशेषज्ञ स्टूडियो में पधार चुका है मधु जी माने ले आया है, तो कल्याण दत्त वर्मा जी के साथ आगे आपा कार्यक्रम ने बढ़ावा।
8: किसान वाणी सुनने वाले सभी श्रोताओं को और भाई बहनों को मधु नायक का प्यार भरा नमस्कार। कृषि में फसलोत्तर प्रबंधन तकनीक इस महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे जयपुर स्टूडियो में आए हैं कल्याण दत्त वर्मा जी, सहायक निदेशक कृषि राजस्थान किसान आयोग जयपुर से आप पधारे हैं। तो सबसे पहले तो कल्याण दत्त वर्मा जी हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत, नमस्कार।
9: धन्यवाद किसान भाइयों, राम राम।
8: तो सबसे पहले तो कल्याण दत्त वर्मा जी हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि फसलोत्तर प्रबंधन, ये फसलोत्तर प्रबंधन तकनीक क्या है, ये हमारे श्रोताओं को और जो किसान भाई बहन आपको सुन रहे हैं उन्हें बताइए।
9: किसान भाइयों, फसलोत्तर प्रबंधन तकनीक वो है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि वर्तमान में खरीफ फसलों की कटाई चालू है। फसलों की कटाई होने के बाद में हम विभिन्न फसलों को निकाल करके उनको अंतिम उपभोक्ता तक जब तक वो पहुंचे तब तक हम उनको किस प्रकार से संरक्षित और सुरक्षित रख सकते हैं, ये तकनीक, ये वो प्रक्रिया है जिसमें फसल कटाई के बाद जो अनाज है, दलहन है, तिलहन है, सब्जियां है और अन्य जो कृषि उत्पाद है उनको खराब होने से बचाया जा सके और उनकी गुणवत्ता भी बनाई रखी जा सके और बाजार तक उनको जब तक पहुँचाया जाए जब तक वो एकदम सुरक्षित अंतिम उपभोक्ता तक सही रूप में पहुँचे, यही फसल प्रबंधन तकनीक है।
8: फसलोत्तर प्रबंधन तकनीक की हम बात कर रहे हैं तो इस तकनीक को अपनाने के कौन कौन से सोपान हैं?
9: किसान भाइयों, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है कि फसलोत्तर प्रबंधन

0: उत्पादन तकनीक के बहुत सारे स्टेप्स हैं जिनको हम वन बाय वन करते जाते हैं, तो हमारा फसलोत्तर प्रबंधन तकनीक है वो बहुत ही सरल हो जाता है। देखिए, सबसे पहले तो हम फसल की सफाई करते हैं, उसकी छटाई करते हैं। फसल काटने के बाद में उसमें बहुत सारे धूल मिट्टी कंकड़ और खराब दाने और फलों को अलग किया जाता है। इसके बाद इसके आकार और गुणवत्ता के आधार पर इसकी ग्रेडिंग की जाती है ताकि बाजार में किसान को अच्छा दाम मिल सके। इसी प्रकार से उसको सुखाया जाता है कि अनाज और दालों में किसी प्रकार की फफूंद और कीड़े लगने का डर रहता है, तो आप सोलर ड्रायर से या फिर सूरज की रोशनी में भी आप इसको फसलों को जो आपके सूखा करके और इसमें आमतौर पर 12-14% तक नमी को रखें तो हमारी फसलें लंबे समय तक सुरक्षित रखी जा सकती है। इसके अलावा और जो स्टेप है हमारा शीत भंडारण, कोल्ड स्टोरेज और कूलिंग, क्योंकि जब भी कोई फल सब्जियां और फलों को जैसे हम जल्दी खराब होने से उत्पादों को बचाते हैं तो उसकी प्री कूलिंग करते हैं कि पहले उसको ठंडा करते हैं और इसको कोल्ड स्टोरेज तकनीक का इसमें उपयोग किया जाता है, लंबे समय तक वो फल ताजे बने रहते हैं। इसी प्रकार से उन्नत पैकेजिंग, ये है जो उत्पाद जो भी हम फसल काट करके जब बाजार में लेकर के जाते हैं तो उत्पाद को सुरक्षित रखने में उसकी सेल्फ लाइफ में किस प्रकार से बढ़ोतरी हो कि वो जल्दी खराब नहीं हो, तो मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग दे करके और उसको जूट या प्लास्टिक से मजबूत बैग्स का आदि का इस्तेमाल किया जाता है और उसको सुरक्षित किया जाता है। इसी प्रकार से सुरक्षित भंडारण, कि जिस प्रकार से अनाज को निकालने के बाद में विभिन्न प्रकार के कीटाणुओं से, चूहों से, जीवाणुओं से, नमी से, इनसे बचाने के लिए पक्के गोदामों के हार्मेटिक बैग्स, हवा रहित जो बैग होते हैं उनमें रखा जाता है। एक जो अगली जो स्टेप है प्रसंस्करण, क्योंकि प्रसंस्करण एक वो तकनीक है जिसमें जो भी हमारी फसलें हैं उनका जो एक तरह से कच्चा माल है, कच्चे माल को प्रसंस्करण जब हम कर देते हैं, उसका रूप बदल देते हैं, तो उसकी वैल्यू और भी बढ़ जाती है। जैसे टमाटर से हम सॉस बनाते हैं, आमतौर पे कैरी से जैसे अचार बनाते हैं, पल्प बनाते हैं, और गेहूं से हम मैदा, सूजी, आटा, ये विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट तैयार करके बाजार में बेचते हैं, तो इनका बाजार मूल्य जो हमें बहुत अच्छा मिलता है। अगला स्टेप, जब भी हम ट्रांसपोर्टेशन, किसी भी इनपुट का जब हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं उत्पाद का, तो उस टाइम पे भी हमें ध्यान रखना पड़ता है कि वो उत्पाद अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचने तक खराब नहीं हो। तो जो हमारा परिवहन, जो ट्रांसपोर्टेशन जो व्हीकल है उसमें भी कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था हो तो वो अंतिम उपभोक्ता तक सुरक्षित पहुंचाया जा सकता है।
1: बहुत खूब कल्याण दत्त वर्मा जी, फसलोत्तर प्रबंधन तकनीक क्या है ये आपने बताया और इस तकनीक को अपनाने के लिए कौन कौन से तरीके हमें अपनाने होंगे या कौन से सोपान है वो आपने बताए और कुछ इसके आपने फायदे भी बताए। खास तौर से हम जब फायदे की बात कर रहे हैं तो और कौन कौन से लाभ हमें फसलोत्तर प्रबंधन तकनीक से मिलते हैं ये भी बताइए।
0: किसान भाइयों, निश्चित रूप से फसल कटाई के बाद में जब हम लंबे टाइम तक उसका रखरखाव करते हैं तो उसकी गुणवत्ता में किसी प्रकार की कोई खामी नहीं, और अंतिम उपभोक्ता तक जब हम पहुंचाते हैं तो इस तकनीक को जब हम पूरी तरह से अपनाते हैं तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। कि एक तो सबसे बड़ी बात थी, तकनीक का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारी कटी हुई जो फसल है उसमें बहुत कम फसल बर्बाद होती है, नुकसान होने से बच जाती है। और जब हम फसलोत्तर प्रबंधन करते हैं, अंतिम उपभोक्ता तक जाते हैं, तो उसका जो हमारे बेहतर मुनाफा हमें मिल पाता है कि मंडियों में हमें ज़्यादा कीमत मिलती है, क्योंकि हमारा जो दाल हो या अनाज हो या दलहन हो, तिलहन हो, सब्जियां हो, ये जब हम सही रूप में, सही गुणवत्ता से जब अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचती है तो उसका बेहतर मुनाफा हमें मिलता है। खाद्य सुरक्षा में भी हमें फायदा मिलता है कि जो अन्न हम उत्पादन करते हैं, उत्पादित अन्न को यदि हम बचा लेते हैं तो वो भी एक एक्स्ट्रा बेनिफिट हमें मिलता है, तो खाद्य सुरक्षा में भी हमें फायदा मिलता है। सभी उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार की जो उत्पाद है वो हमें सुलभ हो पाते हैं और इससे रोजगार के अवसर भी सृजन होते हैं। जैसे ट्रांसपोर्टेशन है और सुरक्षित भंडारण की जो तकनीक है, पैकेजिंग है, कोल्ड स्टोरेज है, ये विभिन्न प्रकार के जो टेक्निक हम अपनाते हैं तो इनमें विभिन्न प्रकार के लोग लगते हैं तो इनमें रोजगार के अवसर भी हमें पैदा होते हैं, तो विभिन्न प्रकार के फायदे हमें मिलते हैं।
1: फसलों की कटाई के बाद जब बारी आती है भंडारण की, भंडारण के लिए फसलों में नमी की मात्रा कितनी होनी

0: चाहिए ताकि हम सुरक्षित भंडारण कर सकें?
1: देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है कि नमी की जो मात्रा है वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि फसल कटाई के बाद में यदि उसमें नमी की मात्रा यदि ज्यादा होगी तो निश्चित रूप से वो फसल जल्दी सड़ेगी, जल्दी खराब होगी, जल्दी उसमें फफूंद लगेगी, उसमें कीड़ों का आक्रमण उसमें जल्दी होगा और जल्दी होकर के वो जल्दी खराब हो जाएगा। इसलिए नमी की जो मात्रा है उसको एक उपयुक्त नमी की मात्रा रखना हमारे लिए उसको सुरक्षित अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए नमी की मात्रा का एक उपयुक्त नमी की मात्रा का होना नितांत आवश्यक है। जैसे अनाज है, जैसे गेहूं, धान, चावल, मक्का, बाजरा आदि, इनमें 12 से 14% तक नमी रखते हैं तो वो सुरक्षित रहती है। दलहन जो है 10 से 12%, चना, मूंग, उड़द, अरहर, मसूर आदि जो फसलें हैं 10 से 12% इनमें नमी होनी चाहिए। इसी प्रकार से तिलहन जो है 7 से 9%, क्योंकि इसमें तेल की मात्रा होती है तो तेल की मात्रा होने से नमी ज़्यादा होगी तो ये सबसे ज़्यादा खराब होती है। जैसे सरसों, सोयाबीन, मूंगफली तेल आदि जो है ये जल्दी खराब होने से बच जाते हैं यदि इनमें ऑप्टिमम नमी की मात्रा होती है तो।
0: फसलोत्तर प्रबंधन की विभागीय योजनाएं यदि कोई हो तो आप बताएं और उनसे कौन कौन सी सुविधा या कौन कौन से लाभ हमारे किसानों को प्राप्त हो सकते हैं।
1: किसान भाइयों, विभाग फसलोत्तर प्रबंधन के महत्व को समझते हुए बहुत ही सजग है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही इसके महत्व को समझती है, क्योंकि जब किसान अन्न का उत्पादन करता है तो वो बीज में खराब नहीं हो तो अन्न का उत्पादन होने के साथ साथ में जो खराब होने से जो बचा गया अन्न है या खाद्यान्न है या दलहन तिलहन है, सब्जियां है, फल है, तो इनको हम किस प्रकार से सुरक्षित रख सकते हैं, तो इस में उद्यान विभाग की तरफ से प्याज भंडारण स्ट्रक्चर तैयार करवाया जाता है। ये लोहे के पाइप, बांस और टिन सेट द्वारा एक हवादार ढांचे का निर्माण किया जाता है, जिस पर उद्यान विभाग द्वारा 87,500 रुपये का अनुदान दिया जाता है। इसी प्रकार से अवशीतन गृह फसलों की कीपिंग क्वालिटी की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए मुख्य रूप से सब्जियों को अधिक समय तक खराब होने से बचाने के लिए बनाए जाते हैं, जो अधिकतम 5,000 मैट्रिक टन पर ये दिया जाता है और 9,600 प्रति मैट्रिक टन इकाई लागत का 35% अनुदान इस पे दिया जाता है। इसी प्रकार से एक इंटीग्रेटेड पैक हाउस जो निर्धारित मापदंडों पर 1,60,00,000 इसकी इकाई लागत है, जिसका 35% अनुदान देय है। इसी प्रकार से फार्म ग्रेड पैक हाउस, इसकी इकाई लागत 25,00,000 है, जिसका 50% अनुदान देय है।
0: श्रोताओं, कार्यक्रम चल रहा है किसान वाणी, कृषि में फसलोत्तर प्रबंधन तकनीकी। इस महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी दे रहे हैं कल्याण दत्त वर्मा, सहायक निदेशक कृषि। कल्याण दत्त वर्मा जी, अन्न की बर्बादी को रोकने के लिए आप हमारे किसान भाइयों को या जो श्रोता आपको रेडियो के माध्यम से सुन रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: किसान भाइयों और जो भी आमजन मेरी बात को सुन रहे हैं, इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो किसान द्वारा जो अन्न का उत्पादन किया जाता है, ये अन्न का उत्पादन ही नहीं, ये भारत जैसे देश में जहाँ आज भी लाखों लोग दो वक्त का जो भरपेट भोजन नसीब नहीं होता, वहाँ राजकीय उत्सवों, शादी पार्टियों में टनों भोजन कचरे के डिब्बे में फेंक दिया जाता है, और अन्न सिर्फ भोजन नहीं बल्कि किसान की कड़ी मेहनत, पानी, मिट्टी और प्रकृति के संसाधनों का निचोड़ है, और इसे बर्बाद करना सीधे तौर पर मानवता और प्रकृति का अपमान है। तो इस प्रकार से समारोह में अन्न की बर्बादी रोकने से मैं संदेश देना चाहूँगा कि आप उतना ही ले थाली में, व्यर्थ न जाए नाली में। भोजन लेते समय हमें हमारी भूख का ध्यान रखें और दोबारा भोजन आप ले सकते हैं, एक साथ अपनी प्लेट को ना भरें। अन्न का सम्मान करें, जीवन का सम्मान है कि अन्न देवता के रूप में है। समारोह की भव्यता इस बात से नहीं नापी जानी चाहिए कि भोजन कितना बना है, बल्कि इस बात से नापी जानी कि कितना अनुशासित और मर्यादित भोजन हुआ।
0: बहुत अच्छी बात कल्याण दत्त जी आपने कही है कि भोजन उतना ही ले थाली में कि व्यर्थ ना जाए नाली में। और वैसे भी हमारा जो राजस्थान प्रदेश है या हमारे देश की जो हालत है, बहुत से लोग यहाँ भूखमरी से पीड़ित है, तो ऐसे में हमें अन्न की बर्बादी को रोकने के प्रयास करने ही चाहिए। उम्मीद है कि जो श्रोता आपको रेडियो के माध्यम से या हमारा जो कार्यक्रम है किसान वाणी, इस कार्यक्रम किसान वाणी के माध्यम से सुन रहे हैं, वो जरूर ही आपकी बात को सुनेंगे भी और इसे जहन में भी रखेंगे, इसका ख्याल रखेंगे कि हम अन्न की बर्बादी होने से रोके। चलते चलते कोई ऐसी खास

0: बात आपके मन की हो जो एक आम श्रोता है उस तक पहुंचाना चाहें।
1: देखिए, बहुत अच्छी बात है ये जो टॉपिक आज हम लेकर के आए हैं आकाशवाणी के माध्यम से, कि जो फसलोत्तर प्रबंधन जो तकनीक है इसको हम स्टेप टू स्टेप यदि हम करेंगे तो निश्चित रूप से हमें अन्न की बर्बादी होने से बचेगी और हमें मुनाफा भी होगा और अंतिम जो उपभोक्ता है वहाँ तक सभी उपभोक्ताओं को दलहन तिलहन फल सब्जियाँ ये हमारी पहुँच में होगी।
0: कृषि में फसलोत्तर प्रबंधन तकनीकी इस महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी दी कल्याण दत्त वर्मा, सहायक निदेशक कृषि, राजस्थान किसान आयोग जयपुर से। आप हमारे स्टूडियो में आए और इतने महत्वपूर्ण विषय पर आपने हमारे श्रोताओं को जानकारी दी, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।
2: अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
3: उतला बोल रहे
2: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
3: मतलब
2: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग। अरे अब पहली वाली बात कहाँ,
3: पर हम तो सब यही डाले हैं।
2: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
3: सच है?
2: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
3: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
4: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
5: मधु जी, आपको इतो बढ़िया आप जानकारी दिलवाया के लिए घणो घणो धन्यवाद सर। धन्यवाद री भेट स्वरूप सुना चाहिए मीठो सो गीत।
6: बिल्कुल सर, तो सगड़ा ही मिलर सुना।

0: मिस्त्री जी।
1: जी सा
0: मुल्तान खान को गायो गीत पार्टी को तो बहुत ही बढ़िया लगे सा। उम्मीद छे कार्यक्रम सुन वाला सगला किसान बहन बहन श्रोतावाना भी पसंद आयो होलो।
1: जी सा वाकी तरफ से मैं हामी भजू की घणो पसंद आयो छे।
0: क्योंकि देखो सा इतना सारा सा आपा जुड़ेड़ा छा तो थोड़ो तो आपा ने भी पतो लागी को की आपना जी का सुन वाला श्रोता छे वाकी पसंद ना पसंद की तरह की छे।
1: जी सा
0: और अब तो यही छे की देखो मौसम में परिवर्तन हो रही छे। सुबह शाम आप देखो जो भोली भोली ठंड भी लागबा लगी
1: जी।
0: तो ध्यान सावचेती जाप तो जो हमेशा ही कहता रहना चाहे वो जरूर से जरूर रखना चाहिए।
1: जी सा और थोड़ी सी जो ठंडी तासीर वाली चीजें है उनमें थोड़ा सा बदलाव आप ने करना चाहिए और गर्म तासीर वाली चीजें की तरफ बढ़ना चाहिए उन्हें अपनाने को ना बार सु।
0: और ध्यान यह भी रखना चाहिए सा कि मौसम में परिवर्तन के साथ साथ खुद का अपना ओढ़बा पैरवा में भी थोड़ा परिवर्तन करा आपा। क्योंकि एकदम से ही देखो या जो भोली भोली सी ठंड की जी की शुरुआत है और दिन में आप देखो कि अतरो तावड़ो लागे लो कि जी आप कोई जेठ को ही पड़ रहे हो सोचा कि धूप भी अति तेज लागे ली और आबाड़ा टाइम में तेवारी सीजन भी आबाड़ो छे। और चूंकि अब खरीफ की फसल पूरी हो गई रवि की तैयारी कर रहा चाह काम भी पूरो छे जिम्मेदारी भी पूरी बढ़ रही है तो खेबा को मतलब यही है कि टाइम ने देखता हुए समय सारू अपनी योजना बनाता हुए सारा काम ने कर लेनी छे।
1: जी सा और जिया थे बताया कि त्योहारी सीजन छे तो त्योहार तो आबाड़ा ही छे अबार तो उनके लिए आपने वह तैयारी करनी छे सागे आपने अपना स्वास्थ्य भी ठीक रखना छे जिससे कि आपा सारा त्योहार को मजो ले पावा। वरना अगर स्वास्थ्य सो थोड़ो सो भी अंडी का उंडी का हो लो ना तो आपा पूरे खटाई में पड़ जाओ लो त्योहारी।
0: बिल्कुल और मौसम को विशेष तौर से यह भी ध्यान रखा क्योंकि सीधो यो मौसम को परिवर्तन अपनी फसल ने भी काश्तकार भाई कि ने प्रभावित करे चाहे वहां पर असर डाले चाहे मेहनत पूरी करा और थोड़ी सी लापरवाही की वजह से अगर नुकसान हो जावे तो वो तो फिर आपने चीज हजम हो को न इताई मौसम विभाग जो भी सूचना चेतावनी देवे छे उन्हें हल्का में न लेवा और ध्यान रखा और अपनो काम करता रहवा। और ध्यान की जब बात आवे छे तो या भी ध्यान रखा कि स्टूडियो की घड़ी भी माने टाइम बताती रहवे छे या भी बताती रहवे छे भाई यहां इतो ही टाइम किसान वाणी को छो। तो अब स्टूडियो की घड़ी यही कह रही छे कि आज को जी को कार्यक्रम छे किसान वाणी को टाइम पूरो होतो जा रहे छे तो देर आओ आगे आशा ने
1: और अदिति ने चाला और करा राम राम सा।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
3: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
4: मिलेगा

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

FM 103.1 MHz पर ये आकाशवाणी अलवर का सरस का चैनल है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। शाम के 7:30 हुए हैं। लीजिए पेश है फिल्म संगीत।

श्रोताओं, नितिन रायकवार के बोल थे, जतिन ललित का संगीत, फिल्म थी गुलाम और आवाजें थी आमिर खान और अलका याग्निक की। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से।

और ये प्रोग्राम की अगली पेशकश किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ें, जावेद अख्तर के बोल, संगीत आर डी बर्मन का, फिल्म सागर।

अनुराधा बाजवाल की आवाज में, समीर का लिखा, नदीप श्रवण के संगीत से सजा साजन फिल्म का ये गीत सुनिए।

श्रोताओं, साजन फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, आवाज थी अनुराधा पौडवाल की। फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से।

और आइए सुनते हैं अनुराधा पंचवाल की आवाज में आनंद मिलन के संगीत से सजा समीर का लिखा आई मिलन की रात फिल्म का गीत।

और लीजिए अब अगला गीत सुनिए, अनुराधा पौडवाल और कुमार शानू की आवाजें, समीर के बोल, नदीम श्रवण का संगीत, फिल्म फूल और काटी।

अनुराधा पौडवाल और कुमार शानू की आवाजों में आप सुन रहे थे फूल और कांटे फिल्म का ये गीत। और अब आपको सुनवा रहे हैं अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजें, समीर के बोल, अनु मलिक का संगीत।

और नीचे अब आपको सुनवा रहे हैं अरिजीत सिंह की आवाज, संजय लीला भंसाली का संगीत, एम टरास की बोल, फिल्म बाजीराव मस्तानी का ये गीत।

अरे बाप को सुनवाते हैं प्रोग्राम के आखिर में कमाल खान की आवाज में विशाल शेखर के संगीत से सजा रजत अरोड़ा का लिखा डर्टी पिक्चर फिल्म का गीत।

शुदा कमाल खान की आवाज में आप सुन रहे थे डर्टी पिक्चर फिल्म का गीत। इसी के साथ हमारा फिल्म संगीत का ये प्रोग्राम अब यहीं समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 7:15 हैं। प्रस्तुत है लोक संगीत के कार्यक्रम में। आज हम आपको सुनवा रहे हैं लोक गाथा श्रवण कुमार प्रसंग। कलाकार हैं दुर्गा प्रसाद शर्मा और सा

0: माता पिता
1: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
2: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
3: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा फिर करते हैं डील फाइनल।
4: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
3: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
4: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
3: पर रेरा तो शहरों में।
4: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
3: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
0: श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थ कराने के लिए चलता है। श्रवण कुमार के माता पिता को रास्ते में प्यास लग जाती है, तो वे श्रवण कुमार से कहते हैं कि बेटा हमको प्यास लग रही है, तू हमारे लिए पानी लेकर के आ। किस तरह से कह रहे हैं,

संसार सागर है अगर माता पिता भी एक नाव है जिसने करी सेवा माँ।

पुत्र के वियोग में राजा खेलने चलो शिकार है। राजा दशरथ शिकार खेलने ले चल देता है। सुबह से

सरवण चला भरने जली लेकर कमंडल हाथ में। स्वर्ण कुमार भी वहां पर कमंडल हाथ में लेकर के जल भरने के लिए आ जाता है।

क्या सुन सब जी दशरथ बाण धर लियो जब चाप में। दशरथ राजा अपने बाण को रख लेता है। दशरथ सो

हे श्रवण कुमार को दशरथ फूल जू कुमला गयो। हाय मेरे हाथ से श्रवण कुमार।

शरीर जो है सीना लग जाता है श्रवण कुमार करके, तो राजा उसकी हाय की आवाज सुन करके वहां पर आ जाता है और श्रवण को देख करके दशरथ फूल जैसे कुमला जाता है। वो कहता है कि मेरे हाथ से ये श्रवण कुमार मारा गया। कह रहा है पहले मैं पुत्र दुखी आरो कि मेरे को बेटा नहीं है, और दूजो लाल विरणो मारो उठ हृदय से लग जा रहे। अब श्रवण कुमार कह रहा है दशरथ जी से, हिम्मत करो धीरज धरो, इस पात्र को जल से भरो, प्यासे मेरे माता।

फिर उनको फिर कहो श्रवण मरो अंत का यह तंत है इतना धर्म मुझ पर करो। श्रवण कह रहा है कि मेरे मरने का समाचार मेरे माता पिताओं से बाद में कहना, पहले उनको तुम पानी पिलाओ। अरे मुंह फेर ली।

राजा दशरथ उस कमंडल को भर कर करके जल से और हाथ में लेकर के चल देता है। किस तरह से लेकर कमंडल हाथ में भर पलकों में नीर लाख जतन राजा करे पर बंधे न मन को धीर। जाय श्रवण के माता पिता के धरो हाथ पे नीर कहो बेटा क्यों घबरा रहो तेरो थर थर करे शरीर। जब राजा दशरथ उनके माता पिताओं के हाथ में जाकर जल रख देते हैं तो माता पिता अंधे थे, उनको दिखता नहीं था, लेकिन वो मन ही मन में सोच रहे थे

श्रवण के माता कह रही है कि मार कर मेरे लाल को अच्छो स्वागत हमरो कियो, कौन से जन्म को बदलो तूने या जन्म में दशरथ ले लियो। अरे धरणी पर...

चार बेटे होंगे तेरे दशरथ पर तेरे एक भी काम ना आए हो। पुत्र की ममता का जब तुझको पता लग जाएगो तू भी हमरी तरह से हाय लाल।

श्रोताओं, लोक संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे लोक गाथा, श्रवण कुमार प्रसंग, कलाकार थे दुर्गा प्रसाद और साथी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी अलवर के सरिस्का चैनल से। आइए सुनते हैं इन्हीं के स्वर में ये एक लोक गीत।

0: माता दुर्गा का ये भजन आपने सुना आवाज से दुर्गा प्रसाद और साथियों की, और आइए आप सुनते हैं ये संदेश।
1: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
2: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।
3: हेलो, हाँ हाँ, आज प्रोजेक्ट देख लूंगा, फिर करते हैं डील फाइनल।
4: अरे बड़ी डील वील हो रही है भाई।
3: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
4: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
3: पर रेरा तो शहरों में।
4: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल, कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट, चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
3: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।

और मिला आपके आंवले संगठन की हड़ की देशभक्ति का बुरादा पर उपकार के बीज रहम दिल का छिलका ये साथ हो मिला।

सबको मिलाकर मन रूपी हांडी में डालकर इश्क इलाही के चूल्हे पर चढ़ाए और नीचे प्रेम की अग्नि जलाए कि पक जाने पर नीचे उतार लें और नेक नियति के कपड़े से छान कर चरित्र रूपी सीसी में भर लें क्योंकि ये सो

एक एक तोला संतोष के गुलकंद में मिलाकर ईमानदारी की चम्मच से खाएं और क्रोध रूपी मिर्च अहंकार रूपी तेल और दुराचार रूपी मसाला न खाएं कि प्रतिदिन एक एक तोला संतोष के गुलकंद में मिलाकर ईमानदारी की चम्मच से खाएं क्रोध की मिर्च अहंकार का तेल और दुराचार का मसाला।

श्रोताओ, लोक संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे दुर्गा प्रसाद शर्मा और साथियों के गाए लोकगीत, लोक भजन। और आपने सुना लोक गाथा में कलाकार थे दुर्गा प्रसाद शर्मा और लोक गाथा थी श्रवण कुमार प्रसंग। इसी के साथ लोक संगीत यहीं खत्म हुआ। अब सुनिए समाचार संध्या और उसके बाद अंग्रेजी में समाचार, जिन्हें हम दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं। प्रतीक्षा।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। निर्वाचन आयोग ने फिर स्पष्ट किया, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एसआईआर का आदेश सर्वसम्मति से जारी किया गया। आयोग ने कहा, एसआईआर के दौरान जिन मतदाताओं को नोटिस मिला, बीएलओ उनके घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने केरल में सहकारिता के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं का उद्घाटन किया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा, बच्चों में मादक पदार्थों के दुरुपयोग को बाल संरक्षण के मुद्दे के रूप में देखा जाना चाहिए। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर आज रात न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। और एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने स्वर्ण, तजिंदर पाल सिंह तूर ने रजत पदक जीता। भारत के 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य सहित 30 पदक।

0: अब समाचार विस्तार से। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं उनके घरों पर बूथ स्तर के अधिकारी BLO जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। BLO बाद में इन दस्तावेजों को ECI नेट प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे। ये निर्णय नई दिल्ली में आयोग की बैठक में लिया गया। आयोग ने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SIR का आदेश आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बिहार और पश्चिम बंगाल सहित 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR पूरा हो चुका है।
1: चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर SIR के दौरान किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में छूट गया है तो वह अपने क्षेत्र के मतदाता पंजीकरण अधिकारी के पास अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और मतदाता पंजीकरण अधिकारी इन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए विशेष अभियान शुरू करेंगे। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर निर्वाचन आयोग ने दावे और आपत्तियां दर्ज करने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा नोटिस, दावों और आपत्तियों का निपटारा करने की आखिरी तारीख भी 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। दीपेंद्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय जनता पार्टी ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के बारे में निर्वाचन आयोग पर विपक्ष और विशेष रूप से कांग्रेस के आरोपों की कड़ी निंदा की है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया।
2: इसी SIR को केरला की कांग्रेस ने सही माना कि उनके कारण हमको जीत मिली है, क्योंकि वामपंथियों ने जो इलीगली नाम घुसवाए थे वो निकले, फेक वोटर्स, और हम जीते। चुनाव आयोग ने आज दूध का दूध और पानी का पानी विषय स्पष्ट कर दिया है।
0: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केरलम के भविष्य के लिए नीली अर्थव्यवस्था में बहुत संभावनाएं हैं और सहकारी क्षेत्र को इसका लाभ उठाना चाहिए। श्री शाह ने केरलम के कुंद्रा में आज भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अंतर्गत शी मार्ट पहल सहित कई विकास योजनाओं का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से ही लोग केंद्र में सहकारिता मंत्रालय की मांग करते रहे हैं। श्री शाह ने कहा कि शी मार्ट कॉन्सेप्ट महिला उद्यमियों को बाजार से जुड़ने के लिए बेहतरीन मंच देगा।
3: NCCF द्वारा 2500 से अधिक रिटेल आउटलेट्स के साथ साथ केरलम, तमिलनाडु और कर्नाटक में 300 से अधिक सी मार्ट स्टोर भारत ब्रांड उत्पाद और लोकल उत्पाद इसके लिए उपलब्ध हो जाएंगे, जिसके कारण प्रोक्योरमेंट, प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और डायरेक्ट रिटेल मार्केट, इस सभी का फायदा किसानों को और इसके साथ साथ महिला उद्यमियों को मिलेगा।
0: श्री अमित शाह ने सहकारी क्षेत्र के उत्पादों वाले मंडप का भी दौरा किया। गृह मंत्री अमित शाह केरलम के कोल्लम में माता अमृता नंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि माता अमृता नंदमयी ने सेवा को मिशन में बदलकर मिसाल कायम की है।
3: 10 लाख से ज्यादा वृक्षारोपण, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका की भावना और इसके साथ साथ 101 गांवों को पूर्णतया से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अम्मा ने बहुत बड़ा काम किया है। संयुक्त राष्ट्र के मिलेनियम विश्व शांति सम्मेलन और विश्व धर्म संसद जैसे कई मंचों में हिंदुत्व का, सेवा का संदेश अम्मा ने पहुंचाया।
0: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन कल केरलम के एक दिन के दौरे पर जाएंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति कोल्लम में माता अमृता नंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित विश्व सेवा दिनम समारोह में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा के क्षेत्र में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और लगातार जारी रहने वाले समर्पण से संभव हुआ है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए ये समर्पण लोगों की जिंदगी बदल रहा है। आज अपनी विशेष श्रृंखला में हम बात कर रहे हैं कि परीक्षा पे चर्चा पहल के जरिए इस सपने को कैसे वास्तविकता में बदला गया है।
4: परीक्षा पे चर्चा एक वार्षिक संवाद कार्यक्रम है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों से बातचीत करते हैं और परीक्षा के तनाव को कम करने

0: के साथ साथ पढ़ाई को आनंददायक बनाने के तरीकों पर चर्चा करते हैं। 2018 में एग्जाम वॉरियर्स अभियान के तहत शुरू की गई यह पहल युवाओं को तनाव के बजाय आत्मविश्वास के साथ परीक्षा का सामना करने के लिए प्रेरित करती है। इस पहल ने परीक्षा को डर या दबाव के बजाय सीखने पर जोर दिया है। परीक्षा पे चर्चा के तहत आयोजित एक कार्यक्रम में छात्रों से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें खुद को मजबूत बनाने और हर तरह के दबाव का सामना करने में सक्षम बनने की सलाह दी।
1: किसी भी प्रकार के प्रेशर को झेलने के लिए सामर्थ्यवान बनाना चाहिए। रोते बैठना नहीं चाहिए, मान के चलना चाहिए कि जीवन में आता रहता है, दबाव बनता रहता है, तो खुद को तैयार करना पड़ता है। दबाव को हमने अपने तरीके से मन से एक बार इस स्थिति से जीतना है, एक तो संकल्प करना।
0: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए मध्य प्रदेश की छात्रा कृतिका सेन ने बताया कि परीक्षा पे चर्चा से उन्हें प्रेरणा मिली और परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करने में मदद मिली।
2: पीएम नरेंद्र मोदी जी बहुत सरल स्वभाव के हैं। उन्होंने हमें बताया कि एग्जाम्स की तैयारी से लेकर फाइनल एग्जाम तक हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए। हमें डरना नहीं चाहिए, हमें एग्जाम्स के एकदम वॉरियर्स की तरह लड़ना चाहिए।

0: एक तो संकल्प करना।
1: आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए मध्य प्रदेश की छात्रा कृतिका सेन ने बताया कि परीक्षा पे चर्चा से उन्हें प्रेरणा मिली और परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करने में मदद मिली।
2: पीएम नरेंद्र मोदी जी बहुत सरल स्वभाव के हैं। उन्होंने हमें बताया कि एग्जाम्स की तैयारी से लेकर फाइनल एग्जाम तक हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए, हमें डरना नहीं चाहिए, हमें एग्जाम्स के एकदम वॉरियर्स की तरह लड़ना चाहिए। फिर वहाँ से आके हमने बहुत अच्छे से एग्जाम्स दिए और हमने बहुत अच्छा स्कोर किया।
1: इस कार्यक्रम में सिर्फ अच्छे अंक लाने पर नहीं बल्कि छात्रों के समग्र विकास पर भी ध्यान दिया जाता है। यह परीक्षा से जुड़े तनाव को कम करने के साथ साथ छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान केंद्रित करता है। प्रिया मंडल के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRNews हिंदी और पब्लिक पर @AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि न्याय प्रणाली को नागरिकों से मदद मांगने की प्रतीक्षा के बजाय खुद ही जरूरतमंदों तक पहुंचना चाहिए। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने पटना में देश के पहले पीड़ित अधिकार केंद्र के उद्घाटन समारोह में ये बात कही। मुख्य न्यायाधीश आज पटना में बचपन की पुनर्स्थापना, नशे की रोकथाम और देखभाल तथा संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों के पुनः एकीकरण विषय पर आयोजित सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बच्चों में मादक पदार्थों के दुरुपयोग को बाल संरक्षण के मुद्दे के रूप में देखा जाना चाहिए।
5: चाइल्ड एनकाउंटर्स,
6: जब कोई बच्चा नशीले पदार्थ के संपर्क में आता है तो उसकी शिक्षा बाधित होती है, परिवार के साथ उसके संबंध तनावपूर्ण हो जाते हैं, उसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और वो शोषण, हिंसा, मानव तस्करी और अन्य प्रकार के कई दुर्व्यवहारों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है। इसलिए बच्चों में नशीले पदार्थों का सेवन केवल जन स्वास्थ्य की चिंता के रूप में नहीं बल्कि समान रूप से बाल संरक्षण से जुड़ी चिंता के रूप में भी समझा जाना चाहिए।
3: विदेश मंत्री एस जयशंकर आज रात न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए कल रविवार को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खुले रहेंगे। ये निर्णय बैंक कर्मचारी संगठनों के संयुक्त मंच यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित देशव्यापी हड़ताल को देखते हुए लिया गया है। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंकों ने हड़ताल के दौरान एटीएम से निःशुल्क मासिक सीमा से अधिक बार लेन देन का शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत 10% से अधिक की आर्थिक वृद्धि दर हासिल कर सकता है। उन्होंने अधिक से अधिक प्रौद्योगिकी और नवाचार को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। आईआईटी मद्रास के कार्यक्रम में सुश्री सीतारामन ने कहा कि उच्च विकास दर आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की दिशा में प्रगति को गति देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश और विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 138वीं कड़ी होगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। उत्तराखंड में खराब मौसम के कारण चार धाम यात्रा को कल तक के लिए रोक दिया गया है। तीर्थयात्रियों को सलाह दी गई है कि वे मौसम पर नजर रखें और प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें। इस बीच राज्य में कई स्थानों पर कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान है। उधर ओडिशा के कई हिस्सों में भी तेज बारिश हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के 10 जिलों में 73,000 से अधिक लोग प्रभावित हैं।
0: उड़ीसा के 10 जिलों में लगातार बारिश से 80 ब्लॉक 325 ग्राम पंचायतों और 1071 गांव के 73,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। लगभग 4,480 हेक्टेयर खेती की जमीन भी प्रभावित हुई है। उत्तरी ओडिशा में जड़का और बैतरणी नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जबकि सुवर्णरेखा नदी का जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे निचले इलाकों पर

0: खतरा मंडरा रहा है। पानी का बहाव बढ़ने के कारण हीराकुद बांध के 20 गेटों से बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: पश्चिमी विक्षोभ के कारण हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भी आज दोपहर से बारिश जारी है। मौसम विभाग ने 29 सितंबर तक राज्य में बारिश की संभावना व्यक्त की है। एक रिपोर्ट।
2: हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला किन्नौर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज अचानक बर्फबारी होने से ठंड बढ़ गई है। प्रदेश के अन्य उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में भी हल्के हिमपात की खबर है। राजधानी शिमला में दिन भर रुक रुक कर बारिश होती रही, जिससे मौसम ठंडा हो गया है। वहीं निचले इलाकों में बारिश के कारण लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने कल 27 सितंबर को प्रदेश के 8 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। सिरमौर जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट, जबकि बिलासपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और किन्नौर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: इस बीच मौसम विभाग ने समुद्र में ऊंची लहरें उठने की आशंका के कारण 28 सितंबर तक केरलम, माहे, लक्षद्वीप और दक्षिणी तमिलनाडु के तटीय इलाकों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। केरलम तट पर 1 से 1.5 मीटर ऊंची लहरें उठने की आशंका है। पर्यटन सहित समुद्र तट पर सभी प्रकार की गतिविधियों से पूरी तरह बचने की सलाह दी गई है। और अब खेल खबरों के साथ हैं प्रशांत कुमार।
3: जापान एशियाई खेलों के आज 8वें दिन भारत ने 2 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। एथलेटिक्स में पुरुष शॉटपुट स्पर्धा में तजिंदर पाल सिंह तूर और पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में सावन बरवाल ने रजत पदक हासिल किया। प्राची चौधरी ने महिला 400 मीटर दौड़ स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। निशानेबाजी में तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और आशी चौकसी की तिकड़ी ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन स्पर्धा में रजत पदक जीता। स्क्वाश में जोशना चिनप्पा और वेलावन संथिल कुमार की मिक्स डबल्स जोड़ी ने कांस्य पदक देश के नाम किया। वहीं अभय सिंह पुरुष सिंगल्स और अनाहत सिंह महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंचे। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। भारत पदक तालिका में 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य समेत 30 पदकों के साथ 10वें स्थान पर है।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। निर्वाचन आयोग ने फिर स्पष्ट किया, सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SIR का आदेश सर्वसम्मति से जारी किया गया। आयोग ने कहा, SIR के दौरान जिन मतदाताओं को नोटिस मिला, BLO उनके घर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने केरल में सहकारिता के माध्यम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं का उद्घाटन किया। और एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने स्वर्ण पदक जीता। भारत के 4 स्वर्ण, 12 रजत और 14 कांस्य सहित 30 पदक। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Election Commission reiterates that order for SIR issued for all states and UTs with its unanimous approval. Says booth level officers will visit homes of electors issued notice during SIR to collect required documents. Union Minister Amit Shah inaugurates several NCCF initiatives in Kerala to boost women's empowerment through cooperatives. Chief Justice of India Surya Kant says drug abuse among children must be seen as child protection issue. External Affairs Minister S. Jaishankar to address United Nations General Assembly in New York tonight. And in Asian Games, Indian men's and women's kabaddi teams clinch gold medals in Japan. Tajinder Pal Singh Toor wins silver in men's shot put. India's medal tally reaches 30 with 4 gold, 12 silver and 14 bronze. The Election Commission has reiterated that the decision of the Special Intensive Revision, SIR, of electoral rolls issued for all the states and UTs was taken unanimously. Addressing a press conference in New Delhi, Director General Media Ashish Goyal said, a meeting of the Commission was held today where Chief Election Commissioner Ganesh Kumar and Election Commissioners Dr. Sukhbir Singh Sandhu and Vivek Joshi were present. He said the order for the SIR issued on the 24th of June last year for all the states and UTs, starting with Bihar, was issued with the unanimous

किशोर कुमार की आवाज थी और फिल्म का नाम था सफर। आइए सुनते हैं फिल्म महाराजा का गीत, आवाज लता मंगेशकर की। गीतकार हैं कैफी आजमी और संगीतकार हैं मदन मोहन।

0: ये स्वर था लता मंगेशकर का फिल्म महाराजा के लिए।
1: 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहे हैं कौन, एक मशहूर संगीतकार और एक मशहूर लेखक, निर्देशक और अभिनेता।
2: हमें तुम्हारी लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना हो पाया।
1: इंतजार कीजिए।
3: कैसे जी

0: मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर और शत्रुघ्न सिन्हा को आप सुन रहे थे। फिल्म का नाम था दोस्त। गीत आनंद बख्शी का था और धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की थी।
1: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का 3 अक्टूबर को विविध भारती पर।

0: एक विलक्षण कथाकार जिनकी लेखनी में गहरी संवेदना है, विचार है, जीवन के अनुभव हैं। वो हैं जाने माने कहानीकार, उपन्यासकार और अनुवादक मनोज रूपड़ा।
1: मैंने एक लंबा लेख लिखा इन सब चीजों को, उसका पहल में वो लेख छपा था, कहानी की काया और फिल्म की छाया। उसमें मैंने एशियन फिल्मों पर लिखा और उसमें किस तरह से कहानियों को फिर से वापस स्थापित किया गया, इस बात को रेखांकित किया।
0: आज के मेहमान 30 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। तीन अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहे हैं कौन? एक मशहूर संगीतकार और एक मशहूर लेखक, निर्देशक और अभिनेता।
2: हमें तुम्हारा लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, तुमसे ना हो पाएगा।
0: इंतजार कीजिए।
3: और अब आज का आपके लिए कार्यक्रम समाप्त होता है। आज का ये सफर आपने तय किया अपने दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ।

ये है विविध भारती। आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी कि संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट है वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखिए सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प मोड़ शुरू होता है, ललित मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
2: आज के फनकार।

के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक ऐसे गायक, संगीतकार और निर्माता की, जिनके बारे में सलील चौधरी ने कहा था, अगर ईश्वर किसी आवाज में गाते तो वो हेमंत कुमार की आवाज में ही गाते।

0: जी हाँ, आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है गायक, संगीतकार और निर्माता हेमंत कुमार पर।
1: देखिए वो काली काली बदलिया, जुल्फ की घटा चुरा न ले कहीं, चोरी चोरी आके शोक बिज

आई। हेमंत कुमार का जन्म 16 जून 1920 को हुआ था बनारस में। ये जानकर आपको हैरत हो सकती है कि हेमंत कुमार का ताल्लुक बनारस से रहा था। उनके पिता वहां काम किया करते थे। बाद में उनका परिवार कोलकाता चला गया था, लेकिन बनारस से ताल्लुक होने का एक बहुत बड़ा फायदा हेमंत कुमार को किस गाने में मिला, याद है आपको? फिल्म मुनीम जी का ये गाना सुनिए। किस बनारसी अदा के साथ हेमंत कुमार ने इस गाने को गाया है।

कोलकाता में हेमंत कुमार को संगीत का शौक लगा और वहां उनकी संगीत की शिक्षा दीक्षा चलने लगी। 12वीं की परीक्षा देने के बाद हेमंत कुमार बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट जादवपुर आ गए और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने लगे। इंजीनियरिंग की पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता था, इसलिए वो संगीत की ओर बढ़ गए। हालांकि माता पिता ने इसका घना विरोध किया, लेकिन उन्होंने संगीत की अपनी रुचि को छोड़ा नहीं। बीच में एक दौर ऐसा आया जब उन्होंने लिखने की तरफ भी अपने कदम बढ़ाए। जानी मानी बांग्ला पत्रिका देश में उन्होंने अपनी कहानी प्रकाशित करवाई। सन 1930 के दशक के आखिर में वो संगीत की दुनिया में चले आए। सन 1935 में हेमंत कुमार मुखोपाध्याय ने कोलकाता के आकाशवाणी केंद्र पर अपना पहला बांग्ला गीत रिकॉर्ड करवाया। हेमंत कुमार ने उस्ताद फैयाज खां और फणीभूषण गांगुली से भी संगीत की तालीम ली थी। सन 1937 में हेमंत कुमार का पहला ग्रामोफोन रिकॉर्ड आया कोलंबिया के बैनर तले। इसके बाद हेमंत कुमार की ख्याति बढ़ती चली गई। सन 1941 हेमंत कुमार ने पहली बार फिल्मों में गाया। ये बांग्ला फिल्म थी निमाई संन्यास और इसके संगीतकार थे हरि प्रसन्न दास। हेमंत कुमार ने अपने पहले हिंदी गीत रिकॉर्ड करवाए फिल्म इरादा में सन 1944 में। इस फिल्म के संगीतकार थे पंडित अमरनाथ और गाने लिखे थे अजीज काश्मीरी ने। हेमंत कुमार रवींद्र संगीत के विशेषज्ञ माने जाते थे। सन 1944 में बांग्ला फिल्म प्रिय बंधावी के लिए उन्होंने रवींद्र संगीत रिकॉर्ड किया था पहली बार। बतौर संगीतकार हेमंत कुमार की पहली फिल्म थी अभियात्री। ये बांग्ला फिल्म सन 1947 में आई थी।

1940 के दशक के मध्य में हेमंत कुमार इप्टा में शामिल हो गए और वो जन नाट्य करने लगे। यहाँ सलील चौधरी भी उनके साथ शामिल थे। सन 1943 में बंगाल में पड़े अकाल के दौरान जन जागृति का काम किया इप्टा ने, और सन 1947 में हेमंत कुमार ने अपना गैर फिल्मी गीत रिकॉर्ड किया गनेर बंधु, जिसमें संगीत सलील चौधरी का था। हेमंत कुमार इस दौर में बांग्ला फिल्मों में संगीत दे रहे थे। इनमें से कई फिल्मों के निर्देशक हेमेन गुप्ता थे। कुछ समय बाद हेमेन गुप्ता मुंबई फिल्म जगत में पैर जमाने के लिए चले आए और इसके बाद उन्हें मिली फिल्मिस्तान की फिल्म आनंद मठ। फिल्म आनंद मठ का निर्देशन करते समय हेमेन गुप्ता ने कोलकाता से हेमंत कुमार को भी मुंबई बुला लिया। इस तरह से मुंबई में हेमंत कुमार की पहली फिल्म बनी सन 1952 में आई आनंद मठ।

इसी फिल्म में हेमंत कुमार ने लता मंगेशकर की आवाज में रिकॉर्ड किया वंदे मातरम। आनंद मठ ने मुंबई में हेमंत कुमार के पैर जमा दिए। इसके बाद उन्होंने फिल्मिस्तान की फिल्म की शर्त

इसी दौरान बतौर प्लेबैक सिंगर हेमंत कुमार की ख्याति बढ़ती चली जा रही थी। देवानंद की फिल्म जाल में सचिन देव बर्मन ने हेमंत कुमार से ये गाना गवाया।

के बाद आई घर नंबर 44, फिर देवानंद के लिए हेमंत कुमार ने ये शरारती गीत गाया फिल्म 16 साल के लिए।

50 के दशक तक हेमंत कुमार एक प्रसिद्ध गायक और संगीतकार बन चुके थे। सन 1954 हेमंत कुमार के करियर की नई ऊंचाई फिल्म नागिन। फिल्म नागिन के सभी गाने बेहद लोकप्रिय हुए।

सन 1955 में हेमंत कुमार को मिला सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का पहला फिल्म फेयर पुरस्कार फिल्म नागिन के लिए। 1950 के दशक के आखिर में हेमंत कुमार ने अपना बैनर शुरू किया हेमंता बेला प्रोडक्शंस, और इस बैनर के तले उन्होंने बनाई फिल्म नील आकाशेर नीचे। ये फिल्म सन 1959 में आई थी और इसके निर्देशक थे मृणाल सेन। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल हुआ था। इसके तकरीबन 10 साल बाद हेमंत कुमार ने एक नया प्रोडक्शन हाउस खोला। इस बार उन्होंने नाम रखा गीतांजलि प्रोडक्शंस। हिंदी सिनेमा के इतिहास की कुछ बेमिसाल फिल्में दी गीतांजलि ने, जैसे 20 साल बाद, कोहरा, बीवी और मकान, फरार, राहगीर और खामोशी, जिसका गुलजार का लिखा ये गीत दिल की गहराई में उतर जाता है।

हेमंत कुमार के गाने सीधे दिल की गहराइयों में उतरते हैं। उनकी आवाज में एक गंभीरता है, दूसरी तरफ उनकी आवाज में एक शोखी भी नजर आती है कुछ खास गानों में। यूं लगता है जैसे कोई दार्शनिक नदी के किनारे अपना सुर छेड़ रहा हो।

आज भी हेमंत कुमार को सुनने वालों की कमी नहीं है। हेमंत दा की आवाज विविध भारती ही नहीं दुनिया भर के रेडियो चैनलों पर गूंजती है और लोग उनकी आवाज को याद करते हैं, उन्हें नमन करते हैं। हेमंत कुमार बतौर संगीतकार बड़े ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। यहाँ हम आपके लिए लेकर आए हैं बतौर संगीतकार उनकी कुछ निराली रचनाएं।

0: बनाना न।
1: 26 सितंबर 1989 69 साल की उम्र में कोलकाता में हेमंत कुमार मुखोपाध्याय ने आखिरी सांस ली। रह गई उनकी आवाज, उनका दिया हुआ संगीत और उनकी बनाई हुई फिल्में।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था गायक संगीतकार और निर्माता हेमंत कुमार पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: ये आकाशवाणी अलवर का सरिस्का चैनल है। अब सुनिए जापान में चल रहे एशियन गेम्स 2026 के 20वें संस्करण पर डेली हाईलाइट कैप्सूल दिल्ली केंद्र से हम रिले कर रहे हैं।
1: शूटिंग रेंज पर सांसों को थाम देने वाला सन्नाटा, कहीं दौड़ती हुई सड़क पर एक एथलीट 42 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर रहा था, तो कहीं स्क्वॉश कोर्ट पर हर पॉइंट इतिहास के और करीब ले जा रहा था। और इन तमाम तस्वीरों के बीच भारत ने आज सिर्फ पदक नहीं जीते बल्कि अपनी खेल विरासत की कई कहानियों को एक साथ आगे बढ़ाया। तो आईची नागोया में आज भारत ने कितने मौके बनाए, कितने मकाम हासिल किए, किसने तिरंगा पोडियम तक पहुंचाया और किन मुकाबलों ने बढ़ाई कल की उम्मीद, इन सब की पूरी तस्वीर अब आपके सामने है। एशियन गेम्स 2026 में आज क्या कुछ हुआ, पूरे रोमांच को समेटे डेली हाइलाइट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। सबसे पहले नजर डालते हैं दिन की हेडलाइंस पर। कबड्डी में भारत का स्वर्णिम डबल धमाका, महिला टीम के बाद पुरुष टीम ने भी ईरान को हराकर जीता गोल्ड मेडल। 42 किलोमीटर की दूरी, 44 साल का इंतजार खत्म। सावन बरवाल ने मैराथन में सिल्वर मेडल जीतकर बनाया नया नेशनल रिकॉर्ड। शूटिंग में आया एक और पदक, आशीष चौकसी, तिलोत्तमा सेन और विदर्शा विनोद ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन टीम स्पर्धा में जीता सिल्वर मेडल। स्क्वॉश कोर्ट पर कामयाबी भरा दिन, जोशना चिनप्पा और विलावन सेंथिल कुमार ने जीता ब्रॉन्ज, जबकि अनाहत सिंह और अभय सिंह ने सिंगल्स फाइनल में जगह बनाकर दो और पदक किए पक्के। शुरुआत करते हैं कबड्डी से। आज मैच पर हर रेड में रोमांच था, हर टैकल में ताकत और अंत में तिरंगा रहा सबसे ऊपर। कबड्डी के डबल गोल्ड की पूरी कहानी बता रही हैं मेघा अपनी रिपोर्ट में।
2: इंडिया कंप्लीटेड अ गोल्डन डबल इन कबड्डी विद बोथ द मेंस एंड वुमेन्स टीम्स ओवरकमिंग ईरान इन देयर रिस्पेक्टिव फाइनल्स। द वुमेन वर फर्स्ट टू स्ट्राइक इन अ टेंस गोल्ड मेडल कॉन्टेस्ट। इंडिया हेल्ड देयर नर्व टू डिफीट ईरान 37-34 एंड सक्सेसफुली डिफेंड द टाइटल दे वन एट हांगझोउ। इट इज इंडियाज फोर्थ Women's Kabaddi Gold since the event entered the Asian Games program in 2010. A few hours later, the men made it 2 out of 2. India defeated Iran 40-34 to retain their crown and underline their extraordinary dominance of the sport at the Asian Games. Men's Kabaddi has featured at the Asian Games since 1990 and India have now won 9 gold medals in 10 editions.
1: निशाने लगाने के लिए आंखों से ज्यादा जरूरी होता है उस एक पल में खुद को बिल्कुल स्थिर रखना। शूटिंग रेंज

0: पे आज भारत ने कैसे साधा पोडियम का सफर, बता रहे हैं दर्पण टिकिया।
1: शनिवार को एक बार फिर शूटिंग रेंज में भारत की चांदी हुई। महिलाओं की 50 मीटर थ्री पोजीशन राइफल टीम स्पर्धा में तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद और आशी चौकसी की तिगड़ी ने रजत पदक हासिल किया। तीनों ने कुल मिलाकर 1763 पॉइंट हासिल किए और दूसरा स्थान प्राप्त किया। इसके साथ ही 20वें एशियन गेम्स में भारत शूटिंग के खेल से 11 पदक हासिल कर चुका है। 2023 में बनाए अपने खुद के एशियन गेम्स रिकॉर्ड की बराबरी करते हुए चाइनीज तिगड़ी ने स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। इन परिणामों के आधार पर विदर्शा और तिलोत्तमा को इंडिविजुअल प्रतियोगिता के फाइनल में भी जगह मिली। हालांकि स्टैंडिंग पोजीशन में कुछ खराब शॉट्स के बाद पिछली बार इसी प्रतिस्पर्धा में एशियन गेम्स का ब्रॉन्ज मेडल लेने वाली आशी चौकसी क्वालिफाइंग राउंड से ही बाहर हो गई। फाइनल में जहां चीन की जियाउ हान ने एक नया एशियन रिकॉर्ड स्थापित किया, तो भारत की तिलोत्तमा चौथे और विदर्शा विनोद पांचवें स्थान पर रही और दोनों ही एकल वर्ग में पदक से चूक गई।
0: ट्रैक पर रफ्तार, फील्ड में फासले और भारतीय खिलाड़ियों के नाम होते गए पदक। एथलेटिक्स में भारत के शानदार दिन का पूरा हाल बता रही हैं मेघा।
2: इट वॉज अ थ्री मेडल डे फॉर इंडिया इन एथलेटिक्स विद टू सिल्वर्स एंड अ ब्रॉन्ज एंड लीडिंग द चार्ज वाज सावन बरवाल हु प्रोड्यूस्ड अ सुपर्ब रन इन द मेंस मैराथन क्लॉकिंग 2 hours 11 minutes and 37 seconds। बरवाल वन सिल्वर एंड बेटर्ड हिज ओन नेशनल रिकॉर्ड बाय 21 seconds। लेटर इन द डे तेजिंदर पाल सिंह तूर एडेड अनदर एशियन गेम medal to his collection. The two-time defending champion registered a best throw of 20.64 meters to take silver in the men's shot put. There was a bronze on the track as well. Prachi Chaudhary finished third in the women's 400 meters, clocking 53.21 seconds, while Kiran Tahil missed out on the podium. National record holder Vishal TK finished fifth in the men's 400 meters final. Vishal had impressed in qualification, clocking 45.27 seconds to win his heat, the fastest time across all three heats. In the men's triple jump, Karthik Unnikrishnan finished 6th, while Praveen Chitravel's challenge ended early after he suffered an injury on his opening attempt. In the women's 1500 meters, Paral Chaudhary came agonizingly close to a medal, finishing 4th in a personal best 4 minutes 9.46 seconds. Pooja finished 6th. India also set up several possibilities for the days ahead. Animesh Kajur qualified for the men's 200 meters final after finishing 2nd in a semi-final in 20.81 seconds. While Harita Bhadra and Unnati Ayappa progressed to the women's 200 meters final. And in the decathlon, Tejaswin Shankar ended day one on the top of the standings with 4,338 points after 5 events, keeping himself firmly in contention as the remaining 5 disciplines take place on Sunday.
0: बॉक्सिंग रिंग में हर राउंड के साथ रणनीति बदलती रहती है, लेकिन लक्ष्य वही रहता है, यानी अगले दौर में जगह। भारतीय मुक्केबाजों के लिए कैसा रहा आज का दिन, सुनते हैं शाहिद आजमी की ये रिपोर्ट।
3: एशियन गेम्स में बॉक्सिंग रिंग से भारत के लिए दोहरी खुशी की खबर है। प्रिया घंघास और कपिल पोखरियार शानदार जीत दर्ज करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला 60 किलोग्राम वर्ग में प्रिया घंघास का सामना दक्षिण कोरिया की ओह योन जी से हुआ था। प्रिया ने यह मुकाबला 5-0 से जीतकर अंतिम 8 में जगह पक्की कर ली है। वहीं पुरुषों के 90 किलोग्राम वर्ग में कपिल पोखरिया ने भी शानदार प्रदर्शन किया। राउंड ऑफ 16 में कपिल के सामने ईरान के सैम एस्टाकी थे। कपिल ने पूरे मुकाबले में बेहतरीन नियंत्रण दिखाया और जजों ने 5-0 के सर्वसम्मत फैसले से उन्हें विजेता घोषित किया। इस जीत के साथ कपिल ने क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। हालांकि 55 किलोग्राम वर्ग में जादू मनीष सिंह को निराशा हाथ लगी। राउंड ऑफ 16 में उनका मुकाबला फिलीपींस के कार्लो पालम से हुआ। कड़े मुकाबले में जादू मनी को 0-3 से हार का सामना करना पड़ा और उनका एशियन गेम्स में अभियान समाप्त हो गया।
0: पुरुष हॉकी में भारत ने जापान को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। भारत की ओर से अभिषेक ने 15वें मिनट में फील्ड गोल किया, जबकि कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 40वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर को गोल में तब्दील किया। ये पूल ए में भारत की लगातार चौथी जीत थी और टीम ने 12 अंक के साथ सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। एक तीर एक निशाना और पदक की ओर बढ़ता भारत। दर्पण टिकिया की रिपोर्ट में जानते हैं कि आर्चरी रेंज में आज कैसा रहा भारतीय तीरंदाजों का दिन।
1: शनिवार को एशियन गेम्स 2026 में तीरंदाजी का भी आगाज हुआ। पुरुषों की रिकर्व प्रतिस्पर्धा के क्वालिफाइंग राउंड में ही उन्होंने कुल संभव 720 में से 698 अंक हासिल करते हुए एक नया गेम्स रिकॉर्ड सेट किया। रैंकिंग राउंड में धीरज पहले पायदान तो उनके साथ ही नीरज चौहान 20वें और यश भोगे 25

0: पायदान पर रहे। बतौर टीम भारत दूसरे स्थान पर रहा। महिलाओं की प्रतिस्पर्धा में भारत की टीम रैंकिंग छठी रही, तो वहीं बतौर इंडिविजुअल्स कुमकुम मोहोद को 10वां, कीर्ति को 20वां, तो अंकिता भकट को 26वां स्थान प्राप्त हुआ। महिलाओं की टीम प्रतिस्पर्धा में पहले स्थान के लिए भारत और चीन में टाई रहा। हालांकि टाई ब्रेकर में चीन ने बाजी मारी। इंडिविजुअल स्टैंडिंग्स में चिकिता तानीपारथी पहले, पिछली बार की स्वर्ण पदक विजेता ज्योति वैनम 13वें और प्रतिका प्रदीप 20वें स्थान पर रहीं। तो वहीं मेंस टीम तीसरे और इंडिविजुअल प्रतिस्पर्धा में साहिल जाधव 5वें, मणिरत्नम गणेश 14वें और कुशाल दलाल 16वें स्थान पर रहे। आपको याद दिला दें कि क्वालिफिकेशन या रैंकिंग राउंड से केवल ड्रॉ का फैसला होता है और असली प्रतियोगिता का अभी शुरू होना बाकी है। इसके साथ ही रिकर्व मिक्स टीम प्रतियोगिता में धीरज और कुमकुम, तो वहीं कंपाउंड मिक्स टीम प्रतिस्पर्धा में साहिल और चिकिता भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे।
1: एशियन गेम्स में भारतीय घुड़सवारों की आज की चुनौती पर शाहिद आजमी की रिपोर्ट।
2: घुड़सवारी से भारत के लिए अच्छी खबर है। एशियन गेम्स के पदक विजेता हृदय छेदा और जय सूद ने शानदार प्रदर्शन करते हुए व्यक्तिगत रेसेस के फाइनल में जगह बना ली है। दोनों भारतीय खिलाड़ियों ने दो क्वालिफाइंग राउंड के बाद टॉप 15 में स्थान हासिल कर लिया है। हृदय छेदा 135.059 अंकों के साथ 11वें स्थान पर है, जबकि जय सूद ने 133.559 अंक हासिल कर 13वां स्थान हासिल किया। वहीं श्रुति बोरा 129.941 अंकों के साथ 24वें स्थान पर रही। व्यक्तिगत रेसेस का फाइनल कल खेला जाएगा, जहां हृदय और जय की नजर पदक पर होगी।
1: रुख करते हैं अब बैडमिंटन कोर्ट का। आज बैडमिंटन में भारतीय खिलाड़ियों के लिए मिला जुला दिन रहा। मेघा बता रही हैं अपनी रिपोर्ट में कि कौन बढ़ा आगे और किसका सफर हुआ समाप्त।
3: A day of contrasting fortunes for India in the individual badminton competition at the Asian Games. Lakshya Sen's singles campaign came to an early end against former world champion Lokheen Yu. The Indian fought back after losing the opening game, but the Singaporean prevailed 21-12, 15-21, 21-14 in a contest that lasted over an hour. It meant an individual Asian Games medal continues to elude Lakshya, although he has already won a bronze from the men's team event at these games. Ayush Shetty began with a commanding 21-7, 21-7 victory over Kazakhstan Maksud before being stretched by the experienced Chao Tien Chen. Ayush pushed the third seed to three games but went down 16-21, 21-19, 17-21 in the pre-quarterfinals. The standout performance though came from 19-year-old Unnati Huda. After surviving a three-game battle against Malaysia's Wong Ling Ching, Unnati stunned world number 6 Putri Kusuma Vardhani 21-19, 21-13 to book her place in the quarterfinals, where she faces Japan's Akane Yamaguchi. PV Sindhu also began her individual campaign with a straight games win over Chinese Taipei's Chiu Pin Qian before overcoming Japan's Tomoka Miyazaki 21-9, 21-13 in the round of 16 to book her place in the women's singles quarterfinals.
1: कैनो में भारत की चुनौती का क्या रहा नतीजा, दर्पण टिकिया की ये रिपोर्ट।
0: शनिवार को भारत के लिए कनू स्प्रिंट की अलग अलग प्रतिस्पर्धाओं में हर्षवर्धन सिंह शेखावत, पार्वती गीता और प्रसन्ना कुमार सत्यप्रकाश की जोड़ी, तो वहीं राजू रावत और नेहा देवी लचुनबाम की जोड़ी शिरकत कर रही थी। इनमें से कोई भी भारत के लिए पदक नहीं दिला सका।
1: स्क्वॉश में आज भारत के लिए कहानी सिर्फ एक पदक की नहीं रही। एक तरफ अनुभव ने पोडियम छुआ तो दूसरी तरफ नई पीढ़ी ने फाइनल में जगह बनाकर इतिहास के दरवाजे पर दस्तक दी। स्क्वॉश कोर्ट का पूरा रोमांच मेघा के साथ।
3: इंडियन स्क्वॉश एंजॉयड वन ऑफ इट्स बिगेस्ट डेज एट दीज एशियन गेम्स विद टू सिंगल्स फाइनलिस्ट एंड अ मिक्स्ड डबल्स ब्रॉन्ज। द परफॉर्मेंस ऑफ द डे केम फ्रॉम 18-year-old अनाहत सिंह अप अगेंस्ट होम फेवरेट एंड वर्ल्ड नंबर 6 सतामी वतानबे। अनाहत फाउंड हरसेल्फ टू गेम्स डाउन एंड देन टू मैच points down in the third, but the Indian produced a remarkable turnaround, saving both match points and winning 4 consecutive points to take the third game. From there, the momentum completely shifted. Anahat registered a stunning comeback, winning 9-11, 11-13, 12-10, 11-6, 11-3 to reach the women's singles final. It was also the biggest win of her young career by ranking. Abhay Singh then ensured India would have representation in both singles finals. He beat Pakistan's Mohammad Irfan in straight games 11-3, 12-10, 11-6 to move within one victory of gold. Earlier, Joshna Chinnappa and B. Senthil Kumar had claimed bronze in the mixed doubles after an agonizing semi-final defeat to Hong Kong. The Indians had match points in the deciding game but eventually went down 10-11, 11-2, 10-11. For the veteran Joshna, it is a 6th

0: Asian Games medal, and there is history on offer on Sunday. India has never won an Asian Games singles gold in squash. Both Anahat and Abhay now have the opportunity to change that, with Olympic qualification also at stake.
1: टेबल टेनिस में आज भारतीय खिलाड़ियों को कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा. पॉइंट दर पॉइंट चली इस जंग में भारत का सफर कहां तक पहुंचा, बता रहे हैं शाहिद आजमी.
2: एशियन गेम्स में आज खेले गए महिला और पुरुष एकल मुकाबलों में भारतीय खिलाड़ियों को हार का सामना करना पड़ा. महिला एकल के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में भारत की यशस्विनी घोरपड़े का सामना जापान की मीवा हरिमोटो से हुआ. यशस्विनी ने मुकाबले में अच्छा संघर्ष किया, लेकिन जापानी खिलाड़ी ने बेहतर खेल का प्रदर्शन करते हुए भारतीय खिलाड़ी को 4-1 से शिकस्त दे दी. इस हार के साथ यशस्विनी घोरपड़े का महिला एकल में अभियान समाप्त हो गया है. मीवा हरिमोटो ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है. वहीं पुरुष एकल के राउंड ऑफ 32 में भारत के मनुष्य के सामने चीन के लिन शिनडोंग की चुनौती थी. लिन शिनडोंग ने शुरुआत से ही मुकाबले पर पकड़ बनाए रखी और मनुष्य को 4-0 से हराकर अगले दौर में जगह बना ली. इस हार के साथ मनुष्य भी पुरुष एकल स्पर्धा से बाहर हो गए. इस तरह आज खेले गए टेबल टेनिस के दोनों मुकाबलों में भारत को निराशा हाथ लगी. हालांकि टेबल टेनिस में भारत के लिए इस एशियन गेम्स में पदक का खाता खुल चुका है. कल मिश्रित युगल में दिया चितले और मनुष्य की भारतीय जोड़ी ने कांस्य पदक जीतकर भारत को टेबल टेनिस में इस बार का पहला और एकमात्र पदक दिलाया था.
1: फेंसिंग में मुकाबले पलक झपकते बदलते हैं, एक टच जीत और हार का फैसला कर सकता है. भारतीय फेंसर्स ने आज किस तरह पेश की अपनी चुनौती, मेघा बता रही हैं एरिना का हाल.
0: India's campaign in the team fencing events came to an end at the quarterfinal stage. The men's saber team of Karan Singh, Gisho Nidhi, Lakshya Batser and Vishal Thapar began strongly, beating Philippines 45-27 in the round of 16. That set up a much tougher quarterfinal against Asian powerhouse South Korea. India could not repeat their opening round performance and went down 25-45, ending their medal challenge. There was a similar story in the women's foil. Joyce Ashishtha, Stalin Raj, Sonia Devi Vaikom, Kanu Priya Chawla and Meena Devi Narim registered a convincing 45-24 victory over Indonesia to reach the last eight, but host Japan proved too strong in the quarterfinal, bringing India's campaign to an end.
1: एशियन गेम्स के सातवें दिन यानी आज 22 गोल्ड मेडल दांव पर थे. आइए मेघा से जानते हैं मेडल टैली का लेटेस्ट अपडेट.
0: With 2 gold medals in Kabaddi, India have moved up to the 10th in the medals tally, ending the day with 30 medals, 4 gold, 12 silver and 14 bronze. China continue to lead the standings, followed by host Japan in 2nd and South Korea in 3rd.
1: कल का दिन आईची नागोया में भारत के लिए सिर्फ एक और दिन नहीं होगा, क्योंकि सुबह की पहली लहर से लेकर शाम के आखिरी ट्रैक तक भारत की उम्मीदें एक के बाद एक कई मैदानों पर उतरेंगी. सुबह करीब 4 बजे समंदर की लहरों के बीच कमाली मूर्ति और उसके कुछ देर बाद शुगर शांति बनार से सर्फिंग के विमेंस शॉर्ट बोर्ड में अपनी चुनौती पेश करेंगी. यानी भारत का दिन मैदान से नहीं लहरों से शुरू होगा. इसके साथ ही एथलेटिक्स में प्रियंका गोस्वामी और मंजू रानी महिला मैराथन रेस वॉक के फाइनल में उतरेंगी. तीरंदाजी में ज्योति सुरेखा वेन्नम, प्रीतिका प्रदीप और तनी पर्थी चिकिता की कंपाउंड टीम मंगोलिया के खिलाफ उतरेगी, जबकि पुरुष टीम का सामना यूएई से होगा. और अगर ये टीमें आगे बढ़ती हैं तो कुछ ही देर के बाद क्वार्टर फाइनल का रास्ता भी खुल सकता है. बैडमिंटन कोर्ट पर त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की महिला डबल्स जोड़ी क्वार्टर फाइनल में मलेशियाई जोड़ी का, जबकि मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा कास्त्रो की जोड़ी चीन की चुनौती का सामना करेगी. महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में उन्नति हुडा के सामने जापान की अकाने यामागुची होंगी. शूटिंग रेंज में मनु भाकर, ईशा सिंह और राही सरनोबत 25 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में पदक पर निशाना साधने उतरेंगी. वहीं ट्रैप में कायनन चनाई, अहवर रिजवी और शपथ भारद्वाज पुरुष वर्ग में, जबकि नीरू, मनीषा कीर और आशिमा अहलावत महिला वर्ग में निशाना लगाएंगी. दोपहर तक एथलेटिक्स ट्रैक भी पूरी तरह भारतीय रंग में नजर आएगा. डिकैथलन में तेजस्विन शंकर और तौफीक नौशाद एक्शन में होंगे. 400 मीटर हर्डल्स में संतोष कुमार, तमिला रासन, यहास पलाक्ष, विद्या रामराज और अनु राघवन चुनौती पेश करेंगे. लॉन्ग जंप में नजरें रहेंगे मुरली श्रीशंकर और डेविड सोलोमोन पट्टूराज पर. और फिर आएगा दिन का एक बड़ा पदक सत्र. वेटलिफ्टिंग में हरजिंदर कौर महिलाओं की 69 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में उतरेंगी. कुराश में संगीता भारती, यश कुमार चौहान और विशाल पदक की दौड़ में होंगे. दोपहर बाद स्क्वॉश कोर्ट पर निगाहें टिकेंगी. महिला सिंगल्स में अनाहत सिंह और पुरुष सिंगल्स के फाइनल में अभय सिंह शानदार प्रदर्शन कर इतिहास बनाने की तरह कदम बढ़ाएंगे. बॉक्सिंग रिंग में भी एक्शन होने वाला है. अंकुश 80 किलोग्राम, परवीन 65 किलोग्राम, सचिन 60 किलोग्राम और

देवेंद्र 90 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में क्वार्टर फाइनल में विनिंग पंच जड़ने की कोशिश करेंगे और फिर शाम ढलते ढलते नागोया का एथलेटिक्स स्टेडियम एक बार फिर भारतीय उम्मीदों का केंद्र होगा। एनसी सोजन और शैली सिंह लॉन्ग जंप के फाइनल में उतरेंगी, सर्वेश कुशारे और आदर्श राम हाई जंप के फाइनल में होंगे, नंदनी कोंगान 100 मीटर हर्डल्स के फाइनल में होंगी, अनिमेश कुजूर 200 मीटर में पदक जीतने का जोर लगाएंगे और 3000 मीटर स्टीपल चेज में पारुल चौधरी और अंकिता पदक के लिए दौड़ेंगी। और इसी बीच हॉकी के मैदान पर भारतीय महिला टीम के सामने होगी सिंगापुर की चुनौती, वॉलीबॉल में पुरुष टीम वियतनाम से भिड़ेगी, फेंसिंग में भवानी देवी और भारतीय महिला सेबर टीम की चुनौती जारी रहेगी और दिन का अंत होगा एथलेटिक्स में महिला 4x100 मीटर रिले के साथ। एक दिन इतने सारे मैदान और ढेर सारी उम्मीदें। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। इस कार्यक्रम के एडिटर थे विशाल कुमार और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे शाहनवाज खान। आईची नागोया से भारत की उम्मीदों और उपलब्धियों का ये सफर यहीं जारी रहेगा। कल फिर मिलेंगे खेल के नए रोमांच और तिरंगे की नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी आनंद श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार। एशियन गेम्स 2026 आईची नागोया।

ये आकाशवाणी अलवर का सरस का चैनल है। अभी आप सुन रहे थे एशियन गेम्स 2026 के 20वें संस्करण का डेली हाईलाइट कैप्सूल, जिसे हमने दिल्ली केंद्र से रिले किया। और आइए अब सुनते हैं फिर से विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम।

अब क्या कहें राज दिल दीवानों से छुपाया न गया। मोहब्बत की आग ही कुछ ऐसी होती है कि तकदीर भी पल में बदल जाती है। प्यार के आगे वो मुस्कुरा के झुक जाती है। प्यार परवान चढ़ता है जब दो दिलों की बातें आंखों ही आंखों में होने लग जाती हैं।

मौसम कितना भी सुहाना हो या हो रातें सुहानी, बस वो तुम्हारी यादें, वो प्यार भरी बातें, वो तुम्हारी जुल्फों का लहराना मुझे मेरी नींदों से जुदा कर जाता है। क्या कहूँ मैं, किससे कहूँ अपने दिल का हाल, उस पर से ये रात का आलम भी कुछ कम कहर नहीं ढा रहा।

छाए गीत में मोहब्बत भरे तराने आपके दिलों के बेहद करीब छोड़कर जाती हूँ। शायद ख्वाबों में मुलाकात हो जाए तो मंजरी वर्मा का नमस्कार स्वीकार कीजिएगा। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। विदेश मंत्री एस जयशंकर न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित कर रहे हैं। सत्र का विषय है विश्वास बहाली, परिवर्तन का प्रबंधन, एक ऐसा संयुक्त राष्ट्र जो सभी के लिए काम करे। सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के दौरान जिन व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं, उनके घरों पर बूथ स्तर के अधिकारी BLO जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्र करेंगे। BLO बाद में इन दस्तावेजों को ECI नेट प्लेटफॉर्म पर अपलोड करेंगे। ये निर्णय नई दिल्ली में आयोग की बैठक में लिया गया। आयोग ने कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SIR का आदेश आयोग की सर्वसम्मति से जारी किया गया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बिहार और पश्चिम बंगाल सहित 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR पूरा हो चुका है।
1: चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर SIR के दौरान किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में छूट गया है तो वह अपने क्षेत्र के मतदाता पंजीकरण अधिकारी के पास अपना नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और मतदाता पंजीकरण अधिकारी इन मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए विशेष अभियान शुरू करेंगे। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुरोध पर निर्वाचन आयोग ने दावे और आपत्तियां दर्ज करने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा नोटिस, दावों और आपत्तियों का निपटारा करने की आखिरी तारीख भी 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। दीपेंद्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: महाराष्ट्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की समय सारणी में निर्वाचन आयोग ने संशोधन किया है। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार अब महाराष्ट्र की संशोधित मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 16 नवंबर को किया जाएगा। पहले अंतिम मतदाता सूची 4 नवंबर को प्रकाशित होनी थी। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केरलम के भविष्य के लिए नीली अर्थव्यवस्था में बहुत संभावनाएं हैं और सहकारी क्षेत्र को इसका लाभ उठाना चाहिए। श्री शाह ने केरलम के कुंद्रा में आज भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अंतर्गत श्री मॉर्ट पहल सहित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से ही लोग केंद्र में सहकारिता मंत्रालय की मांग करते रहे हैं।
2: आजादी से अब तक देश के सभी किसानों का और कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़े हुए सभी लोगों का एक मांग था कि केंद्र में कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री

0: मगर वो पूरा नहीं होता था। नरेंद्र मोदी जी ने कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री बनाकर देश के ग्रामीण विकास, कृषि विकास और वीमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है।
1: गृह मंत्री अमित शाह केरलम के कोल्लम में माता अमृतानंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि माता अमृतानंदमयी ने सेवा को मिशन में बदलकर एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल केरलम के एक दिन के दौरे पर जाएंगे। यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति कोल्लम में माता अमृतानंदमयी के 73वें जन्मदिन के अवसर पर आयोजित विश्व सेवा दिनम समारोह में भाग लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि न्याय प्रणाली को नागरिकों से मदद मांगने की प्रतीक्षा के बजाय खुद की जरूरतमंदों तक पहुंचना चाहिए। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने पटना में देश के पहले पीड़ित अधिकार केंद्र के उद्घाटन समारोह में ये बात कही। जापान एशियाई खेलों के आज 8वें दिन भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। पुरुष शॉटपुट स्पर्धा में तजिंदर पाल सिंह तूर और पुरुषों की मैराथन स्पर्धा में सावन बरवाल ने रजत पदक हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: FM 103.1 MHz पर ये आकाशवाणी अलवर का सरिस का चैनल है। रात्रि के 11:05 हुए हैं। हमारे आज के प्रसारण अब यहीं संपन्न होते हैं। कल सुबह 5:53 पर अपने कार्यक्रमों के साथ हम आपकी सेवा में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद।